सच्चे दिल से आवाज निकले, इस संसार में मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। हाथ ऊपर उठाकर बाबा से बात करें, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, मेरे भंडारे भरपूर कर दिए, मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया। बस सवेरे सवेरे अगर ये संकल्प करेंगे तो सचमुच भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। लेकिन ये बात खुले मन से करनी है ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर मन इसे स्वीकार कर ले। जरा विचार करें, क्यों हम भाग्यवान हैं? सबसे बड़ी चीज तो हमें वो घर बैठे मिल गया जिसको पाने के लिए हम निस्दिन इंतजार किया करते थे, जिसके दर्शनों के लिए हम त्याग और तपस्या करके जंगलों की राह लेते थे, जिससे मिलने के लिए हमारे नैन तरसते थे, हम राह तकते थे कब हमारे प्रियतम इस धरा पर आएंगे और हमें उनकी समीपता प्राप्त होगी। सोचो कितना बड़ा भाग्य है, हमारे घर बैठे भगवान मेहमान बनकर हमारे पास आ गए। खाली हाथ नहीं आए, साथ में स्वर्ग का राज भाग ताज और तिलक लेकर आए। हाथ में लिए खड़े हैं बच्चे, लो ये तुम्हारे लिए है, लाओ तुम्हें स्वराज का तिलक लगा दूं। कितना बड़ा भाग्य है हमारा, रोज सवेरे स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। सोचो जिनको गाइड करने वाला परम सद्गुरु स्वयं भगवान हो, उनका जीवन कितना सुलभ सरल सरस हो जाएगा। रोज पढ़ाते हैं, हम भगवान से सुनते हैं, सत्य गीता ज्ञान सुनते हैं, मन के सभी अंधकार उसने आकर दूर कर दिए, हमारे सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया, संपूर्ण ज्ञान, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा। परम शिक्षक बनकर रोज वो हमें पढ़ाने आते हैं, इससे बड़ा भाग्य और भला किसका होगा। हमें ये सुंदर परिवार भी मिला, ये भी हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। ज्ञान रतन मिले, हम भरपूर हुए, स्वयं भगवान मिले, केवल मिले ही नहीं, उन्होंने हमें अपनापन दिया और आकर कहा, बच्चे मैं तुम्हारा हूं, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मैं कभी शुरू के सालों में छतों पर घूमते हुए बाबा से बातें किया करता था, बाबा हम तो आपके लिए न जाने क्या क्या कल्पनाएं करते थे, तुम ऐसे होगे, तुम ऐसे होगे, पता नहीं कैसे होंगे, बहुत बड़े होंगे या छोटे होंगे, विष्णु स्वरूप में होंगे या महादेव स्वरूप में होंगे, श्री कृष्ण रूप में होंगे या राम के रूप में होंगे, परंतु जब आप हमारे पास आए तो तुम तो हमारे ही निकले। कितनी समीपता हो गई है हमें भगवान से, जिसके दर्शनों के लिए नैन प्यासी थी, अब वो हमारे हैं, हमारे जीवन में समा गए हैं, हमारे परिवार के हेड बन गए हैं। उन्होंने हमें सामने बैठकर कहा, बच्चे तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हूं, तुम बेफिकर बादशाह बन जाओ। तो अपने भाग्य को देख देख कर मुस्कुराते रहो। और आज सारा दिन ये वाणी, बाबा की वाणी मन में गूंजती रहे, मेरे जैसा भाग्यवान इस धरा पर कोई नहीं, मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे पास सब कुछ है, अथाह धन संपदा है, सर्व शक्तियां हैं, संपूर्ण प्योरिटी है, सुख चैन आनंद है। और सारा दिन
अभ्यास करेंगे।

सर्वशक्तिमान परम धाम से नीचे उतरता है, हमारी छत्र छाया बन जाता है, 10 सेकंड के बाद फिर वापस जाकर अपनी परम धाम सीट पर बैठ जाता है, फिर नीचे आ रहा है, हमारी छत्र छाया बन जाता है, फिर ऊपर जा रहा है, अपनी सीट पर बैठ जाता है। सारा दिन ये अभ्यास करेंगे

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आपके मस्तिष्क में भर दी गई वह ढेर सारी जानकारी और सूचना शिक्षा नहीं है, जो जीवन के लिए अनुपयुक्त होने के कारण जीवन भर उसमें उत्पात मचाती रहती है। हम में जीवन निर्माण, मानवीयता निर्माण और चरित्र निर्माण करने वाले विचार होने चाहिए। यदि ऐसे 5 विचार भी आप आत्मसात कर लेते हैं, उन्हें अपना जीवन चरित्र बना लेते हैं, तो आप उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा शिक्षित हैं जिसने पूरा पुस्तकालय कंठस्थ कर रखा हो। हमें उस शिक्षा की जरूरत है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो, मनोबल में वृद्धि हो, प्रज्ञा का विस्तार हो और जिसके बल पर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जाने क्यों और कैसे हम किताबी ज्ञान को, स्कूली पढ़ाई को ही शिक्षित होना मान बैठे हैं। अभिभावकों से लेकर शिक्षकों तक हर किसी का पूरा ध्यान स्कूली पढ़ाई की ओर ही हो गया है। कोई बालक यदि जीवन के ही विज्ञान से अनभिज्ञ बना रहता है तो विज्ञान पढ़कर भी वह भला क्या कर लेगा। हम अपने बच्चों को इतिहास पढ़ने और उसे रटने के लिए तो कहते हैं, लेकिन हम उन्हें इतिहास रचने के लिए नहीं कहते। कोई बालक अपनी पहली, दूसरी या तीसरी भाषा के साथ क्या कर लेगा यदि उसमें संवाद का कौशल, दूसरे तक अपनी बात स्पष्ट ढंग से पहुंचाने का कौशल विकसित नहीं हो सका। यहाँ हमारे भाव को गलत ना समझें। हम यह नहीं कहना चाहते कि किताबी ज्ञान व्यर्थ है। हम तो इस बात पर बल दे रहे हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान शिक्षा को कभी पूरा नहीं करता।

सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयां बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद, भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहां से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहां है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है। ये समझ में आएगा, ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद, भोगवाद, ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद, भोगवाद के कारण।

किताबी ज्ञान बालक के विकास का एक पक्ष तो है, लेकिन एकमात्र पक्ष नहीं है। वह जीवन में सहायक तो है, लेकिन यही एकमात्र जीवन नहीं है। जीवन कुछ और भी है। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला अपने जीवन में भी सर्वोच्च रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। और यह भी जरूरी नहीं है कि सारे बैक बेंचर यानी कक्षा में पीछे बैठने वाले अपने जीवन में भी बैक बेंचर ही रहते हो। सचमुच हम अक्सर देखते हैं 98% अंक पाने वाला जीवन की औसत समझ लिए हुए अंततः उस 72% अंक पाने वाले के लिए काम कर रहा होता है, जिसमें जीवन की समग्र समझ होती है। संबंध ही जीवन का असली ताना बाना है। संवाद ही संबंधों की जीवन रेखा होती है। सफलता केवल नेतृत्व से जुड़ी होती है। या तो आप नेतृत्व कर रहे होते हैं, या फिर किसी के नेतृत्व का अनुसरण कर रहे होते हैं। जहां आप अपना समय लगाते हैं, आपका भविष्य भी वहीं से बनता है। इसीलिए संक्षेप में समय प्रबंधन का कौशल ही जीवन का कौशल है। आप या तो निर्भर करने योग्य होते हैं, या फिर किसी पर निर्भर होने योग्य, और यह आपकी उस छवि पर निर्भर करता है जो आपने खुद अपने लिए बना ली है। कटु सत्य यह है कि जीवन की इन अनिवार्यताओं में से कोई भी हमारे स्कूली या किताबी ज्ञान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो अभिभावकों से, शिक्षकों से और अन्य उन सभी से जिनके हाथ में बच्चों का भविष्य है, अनुरोध है कि कृपा करके बच्चों को किसी पाठ्यक्रम से न बांधे। बच्चों को हम जीवन के प्रति खुलने और खिलने दें, और निश्चय ही किताबी ज्ञान के प्रति भी। हम केवल उनके प्राप्तांकों को ही न देखते रहें, बल्कि हमें उनके जीवन को भी देखना होगा। शिक्षा के साथ समझ भी देनी होगी।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

किसी काम को जब रुचि से किया जाता है तो उस काम को करने में आनंद आता है, और अंततः जब वह पूरा हो जाता है तो आपको उपलब्धि की अनुभूति होती है। जो काम आपको ऐसी अनुभूति देता है उसे आप बार बार करना चाहते हैं। इसके विपरीत, काम को जब एक विवशता, एक बाध्यता के रूप में समझा व किया जाता है तो जो काम आप कर रहे होते हैं उससे आप जूझ रहे होते हैं, और आखिर जब वह पूरा हो जाता है तो आपको चलो जान छूटी का एहसास होता है। जो काम आपको जान छूटी का एहसास देता है, भविष्य में आप उससे बचना चाहते हैं। आप यदि उसे दोबारा भी कर रहे होते हैं तब भी उसे आधे अधूरे मन से, अरुचि व अनिच्छा से ही कर रहे होते हैं। जो लोग हर काम को रुचि से करते हैं वे जीवन में उपलब्धियों से भरे होते हैं, इसलिए वे जीवन के प्रति बहुत अभिलाषित रहते हैं। जो लोग हर काम को एक विवशता, एक बाध्यता के रूप में लेते हैं वे जीवन से थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, और इसलिए जीवन से छुटकारा पाने की इच्छा की हद तक चले जाते हैं। लोग अपने जीवन के दैनिक कामकाज करने में भी अरुचि व अनिच्छा वाले हो गए हैं। लोग खाना बनाने में भी अनिच्छुक हो गए हैं। क्या प्री कुक्ड फूड, फास्ट फूड, फ्रोजन फूड और रेडीमेड फूड ने आज हर रसोई में घुसपैठ नहीं कर ली है? लोग आराम से बैठकर भोजन का स्वाद लेने के भी अनिच्छुक होते जा रहे हैं। नाश्ता करना छोड़ देना और लंच के लिए समय न निकाल पाना क्या आम बात नहीं होती जा रही है? बच्चे स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक नहीं हैं? जितने वयस्क लोग काम पर जाने में अनिच्छुक होते जा रहे हैं, सोमवार की सुबह पड़ने वाले दिल के दौरों की बढ़ती संख्या का क्या आप कोई और कारण बता सकते?

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

जीवन से जुड़ी अनिवार्यताओं को यदि एक विवशता की तरह, एक बाध्यता की तरह देखा जाएगा और हर काम के पूरा हो जाने पर छुटकारा पाने के एहसास वाली लंबी सांस ली जाएगी, तो हम अपने जीवन की गुणवत्ता में विकास कैसे कर पाएंगे? देखिए, हम जो भी करें उसे उत्सव की तरह करें। उफ, तो मुझे यह करना ही पड़ेगा वाली प्रवृत्ति के बजाय मैं यह करना चाहता हूँ वाली प्रवृत्ति को अपनाएं। हमारा हर कार्य कुछ इस तरह से हो कि उसका आरंभ रुचि के साथ हो, करना आनंद के साथ हो और समापन उपलब्धि की अनुभूति के साथ हो। जो काम हमें करना ही है तो फिर उसे आनंद के साथ ही क्यों न किया जाए। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप ज्ञान प्राप्ति से पहले भी केवल कुएं से जल खींचते थे और लकड़ियां काटते थे, और ज्ञान प्राप्ति के बाद भी आप वही कर रहे हैं। आपके कार्य में तो मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु का उत्तर था, हाँ, मेरे कार्य में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जिस गुणवत्ता से मैं यह कार्य कर रहा हूँ उसमें परिवर्तन आ गया है। कन्फ्यूशियस ने ठीक ही कहा था, वह रोजगार चुने जिसमें आपकी रुचि है तो फिर आपको जीवन में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं है, खुशी खुद ही वह रास्ता है। तो हमेशा हर कार्य को करने के लिए खुशी वाला रास्ता अपनाएं, खुशी के साथ हर कार्य करें, तो आपको जरूर उस कार्य की पूर्ति होने के बाद उपलब्धि की अनुभूति होगी। कुछ आपने पाया है यह आप महसूस कर पाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वे धीर हैं, गंभीर हैं, रमणीक हैं, नाम मान शान से परे हैं। एक ऐसी विभूति है जिन्होंने बाल्यकाल में ही आध्यात्मिक मार्ग को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। अध्ययन, मनन चिंतन, सेवा एवं राजयोग साधना से खुद को आंतरिक रूप से सशक्त बनाती गईं। मैं मधुबन बात कर रहा हूं यज्ञ रक्षक एवं सर्वप्रिय दादी रत्न मोहिनी जी के बारे में। ब्रह्मा बाबा एवं उनके छोटे से समूह के साथ कराची से भारत आए दादी जी का निश्चय इतना अटल रहा कि उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग आने वाली हर चुनौती को हंसते हंसते स्वीकार किया। परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा द्वारा जो शिक्षा दी, दादी जी ने उसे अपने जीवन में शत शत धारण किया और उसकी स्वरूप बने। स्वभाव में मधुरता, व्यवहार में सरलता, आचरण में रूहानियत दादी रत्न मोहिनी जी की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। शक्ति वंदन की इस कड़ी में वरिष्ठ राजयोगिनी बीके कृति दीदी उनकी कुछ और विशेषताओं पर प्रकाश डाल रही हैं। आइए सुनते हैं।
1: शक्ति वंदन में आइए सुनते हैं उन महानुभावों से जिन्होंने दादी रतन मोहिनी जी के अंग संग रहकर उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में अनेक शिक्षाएं प्राप्त की, उनके जीवन से ओतप्रोत होकर अपने आप को धन्य महसूस किया। सुनते हैं उनके अनुभव उन्हीं के मुखारविंद से।
2: दादी जी ने कुछ बातें ऐसी ऐसी सिखाई है जो आज मेरी ये जर्नी इतनी इजी हो गई है, जो मुझे कभी समझ ही नहीं आई है कि मैंने कभी कोई संघर्ष किया है। मैं मानती हूँ ये मेरे बड़ों की प्रेरणा रही और ये मेरे बड़ों का मेरे सिर पर हमेशा हाथ भी रहा। और दादी जी ने कुछ बातों में इतना मन को जीता है। मैं एक छोटा सा इंस्टेंस जरूर सुनाना चाहूंगी। बीमार बहुत हो जाती थी मैं घड़ी घड़ी। एक बार कुछ इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग थी और मुझे आना था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। दादी जी ने कहा तुम कैसे भी आ जाओ। दादी जी के कहने पर उनकी सिर्फ रिस्पेक्ट रखने के लिए एक बार मैं हिम्मत करके आबू तक आ गई। बहुत प्यार से उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा ये बुखार है ना तुम्हारा, इसको भी यहाँ से भगा दो, आज के बाद ये बुखार नहीं चाहिए। ये बड़ों की शुभकामना ने कैसे काम किया, मैं समझती हूँ ये उन्हों की एक शुभकामना रही मेरे प्रति। उन्हों के ये शब्द इसने जैसे आंतरिक रूप से मुझे हिम्मत दी और एम्पावर कर दिया। और रियली मेरे पास आज भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, लेकिन बुखार कभी भी नहीं आता। तो मैं समझती हूँ कि कभी कभी बड़ों की इसको आशीर्वाद कहे, इसको वरदान कहे, इसको हमारे प्रति की शुभ भावना कहे, ऐसे जिस समय जिस चीज की आवश्यकता थी उस तरीके से दादी जी ने मोटिवेट करके आगे बढ़ाया है।
3: दादी के साथ आप कभी ट्रैवल किए?
2: मैंने केवल एक बार ट्रैवल किया है दादी जी के साथ। वो ट्रैवलिंग थी मेरी ईस्टर्न जोन में, कटक, भुवनेश्वर और आसपास के एरियाज में ट्रैवलिंग की मैंने। उस समय मेरा रोल ये होता था कि दादी जी के आने से पहले जो भी ऑडियंस को थोड़ा पकड़ के रखना होता था उसके लिए मैं आगे थोड़ा हेल्पफुल होती थी। बहुत ज्यादा जर्नी हुई नहीं है मेरी, लेकिन वो जर्नी में भी मैंने देखा कि शी वॉज वेरी केयरिंग, शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बाकी जहाँ दादी जी खुद गई वहाँ के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि दादी जी ने वहाँ जाकर हर एक के दिल को जीता। दादी जी का जो सुनाने का एस्पेक्ट होता था उसमें ब्रह्मा कुमारीज की जो बेसिक्स है वो बेसिक्स वो जरूर शेयर करते, दूसरी बातों को जरूर सुनाएगी, लेकिन साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज का जो बेसिक मेडिटेशन है, जो मेडिटेशन ही आध्यात्मिक जीवन को सक्सेसफुल करता है, वो बात को मैंने दादी जी के पास जरूर देखा।
3: आप लौकिक दुनिया में भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखा है। यूथ विंग के कारण बहुत सारी इतनी एक्टिव और बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड यूथ को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को, कॉरपोरेट्स को, और उसी के साथ साथ आप खुद भी आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। दुनिया में

0: बहुत सारे संत महात्माएं सभी हैं, लेकिन दादी की जैसे पर्सनालिटी है कि इट्स अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। वो साध्वी भी है, सन्यासी भी है, आध्यात्मिक गुरु भी है और एडमिनिस्ट्रेटर भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये आध्यात्मिकता, एडमिनिस्ट्रेशन और ये इतने सारे कारोबार को संभालते हुए दादी इतनी एक्टिवली, और हमने कभी देखा नहीं दादी को बीमार पड़ते हुए भी, कैसे वो मदद करती है? ऐसे कौन सी शक्ति है या कौन सी दादी की धारणा है जो इतने सारे कारोबार, वो अपनी स्वास्थिति स्वउन्नति में भी अटेंशन है और हर कारोबार में इतनी माइन्यूट तरीके से भी वो एक्टिवली सभी को गाइडेंस करते?
1: जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे ये फील होता है कि दादी जी ने हमेशा समझा कि ईश्वरीय कार्य है और भगवान ने अगर मुझे कोई कार्य के लिए चुना है तो मुझे लेवल बेस्ट उसका रिटर्न देना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में अपनी महत्ता कभी नहीं देखी। मैंने हमेशा देखा है दादी जी को कि उनको नाम मान महिमा, बहुत बार मैंने देखा है कि हम बहुत लंबे लंबे दादी जी के अगर इंट्रोडक्शंस देते थे तो दादी जी वहीं रोक लेती थी कि इतना लंबा कहने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कभी मान शान की अपेक्षा रही नहीं, उन्होंने अपने को कोई एक फिगर के रूप में कभी देखने का सोचा नहीं। उन्होंने यही देखा कि ये परमात्मा कार्य है और परमात्मा कार्य में मैं अपना लेवल बेस्ट क्या दे सकती हूँ और कैसे दे सकती हूँ। इसी कारण हर कार्य को वो इतना एक्टिवली ध्यान भी दे पाई। उन्होंने इसमें अपना स्वार्थ कभी नहीं देखा, उन्होंने उसमें अपनी प्राप्ति कभी नहीं देखी। उनको फैसिलिटीज की भी जो बात होती थी, उनके साथी, हम लोग जैसे साथी होते थे, हम समझते थे दादी जी को ये फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन दादी जी ने कभी फैसिलिटीज को भी एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे मैंने आगे सुना है, मैंने ट्रेन में दादी जी के साथ ट्रेवल किया, तो दादी जी इतना इजी थी, शी यूज्ड टू ट्रेवल एवरीवेयर, जो भी मिला जैसे भी मिला। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत इजी होकर कार्य किया है, इसकी तो मैं खुद प्रत्यक्ष दर्शी रही हूँ।
0: आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को बताएंगे, आध्यात्मिकता कैसे मदद करती है एडमिनिस्ट्रेशन को?
1: आध्यात्मिकता इस रूप से मदद दादी जी के जीवन में की कि उनका मेडिटेशन का अभ्यास इतना सक्षम होने के कारण आंतरिक रूप से वो हमेशा सक्षम रही, सशक्त रही। छोटी छोटी चैलेंजेस ने उनको कभी डिस्टर्ब नहीं किया, ये आध्यात्मिकता की देन थी। दूसरा, हर बात को उन्होंने बहुत लॉन्ग साइट होकर के देखा, प्रेजेंट को नहीं देखा, उन्होंने आने वाले कल को देखा। वो आने वाले कल को इतना स्पष्ट समझ सकी थी और इसी कारण पॉजिटिवली उन्होंने हर चीज को ध्यान दिया, हर चीज पर उनका अटेंशन रहा, अपने प्रति रहा, औरों के प्रति रहा, संस्था के कार्यकलापों प्रति रहा। उनकी फार साइटेडनेस को ये के कारण ये पता था कि ये चैलेंजेस हो सकती है और इस कारण पहले से ही उन्होंने खुद को भी तैयार किया और को भी तैयार किया। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आध्यात्मिकता इस रूप से व्यक्ति के लिए मददगार बनती है कि वो अंदर के मन और बुद्धि को बहुत काम और पेशेंस दे देती है। जब कोई भी व्यक्ति काम होकर के सोच सकता है तो उसकी निर्णय शक्ति और परख शक्ति अपने आप तेज हो जाती है। जनरली जब भी कोई भी डिसीजन लेने की बात होती है तो रिस्क टेकिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्या होगा। स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है कि परमात्मा बैठा है, भगवान साथी है, जो भी होगा हेल टेक केयर। इसीलिए वो रिस्क टेकिंग फैक्टर भी बहुत अच्छी तरह से कवर अप कर पाई। संस्था थी वो जमाने में इतना डेवलप भी नहीं थी, तो काफी सारे रिस्क भी थे, बातें भी थी, लेकिन इन सब चीजों को उन्होंने, क्योंकि भगवान मेरा साथी है, ये समझ करके हैंडल किया। इसीलिए उनको इन चीजों में कहीं दिक्कत आई हो ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में स्पिरिचुअलिटी ने उनको एडमेंट होने से बचाया, प्रैक्टिकल किया, उनको लंबे काल को देख करके जो डिसीजंस लेने थे उसमें मार्गदर्शन दिया। क्योंकि अंदर से वो काम एंड क्वाइट रह पाई, इसीलिए फोकस होकर, कॉन्सेंट्रेटेड होकर के वो किसी भी मामले पर अच्छी तरह सोच पाई और इसीलिए वो जो डिसीजंस देती थी नेचुरली दे टेंड टू बी मोर करेक्ट एंड मोर राइट। तो आध्यात्मिकता में समझती हूँ चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल है चाहे वो पर्सनल लेवल है, लेकिन हर जगह व्यक्ति को एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन पूरा करता है कि वो कैसे अपने हर मकसद को बहुत अच्छी तरह पेशेंटली धैर्यवत होकर के समय के साथ चल करके उसमें सक्सेसफुल।
0: दादी जी जैसे उम्र में बड़े थे और अन्य भी बहुत सारी दादियां थी, दादी अलग अलग कारोबार को संभालते थे, लेकिन जो संस्था के चीफ हैं और अन्य दादियां हैं, तो उन सभी के साथ दादी का रहने का कैसा रहता था?
1: मैंने देखा दादी अपने बराबर की दादियों से भी बहुत रिस्पेक्टफुली चली और उनसे बहुत मिलनसार होकर के चली। एक ने कहा दूसरे ने माना, कुछ बातों में अपना स्पष्ट ओपिनियंस देना होता था। दादियों के साथ उनका जो तालमेल था ना, वो बहुत अच्छा था। मैं मेरे लाइफ की एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। मेरा विदेश जाने का कार्यक्रम बन रहा था और विदेश जाने के लिए हमारी ओवरसीज का जो ध्यान देती थी दादी जानकी जी, उसकी परमिशन की बात थी। दादी जानकी जी से मैं इतना समीप नहीं थी, तो जब मेरी बात आई तो उनके लिए क्वेश्चन था कि कौन है। तो रतनबेन दादी जी वहाँ थी, जब दादी जी के पास ये बात आई तो दादी जी इतना इजी थी, उन्होंने तुरंत जानकी दादी जी को कहा कि हाँ मैं इसे अच्छी तरह पहचानती हूँ और दादी जी इनको आप परमिशन दे दीजिए। मैं समझती हूँ जब व्यक्ति बहुत क्लोज हो आपस में और उनकी शेयरिंग भी इतनी इजी गोइंग हो, तब ही ऐसी सब बातें हो सकती है, क्योंकि उस समय तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी। ये बात है 2007 की शायद, और इतना कोई कैपेसिटी से मैं कार्य नहीं कर रही थी। ऑफ कोर्स यू थिंक कि ऑफिस को संभाल रही थी, लेकिन कोई कैपेसिटी में कार्य नहीं कर रही थी। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में भी बड़ी दादियों के साथ दादी जी बहुत ओपन थी, क्लियर थी। स्वाभाविक है उनकी आपसी तालमेल फ्रीक्वेंसी इतनी मैच होती थी, जो ये लोग खुल करके एक दो से हर बात में राय कर लेते थे। तो आई थिंक कि एक अच्छे एडमिन के रूप में आपसी जो अपने बराबर के दूसरे एडमिन्स हैं उनके साथ तालमेल जब तक नहीं होता है, तब तक कोई इंस्टीट्यूशन को एक प्रॉपर दिशा देना संभव नहीं होता है। तो दादी जी के अंदर ये चीज मैंने बहुत अच्छी तरह से देखी है। चाहे वो जो चीफ थी दादी प्रकाशमणि जी उन दिनों में, उनके साथ भी मैंने दादी जी को देखा है कि बिकॉज वो चीफ थी तो दादी जी उनकी हर बात को, हर आज्ञा को उन्होंने इतनी ही अच्छी तरह एक्सेप्ट किया, हमेशा हाजी का पाठ पक्का किया। अपनी राय देनी थी वहाँ राय भी दी थी, लेकिन फिर बड़ों से जो राय मिली, क्योंकि वो चीफ थी उस समय, तो उन्होंने जो बात मिली उसको मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करते हुए भी देखा। तो हर बात में अपने बराबर से, उस समय जो पोस्ट पर है उनके साथ के उनके तालमेल को, हर चीज को मैंने आई थिंक इतना अच्छी तरह से देखा है कि ये हम सबके लिए भी एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन रहा लाइफ लॉन्ग।
0: हम देखते हैं कि प्योरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी मिलावट गिरावट ये सभी चीजें देख रहे हैं आज के डेट संसार में। जब हम आध्यात्मिक जीवन में देखते हैं, और ये पूरी जर्नी में आपने एक प्योरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बातचीत की, और यही जो प्योरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है नई दुनिया की फाउंडेशन है
1: जी।
0: तो ये चीजें हमें आगे के भविष्य को बनाने में कैसे मदद करती है, और ये प्योरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितना आवश्यकता है एक नई दुनिया को बनाने के लिए?
1: ये आज हर एक का स्वप्न है कि हम आज का जो विश्व है उसमें बहुत सारी बातें हैं, उसको खत्म करके एक ऐसा विश्व बनाएं जिसमें सब लोगों के पास सुख हो, पीसफुल लाइफ हो और इजी गोइंग लाइफ हो। ये हम लोग चाहते हैं। हम लोग गैजेट्स और टेक्नोलॉजी को इसका एक बहुत बड़ा आधार बनाते हैं, लेकिन सबसे बेसिक चीज जो इसमें है वो तो हमारा मन है। हमने जब इन बड़ों को देखा है कि उनके पास प्योरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहा, इसके कारण उन्होंने सबके दिल को भी जीता, कार्य को भी संपन्न किया, और साथ साथ जो रिजल्ट्स उनको लाने थे वो रिजल्ट तक भी पहुंच पाए। उस समय उनके पास कोई टेक्नोलॉजी और गैजेट्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी आंतरिक सक्षमता से, आंतरिक एम्पावरमेंट से इन चीजों को बनाया। तो आज तो हमारे पास प्लस पॉइंट है कि हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है, हम इन्हें बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। हम वो भी यूज करें, साथ साथ मन को ऐसा एम्पावरमेंट किया जाए। आजकल धीरे धीरे ये एक आस्पेक्ट डेवलप हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जिसमें ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती है, लेकिन जैसे और ट्रेनिंग्स दी जा रही है, अगर इस प्रकार की कोई स्पिरिचुअलिटी बेस्ड ट्रेनिंग दी जाए जिसमें लालच, टू मच ग्रीड, ये इम्प्यूरिटीज आने का कारण या तो व्यक्ति को अपना मान शान होता है, या एक ग्रीड अंदर आ जाता है, या एक अंधी रेस होती है कि कैसे भी मुझे अपने को आगे ले जाना है। कुछ चीजें ऐसी है जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन की प्योरिटी डिस्टर्ब होती है। अगर इन चीजों पर थोड़ा स्टडी करके, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देख करके हम एम्प्लॉइज को इस तरह से ट्रेन कर पाए जिससे इंटरनली वो निश्चिंत हो जाए कि हम यहाँ जो चाहते हैं वो अंधी रेस से नहीं पा सकते, हम अपनी स्किल्स बढ़ाकर, टैलेंट्स देकर के जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ अपनी ऑनेस्टी देकर के, अगर ऑनेस्टी देकर के नहीं तो कम से कम हम वहाँ जो कुछ भी ले रहे हैं उसके सामने प्रॉपर तरीके से देख करके हम और भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इससे हम भी बढ़ेंगे और हमारी संस्था भी बढ़ेगी। ये एक भाव जो है ये स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। जनरली एक वैराग्य शब्द यूज होता है, एक होता है घर बार का वैराग्य करके चले जाना, लेकिन एक है हम समाज का भी देखें, अपना भी देखें, व्यक्ति को अपना तो देखना ही होता है लेकिन साथ साथ समाज का देख करके अगर दोनों को बैलेंस करके, टू मच भागने के बजाय वो एक लेवल पर, एक लेवल तक एक वैराग्य की भावना डेवलप कर सकता है कि मुझे खुद लेना है लेकिन साथ साथ देख करके लेना है। ये कुछ चीजें आध्यात्मिकता इतनी सुंदर तरीके से सिखाती है कि ये चीजें आने से हम नई विश्व का जो आधार बनाना चाहते हैं इसमें ये सब बेसिक्स काम करेंगे। आज वॉयलेंस ये वो सब इतना बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सारी नेगेटिविटी से काम कर रही है। अगर इसके सामने हम पॉजिटिव भावनाओं को डेवलप करते जाए तो धीरे धीरे ये एक रेवोल्यूशन बनेगा, एक आंदोलन बनेगा और जितनी पॉजिटिव एटीट्यूड्स वाले लोग मिलते जाएंगे तो एटलीस्ट मैं अपनी नेगेटिविटीज को खत्म कर पाऊंगी, एक से दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे और इस तरह से एक रेवोल्यूशन बनता जाएगा और इस तरह से हम नया वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप कर सकेंगे। समय जरूर लगता है इन सब चीजों में लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, जो बेस को अगर स्ट्रॉन्ग बनाया जाए तो हम लोगों के जीवन को बहुत बदल सकते हैं।
0: दादी जी की इस 100 ईयर्स की जर्नी पे आप दादी जी को क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगी आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, ऐसी विभूतियाँ ये हम सबको आज मार्गदर्शक के रूप में बहुत आवश्यक है और इसीलिए आप शत-शत जिए, यही मैं अपने दिल की भावनाएं दादी जी के लिए कहना चाहूंगी।
0: थैंक यू सो मच दीदी।
1: ये मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर रहा जो इतने वर्षों से दादी जी के साथ रहने का मौका मिला, उन दादी जी के प्रति मैं मेरी कुछ भावनाएं व्यक्त कर पाई। आपको भी धन्यवाद।
2: मैं मधुबन सदा ही भरपूर रहता हूँ, दादी रत्न मोहिनी जी भी सदा संतुष्ट एवं भरपूर रहती हैं। राजयोग साधना से उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त की है और एक कुशल प्रशासक के तौर पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। दादी जी के मुख का तेज दर्शाता है कि वे आंतरिक रूप से कितनी सशक्त रही हैं। उनके भीतर आने वाले कल को देखने की क्षमता है, दादी जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज अनेक मनुष्य आत्माओं ने खुशी खुशी आध्यात्मिक जीवन को अपनाया है। इतने बड़े यज्ञ एवं संस्था को संभालते हुए उनमें रंच मात्र भी अहम नहीं रहा। शांत स्वभाव एवं निर्भीक रहकर सब विघ्नों को पार किया, एकाग्रता की शक्ति से सही निर्णय लिए, समय के साथ चली, सेवा में नवीनता को प्राथमिक रखा और हर उद्देश्य को धैर्यता से पूरा करने का प्रयत्न किया। दादी जी के मिलनसार स्वभाव एवं सबसे राय मशविरा करके कार्य करने के संस्कार ने उन्हें सर्वप्रिय बनाया। मैं मधुबन उनकी छाया में रहकर गर्व महसूस करता हूं।

बहुत गाने मैंने हिंदी में भी गाया था, लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, सिंहली, सुवरिया, सो मेनी लैंग्वेजेस मैंने गाए थे। मैं एस जानकी प्लेबैक सिंगर बोल रही हूँ। एफएम रेडियो नाम है मधुबन, इसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम्स आता है, आप जरूर सुनना चाहिए, प्रेम से सुनिए। आप सुनते रहना, मुस्कुराते रहना।

0: नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत आज फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अब तलाश उस परम पिता की, उस परमात्मा की, जिसे हम सदियों से तलाश रहे हैं। कहां कहां नहीं ढूंढा हमने, मंदिरों में, मस्जिदों में, फिर कहा कि क्या अपने ही अंदर है, कण कण में तलाशा, हर जगह ढूंढा, लेकिन हर बार लगा कि नहीं, हम नहीं पा पाए, या कभी लगा कि शायद कुछ वक्त के लिए हमारे साथ था। कौन है वो परम पिता? कई सारी बातें हमने अभी तक की हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो लगता है कि हाँ, ये सही हो सकता है, ये रास्ता जो है हमें उस तक पहुंचा पाएगा, क्योंकि आज वो वक्त आ गया है जब हमारी पहचान उस परम पिता, उस परमात्मा से हो सकती है। उस पहचान को करवाने के लिए, उस पूरी बातचीत के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं इस रास्ते को पे चलने को तैयार हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को कि अब आज शायद हम परिचित हो जाएं उस परमात्मा से, उस परमपिता से, जिसे हम कब से तलाश रहे हैं, हर जगह ढूंढा हमने, नहीं मिला। कौन है वो
1: परमात्मा? जैसे हमने पहले भी बताया कि परमात्मा स्वयं आकर इस सृष्टि पर इस समय अपना परिचय देते हैं। पहले उन्होंने हमें अपना परिचय दिया कि हे आत्मा, तुम कौन हो। तो कितना सुंदर और सिंपल परिचय था कि आप एक शक्ति हैं जो इस शरीर को चलाते हैं। शक्ति का रूप क्या बताया? क्योंकि उसका कोई फिजिकल शेप नहीं हो सकता, लेकिन एक स्मॉलेस्ट फॉर्म जो था, तो वो था पॉइंट ऑफ लाइट, कि आप अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा है। मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है। परम आत्मा है तो वो भी
0: आत्मा,
1: आत्मा है ना, वो भी आत्मा ही है। जैसे एक कोई भी आप पशु ले लें, बच्चे का पिता, तो पिता कौन होगा? जैसा बच्चा वैसा ही वो। मनुष्य, मनुष्य का पिता, वो भी मनुष्य। आत्मा का पिता
0: परमात्मा,
1: तो वो भी आत्मा,
0: लाइट,
1: लाइट, राइट। तो मैं जैसे आत्मा हूं, तो वो परमात्मा है। परम क्यों है? वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा, लेकिन परम क्योंकि वो गुणों में, शक्तियों में परम है। अभी आप देखो, जैसे गांधी जी, गांधी जी का नाम महात्मा गांधी नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा महान कर्तव्य किया जिसकी वजह से उनको कर्तव्य के आधार से टाइटल मिला महान आत्मा। तो महात्मा, धर्म स्थापक आए सृष्टि पे, धर्म स्थापन किया, टाइटल मिला धर्म आत्मा। देव आत्माएं जिनके अंदर दिव्य गुण थे, तो देवी देवता, देव आत्मा। पुण्य आत्मा, किसी किसी को पाप आत्मा भी। महान आत्मा, संत आत्मा। तो आत्मा की जो क्वालिटी है, उस आधार पर उसको टाइटल मिलता, और इसी तरह परमात्मा। अब ये सारे जो आत्माएं हैं, तो ये कितने सारे होते हैं, कितने सारे महान आत्माएं, देव आत्माएं, पुण्य आत्माएं, लेकिन परमात्माएं
0: एक ही हो सकता है।
1: तो हम कभी परमात्माएं नहीं कहते, परमात्मा हम हमेशा सिंगुलर भाव में कहते हैं कि ये सब आत्माएं परमात्मा एक। तो परमात्मा सबसे पहली बात तो वो एक है, और वो भी आत्मा है। तो जहां हम फॉर्म की बात करते हैं कि परमात्मा का रूप क्या है, क्योंकि जब तक हमारे सामने उसका रूप नहीं होगा ना, हम याद नहीं कर सकते,
0: बिल्कुल नहीं कर सकते।
1: आप कहो वो नाम रूप से न्यारा है, तो किसको याद करें फिर? तो जैसे मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं, जस्ट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अ प्योर बींग, उसी तरह मेरा पिता, जस्ट ट्राई एंड लुक एट हिम, बिकॉज यू कैन सी हिम। बुद्धि के नेत्र के द्वारा उसको देखने की कोशिश करो कि वो भी कैसा है, जस्ट लाइक मी, वो मेरा पिता है। तो जस्ट लाइक मी, बिल्कुल मेरी तरह, वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योति का स्वरूप है, प्रकाश पुंज है। सिर्फ फर्क क्या है? मैं आत्मा हूँ, वो परम आत्मा है। तो परम मतलब
0: परम मीन्स प्योर,
1: प्योर। परम मीन्स हाइएस्ट, परम मीन्स सुप्रीम, सुप्रीम नॉट इन साइज। कई लोग कहते हैं मैं छोटी आत्मा हूँ, तो वो बड़ी आत्मा है,
0: छोटी सी लॉ हूँ वो बड़ी लॉ है, नो। अच्छा, द सेम सेम डॉट ऑफ लाइट,
1: लेकिन सुप्रीम इन व्हाट? सुप्रीम इन क्वालिटीज, सुप्रीम इन पावर, सुप्रीम इन हिज एक्ट। वो परम है अपने गुणों में, अपनी शक्तियों में। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, वो शांति का सागर है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योरिटी, लेकिन वो पवित्रता का सागर है, तो इसलिए वो परम है। वो ऊंचे ते ऊंचा है,
0: लेकिन मैं एम्बॉडीमेंट हूँ क्योंकि मेरे बॉडी साथ जुड़ी है, यू नो लाइक
1: नहीं, एम्बॉडीमेंट मींस आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट वैल्यू, मतलब दैट इज माय वैल्यू. जैसे हमने पहले दिन भी देखा

0: हमें शांति कहीं ढूंढनी नहीं है. आई एम दैट, दैट इज माई नेचर, दैट इज माई पर्सनैलिटी. तो वो है, आप सब रिलीजन्स को देख लीजिए, क्योंकि परमात्मा का वही स्वरूप स्वीकार होना चाहिए जिसको सभी धर्म की आत्माएं स्वीकार करें. ऐसे नहीं हो सकता कि हिंदूज के लिए परमात्मा अलग, क्रिश्चियंस के लिए अलग. इट्स नॉट पॉसिबल. परमात्मा का कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्म की आत्माएं स्वीकार करती हैं? सबसे पहले हिंदू धर्म में हम देखें तो जो सबसे पुराने मंदिर है वो कौन से है?
1: शिव.
0: शिव के. शिव भी जब हम कहते हैं तो ज्योतिर्लिंगम, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगम मठ है. उसकी सारी यात्रा करते हैं तो कहते हैं तीर्थ पूरा हुआ. और पूरे भारत वर्ष में, यहाँ तक के नेपाल में भी, हर जगह वो ज्योतिर्लिंगम है. तो किसका स्वरूप? ज्योतिर्लिंगम. लिंगम मीन्स सिंबल, ज्योति लाइट, सिंबल ऑफ लाइट, ज्योतिर्लिंगम. तो कहीं ना कहीं आत्मा ने जब सबसे पहला वो मंदिर बनाया तो उसके अंदर स्मृति तो थी कि परमात्मा एक ज्योति है. लेकिन ज्योति पर कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल है, तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म,
1: ओके, एक ऑब्जेक्ट,
0: जस्ट अ लिटिल शेप, जस्ट अ लिटिल शेप. तो भारत में इतने सारे प्राचीन जो मंदिर है, सबसे पहले जो मंदिर है वो शिव, वो ज्योतिर्लिंगम के है. चाहे, और जितने भी उन मंदिरों के नाम है वो सब परमात्मा के कर्तव्य पर आधारित है. अमरनाथ, सोमनाथ, मतलब सोमरस हमें पिलाने वाला, हम आत्माओं को फिर से पतित से पावन बनाने वाला. विश्वनाथ, जो विश्व का मालिक है. मुक्तेश्वर, जो हमें भी मुक्ति दिलाने वाला है. बबुलनाथ, जो कांटों को फिर से फूल बनाने वाला है. साउथ में अगर आप जाएं तो रामेश्वरम. अब रामेश्वरम में अगर हम जाते हैं मंदिर में, तो वहां एक मान्यता है, अगेन बिलीफ है, कि श्री राम जी ने शिवलिंग स्थापन कर तपस्या की शक्ति के लिए, ताकि वो विजय प्राप्त करें, मंदिर का नाम पड़ा रामेश्वरम. तो श्री राम के भी ईश्वर. गोपेश्वर, इसका मतलब गोप के भी ईश्वर. तो ये सारे जो मंदिरों के नाम है वो उस परमात्मा के कर्तव्य के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर रखे हैं. तो ये हुआ हिंदू रिलीजन. इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती है, वो किसी देहधारी को परमात्मा नहीं मानते, लेकिन जीवन में एक बार हज की यात्रा पर जरूर जाते हैं. और जब उस में प्रवेश करते हैं उस स्थान में, तो बाहर एक गोल आकार का या ओवल शेप्ड का पत्थर है जिसे संगे अश्वत कहते हैं, और उसे चूम्ब कर ही अंदर जाते हैं. और ये मान्यता है कि वो हम उनके पापों को जैसे धो देगा. अंदर जाकर अपनी, जब हज पूरी होनी होती है, उससे पहले कहते हैं कि हे परवरदिगा, हे नूरे इलाही, मेरी हज कबूल करो. तो हे परवरदिगा, उस परमेश्वर को संबोधित करते हुए, हे नूरे इलाही, मतलब परमात्मा को भी उस लाइट, नूर के रूप में याद किया, मेरी हज कबूल करो. और तब उनकी हज पूरी होती है. क्रिश्चियन धर्म, मोसेस जब उस माउंटेन पर गए जहां उनको 10 कमांडमेंट्स लिखी हुई मिली, उनको भी परमात्मा का साक्षात्कार हुआ इन द फॉर्म ऑफ लाइट. जीसस क्राइस्ट हमेशा उंगली ऊपर है. गॉड इज लाइट. आई एम द सन ऑफ गॉड. आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड. परमात्मा ज्योति है, मैं सिर्फ उसका दूत हूं. मैं उसका बच्चा हूं. गुरु नानक देव जी, एक ओंकार, निराकार, निर्वैर, सतनाम, अकाल मूरत, अजोनी, एक का परिचय. एक ओंकार निराकार है, उसका कोई साकार नहीं है, निर्वैर है, अकाल मूरत है, किसका परिचय? उंगली हमेशा ऊपर. कभी ये नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ. पारसी धर्म में भी हम देखें तो फायर टेम्पल, जहां ज्योति सदा जगती रहती है. तो जितने भी मुख्य धर्म है, इनफैक्ट सारे धर्मों को आप ले लो जो वर्तमान समय सृष्टि पर है, तो परमात्मा का ज्योति स्वरूप, दैट लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, ये सभी धर्म की आत्माएं मानती है.
1: तो एक ही रूप जिसे सभी धर्मों ने सच माना है, तो फिर इतने सारे रूप हर धर्म में हमें नजर आ जाते हैं. दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग एक्चुअली, कि रियल परमात्मा है क्या.
0: जैसे हमने कहा कि हिंदू धर्म को देखें तो सबसे पहले रूप वो शिवलिंग ही स्थापन किया हमने, तो हमें याद था कि परमात्मा वो ज्योतिर्स्वरूप है. तब हमारी शिवलिंग पर बुद्धि नहीं एकाग्र हुई, तो हमें फिजिकल फॉर्म चाहिए था. तो जो देवी देवताएं इस सृष्टि पर होकर गए हैं, देवी देवताएं मतलब दिव्य गुणों वाली आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, लेकिन वो परमात्मा नहीं, वो देव आत्माएं हैं, डिवाइन क्वालिटीज है। भारत के लिए गायन है 33 करोड़ देवी देवताएं, तो 33 करोड़ देवी देवताएं, 33 करोड़ परमात्माएं
1: वो नहीं है, नहीं
0: है ना। जब नवरात्रि होते हैं तो हम कहते हैं हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, 9 परमात्माओं की पूजा करते हैं।
1: ये जो देवी देवताएं 33 करोड़ हमारे भारतीय, अगर हम हिंदू धर्म को देखें तो 33 करोड़ देवी देवताएं वो आत्मा,
0: वो आत्मा थी जो संपूर्ण पवित्र थी,
1: पर वो थे मनुष्य के रूप में।
0: हाँ, साकार, तो हम साकार रूप देखते हैं, तो वो थे साकारी शरीर में थे, लेकिन वो संपूर्ण पवित्र थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे अंदर वो पवित्रता नहीं थी जो उनके अंदर थी, तो हमने किसको याद करना शुरू किया, उनको याद करना शुरू कर दिया। आज हम राजघाट पर जाते हैं तो महात्मा गांधी जी की तस्वीर है और हम बहुत आदर से नमन करते हैं, माला चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। जस्ट इमेजिन अगर ये इसी तरह चले 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष भी नहीं, 50 वर्ष के अंदर अंदर क्या हो जाएगा,
1: हम उन्हें भगवान बना,
0: क्योंकि जैसे जैसे आत्मा और कमजोर होती जाएगी, तो महात्मा गांधी जी ने जो कर्म किया अहिंसा के बल से फ्रीडम, ये तो एक इम्पॉसिबल काम लगेगा उस टाइम, क्योंकि उस समय आत्मा में वो बल ही नहीं होगा, तो वो एक मिरेकल हो जाएगा। और उन्होंने वो मिरेकल करके दिखाया, तो हम उनको पदवी दे देंगे उस परमात्मा की। आज भी आप देखो कितने सारे फिल्म स्टार्स, कितने सारे पॉलिटिशियंस के अभी से मंदिर बन चुके हैं, जो अभी साकार में है उनकी अभी से हम पूजा कर रहे हैं। अब हमें सबको पता है कि महात्मा गांधी जी हमारे तरह ही मनुष्य थे जिसने श्रेष्ठ कर्म किए, लेकिन जेनरेशंस डाउन द लाइन, क्योंकि उन्होंने वो मिरेकल करके
1: डिप्लीट होता जाएगा और
0: तो हम उनको परमात्मा मानेंगे। इसी तरह जो दिव्य गुणों वाली आत्माएं थी वो इतनी प्योर थी, आज हमें अपने अंदर वो प्योरिटी नहीं दिखाई देती है, तो हम समझते हैं कि वो तो कुछ बहुत श्रेष्ठ थे, और वो बहुत अच्छी बात है उनको याद करना, उनको नमन करना, लेकिन अंतर को समझना पड़ेगा कि वो देवी देवताएं हैं, वो परमात्मा है। इसलिए श्री राम जी को भी दिखाया कि वो शिव की स्थापना कर तपस्या कर रहे थे, ये मान्यता है कि वो ऐसा कर रहे थे, तो मतलब श्री राम जी ने भी तो उस ज्योतिर्लिंगम को अपने से ऊंचा माना। हम श्री राम जी को आज याद करते हैं जो ठीक है, क्योंकि वो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन उन्होंने जिनको याद किया
1: ना, वो सर्वश्रेष्ठ है,
0: उनको भी तो हमें याद करना है ना।
1: यहाँ एक और बात मैं जानना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं हमारे इष्ट हैं, हमारे श्री राम या
0: हमारे इष्ट देव,
1: इष्ट है
0: विष्णु, हमारे कुल देव भी है। जब हम कभी कुल देवी है, कुल देवी देवता मतलब क्यों हम कहते हैं, जब भी कोई हवन होता है घर में तो पंडित जी आते हैं, कहते हैं आपके कुल देवता कौन है, तो कुल देवता मतलब हम उनके कुल के हैं,
1: वो वंशज चले जा आ रहे हैं,
0: वो एंसेस्टर्स हैं हमारे, हम उनके कुल के हैं, तो इसीलिए हर एक के पास अलग अलग नाम है, लेकिन हम उनके कुल के हैं मतलब वो हमारे ही पूर्वज हैं, तो हमारे ही पूर्वज है मतलब मनुष्य आत्मा,
1: वो मिराकल्स कर पाते थे एक्चुअली,
0: वो प्योरिटी थे उनके अंदर।
1: नो नो नो, नाउ आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि जैसे महात्मा गांधी ने ये कर दिखाया, वो आने वाले वक्त में मिराकल लगेगा। इसीलिए जो
0: श्री साई बाबा,
1: हाँ,
0: शिरडी साई बाबा, आप भी गए थे ना अभी थोड़े दिन पहले, हीलिंग पावर, आत्मा बहुत पवित्र थी, थॉट पावर बहुत क्लीन थी, तो हीलिंग पावर थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, कभी नहीं, वो आम इंसान की तरह सब इंसानों की तरह ही रहते, क्योंकि ये तो अभी बहुत रीसेंट पास्ट में गए हैं ना, लेकिन हीलिंग पावर थी तो मिरेकल हुआ, तो हीलिंग पावर थी मिरेकल हुआ, तो आज हमने उनको दर्जा दिया कि वो भगवान है। तो ये सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर है, कभी नहीं कहा कि मैं भगवान,
1: सन ऑफ गॉड,
0: आई एम सन ऑफ गॉड, बट देन सो आर ऑल ऑफ अस, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, लेकिन वो जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे वो हमने देखा तो हमें क्लैरिटी नहीं है कि वो कौन है। उन्होंने भी कहा टू रिमेम्बर हिम, लेकिन हमें नहीं पता वो किसका परिचय दे रहे थे, तो हमने किसको याद करना शुरू कर दिया,
1: बिकॉज हमारे लिए वो गॉड
0: ना, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, कि परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, एक है, सबने उनको याद किया,

0: भाव है, हम पहचानते हैं
1: पर
0: उनको, हमें
1: अब
0: ऐसा
1: अगर
0: लगता
1: आप
0: है।
1: देखें ना, जैसे हमने शुरू में ही बात की कि हम 10 मिनट याद करने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई इष्ट देव की मूर्ति सामने रखते हैं या जो भी फॉर्म, पर उस पे भी बुद्धि
0: नहीं टिकती।
1: एकाग्र नहीं होती। तो अब आत्मा इतनी कमजोर हो गई है इस समय पर कि उस फॉर्म पर भी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। तो हमने एक्चुअल लिविंग ह्यूमन बींग्स, उनको ही परमात्मा का दर्जा दे दिया है,
0: ताकि
1: और
0: कहीं
1: उन
0: कम्युनिकेट के
1: यस
0: रिश्ता तो
1: कि
0: बने।
1: कहीं तो कुछ बने। वी आर लुकिंग फॉर दैट रिलेशनशिप विद गॉड,
0: बिल्कुल
1: और वो हमें परमात्मा से नहीं मिला क्योंकि हम पहचानते नहीं थे। देवी देवताओं पर भी बुद्धि एकाग्र नहीं होती क्योंकि वो सामने नहीं है। तो हमने कहा कि वर्तमान समय जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो परमात्मा को जानती है या पहचानती है या उस यात्रा पर है, हमने उनको ही परमात्मा का दर्जा दे दिया। वो तो बच्चे हैं, तो हम उनकी ही पूजा करने लग गए, उनको ही याद करने लग गए। अब उनको याद करने से प्राप्ति तो होगी, देवी देवताओं को याद करने से भी प्राप्ति होगी, लेकिन कितनी देर? और इसीलिए कहते हैं हम मंदिर में जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भावना है, वो श्रेष्ठ संकल्प से जाते हैं, लेकिन फिर बाहर आने के बाद
0: जो कॉन्स्टेंट, जो एक ना एक
1: कांस्टेंट रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो हमारे किसी सर्कल में नहीं आया क्योंकि वो रिलेशनशिप का अनुभव नहीं हो रहा है। तो वो हमें एक्सपीरियंस करना है। ये सब आत्माएं हैं, तो ये सब हो गए हमारे,
0: हमारे हमारे साथ की
1: है
0: आत्माएं
1: ना, ये
0: इनफैक्ट।
1: पिता नहीं है इनमें से कोई भी। तो मुझे वो जो शक्ति मिलनी है, मुझे वो जो प्योरिटी का वर्षा मिलना है, विच इज माई प्रॉपर्टी, माई बर्थ राइट, दैट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम द फादर, नॉट फ्रॉम द ब्रदर्स।
0: दे आर लाइक मी।
1: यस, दे आर ऑल सोल्स, दे प्योर सोल्स, डिवाइन सोल्स, बट दे आर सोल्स।
0: यहां तक तो मैं पहुंच सकता हूं। यू नो व्हेन वी से कि हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, बेसिकली आई कैन रीच अप टू दीज लेवल्स।
1: राइट, बट नाउ वी वॉन्ट टू रीच टू द सुप्रीम, वी वॉन्ट टू रीच टू द वन, वी डोंट वॉन्ट टू ओनली रिमेन विद द वंस हु गॉट हिज मैसेज। दे आर वेरी प्योर, बट दे कनेक्टेड टू हिम, वाई कांट आई कनेक्ट टू हिम ऑल्सो? इट्स बैटरीज, वी आर ऑल बैटरी। आज बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो अभी हम पावर हाउस तक नहीं पहुंच सकते, तो हम किसी और बैटरी के साथ उसको जोड़ देते हैं, तो चार्जिंग तो हो जाती है। कितनी देर के लिए?
0: थोड़ी थोड़ी देर के लिए,
1: थोड़ी देर चार्ज होती है,
0: फिर गिर
1: फिर
0: जाए।
1: हमें लेकर जाना पड़ता है उसको। फिर पावर हाउस से जब कनेक्शन जुड़ेगा, देन द चार्जिंग इज लॉन्ग टर्म। सो बैटरीज बैटरीज से कनेक्ट हो रही थी, और वो चार्जिंग कितनी हो रही थी
0: थोड़ी थोड़ी।
1: डिपेंडिंग ऑन वो बैटरी कितनी चार्ज थी,
0: और कौन सी? हाँ बिल्कुल, किस बैटरी तक हम गए थे?
1: राइट? लेकिन अब हमें अगर रियली चार्ज करना है तो हमें उस पावर सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आत्मा रूपी बैटरी
0: एंड
1: डिस्चार्ज्ड है।
0: विच यू से इज पॉसिबल।
1: दैट इज मेडिटेशन, दैट इज ओनली मेडिटेशन, द सोल कनेक्टिंग विद द सुप्रीम सोल एंड गेटिंग चार्ज्ड। सी, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर सोर्स टू अ लोअर सोर्स। तो मैं आत्मा जब उस परमात्मा के इतने समीप जाके बैठ जाऊं, ही इज अ हायर सोर्स ऑफ दोज क्वालिटीज, इट विल जस्ट फ्लो, दैट इज मेडिटेशन। तो वो जब फ्लो करेगी तो वो सारी क्वालिटीज मेरे अंदर भी
0: आती जाएंगे।
1: इमर्ज हो जाएगी। तो इसलिए मुझे उस परम सत्य की पहचान बहुत जरूरी है। तो परमात्मा का वो ज्योति स्वरूप, निराकार लेकिन ज्योति स्वरूप, वो शक्ति रूप, वो सभी धर्म की आत्माएं स्वीकार करती हैं। दूसरा, परमात्मा वो हो सकता है जो सर्वश्रेष्ठ है, उनके ऊपर और
0: कुछ नहीं
1: कोई
0: हो
1: नहीं हो
0: सकता
1: सकता।
0: फिर।
1: अब अगर परमात्मा कोई देहधारी है, अ ह्यूमन बीइंग, तो किसी भी देहधारी के ऊपर उसके अपने माता पिता, अपने टीचर, अपना शिक्षक, अपना गुरु होता है। कोई भी नहीं कहेगा कि मैं इन सबसे ऊंचा हूं, वो कहेगा मुझे ऐसे बनाने वाले
0: ये सब
1: ये।
0: है।
1: तो अगर परमात्मा कोई देहधारी है तो उनसे ऊपर हो गए, तो फिर तो वो परमात्मा हो गए। परमात्मा, तीसरी बात ये, परमात्मा वो शक्ति हो सकती है जो सभी चक्रों से न्यारा है, ताकि हमें भी वो उन चक्रों से
0: बाहर
1: निकाल
0: निकाल
1: सकता
0: दे,
1: है। हम परमात्मा को याद करते हैं कि हमें सब चक्रों से अब छुड़ाओ,
0: छुटकारा दे।
1: अब हम थक चुके हैं। चक्र कौन से? जन्म मृत्यु, कर्म फल, दुख सुख,
0: सुख।
1: ये सारे चक्र में हम हैं। अब उसे हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकालना है। अगर परमात्मा कोई देहधारी है, तो जिसने एक बार देह ली
0: वो छोड़ेगा
1: वो
0: भी।
1: छोड़ेगा भी, देह ली तो कर्म करेगा भी, कर्म करेगा तो उसको उसका फल मिलेगा भी, तो वो खुद उस चक्र

0: में आ गया, तो जो खुद उस चक्र में आ गया तो वो मुझे उस चक्र से नहीं निकाल सकता है। और परमात्मा वो जो गुणों में अनंत है, वो शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो सभी आत्माओं को उसके वो गुण अनुभव हो सकते हैं। अगर वो कोई शरीरधारी है तो वो कितनी आत्माओं तक वो प्राप्ति दे सकता है? सारे विश्व को? आज 700 करोड़ आत्मा है तो सारी आत्माओं को वो शक्ति
1: नहीं
0: कोई
1: दे
0: भी
1: सकता।
0: शरीरधारी नहीं दे सकता है।
1: He has to be sun, actually.
0: Absolutely,
1: You know,
0: he
1: like
0: is the
1: the
0: sun. He is the sun. Absolutely, he is the sun. लेकिन जैसे वो सन हमें लाइट और हीट देता है, तो ये सन भी हमें लाइट देता है, लाइट ऑफ नॉलेज, ज्ञान सूर्य। इसलिए हम परमात्मा को कहते हैं वो ज्ञान सूर्य है, वो हमें लाइट ऑफ नॉलेज देता है, हमें माइट देता है। तो ये तो हुआ परमात्मा का रूप। अब अगर रूप है तो नाम भी होगा, ये तो हम उसको याद कैसे करेंगे?
1: परमात्मा बोलते तो हैं परमात्मा।
0: परमात्मा तो टाइटल है ना,
1: अच्छा
0: परमात्मा तो वो टाइटल है। जैसे मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा को फिर संबोधित करने के लिए एक नाम भी तो है। तो परमात्मा जब स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं तो वो अपना नाम भी बताते हैं।
1: और क्या नाम है उनका?
0: जो वो, क्योंकि जैसे हम आत्माओं के नाम तो हमारे माता पिता ने रखे, तो हमें जो उनको नाम पसंद आया वो उन्होंने रख दिया। वो जरूरी नहीं है वो नाम हमारी पर्सनालिटी के साथ मैच करे, लेकिन परमात्मा का जो नाम है वो उनके गुणों के आधार से है। जो उनके गुण है, जो उनके कर्तव्य है, जो स्वरूप है, उस आधार से उनका नाम है। तो परमात्मा का स्वयं जो घोषित किया हुआ नाम है कि परमात्मा का नाम है शिव।
1: शिव।
0: शिव, शिव क्यों? शिव क्योंकि शिव का अर्थ है बीज, द सीड ऑफ नॉलेज। उसके अंदर सारी सृष्टि की नॉलेज है। शिव अर्थात शांति, पीस, एंड शिव अर्थात कल्याणकारी। वो कभी किसी का अकल्याण नहीं कर सकता है, तो उसका नाम है शिव। ये कोई, जब हम शिव कहते हैं तो इसको किसी रिलीजन के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि हिंदूज में हम शिव शंकर जैसे मानकर याद करते हैं। लेकिन जब हम शिव कहते हैं तो शिव उस परमात्मा ज्योति स्वरूप का स्वयं घोषित किया नाम है। तब हम शंकर जी की देव जो मूर्ति है उसके साथ उसको नहीं कंफ्यूज करें। शंकर जी वो देवता है, ये शिव अर्थात वो ज्योति स्वरूप। और क्योंकि वो मेरा पिता है, अब मैं उसको नाम से तो नहीं पुकार सकती, तो ये हमारी पर्सनल चॉइस है। लेकिन क्योंकि वो मेरा पिता है तो मैं उसको नाम से नहीं पुकारती, तो वो मेरा पापा है, डैडी है। जैसे हम पापा को ऐसे बोलते हैं, तो हम परमात्मा को बाबा कहकर बोलते हैं। बाबा मतलब माय फादर, तो वो बाबा है, उसका नाम शिव है। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम शिव बाबा कहकर याद करते हैं। तो देन जैसे मैं बाबा शब्द कहती हूँ,
1: मैं
0: देन
1: जुड़ जाती हूँ
0: जुड़ जाए।
1: एक्चुअली।
0: तो जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो जैसे, क्योंकि कईयों ने ये सुना होता है कि ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं तो बाबा को याद करते हैं, लेकिन बाबा कोई देहधारी नहीं, वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा। लेकिन वो मेरा पिता है इसलिए मैं उसे बाबा कहती हूँ, और उसका नाम शिव है तो शिव बाबा कहते हैं। अब उसको कैसे याद करना है वो फिर हम देखेंगे।
1: कैसे याद करना है और कैसे उनके घर तक पहुंचना है,
0: यस,
1: ये
0: उनके
1: भी,
0: घर तक भी
1: उनके
0: पहुंचना।
1: घर का पता भी हमें आपसे लेना है। सजय शिवानी, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग यू नो रिवेलेशंस। ये एक ऐसी सच्चाई जो अभी तक शायद हो जाना चाहिए था, आनी चाहिए थी, आज सामने आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शांति।
1: ओम शांति। शिव बाबा, हमारे अपने बाबा, कितना आसान हो जाता है कि अगर हम इस तरह से तारुफ करें, अपना रूबरू हो उस पिता से जो वो परमात्मा है जिसको हम अभी तक तलाश रहे थे। कितनी सारी बातें करनी थी उससे, कितना कुछ है आपके मन में जो आपको उसे कहना है, कितना कुछ है मेरे मन में जो उसे कहना है। तो क्या आप कहना चाहते हैं उससे? कैसे कहेंगे, कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे उससे, उस शिव बाबा से? कोई ऐसी बात है अभी भी आपके पास जो शिव बाबा के परिचय के जुड़ी हुई है, या आपके पास कोई और बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? आप हमें फोन पर या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है
2: 3444599399 3446 9873 6655 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com।
1: परमात्मा का परिचय कितना आसान, कितना सिंपल, वो मेरे ही जैसा ज्योति स्वरूप। परमात्मा से कैसे हम बात कर पाएंगे, कैसे उसके घर पहुंचेंगे, जानेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी की अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग गुजरात, आप सभी को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुनाया है ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। और आइए, आज जैसे कि विशेष शुक्रवार का दिन है और विशेष दिन है, शक्ति का दिन है, तो शक्ति के दिन में आज महाराष्ट्र में एक बहुत ही सुंदर त्यौहार है जिसको पोला कहते हैं, और इसमें खास करके बैलों की पूजा अर्चना करते हैं। किसान बड़े धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं और गांव में एक तरह से जो है जत्रा की तरह जो है पूरी तरह माहौल बदल जाता है और बहुत धूमधाम से गांव में इस चीज़ को मनाया जाता है। शहरों में ये चीज़ें कम देखने को मिलता है क्योंकि शहरों में आपाधापी और ट्रैफिक ये सब चीज़ें लोगों का काम जो है चलता रहता है, लेकिन गांव में हर त्यौहार का एक अपना अलग अनुभव होता है, अलग मज़ा होता है, तो उस बात को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो वही आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ सविता कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं, और आप पत्रकार हैं और साथ ही साथ अभी मीडिया कॉन्फ्रेंस में हर साल यहाँ माउंट आबू आपका चक्कर लगता है, तो इस बार भी आप जो मानसरोवर में कॉन्फ्रेंस चल रहा है मीडिया का उसमें आप आए हैं, और आपने कहा कि हम लोग बातचीत करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल आइए आप, और आप महाराष्ट्र से हैं तो पोला के बारे में ज़रूर आप बात करेंगे। तो हमारे सभी राजस्थान गुजरात के जो लोग अभी सुन रहे हैं रेडियो सेट पर, तो उन सभी को महाराष्ट्र का जो त्यौहार है पोला के बारे में पता चलेगा और आप उसके बारे में बताइए। तो आप सभी की तरफ से सविता कुलकर्णी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी हाँ रमेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से मुझे इनवाइट किया है, और सबसे पहले तो हमारे जितने भी राजस्थान के भाई मुझे इस समय सुन रहे हैं तो सभी को इस समय ओम शांति,
0: ओम शांति जी,
1: और पोले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह जो त्यौहार है रमेश भाई, बहुत सुंदर त्यौहार होता है, और हमारे जो किसान भाई है महाराष्ट्र के, तो ये एक साल में एक बार का त्योहार होता है, और किसान को तो राजा कहा गया है कि भाई जब तक हम बैलों को मतलब लगाते नहीं है, मतलब इसको जोतने के लिए, तब तक हम किसान भाई कुछ भी नहीं पकाता। तो आज का जो त्योहार है ना, सभी जितना हमारा जो महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र का खास तौर पे त्योहार मनाया जाता है। तो इसे जो है ना मतलब जो खेती करते हैं तो वहाँ पे हर घर में बैलों की पूजा की जाती है।
0: जी जी जी।
1: और बैलों का श्रृंगार किया जाता है, उन्हें नहलाया जाता है, और आज का दिन उनका बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, और उनको मतलब एक प्रकार से किसान को भी छुट्टी होती है और बैलों को भी छुट्टी होती है, क्योंकि आज का जो बड़ा त्योहार है बैलों का, तो उनकी पूजा अर्चना करके मतलब उनको मतलब बहुत बड़ा श्रृंगार करते हैं, और जो किसान महिलाएं होती है तो वो घर जब शाम को उनका भी एक पोला छूटता है, वो तो काफी साज सज्जा करके बैलों को भी मार्केट में लेकर जाने के बाद में वो बहुत सुंदर पताके लगाए जाते हैं, और पताके लगाने के बाद में जब पोला छूटता है तो ये जो बैल जोड़ी होती है तो अपने अपने घरों पे किसान भाई बैल की जोड़ी लेके जाते हैं, और उनकी जो किसान महिलाएं होते हैं बहुत आनंद उत्सव से उनको उनकी पूजा अर्चना कर उनको पूरन की रोटी खिलाई जाती है।
0: अरे वाह।
1: हाँ जी, और जो जो पकवान वो जो बनाती है त्योहार पर आज के दिन, तो काफी महत्वपूर्ण तो माना जाता है। पूरन की रोटी बोले ना तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सबसे बड़ा एक यूनिक हमारे यहाँ पर रेसिपीज मानी जाती है। तो दो दिन मतलब कल का जो बैल का त्योहार था, कल का बड़ा त्योहार था, और आज जो है तो लकड़े का जो बैल होता है ना, उसे लेकर बच्चे हर घर पर जाते हैं। तो हर घर जाने के बाद में पोला का बोजारा करके कहते हैं, तो ये बोजारा तो हालांकि आप गुजरात में समझ में नहीं आएगा, तो बच्चों को एक प्रकार से उनका बख्शिश दिया जाता है, तो अच्छा, वो भी अपने अपने बच्चों को मतलब जो बैल होते हैं बच्चे भी सस्ते हैं इस समय, और साथ में अपने अपने बड़े कोई बड़े बैल होते हैं मतलब लकड़ी वाले बैल बनाते हैं, तो उनकी भी साज सज्जा करते हैं बच्चे साथ में, उनका भी एक जो पोला होता है ना, तो वो भी चौक चौक में जो भी संस्थाएं हैं तो वो वहाँ पे चौक में इन बच्चों के लिए मेला लगाते हैं, तो वहाँ भी काफी साज सज्जा करते हैं, तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं तो वहाँ वो अपने अपने बैलों को लेकर खड़े रहते हैं, और उन जो बड़े जो लकड़ी वाले जो बैल होते हैं ना, तो उनको भी सजाया जाता तो है, और बच्चों को कुमकुम किया जाता है, और जो भी बख्शिश देना होता है तो वो संस्थाएं भी बच्चों को बख्शिश देती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, चलिए काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि इस तरह से बैल पोला ये जो त्यौहार है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है किसानों के द्वारा और पूरा परिवार जो है इस त्यौहार में अपना सहभागी होती हैं। और जब घर में बैल आता है पोला तो उनका जो है वेलकम कराई किया जाता है बड़े फूलों से और जैसे पूजा अर्चना किया जाता है उनका। तो ये बहुत ही सुंदर जो है एक पारिवारिक खुशी का माहौल बन जाता है यहाँ पर, बच्चों से लेकर बड़े सभी इस फेस्टिवल में इस त्यौहार में जो है आनंद लेते हैं। तो आइए आपके आनंद को और बढ़ाने के लिए हम बैल पोला आला रे ये मराठी गीत अभी आपके नाम सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए बैल पोला आला रे, आनंद अच्छा दिवस आला रे, ये सुंदर गीत आप सुन रहे थे। जहाँ पर जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का ये सुंदर त्यौहार जहाँ पर बैलों की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि ये साल भर जो है किसानों को बैल हेल्प करती है, तो उनका पूजा सम्मान उनका सत्कार किया जाता है। तो एक बहुत ही सुंदर जो है भावनायुक्त आपने गीत सुना। तो इस त्यौहार में क्या क्या और चीज़ें होती है और क्या इसमें कुछ गेम्स वगैरह भी खेला जाता है, वो थोड़ा सा बताइए सविता जी।
1: जी, छोटे बच्चों के साथ में मतलब जो होता है तो बख्शीश के तौर पे ऐसे कुछ कॉइन्स फेंकते हैं, तो उसमें जैसे टॉस किया जाता है तो कौन जीतता है कौन हारता है, तो कुछ बैलों को भी चॉइस किया जाता है। तो जो बच्चे हैं ना, तो लकड़ी का जो बैल होता है तो जैसे साज सज्जा करते हैं, पूरा श्रृंगार ही उनका होता है, पेंटिंग वेंटिंग से मतलब महीने भर पहले से अपने अपने तैयारियां जो होती है तो वो बच्चे अपने करते हैं अपने अपने बैलों को लेकर। तो वो मतलब कंपटीशन होता है एक प्रकार का, तो उस कंपटीशन में बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरा बैल बहुत ज्यादा सुंदर दिखे तो मुझे पहला नंबर भी मिले। तो इस प्रकार के गेम्स भी होते हैं। तो फिर जो संस्था है तो बैल को जो चॉइस करते हैं उसके बाद उनको बख्शीश भी
0: दिया जाता है। यानी एक तरह का बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी एक तरह का कॉम्पिटिशन किया जाता है, जिनका ज्यादा अच्छा, जैसे गणपति में भी जिनका स्टॉल पेंडॉल बहुत खूबसूरत किसी थीम के साथ बना होता है तो उनको विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है। वैसी ये चीज़ें भी यहाँ पर बच्चों के लिए किया जाता है
1: जी।
0: तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और इसके पीछे जो ये शुरू कब हुआ, किस लिए, ऐसा कुछ ऐसा ऐतिहासिक कुछ बातें है इसके पीछे, इसकी शुरुआत?
1: शुरुआत तो भाई हमें तो हम तब तो नहीं आए थे, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था
0: जी,
1: और जब
0: जी,
1: से हमने होश संभाले हैं तो तब से हमें ये पोला पता है, क्योंकि हम भी इस तरह से इसी प्रकार के मेलों में जाते थे और साथ में हम भी पहले बैल घुमाते थे लकड़ी के, हम भी पहले से तैयारी करते थे और साथ साथ में तो बैल को बड़े मतलब आनंद के साथ में हर घर में ले जाकर हम लोग भी चंदा मांगते थे, एक प्रकार का बोजारा कहते हैं। तो ये बोजारे का होता है चंदा मांगना, तो कभी 5 पैसा मिल जाता था तो कभी 10 पैसा मिलता था। तो ये तो अभी तो बहर लोगों को तो 50-50 रुपया दिया जाता है, उस समय हमें 5-5 पैसा दिया जाता था, 5 पैसा 10 पैसा उस समय हमें काफी बहुत बड़ा लगता था। तो फिर उससे हम लोग चॉकलेट खरीदते थे, तो किसी दरवाजे पर जाते थे तो हमें टीका तिलक करके हमें भी मतलब बैल को जो पूजा करते हैं तो जैसे प्रसाद चढ़ाते तो हम बच्चों को भी कोई चॉकलेट देता था तो कोई पूरन की रोटी देता था, काफी मजा भी आता था, वो आनंद ही कुछ और था। और आज वो हम दिन याद भी करते तो ऐसा लगता कि क्या हम भी आज वो बैल लेके घूमे, कम से कम हमको वो भी मतलब बोझारा हमको भी मिलते रहे, तो कर अभी तो नहीं देंगे कोई। जी जी,
0: चलिए, बहुत अच्छी
1: प्रकार की यादें हैं सर।
0: जी जी जी, जी। हाँ, बचपन की यादें जो है हमारे जीवन में बहुत तब हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। और ये जो त्यौहार है ये मुझे लगता है कि हर स्टेट में अलग अलग समय पर मनाया जाता है और अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इसको बैल पोला कहा जाता है और तेलंगाना में इसको एरुवाका कहते हैं, वो एक पूर्णिमा के दिन ये त्यौहार मनाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दक्षिण में इसको मट्टू पोंगल कहते हैं, उत्तर और पश्चिम में गोधन कहा जाता है। तो इस तरह के अलग अलग नामों से इस त्यौहार को मनाया जाता है, जहाँ पशुधन का सम्मान सत्कार किया जाता है। और ऐसा बताया जाता है समारोह के पहले बैलों को, जो भी उनके साथ में बैल घर में रहते हैं, उनको अच्छी तरह से नहलाया जाता है, धुलाया जाता है और साथ में तेल की मालिश की जाती है और उनको फिर सजाया जाता है, माना उनके घंटियाँ, फूल, उनके शिंगों को, उनके पैरों को और उनके पूरे बॉडी को जो है अलग अलग चीज़ों से सजाया जाता है ताकि वो खूबसूरत लगे। और इस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है। निश्चित तौर पे ये परंपरागत जो है त्यौहार है, जब हम लोग पूरे साल भर इनसे हम लोग मेहनत कराते हैं किसान भाई लोग, तो उनका एक दिन जो है ये सम्मान के रूप में किया जाता है ताकि उनको भी उत्साह मिले और सभी को एक उत्साह मिले। और इन सभी चीज़ों का यहाँ पर पशुओं का सम्मान अर्थात तो उनसे प्यार से हमें काम लेना है, उनका ध्यान रखना है, उनका ख्याल रखना है ताकि वो साल भर हेल्दी वेल्दी और निरोगी रहें, ये इसके पीछे का रीज़न है। तो निश्चित तौर पे आपको अगर इस तरह का त्यौहार मनाते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान और स्वास्थ्य और प्रकृति का रहस्य छिपा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सविता जी, मैं चाहूँगा जी आप ब्रह्मा कुमारीज के इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, तो मीडिया कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए, इस बार क्या थीम है, किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है वहाँ पर?
1: हाँ सर, अब की बार का थीम बहुत अलग है क्योंकि जो मीडियाज है उनको विश्व में सबसे श्रेष्ठ बनाना है।
0: जी, जी,
1: तो यहाँ पर आने के बाद में काफी शांति तो मिलती है और हम सब पत्रकार जो ऑल इंडिया से यहाँ पर जो आते हैं तो इकट्ठा होकर हम भाईचारा भी निभाते हैं, साथ में एक परिचय होता है और एक दूसरे को जानने का भी यहाँ पर मौका मिलता है। क्योंकि साल भर में जब इकट्ठा यहाँ पर होते हैं तो ये पत्रकारों का जो संगम है तो यहीं पर देखने को मिलता है। हाँ जी, और साथ में जिस प्रकार का ये जो संगम है हम सभी पत्रकारों का, तो समय तो होता नहीं है पर आप लोग हम लोग को तो समय निकालने के लिए मजबूर करते हैं और बाबा के नाम पर तो यहाँ पर हम लोग समय निकाल कर भी आते हैं, तो यहाँ पे काफी अच्छी शांति भी मिलती है। और अब की बार तो हम लोग मानसरोवर, ये हमको नया स्थान जहाँ रहने को मिला, उसी समय या वहीं पर आप लोगों ने हम लोग का मीडिया नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस भी रखा है, तो काफी पीसफुल जगह है और बहुत अच्छा भी माहौल है और हम एक दूसरे से मिलते हैं तो नए नए चेहरे, नए नए पत्रकार भाई भी हम लोग से मिलते हैं तो काफी अलग आनंद भी होता है, एक दूसरे को हम लोग नंबर भी शेयर करते हैं, तो काफी अच्छा माहौल है यहाँ पर और बहुत अच्छा जो मीडिया है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो विश्व में सबसे श्रेष्ठ मीडिया भी बनना ही चाहिए। जिस प्रकार की जो मेंटेलिटी है तो उस प्रकार से मेंटेलिटी लोगों ने ना रखे, क्योंकि पारदर्शकता आज भी जो है जिंदा है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हालांकि डिजिटल मीडिया भी है, पर जो भी हमारे डिजिटल भाई है, यूट्यूबर्स है, वेबसाइटर्स है, जो भी मीडिया हाउस करते हैं, तो उन सबको हम एक अपने तरफ से ये भी कहेंगे कि संदेश देना चाहेंगे कि जो भी है तो पारदर्शिता से न्यूज बनाए, पारदर्शकता को ही दिखाया जाए, उसे फेक न्यूज के तौर पर ना दिखाया जाए, इससे मीडिया बदनाम होता है, तो हमें अपने मीडिया का सम्मान है उसे बरकरार भी रखना है। तो हम सभी से चाहेंगे कि आजकल जो डिजिटल मीडिया काफी बढ़ चुका है तो अच्छा है कि हर एक पत्रकार बनना भी चाहिए, लेकिन पारदर्शिता जो है वो दिखाना बहुत जरूरी है।
0: जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कैसे ये जो है चीजें बनती हैं और किस तरह से जो है नवीनता के बारे में आपने बताया कि हर साल जो है ये मीडिया कॉन्फ्रेंस अलग अलग थीम को लेकर काम करती है, अलग अलग थीम के साथ जो है प्रोग्राम सेलिब्रेट करता है और एक साथ जो है बहुत सारे भारत देश के जितने भी पत्रकार हैं वो आपस में मिलने का एक गेट टुगेदर का सुंदर माहौल बन जाता है और एक दूसरे से पहचान भी हो जाती है। तो आइए, हम लोग बात कर रहे थे बैल पोला के बारे में। ये जो त्यौहार है बड़ा ही सुंदर और इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में मनाते हैं तो बैल को खास पुरन पोली खिलाते हैं। पुरन पोली महाराष्ट्र का सबसे श्रेष्ठ और सुंदर व्यंजन है जो खास त्यौहारों में मनाया जाता है और मेहमानों को खास बुला के इस पुरन पोली को बना के खिलाते हैं। तो खुशी को व्यक्त करने का ये जो है तरीका है। और वैसे ही छत्तीसगढ़ में जो है आज के दिन जैसे इसको विशेष रूप से अपने घर में बनी मिठाई बनाते हैं, वो थेतरी, खुरमी, चकली जैसे व्यंजन अपने भाई बहनों से खुद घर में बनाते हैं और फिर वो सभी को बांटते हैं, तो वो जानवरों को भी उस दिन खिलाते हैं। तो इस तरह से गुड़ और जो हमारा जो धान्य है इनको मिला के जो भी व्यंजन मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं वो बैलों को भी खिलाया जाता है और घर में अपने सभी लोग भी खाते हैं। जो खाना हम खाते हैं वही अच्छा खाना जो है आज बैलों को खिलाया जाता है। तो इस तरह का ये सुंदर त्यौहार है। तो सविता जी, मैं चाहूँगा जाते जाते आप हमारे सभी श्रोता बंधुओं को क्या बताना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, आपकी भावनाएं क्या है वो हमारे सभी श्रोताओं को बताएं।
1: जी हाँ, भावना तो जरूर बताएंगे और आपको और एक बता दे रमेश भाई कि कुछ हमारे यहाँ पर नागपुर का भी एक त्योहार होता है और साथ में छत्तीसगढ़ में और एक प्रथा है आज के दिन एक गोट मार की जाती है। तो इस नदिया के पार से उस नदिया के किनारे जो लोग खड़े होते हैं तो ऐसे में गोट मार जो है वो काफी प्रचलित है। वो मतलब इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है कि गोटमार की प्रथा काफी सालों से चलती आ रही है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि हमारे यहाँ पर मतलब जो वो होते ना पुतले जो होते तो हमारे यहाँ मारबत करके कहा जाता है। तो एशिया खंड में सिर्फ नागपुर में ही ऐसा है कि मारबत का ये जो प्रचलन है तो 145 साल पूर्ण हो चुके हैं, तो अभी 146 साल हुए मतलब पदार्पण भी हो चुका है। तो बहुत सुंदर से जो है काली मारबत और पीली मारबत भी निकाली जाती है और काफी भव्य जुलूस भी भारत माता चौक इतवारी से भी निकाले जाते हैं सुबह के टाइम में और ढोल ताशे के साथ में इसे निकाला जाता है। लेकिन जो काली मारबत होती है तो उसके पीछे का भी अलग इतिहास है और पीली मारबत है उनके पीछे का भी एक अलग रहस्य है। आपको बता दें कि काली मारबत जो है उन्हें दैविक रूप से मतलब महाकाली का जो रूप है उस प्रकार से वो दिखती है, तो उनको 9 दिन तक का पूजा अर्चना की जाती है। साथ में उनको चोली साड़ी प्रसाद ये भी चढ़ाया जाता है और जो पीली मारबत है वो उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो लक्ष्मी रूपी पीली मारबत ये भी निकलती है वहां से। थोड़ा अलग अलग परिवार है तो गुप्ता फैमिली अलग निकालती है, हरने फैमिली अलग निकालती है। गुप्ता फैमिली बोले तो जो भी चना वगैरह जो बेचते हैं तो उनका वो फैमिली है और हरने फैमिली बोले तो तेली समाज के जो है तो वो पीली मारबत निकालते हैं। और ये पीली मारबत और काली मारबत का मिलन देखने के लिए लाखों नागरिक लाखों भक्त उस दिन आते हैं। छोटे बच्चों को महाकाली जो है काली मारबत तो उन्हें वो मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक वाला सीन होता है, तो उन्हें बच्चे उनको दूध पिलाया जाता है मतलब उस पुतले को लगाया जाता है। तो मान्यता ऐसी है कि यदि बच्चों को वहां पर लगाया जाए तो उनका भय भी मुक्त होता है और साथ में उनका जो भी रोग राई इड़ा पीड़ा घेउन जागे मारबत ऐसी हमारे यहाँ पर जल्लोष के साथ भी ये स्लोगन भी कहा जाता है। और ये स्लोगन का जो आवाज जो गुनती है ना तो पूरा नागपुर शहर ही मतलब काफी हर्षोल्लास से इड़ा पीड़ा घेउन जागे मारबत रोग राई घेउन जागे मारबत अरे इस प्रकार के स्लोगन के साथ में जुलूस निकलता है और काफी बड़े पैमाने पर ढोल ताशाओं के साथ में ये निकलता है। और आपको हम बता दें कि जाते जाते ये भी संदेश देना चाहेंगे कि हमारे मन में जो भी चलता है तो मीडिया संदेश हम आपको देना चाहेंगे कि नकारात्मक जो न्यूज़ है उसे ना दिखाया जाए, ना उसे बनावट करके या जो भी फेसबुक पे जो रील चलती है तो इसे भी मतलब गलत प्रचार प्रसार ना करें। यूट्यूबर जो भी है हमारे भाई बहन

0: जो भी चलाते, आजकल तो सभी पत्रकार हैं, हर एक आदमी आजकल पत्रकार है। हम ये नहीं
1: बिल्कुल
0: कहेंगे कि अभी
1: बिल्कुल
0: पत्रकार नहीं है, शायद हमें ऐसा लगता है कि संपूर्ण विश्व में अभी तो
1: पत्रकार ही हो गए
0: पत्रकार ही हो गए हैं, तो जरूर बनना भी चाहिए, लेकिन पारदर्शिता
1: रखनी
0: जो जो
1: चाहिए।
0: है वो दिखाना चाहिए और सच्चाई का आयना दिखा, चाहे यूट्यूबर्स हो, वेबसाइटर जो भी चलाते हैं, वेब पोर्टल चलाते हैं, उन्होंने भी पारदर्शिता रखना चाहिए। प्रिंट वाले तो दिखाते ही हैं, वो तो लिखते ही हैं, लेकिन आज का जो युवा नया हुआ है तो सोच समझ कर लिखे, किसी को बदनाम ना करे। और दूसरी बात तो ये है कि आजकल का एक ट्रेंड बन गया है सर, आपको बता दें चलते चलते, कि जिस प्रकार से होता है ना कि भाई हम तुम्हारी जो न्यूज़ है ना इस प्रकार से डालेंगे, तो सामने
1: बढ़िया हो
0: वाला जरा
1: जाएगा।
0: थोड़ा सा डरता है कि भाई कहीं मेरा निगेटिव न्यूज़ ना जाए। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि मतलब लोगों से पैसा निकालने के चक्कर में निगेटिव न्यूज़ भी लगाते हैं, तो ये चक्र ना करें, क्योंकि इससे मीडिया का जो नाम है वो खराब हो रहा है। तो मीडिया का नाम बरकरार रखने के लिए हम चाहते हैं कि भाई सच्चाई का आईना डिजिटल मीडिया भी दिखाए, यूट्यूबर्स भी दिखाए, वेब पोर्टल्स भी दिखाए, तो इससे हमारा मीडिया की जो इमेज है वो बरकरार रहेगी, ताकि हमारे मीडिया पर कोई उंगली ना उठाए, क्योंकि हमारा विश्व श्रेष्ठ मीडिया बनना चाहिए, यही हम आशा रखते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही सुंदर बातें आपने मीडिया के बारे में, कोला के बारे में, और नागपुर का काली और पीली मिलन मारबत का ये भी बातें आपने शेयर किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। और चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने सविता कुलकर्णी से बातें की, उनके जीवन से जुड़ी हुई मीडिया की कुछ बातें आपको उन्होंने शेयर किया, तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत शुभकामनाएँ और धन्यवाद।
0: धन्यवाद रमेश भाई, ओम शांति।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक और शख्सियत के बारे में। बातें करेंगे कुछ ही देर में विनोबा भावे के बारे में, आज उनका जन्मदिन है। तो चलिए तब तक मैं आपको ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

भारत, जिसके हर गांव, हर शहर, हर खेत और हर दिल की धड़कन से आपके लिए आदर और सम्मान की भावना झलकती है, उस मेहनत और अतुलनीय प्रयास को मोज़ेक सलाम करता है।

धूप है, छांव है, जलते तेरे पांव है, धारा के विपरीत सदा बहती तेरी नाव है। जिसने ये दुनिया बनाई उसको कहते भगवान है, जिसने हमको अन्न दिया वो भारत का किसान है।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए बात करते हैं अभी विनोबा भावे के बारे में। जी हाँ, महात्मा गांधी के आदरणीय अनुयायी, भारत के एक ऐसे जाने माने समाज सुधारक। एक विशेष इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, भूदान यज्ञ नामक आंदोलन, जिनकी विशेष रूप से उसके प्रति आस्था थी और इनकी समस्त जिंदगी साधु संत जैसी रही और इसी कारणवश ये एक संत के तौर पर प्रख्यात हुए। विनोबा भावे अत्यंत विद्वान एवं विचारशील व्यक्ति वाले शख्सियत थे। महात्मा गांधी के परम शिष्य जंगे आज़ादी के इस योद्धा ने वेद, वेदांत, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल आदि अनेक धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और मनन किया। अर्थशास्त्र, राजनीति और दर्शन के आधुनिक सिद्धांतों को भी विनोबा भावे ने गहन अवलोकन चिंतन किया था, इसलिए आज भी उनको बड़े प्यार से लोग याद करते हैं। तो विनोबा भावे के बारे में अगर आपके पास कुछ जानकारी है या आप उनके बारे में पढ़ा हो तो ज़रूर हमें बताइएगा, हमें खुशी होगी। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, जिया नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए एक और सुंदर सा गीत आपको सुनाते हैं और ये मन्ना डे की आवाज़ में आपके लिए अभी सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। 8:53 हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ फिर से विनोबा भावे के बारे में। बातें हो रही थी उनके जीवन परिचय की, अगर बात करें तो आज ही के दिन 11 सितंबर को 1895 में गोहदे गुजरात भारत में इनका जन्म हुआ। विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्मे विनोबा ने गांधी आश्रम में शामिल होने के लिए 1916 में हाईस्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। गांधी जी के उपदेशों ने भावे को भारतीय ग्रामीण जीवन के सुधार के लिए तपस्वी के रूप में जीवित जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया और फिर यहां से शुरू होती है एक नई कहानी। और शुरुआती जीवन में जैसे कि इनकी बुद्धि बहुत प्रखर थी, इंटेलिजेंट थे, गणित उनका सबसे प्यारा विषय बन गया था और हाईस्कूल परीक्षा में गणित में इन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क प्राप्त किए थे। बड़ौदा में ग्रेजुएशन करने के दौरान विनायक जी का मन वैरागी बनने के अति लिए आतुर हुआ और फिर वो पता नहीं किसी कारणवश उनका मन जो है वैरागी बन गया और 1916 में मात्र 21 वर्ष के अल्प आयु में ही उन्होंने घरबार छोड़ दिया और साधु बनने के लिए काशी नगरी की ओर रुख किया। और इस तरह से वैदिक पंडितों के सानिध्य में रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर उन्हीं चीज़ों को समझने के लिए उन्होंने समय दिया। उसके बीच में महात्मा गांधी जी की चर्चा देश भर में चल रही थी तो दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए गांधी जी और आज़ादी का बिगुल बजाने लगे तो अखंड स्वाध्याय और ज्ञान अभ्यास के गौरव उस दौरान विनोबा भावे को कहीं ना कहीं गांधी जी से मिलने का एक जो है अंदर से इच्छा हुई और फिर वो अहमदाबाद पहुँचे और कोचर आश्रम में जब पहुँचे तो गांधी जी सब्जी काट रहे थे और इतना प्रख्यात नेता सब्जी काटते हुए इनको मिलेगा ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था और यही चीज़ जो है उनके जीवन को प्रभावित किया और वो गांधी जी के अन्यायी बन गया। किया था इतना बड़ा आदमी जो सब पूरा देश उनके नाम से चर्चित है और वो आदमी सब्जी काट रहा है तो ये उनको बड़ा मन को लगा कि जीवन के लिए कुछ प्रेरणादायी चीज़ उनको मिल गई और बिना किसी उपदेश के वो स्वावलंबन और श्रम का पाठ पढ़ लिया और इसी मुलाकात के बाद वो जीवन भर गांधी जी के बन गए। तो साथियों यहाँ पर हम सभी को ये सीख मिलती है कि हम किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से चीज़ों को ग्रहण करते हैं। अगर हम किसी विषय को समझने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिकल जीवन को देखते हैं तो उससे हमें जो है यहाँ दो विकल्प हमारे पास हमेशा रहता है कि कैसा हम उन चीज़ों को उठाते हैं, सकारात्मक उठाते हैं, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उठाते हैं या फिर आप डोंट केयर करके उन चीज़ों को उपयोग में नहीं लाते हैं। तो यहाँ पर विनोबा भावे जी ने उस चीज़ को आत्मसात किया और अपने जीवन में उसको उतारा और अपने जीवन को जो वो उपदेश देना चाहते हैं गांधी जी उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए फिर उन्होंने काम किया और आगे चल के भूधान एक बड़ा प्रोजेक्ट जहाँ पर किसानों को ज़मीन नहीं मिलती थी और जमींदारों के पास बहुत सारा ज़मीन पड़ा रहता था तो उन्होंने उसको बैलेंस करने के लिए एक मांग की और जमींदारों से या सरकार से ज़मीन लेकर किसानों को देने का काम किया। तो आइए इसी भाव को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाऊंगा मन्ना डे की आवाज़ में और ये एक आध्यात्मिक गीत है जहाँ पर आत्मा और परमात्मा की बात की जा रही है कि आत्मा जब इस संसार में आती है तो ये देह और देह के सारे संसारों में लिप्त हो जाती है और वो दागी बन जाती है। अब जब उसको ये एहसास हो जाता है तो उस एहसास से वो दाग से मुक्त होना शुरू कर देती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, फिर से आत्मा जो है अपने प्रियर या अपने जो है आत्मा के घर परमात्मा के साथ जाती है। तो ये भाव यहाँ पर है और इसे पिक्चराइज किया गया था तो बहुत ही खूबसूरत गीत आज भी उतना ही सुंदर ये गीत लगता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत आपके लिए, अभी सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बड़ा प्यारा सा आध्यात्मिक गीत आप सुन रहे थे, जहां पर आत्मा परमात्मा का जो है एक सुंदर मिलन की बातें हो रही थी, और फिर से आत्मा को घर जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था इस गीत के माध्यम से। तो इसको इतने अच्छी तरह से जो है ब्लेंड करके मन्नाडे ने गाया था, और एक फिल्म में इसको पिक्चराइज किया गया था। निश्चित तौर पे आप सभी को जब भी गाना सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें कैच करता है, क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा की मिलन की बात बताई गई है। तो माया से छूटने की बात बताई गई है और परमात्मा से मिलन करने की बात बताई गई। चलिए मित्रों, वक्त हो गया है समाचारों का, सीधे दिल्ली ले चलता हूँ आपको, और समाचार सुनते हैं। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमरीकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, CII और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के 3rd चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
3: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
3: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: 4 दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। यह बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
5: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनम थिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनम थिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
7: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है बढ़ता दायरा, बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोकसत्य लिखता है प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा, कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ बातें याद रखने लायक होती हैं।
1: भगवान के साथ संबंध, the relationship with God, and friends, believe me, शायद हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं पहचाना। Two good reasons. एक तरफ भगवान को कहते हैं वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ आज हम उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा डरते हैं। We have become God fearing rather than God loving. आप कहेंगे सर, no, we don't fear God. Then there's a second good reason why we have not understood God, because friends, more than 80% of the war that is fought today is directly or indirectly in the name of God. चाहे वो अमेरिका अफगानिस्तान वार हो, अमेरिका इराक वार हो, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम हो, गुजरात प्रॉब्लम हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, have we really understood God? किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का। We are fighting in the name of God and we call ourselves intellectuals. Friends, let's understand the name very clearly. Hindus manate hain Diwali aur hamare Islam bhai behne manate hain Ramzan. Lekin thoda sa common sense to hum samajh sakte hain, are Diwali mein hai Ali A-L-I, to Ramzan mein hai Ram R-A-M. Diwali mein hai Ali, Ramzan mein hai Ram. Diwali mein hai Dil D-I-L, to Ramzan mein hai Jaan Z-A-N. Are us prem ke saagar ko दिल व जान, सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है। वो परमात्मा के साथ वो संबंध जोड़ना जरूरी है। हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम सभी जो आत्माएं हैं, उस एक परमात्मा के संतान हैं। And that is a beautiful relationship that we can establish with the Almighty God. And this is what is very very important. और उस परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय भी होना बहुत बहुत जरूरी है। जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, तो उनका जो स्नेह है, क्योंकि परमात्मा को कहते हैं वो स्नेह और प्रेम का सागर है, तो ऑटोमेटिकली वो स्नेह और प्रेम हमारे में आने लगती है और हमारा जीवन फिर से प्रेममय, सुखमय और शांतिमय बन जाता है। तो हम सबको एक ऐसा कार्य करना है जिससे समाज जो है फिर से ऐसे सुखमय बन जाए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी खुशियों के साथ। जैसे कि आज एक त्योहारों का सुंदर जो है समय चल रहा है, आने वाले समय में गणपति बप्पा मोरिया आपके बीच में आने वाला है और आज विशेष महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, खास छत्तीसगढ़ में बैलों की पूजा की जाती है। किसान पूरे साल भर बैलों से, बैल जो पशुधन है उसका मेहनत लेते हैं, तो आज का वो दिन है जहाँ पर वो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं किसान अपने पशुधन के लिए और उनका सम्मान सत्कार किया जाता है और उनको बहुत ही सुंदर तरीके से नल्हा दुला कर सजाया जाता है और फिर उनका वेलकम करते हैं और उनको मिठाइयाँ भी खिलाई जाती हैं। तो हमारे बीच अभी विशेष विजय जी हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। विजय जी, कैसे हैं आप?
1: जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ रमेश भाई।
0: जी जी जी जी, और बताइए, अब मीडिया कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, हर साल आते रहते हैं, तो इस बार क्या नया थीम है, किस तरह से तैयारियां है वो बताइए।
1: इस बार मानसरोवर में मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो इस बार जो है एक नया भवन, एक नई जगह है।
0: जी जी जी,
1: इस
0: जी,
1: बार पिछले बार के मुकाबले काफी ज्यादा लोग मीडिया पर्सन्स आए हैं।
0: अच्छा,
1: और मीडिया पर्सन्स में भी जो नए लोग हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल, विद्यार्थी बहुत आए हैं।
1: हाँ, इस बार विद्यार्थी बहुत आए हैं, करीब 500 विद्यार्थी अभी पंजाब यूनिवर्सिटी से आए हैं। तो अच्छा, जो नए विद्यार्थी आए हैं उनको सीखने का शौक है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: हम जैसे लोग जो पिछले लगभग 40 साल से पत्रकारिता में हैं,
0: उनसे सीखने को मिलेगा।
1: जी, वो उनसे हमसे बातचीत करते हैं कि हम सकारात्मक पत्रकारिता को कैसे अपनाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार।
2: हाँ जी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हम शांति बोलता हूँ गुजरात जटाना से। क्या कैसे हो सर?
0: जी जी सुरेश जी, बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: बस अच्छे हैं, और आप बता रहे हैं बातें तो बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। आज जो बेलों की बात की तो बिल्कुल सही बात है सर, बेल क्योंकि बात तो क्या है सर, अब बेलों को तो छुट्टी मिल गई है, क्योंकि पहले तो खेत में इतने बेले काम करते थे सुबह से रात तक, लेकिन आज क्या है, आज जो ट्रैक्टर से जो खेती करते हैं, तो आज बेलों को इस जो साल, एक नए साल में अच्छा एक मौका मिल रहा है कि वो उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि तो अभी सभी जो खेती होती है खेत में वो ट्रैक्टर से करते हैं और वो कुछ साधन से करते हैं, क्योंकि पहले जमाने में तो क्या था, बहुत सुबह से 5 बजे से वो किसान भाई चले जाते थे खेत में बेल लेके और दोपहर को 12 बजे तक खेत में काम करते थे। बेलों की आज पूजा की जाती है, हमारे भी यहाँ बेलों की पूजा की जाती है सर, और हमारे भाई साहब आए तो हमारी तरफ से उसको भी नमस्ते है।
0: जी जी जी, बात कीजिए विजय जी से। हेलो बोल दीजिए।
2: हाँ हेलो, नमस्ते विजय भाई, कैसे हो?
1: जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
2: बस अच्छे हैं, और आपकी दुआ से और आप सभी जो हमारे आज मेरे रमेश भाई आते हैं, कुछ न कुछ अच्छे मेहमान लेके आते हैं और मेहमानों को भी हमको कोई काफी हमको सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है अच्छी बातें, अच्छे ज्ञान, तो हमारे लिए एक खुशी की बात होती है। तो हम तो हर एक बार सुनते रहते हैं,
1: हम यहाँ मेहमान बनकर नहीं आते, क्योंकि ये हमारा अपना घर है और हम आपको भी इनवाइट करते हैं कि आप यहाँ शांतिवन जरूर आए, यहाँ पर आपको पूरा अपनापन, यहाँ कभी आपको ये ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप पहली बार आए हैं, यहाँ अपना पूरा मिलेगा।
2: बिल्कुल, कई बार। हाँ जी सर, हम तो कई बार वहाँ आ चुके हैं और वहाँ का तो जो मौसम है, वहाँ का जो जमी है, वो एक तो शांति पूर्वक वहाँ आके हमको अच्छा सुकून मिल जाता है, क्योंकि जगह का तो प्रभाव पड़ता ही है, हमको अच्छी जगह पे जाते हैं तो हमारा मनोकाम, हमारा मनोविज्ञान, मनोविचार, हमारा सब कुछ सत्य वहाँ पे जाके हमारा अच्छा हो जाता है, विचार भी हमारा बदल जाता है और अच्छे परमात्मा की याद में हम वहाँ के खो जाते हैं। वहाँ का तो मौसम बहुत अच्छा रहता है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ का जो हमारे सभी भाई बहन, आज भी भाई बहन है, हमारे सभी भाई बहन इतनी प्यार से बात करते हैं, तो खुशी रहती है बहुत। तो आप बता रहे हैं, हम सुनेंगे जरूर आपकी बातें सर, हमारे सभी साथियों मित्रों और हमारे सभी भाई बहनों को आज के दिन की बहुत शुभकामनाएं। बताओ तो सर, हमारे आखिरी दिन है आज यहाँ का सावन महीने का, आज हमारे अमावस्या है, आज
0: अच्छा।
2: हाँ, कल से हमारा नया महीना शुरू हो जाएगा, भाद्र शुरू हो जाएगा, आज लास्ट दिन है, तो कई सारे मंदिरों में पूजा पाठ हो रही है, हवन हो रहा है, तो बस सभी अच्छे रहे, मस्त रहे, ऐसी शुभकामना देते हैं, भले बाबा सबकी कृपा बने रहे, नमस्ते सर, ओम शांति।
0: ओम शांति श्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय जी, जैसे बता रहे थे आप, नए लोग आए हैं, सीख रहे हैं उन लोग भी, और एक अच्छा जो है तांता लगा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा पत्रकार का कॉन्फ्रेंस में लोग जुड़ रहे हैं, जहाँ से विद्यार्थी और महाराष्ट्र और भारत से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो क्या थीम रखा है, किस तरह की बातें इस दो दिन में हुआ है, थोड़ा सा बताइए।
1: वैश्विक परिदृश्य में मीडिया की जो भूमिका होनी चाहिए और एक सार्थक भूमिका होनी चाहिए, उसे लेकर के कल सुबह पहले इनॉग्रल फंक्शन हुआ। इनॉग्रल फंक्शन एक वास्तव में प्रेरणादायी था।
0: अच्छा,
1: आज जो एआई का जमाना है, तो एआई के से भी हम सार्थकता कैसे फैला सकते हैं, उसे लेकर कल कई वक्ताओं ने हमें प्रेरणास्पद बातें कही। शांतनु भाई की एक बात का मैं विशेष उल्लेख यहाँ करना चाहूंगा। उन्होंने इस बार ये हमें संदेश दिया कि न्यूज इन चार दिनों में थोड़ी कम बना लेना, मगर यहाँ से यादें ज्यादा लेकर जाना, क्योंकि आपकी बनाई न्यूज दो चार घंटे या दो चार दिन में लोगों के दिमाग से उतर जाएगी, मगर यहाँ की जो यादें हैं वो आपकी जिंदगी भर आपके साथ रहने वाली है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आज जमाना जो ब्रेकिंग न्यूज का है, तो ब्रेकिंग न्यूज से या लेटेस्ट न्यूज से हटकर कुछ हम जब यादें लेते हैं यहाँ कुछ नए मित्रों से और पुराने मित्रों से जो मुलाकात होती है, तो ऐसा लगता है कि एक जो वृहद परिवार है उसके साथ हम रह रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे आप जो है इन चीजों को देखते हैं और किस तरह से ये चीजें हमारे जीवन में आती है। और आइए, मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि संस्कार चैनल आपका चलाते हैं, तो आपका क्या थीम रहता है, क्या विचार रहता है, वो थोड़ा सा बताइए।
1: देखिए, संस्कार न्यूज अखबार हम 2011 से प्रकाशित कर रहे हैं
0: जी।
1: हमारी जो थीम है, दुनिया का इकलौता अखबार है जो कभी भी राजनीति, अपराध, दुर्घटना, मांग, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन की कोई खबर
0: नहीं छापता,
1: किसी कीमत पर नहीं छापता। यानी हमारे शहर में अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी आते हैं तो उनका राजनीतिक अगर सभा होगी तो हम प्रकाशित नहीं करेंगे।
0: अच्छा अच्छा,
1: किसी भी आध्यात्मिक आयोजन के लिए वो आते हैं तो उनका स्वागत है। संस्कार न्यूज में हम आध्यात्म, साहित्य, शिक्षा, सेहत, संगीत और आपके आसपास जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, हम संस्कार न्यूज में उसको प्रमुखता से स्थान देते हैं। संस्कार न्यूज के पहले पेज पर हमेशा आज के दिन क्या विशेष है, जैसे आज अमावस्या है तो आज जो पिठौरी अमावस्या है उसके बारे में, पिठौरी अमावस्या का कैसे पूजन किया जाए, उसका महत्व क्या है, ये प्रकाशित करते हैं। इसके अलावा अब हम 14 तारीख को हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी है, तो संस्कार न्यूज का पहला पेज गणेश चतुर्थी, हिंदी दिवस और जो भी उस दिन प्रमुख त्योहार होगा उसे समर्पित रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए विजय भाई, संदेश क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए?
1: मैं विशेष तौर से पत्रकारों को संदेश ये देना चाहूंगा कि बिना ब्रेकिंग न्यूज या बिना किसी भी गलत न्यूज के आप अखबार को सकारात्मकता से बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। आज अगर कोई मान लीजिए दुर्घटना होती है, दुर्घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सकता है, जबकि इतनी जरूरत नहीं है। दुर्घटना के समाचार हुए या आपके पॉलिटिकल समाचार हुए, तो आज का पाठक, अखबार का पाठक जो है वो सिर्फ हेडिंग पढ़ करके छोड़ देता है, मगर वही हम लोग सकारात्मक और कुछ अच्छा लिखते हैं तो वो पाठक जरूर पढ़ेगा उस समाचार को। और हमें अगर अपने पाठकों तक पहुंचना है तो सकारात्मक सोचें, सकारात्मक लिखें और सकारात्मक को जनता तक पहुंचाएं। ये मेरा संदेश आज की नई जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं उनको।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बात, आपने बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया। हेलो जी, नमस्कार।
3: हेलो, नमस्कार सर, कंचन भाई बोल रहा हूँ गुजरात से।
0: जी कंचन भाई बोलिए, कैसे हैं आप?
3: बस सर, रेडियो जेब में मोबाइल है, खेत में आए हैं तो सुन रहे हैं। बहन जी को भी सुना संस्कार चैनल की, जो बहन जी ने बात की हमें बहुत अच्छी लगी बहन जी बातें, और जो मीडिया की जो बात की उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई बढ़ा चढ़ा कर जो ये कर रहे हैं। देखो अभी बारिश यहाँ डेढ़ महीना करीबन हो गया बनासकांठा गुजरात में, ठीक है, फिर भी ये लोग एक ही बता रहे हैं टीवी में कि भाई यहाँ इतनी बारिश आई है, यहाँ ऐसा

0: हुआ या ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो ये बढ़ा चढ़ा के बातें करने से क्या फायदा है भाई। ये नहीं होना चाहिए। मीडिया वालों को बेन जी ने जो बताया है बिल्कुल सही बताया है। हम तो टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो यहाँ के है, यहाँ के बताते हैं कि भाई यहाँ इतना ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये नहीं होना चाहिए। हमारे भी आज अमावस्या का दिन है, श्रावण मास का आखिरी दिन है, तो जो बिली पत्र पूरे बात चढ़ाए वो ब्राह्मण थे, तो उनको दान दे, तभी हम जाके करने वाले है घर पे जाके, और हम भी चढ़ाते थे, हम भी जो प्रसाद आदि 12 बजे तक भजन कीर्तन करते थे श्रावण मास के दरमियान, तो ये सब आज करेंगे। आज लास्ट दिन है हमारा अमावस्या का दिन, ठीक है, और आज के दिन सभी दोस्तों को आपको नमस्कार सर, दिन देर शुभकामनाएं। हेलो
1: जी कंचन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर बातें आपने बता दिया। और विजय जी के लिए आपने कहा कि न्यूज़पेपर में जैसे कि बाढ़ की बातें या अच्छी बारिश की बातें हो रही हैं, लेकिन आपने ये बताया कि बनासकांठा में बारिश नहीं हुआ है, किसानों के लिए मुश्किल हो रहा है, अकाल की सिचुएशन है, क्योंकि बारिश का मौसम ये पूरा सितंबर महीना रहता है, लेकिन अगस्त और सितंबर महीने में बारिश नहीं हुई है बनासकांठा में, तो इस वजह से आपने बताया। तो विजय जी अपने पेपरों में ज़रूर छापेंगे, इस बात को बताएंगे, और ये चीज़ जो है उनके दिमाग में आ गई होगी, तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। तो विजय जी थैंक यू सो मच
2: जी, बहुत आभार
1: जी,
2: यहाँ पर मौका दिया आपने, जो भी श्रोता हैं उनके साथ संवाद करने का, उनकी बात सुनने और उनसे बातचीत करने का जो अवसर दिया, रमेश भाई आपका बहुत बहुत आभार, ओम शांति
1: जी।
2: रमेश भाई मैं अनुरोध करूंगा कि शांति दूत में हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए, सुरेश वाडेकर का जो गाया हुआ गीत है, अगर हम इस मोटिवेशनल सॉन्ग को हमारे श्रोताओं को सुनवा पाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद किया है, इसी गीत का आनंद उठाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, विजय जी से आपकी मुलाकात हुई, पत्रकार बंधु से, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें आपको शेयर की है। हेलो जी, नमस्कार। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, मैं नमस्कार। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं, और पत्रकार बंधु का जो है ताता लगा रहा है आना जाना, तो आप सभी को भी उनकी बातें सुनकर अच्छा लग रहा होगा। तो आइए, यहाँ पर मैं बात कर रहा था विनोबा भावे के बारे में, और जीवन भर जो है वो इस तरह से देश सेवा में या किसानों की सेवा में लगे गए। जब गांधी जी से प्रभावित हुए तो उनके सानिध्य में रहकर काम करना शुरू कर दिया, देश सेवा शुरू कर दिया, और ऐसा हुआ कि फिर जब ब्रिटिश का जो राजत्व था ही, और विनोबा भावे जब बापू जी के साथ जुड़ गए, तो फिर ब्रिटिश को ये भी पता चला तो उन्हें भी पकड़ के जेल में डाल दिया। 1921 से लेकर 42 तक वो अनेक बार जेल यात्राएं की, और 1922 में नागपुर का झंडा सत्याग्रह किया। ब्रिटिश हुकूमत से ही CRPC की धारा 109 के तहत विनोबा भावे को हमेशा गिरफ्तार करते रहे। इस धारा के तहत आवारा गुंडों को गिरफ्तार किया जाता है। नागपुर जेल में विनोबा भावे को पत्थर तोड़ने का काम दिया गया था। कुछ महीनों के पश्चात अकोला जेल भेजा गया। विनोबा का तो मानो तपो यज्ञ आरंभ हो गया था, और 1925 में हरिजन सत्याग्रह के दौरान जेल यात्राएं हुई, और 1930 में गांधी के नेतृत्व में विशेष नमक सत्याग्रह का अंजाम देने के लिए वो उनके साथ हमेशा बने रहे। तो इस तरह से बहुभाषी व्यक्तित्व के धनी थे। अरबी, फारसी, हिंदी, मराठी, संस्कृत, इन सारी भाषाओं का इनको बंगाल, फ्रेंच,

सिंदरी लाजत माल मूत्र उवर है, घास पात काथ दीन वचन उचारे जात, मीर के हूँ काम दे चाम तो सुधार है, बाबा ने बचाई लिहिन दिल्ली तहलाही दीनी, बिना लव लश्कर समर के हूँ सर है, जान की लगाई बाजी गाय की बचाई जान, विनोबा तू धन्य है। तो ये जो पंक्तियाँ है गांधी जी अटल बिहारी वाजपेयी ने खास करके विनोबा भावे के लिए लिखा था। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक और सुंदर गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

और बस नवीकरण को नमस्कार करते हैं रमेश जी को और हमारे सभी दोस्तों को और जिनका भी जन्मदिन है इन सभी को। और क्या कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ गाना होना चाहिए कि जहाँ गाने के अंदर हंसना चाहिए, हंसने वाला गाना। ऐसे तो गाने बहुत है हंसने वाले, तो देख लो हंसने वाले तो अब बहुत सारे गाने तेरा गुनगुनाता हूँ। जिंदगी ऐसा पर ऐसुवाना, जहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उल्ले उल्ले अरे उल्ले उल्ले हर चांद तारों से बढ़ना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। तेरे जाएगा ये जमाना, जहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे टिक टिक टिक टिक टिक अरे उल्ले उल्ले अरे हंसते गाते यहाँ से गुजर, अरे दुनिया की तू परवाना कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, जहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी ऐसा पर ऐसू आना, जहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये गाने हैं और भी बहुत सारे अमिताभ जी के ही है। जिंदगी मिलके बिताएगी।

0: ऐसे बहुत सारे गाने हैं और हंसने वाले गाने हैं और रोने वाले भी है, मगर रोना नहीं चाहिए। खैर रोते हैं, रोने वाले भी रोते हैं, मगर नहीं रोना कभी आता है। एक आंसू बड़ी मुश्किल से आता है, मगर नहीं होना चाहिए, मुश्किलों को भी अपना आसान समझ लो। नमस्कार सर, ओम शांति, और बस कल फिर मिलेंगे। कल नहीं मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, कल शायद गुड मॉर्निंग आबू में मिलेंगे। नमस्कार सर, ओम शांति।
1: ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद, शुक्रिया मदन जी, बहुत ही सुंदर बातें आपने बताई, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। चलिए 1975 में पूरे वर्ष भर अपने अनुयायियों के राजनीतिक आंदोलन में शामिल होने के मुद्दे पर भावे ने मौन व्रत रखा था और 1979 के एक अमरण अनशन के परिणाम स्वरूप सरकार ने समूचे भारत में गौ हत्या पर निषेध लगाने हेतु कानून पारित करने का आश्वासन दिया था। तो इस तरह से विनोबा भावे के काम को आज भी याद किया जाता है, तो उनके इस जन्मदिन पर हम उनका याद करते हुए आगे बढ़ते हैं और उनको उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, ताकि हम भी लोगों की मदद कर सके और उनके जीवन में कहीं ना कहीं काम आ सके। तो आइए 11 सितंबर की बात अगर कहें तो आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो विनोबा भावे के बारे में ही करेंगे, क्योंकि उनके बारे में हमने बहुत सारी बातें आपको सुनाई और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आइए, विनोबा भावे का आज ही के दिन 1895 में जन्म हुआ था, तो भारत के बहुत ही पॉपुलर आज़ादी के दीवाने, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता रहे। प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार आत्माराम रावजी देशपांडे, 1901 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक जमाने वाली क्रिकेटर लाला अमरनाथ जी, 1911 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। आधुनिक काल में प्रसिद्ध हिंदी व राजस्थानी लेखक कन्हैयालाल सेठिया भी, इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन 1919 को हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रहलाद जोशी का जन्मदिन भी आज ही के दिन 1962 को हुआ। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री श्रेया सारन का जन्म आज ही के दिन 1982 को हुआ। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन आज है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू।

चलिए मित्रों, आज के दिन जन्मे उन सारे लोगों को रेडियो मधुबन करता है जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। और आशा करूंगा कि आप सभी को बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग बातचीत करते हैं और अलग अलग लोगों से रूबरू होकर उनकी बातें आप तक पहुंचाते हैं। तो शाम 4 बजे फिर होगी मुलाकात सफ़र कार्यक्रम में। तब तक आपके लिए ये खूबसूरत गीत छोड़े जा रहा हूँ, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: पढ़ना है आगे पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ये जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, अरे जान जाएगी जाएगी एक दिन, हाँ मौत आनी है आएगी एक दिन, अरे जान जाएगी जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ए जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा, रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
2: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है, और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार, बहुत पुराने विचार, बासी विचार, अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है, और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत बहुत जरूरी है।
1: अभी बजे हैं सुबह के 10, स्वयं को दें अभी 1 मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

तब बनता है खास जब आती है उषा। आशियाना के साथ आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। आज हम भौतिक सुख सुविधाओं के इतने आदि हो गए हैं कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, चने हमारे हेल्थ के लिए किस तरह फायदा करता है, कौन सी बीमारी ठीक करता है, जरूर जानेंगे आप। और आज का खुशनुमा जीवन का विषय बहुत ही अच्छा रहेगा, रेसिपी भी आपको बहुत ही स्वादिष्ट सिखाने वाली हूँ, और टंग ट्विस्टर तो पूछे ही मत, बहुत ही सुंदर रहेगा, जो आपको अधिक से अधिक 3 बार और कम से कम 2 बार तो बोल के सुनाना ही है। ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना कार्यक्रम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: भाई रुक भाई रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ। ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, वो इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
0: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं? पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
2: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

गुड मॉर्निंग आशियाना में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है कि आज हम भौतिक सुख सुविधाओं के इतने आदि हो गए हैं कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विश्लेषण एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। पुराने समय की बात है, एक राजा थे। राजा के पास सभी सुख सुविधाएं और असंख्य सेवक सेविकाएं हर समय उनकी सेवा में उपलब्ध रहते थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी राजा उनके जीवन में सुखी नहीं थे, क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान रहते थे। वे सदा बीमारियों से घिरे रहते थे। काम नहीं करना, पूरे दिन आराम करना, ये उनकी दिनचर्या थी। राजा का उपचार सभी बड़े बड़े वैद्यों द्वारा किया गया, परंतु राजा को फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। स्वास्थ्य अच्छा हो ही नहीं रहा था। समय के साथ राजा की बीमारी बढ़ती जा रही थी। अच्छे राजा की बढ़ती बीमारी से राज दरबार चिंतित हो गए। राजा की बीमारी दूर करने के लिए दरबारियों द्वारा नगर में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी राजा का स्वास्थ्य ठीक करेगा उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। ये सुनकर के एक वृद्ध राजा का इलाज करने राजा के महल में गया। वैसे तो बहुत जने आए, बहुत जनों ने इलाज किया, लेकिन राजा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ तो एक वृद्ध भी पधारे। वृद्ध ने राजा के पास आकर कहा, महाराज आप आज्ञा दो तो आपकी बीमारी का इलाज मैं कर सकता हूँ। राजा की आज्ञा पाकर के वह बोला, आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के वस्त्र पहनिए, आप अवश्य स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे। वृद्ध की बात सुनकर राजा के सभी मंत्री और सेवक जोर जोर से हंसने लगे। इस पर वृद्ध ने कहा, महाराज आपने सारे उपचार करके देख लिए, ये भी करके देखिए, आप अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। राजा ने उसकी बात से सहमत होकर के सेवकों को सुखी मनुष्य की खोज में राज्य की चारों दिशाओं में भेज दिया, परंतु उन्हें कोई पूर्ण सुखी मनुष्य नहीं मिला। प्रजा में सभी को किसी न किसी बात का दुख था। अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। अत्यंत गर्मी के दिन होने से राजा का बुरा हाल हो गया और वह एक पेड़ की छाया में विश्राम हेतु रुके। तभी राजा को एक मजदूर इतनी गर्मी में मजदूरी करता दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, क्या पूर्ण सुखी हो? मजदूर खुशी खुशी और सहज भाव से बोला, भगवान की कृपा से मैं पूर्ण सुखी हूँ। ये सुनते ही राजा भी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने मजदूर को ऊपर से नीचे तक देखा तो मजदूर ने सिर्फ धोती पहनी थी और वह गाढ़ी मेहनत से पूरे पसीने से तरबतर था। राजा यह देखकर समझ गया कि श्रम करने से ही एक आम मजदूर भी सुखी है और राजा को श्रम नहीं करने की वजह से बीमारी से घिरे रहते हैं। राजा ने लौटकर उस वृद्ध का उपकार माना, उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी। अब राजा स्वयं आराम और आलस्य छोड़कर के श्रम करने लगे। परिश्रम से कुछ ही दिनों में राजा पूर्ण स्वस्थ और सुखी हो गए। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आज हम भौतिक सुख सुविधाओं के इतने आदि हो गए हैं कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। इससे हम जल्दी ही बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं। अतः कहने का भाव, स्वस्थ और सुखी जीवन का रहस्य यही है कि थोड़ा बहुत शारीरिक परिश्रम जैसे योगा, ध्यान, भ्रमण आदि अवश्य करें, एवं जितना संभव हो सके शुद्ध देसी पौष्टिक और मिलावटी बिना का आहार लीजिए। गैर मिलावटी, जिसको हम गैर मिलावटी भी कह सकते हैं, गैर मिलावटी आहार लीजिएगा तो फिर स्वस्थ रहेंगे। और पहला सुख है निरोगी काया, तो शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा लगेगा। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और फिर से सुन लेते हैं गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

श्रोताओं चलो चना के खेत थाने होला दे दूसे। श्रोताओं चलो चना के खेत थाने होला दे दूसे। दीदी मैं तो आवाला खेत

से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब आपको नुस्खे देने वाली हूँ। किस पर? चने पर। वैसे तो मैं इंट्रो में बता चुकी हूँ और गीत के माध्यम से भी आप समझ गए होंगे कि आज चने पर आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय देने वाली हूँ कि किस तरह चना कौन सी बीमारी ठीक करता है, जानेंगे आप। ठीक है, तो देखिए, अगर मधुमेह माने डायबिटीज है तो 25 ग्राम काले चने रात में भिगो करके सुबह निराहार खाली पेट खाइएगा, मधुमेह की व्याधि दूर हो जाएगी। यदि समान मात्रा में जौ चने की रोटी भी दोनों समय खाई जाए तो भी काफी राहत मिलेगी। तो क्या करेंगे, देसी चने जो आते हैं ना काले वाले, वो 25 ग्राम आपको रात को भिगोना है और सुबह आपको खाली पेट लेना है। इससे डायबिटीज की व्याधि दूर होगी। और अगर आप समान मात्रा में जोर चने की आटे की रोटी बना करके खाते हैं तो काफी राहत मिलेगी आपको डायबिटीज में। गेहूं की रोटी की बजाय आप जौ और चने की रोटी खाइएगा, बहुत फायदा मिलेगा, डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। अगर पथरी की समस्या है, मूत्राशय या फिर गुर्दे में पथरी है, तो ऐसी स्थिति में रात को भीगे हुए चने की दाल सुबह सुबह शहद मिला करके खाइएगा। मूत्राशय या गुर्दे में पथरी है तो ऐसी स्थिति में रात को आप चने की दाल भिगो दीजिए और सुबह सुबह इस दाल के अंदर शहद मिला करके आप खाइएगा, काफी राहत मिलेगी। जुकाम है तो गर्म चने रुमाल या किसी साफ कपड़े में बांध करके सूंघिएगा, जुकाम ठीक हो जाएगा। अगर जुकाम है तो गर्म चने रुमाल या किसी साफ कपड़े में बांध कर पोटली बना करके सूंघिएगा तो जुकाम की समस्या ठीक हो जाएगी। पित्ती निकलती हो तो काली मिर्च को चने के बेसन के लड्डू में मिला करके खाइएगा, पित्ती में राहत मिल जाएगी, पित्ती बैठ जाएगी। अगर पित्ती निकल रही है तो काली मिर्च को चने के बेसन के लड्डू में मिलाकर खाइएगा, इससे पित्ती में राहत मिलेगी। हिचकी आती हो तो चने के पौधे के सूखे पत्ते को चिल्म में रख करके धूम्रपान करने से शीत के कारण आने वाली हिचकी तथा आमाशय की जो विकृति है ना, उसमें काफी राहत मिलेगी। अगर हिचकी आती है तो चने के पौधे के सूखे पत्तों को चिल्म में रख करके आप उसका धुआं सूंघिए। धूम्रपान ये नहीं कि आप बीड़ी सिगरेट पीवे, ठीक है, वो नहीं। चने के पौधे के सूखे पत्तों को चिल्म में रख करके आप इसको सूंघिएगा। इससे शीत के कारण आने वाली हिचकी और आमाशय की विकृति में राहत मिलेगी। और लास्ट उपाय भी बहुत ही सुंदर है, बवासीर की समस्या है तो गरम गरम चनों का सेवन रोज आप करिएगा, भुने हुए चनों का सेवन करिएगा, ठीक है। इससे प्रारंभिक स्थिति में ही खूनी बवासीर ठीक हो जाएगा। तो बवासीर की समस्या है तो गरम गरम भुने चनों का सेवन नियमित रूप से करिएगा, कुछ दिनों तक करते रहने से प्रारंभिक स्थिति का खूनी बवासीर ठीक हो जाएगा। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही सुंदर है और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। आइए अब आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर बहुत ही सुंदर है, आपको 3 से अधिक बार नहीं सुनाना है और 2 से कम बार नहीं बोलना है। सुनिएगा आप ध्यान से। काकी काटे काची काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, पाकी काकड़ी काटे काका, काटे काकी काची काकड़ी। ये आपको 3 से अधिक बार नहीं सुनाना है और 2 से कम बार नहीं बोलना है, ठीक है। तो टंग ट्विस्टर सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के टंग ट्विस्टर का जवाब मतलब आप बोल के सुना सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। तो अभी तो एक गीत सुनेंगे, उसके बाद खुशनुमा जीवन में बात करेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
1: नमस्ते। जय माता दी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि। एक मिनट, ये हेडफोन में आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिएगा।
1: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि, जय श्री हरि।
1: आईस।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे मित्रों को, भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं
0: जी।
1: और अब विषय के बारे में तो क्या मैं बताऊं।
0: हाँ जी, विषय में दोहरा रही हूँ, एक मिनट। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही अच्छा है, तो आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है। दोनों ही सुना रही हूँ। विषय है, जिसे सब्र आ जाता है फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आए जाए, जिए मरे, अमीरी गरीबी, वो सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। और आज का टंग ट्विस्टर है, काकी काटे काची काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, पाकी काकड़ी काटे काका, काटे काकी काची काकड़ी। यह आपको तीन से ज्यादा बार नहीं सुनाना है और दो से कम बार नहीं बोलना है।
1: हाँ, तो मैं सब्र के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, सब्र का फल कहते हैं ना कि मीठा होता है
0: जी।
1: और मैंने ये आज का जो विषय है ना, ये सब कुछ मैंने कहा हुआ है कि अपने साथ जो घटता है, मगर उसको जो नजर अंदाज करते हुए आगे बढ़ता है ना, वो मतलब विधाता का मतलब सच्चा पुत्र, मतलब सपुत्र हो जाता है, क्योंकि भगवान को भी वो लोग प्यारे होते हैं
0: जी।
1: इतना कुछ कहने के बाद भी उन लोगों को क्षमा कर देता है
0: जी।
1: और देखिए, इसमें धन दौलत वगैरह, ये रुपया पैसा, अमीरी गरीबी, ये कुछ काम का नहीं है। देखिए, वैसे जो सच्चा संत होगा, ये इन चीजों से परे होता है ना, वही सच्चा संत होता है। और सच्चा संत भगवान के करीब होता है। सिंपल सा उदाहरण देता
0: जी।
1: इन चीजों से परे होके जो मतलब इन चीजों को छोड़ देता है, वो सन्यासी है। क्योंकि लोग अब बेटों के लिए क्या कुछ करते हैं, मगर देखिए, वैसे तो कहे तो ये सब कुछ कि वो मेरा वो कुछ नहीं है। आप कैसे आए और कैसे जाने वाले, आपको सबको पता है, सबको पता है ना
0: जी,
1: कि अपन दुनिया में इंसान कैसे आया है और कैसे जाने वाला, मतलब खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाने वाला। तो फिर क्यों इतना लोभ, क्यों इतना अहंकार, क्यों इतना क्रोध
0: जी।
1: अगर इंसान इन सब चीजों को छोड़ के अगर शब्द रखे तो वो सच्चा सन्यासी है, अन्यथा इस तरह पे कोई सन्यासी नहीं है। वो मतलब सबसे परे, मतलब सबसे ऊपर पहुंच जाए भगवान के नीचे, फिर उसका दर्जा है। सही बोल रहा हूँ
0: जी।
1: हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इन चीजों से, क्योंकि रुपया पैसा है, आज है और कल नहीं है। मैं दूसरों की जैसे जगह ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि धन मतलब पैसा अपने हाथ का मेल है, वो तो नहीं। पैसा तो आता जाता रहता है, आता है, खर्च होता है, मगर जो इन चीजों से प्यार नहीं करता, इन चीजों से मोह नहीं करता, ये बेटा मेरा है, वो बेटी मेरी है, वो है, वो है, इसमें घर है मेरे, इन चीजों से जो परे, मतलब इन चीजों को छोड़ देता है, इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे सकता है, वही इंसान जब सब्र रख पाता है और सब्र का फल मीठा होता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा। और ये फल इतना मीठा है कि ना तो डायबिटीज होगी और ना कुछ होगी, फायदे ही हो गए, नुकसान कुछ नहीं।
0: ठीक है। हाँ जी,
1: बस यही कहना चाहूंगा
0: जी। चलिए,
1: आज तो हमारे इधर वोटिंग है
0: जी,
1: नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं
0: जी। जी बिल्कुल।
1: बस ये शब्द का फल, ऐसे ही मैं वोटिंग में भी मैं उतरा हूँ, जिनके लिए बिल्डिंग कर रहा हूँ उनके लिए बस ये विषय ही काफी है।
0: ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई।
1: जय माता दी।
0: हाँ जी, जय श्री हरि। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। हेलो
1: हेलो शबन जी।
0: हाँ जी कंचन भाई, नमस्ते। हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
1: हाँ, 10 पॉइंट है हमारे पास जो रिचार्ज।
0: अच्छा,
1: बैटरी का
0: जी।
1: तो ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, अभी घर निकलने वाला हूँ। सुरेश भाई की बात सुनी
0: जी।
1: और क्या है विषय तो बता दीजिए
0: जी। विषय है जिसे सब्र आ जाता है फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आए जाए, जिए मरे, अमीरी गरीबी, वो सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। क्या कहेंगे आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सब्र जो है ना, वो एक बार वो पता चल जाता है कि भाई ये सब कुछ काम का ही नहीं है, ठीक
0: जी।
1: तो इसको कोई मोहर नहीं रह जाते और बिल्कुल सादगी से जीवन जीता है। भगवान ने जो दिया है वो इसमें ही निभाव करना है। कई कई लोग क्या करते हैं कि काफी धन इकट्ठा करते हैं और इसमें घर पे ध्यान नहीं देते और करते हैं और सब बाद में नष्ट हो जाते।
0: जी जी,
1: ये नहीं रखना है, ऐसा मोह नहीं। अर्थ उपार्जन करना है लेकिन जरूरी आवश्यकता और बाकी का भगवान का पूजन करना है, नाम लेना, ये ही आगे आने वाला।
0: बिल्कुल
1: ठीक है। और
0: हाँ जी,
1: सम सिस्टम तो मैंने सुना है लेकिन अभी घर पे जाके कोशिश करूंगा फिर।
0: अच्छा,
1: जो ये करके बैटरी चार्जिंग करके इस बात।
0: ठीक है कंचन भाई, बहुत बहुत आभार आपका। ये थे कंचन भाई मंडाली से और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना। आशियाना में आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही अच्छा है, तो आज का विषय भी बहुत अच्छा है। जिसे सब्र आ जाता है फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आए जाए, जिए मरे, अमीरी गरीबी, वो सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। हेलो
1: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम शांत सुरेश भाई बोलता हूँ जताना से।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सुरेश भाई, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
1: बस हम भी अच्छे हैं, अब तो घर पे बैठे हैं, आराम से कार्यक्रम सुन रहे हैं, क्योंकि आज जो अमर दीदी हमारे अमर की दुकान बंद रहती है।
0: अच्छा,
1: तो छुट्टी रहती है आज के दिन, क्योंकि वो हमारे जो साइड भी है उसको आज बंद रखना पड़ता है अमर के दिन। तो मैं घर पे बैठा हूँ और काम कर रहा हूँ, राम देवी का कई सारे मेरे पास काम पड़ा है।
0: जी जी,
1: रामदेव का वागा भी बना रहा हूँ, जगाओ बना रहा हूँ, लेजा भी बना रहा हूँ, बैठे बैठे आज भी काम करना है पूरे दिन मेरे।
0: क्या बात है, आप तो हर साल बनाते हैं, बहुत अच्छा है।
1: हाँ हर साल, लेकिन ये सावन महीना में मुझे मेरे पूरा महीना भगवान का काम में जाता है।
0: अच्छा,
1: रात को मैं दुकान पे, दिन में दुकान पे, रात को घर पे मैं काम करता हूँ। ये
0: ओहो, रात में आप ये रामदेव पीर जी के वागा रात में बनाते हैं?
1: हाँ वो काम मेरा कर दीदी, थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके मैं रात में पूरा करता हूँ, क्योंकि दिन में तो दुकान का काम करना पड़ता है, रात को इधर करना पड़ता है।
0: जी,
1: 12 बजे तक दुकान पे इधर काम रात को करता हूँ, 9 से 12 बजे तक।
0: जी,
1: और आज छुट्टी है तो आज पूरे दिन काम करेंगे और जितना काम है आज मेरा पूरा हो जाएगा।
0: जी,
1: तो चलो अच्छा है, आज बैठा हूँ मैं। और पहले तो मैं टंकेस्टर सुना दूँ आपको, बाद में विषय में आपको बता दू दीदी।
0: हाँ जी,
1: क्योंकि टंकेस्टर बहुत थोड़ा सा है,
0: आज टंग ट्विस्टर जी जी जी आपका ही दिया हुआ है।
1: मैं बोलता हूँ, काकी काटे काकी काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, पाकी काकड़ी काटे काका, काटे काकी काकी काकड़ी, काकी काटे काकी काकी काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, पाकी काकड़ी काटे काका, काटे काकी काकी काकड़ी, काकी काटे काकी काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, पाकी काकड़ी काटे काका, काटे काकी काकी पाकी काकड़ी।
0: फिर भी अच्छी कोशिश की आपने, देखे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और टंग ट्विस्टर तो यही है ना, बोलना ही चाहिए भले अटके या फटके।
1: शब्द में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाए लेकिन बोलना तो जरूरी है।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: चलो फिर भी मैंने कोशिश तो की है, लेकिन आज विषय में बात बताऊं दीदी, तो विषय भी बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि आप मेरे पास फर्क आ गया है,
2: जी मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है
0: जी,
2: धन दौलत है सभी कुछ है, मेरे कोई मेरे संबंध किसी भी मेरी कोई जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी आए दिए मरे हमारे क्या लेना देना, ऐसा ही लोग बैठे हैं दीदी अभी है ऐसे ही लोग। लेकिन उसको दीदी ये पता नहीं कि भाई फिर भी इतना सब कुछ है फिर भी आपको जरूरत तो जरूर पड़ेगी
0: जी,
2: ऐसा नहीं होता है कोई मान कोई इनसे अभिमान से बोलता है कोई ऐसे बोलता है तो ऐसा तो नहीं है भाई, मेरे को मेरे सदन की भी जरूरत नहीं है, मेरे कोई ऐसा कर दे मेरे तो जिए मरे मेरे क्या लेना देना, ऐसा नहीं करना है दीदी, ऐसा बोलना भी नहीं है क्योंकि हर सब कुछ आपके पास है फिर भी आपको लास्ट में भी जरूरत तो पड़ती है दीदी
0: जी। सुरेश भाई ये है ना, ये दो विषय को टच करता है, इसमें नेगेटिव बातें भी है तो पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये कि मतलब एक हमारी जो आध्यात्मिक स्थिति ऐसी होती है कि फिर मान अपमान निंदा स्तुति

0: से कोई भी चला जाता है तो आपको हम बोलते हैं कि चलो इससे आत्मा को प्रभु आपको शांत दीजिए, वो भी सही है
1: जी,
0: ये भी हम बोल सकते हैं
1: जी,
0: तो
1: हाँ, बाकी आपका कहना सही है कि थोड़ा सा पैसा आना ही इंसान को अभिमान आ जाता है, तो बस फिर वो उसको ऐसा लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है।
0: ऐसा तो है नहीं दीदी, लास्ट में मैंने बताया कि लास्ट में चार लोग की तो जरूरत पड़ती ही है।
1: सही बात है,
0: मैं बताऊँ हमारे गाँव में दीदी कैसे लोग थे, ऐसा ही बोलते थे जैसे आपने बताया वैसे ही बोलते, लेकिन लास्ट में उसको ऐसा हुआ दीदी की जब इसकी माँ का देहांत हो गया तो घर घर जाना पड़ा
1: जी,
0: हाँ। और बोलना पड़ा कि भाई सब हो आप हमारे घर से आइए, कोई आए नहीं है घर से हमारे, इसकी माँ को कौन ले जाएगा संस्थान तक
1: जी।
0: तो लास्ट में उसको आना पड़ा, सबके घर जाना पड़ा था, वो दिन उसने ऐसा लगा कि यार मैंने तो गलत बोल दिया था पहले, तो बोलना ही नहीं चाहिए कि अब मुझे पता चला कि जरूरी सबकी पड़ती है
1: जी,
0: तो ऐसा बोलना ही नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: नमस्ते
1: जी, चलिए बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, बहुत ही सुंदर आपने टंग ट्विस्टर भी सुनाया है, तो विषय को भी स्पष्ट किया है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हो। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, और यहीं पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। जिसे सब्र आ जाता है फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आए जाए, जिए मरे, अमीरी गरीबी वो सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही अच्छा है। काकी काटे काची काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, पाकी काकड़ी काटे काका, काटे काकी काची काकड़ी। यह आपको टंग ट्विस्टर 3 से अधिक बार नहीं सुनाना है, और कम से कम 2 बार तो आपको बोलना ही है। तो बहुत ही सुंदर टंग ट्विस्टर है, आप कोशिश करिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दीपा जी कपासन से जुड़े हैं, वो टंग ट्विस्टर सुनाना चाहते हैं, सुना दीजिए।
2: ओम शांति, जय श्री कृष्णा। काकी काटे काची काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, पाकी काकड़ी काका काटे काका, काटे काकी काची काकड़ी, काकी काटे काची काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, पाकी काकड़ी काटे काका, काटे काकी काची काकड़ी, काकी काटे काची काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, पाकी काकड़ी काटे काका, काटे काकी काची काकड़ी।
1: बहुत सुंदर। तो चलिए दीपा जी के लिए हम ढेर सारी तालियां बजाना चाहेंगे। तो इस तरह आप भी वॉइस मैसेज के द्वारा भी भेज सकते हैं टंग ट्विस्टर, और आप जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जुड़ करके सुनाइएगा। अरे भाई बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप कोशिश करिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपनी ये ज़ुबान की एक्सरसाइज हो जाती है भाई, बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं तो ज़ुबान की भी एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है ना। और थोड़ा सा टंग ट्विस्टर और आप स्पीड से सुनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, है ना। टंग ट्विस्टर का तो नियम ही यही होता है कि फास्ट फास्ट ऐसे स्पीड से सुनाना, स्पेस दे के नहीं सुनाना है। और आज का विषय बहुत ही सुंदर है। क्या बात है, आज के विषय में आपको रुचि नहीं है। वो प्राम अवस्था सभी की नहीं होती है, बिल्कुल ये सही है। लेकिन आप देखिएगा, जैसे संत महात्माएं भी है, आजकल तो संत महात्मा भी 2 तरह के हो गए हैं। घर बार छोड़ देते हैं तो फिर वो गद्दियों के लिए झगड़ा हो जाता है उनका, मैं गादीपति, मैं ये मैं वो, फिर वो अपना आश्रम या भवन जो भी है उसको बनाना और उसके लिए फिर झगड़ा। वो नहीं, आप कितनी बार देखिए प्रवृत्ति मार्ग में घर में रहते हुए भी इंसान कभी कभी उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि बस वो हर चीज़ से उपराम हो जाते हैं, हर चीज़ से वो नष्ट मोहा हो जाते हैं। फिर उनका आप मान दो या अपमान करो, उनको कुछ आप दो मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी स्थिति समान रहती है, ना अप होती ना डाउन होती है। ठीक है भाई, आए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए कोई बात नहीं। किसी भी चीज़ का बुरा नहीं लगाते हैं, किसी भी चीज़ का उलहना नहीं देते, किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं रहती कि ये नहीं किया वो नहीं किया, जो हुआ अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ चलो ठीक है कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति आ जाती है फिर, चाहे अमीरी हो चाहे गरीबी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो,
3: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
1: हाँ जी नमस्ते फिरोज भाई, कैसे हो?
3: देखो अमीरी में भी खुश रहने का और गरीबी में भी खुश रहने का बहन जी, बड़ा अमीरी गरीबी है वो अपने कर्मों ऊपर भी है और कुदरत की देन है वो
1: जी।
3: और वो कुदरत की देन नहीं होती तो मालिक को, ईश्वर भगवान को कोई याद नहीं करता। तो अमीरी गरीबी तो होनी ही चाहिए और हर हाल में खुश रहना चाहिए
1: जी। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई कोई की ऐसी स्थिति आ जाती है कि फिर वो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि दुनिया का क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, खुद का भी पता नहीं चलता।
3: नहीं चलता, वो तो अपनी मस्ती में जीता है वो
1: जी।
3: हाँ वो अपनी मस्ती में जीता, नहीं मालिक के ऊपर आधार रखता है, जो जो रखे मालिक, जो हालत में रखे हम खुश है
1: जी जी जी,
3: उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जी
1: जी। तो और आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
3: वही आध्यात्मिक, देखो आध्यात्मिक इंसान होगा तो उसको अमीरी गरीबी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको।
1: जी
3: जी
1: और आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
3: टंग ट्विस्टर मेरे को तकलीफ हो रही है क्योंकि टंग ट्विस्टर मेरे को जमता नहीं है।
1: अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। वैसे आप बहुत ही अच्छे गीत सुनाते हैं तो टंग ट्विस्टर आपके लिए मुश्किल नहीं है।
3: सही बात है
1: जी, आप कोशिश करेंगे तो अच्छी तरह सुना पाएंगे।
3: जी जी जी,
1: भले आप लिखिएगा, लिख करके सुनाइएगा, ठीक है? कभी भी ट्राई करिएगा। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, आपने भी विषय को स्पष्ट करने की अच्छी कोशिश की है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और आज का विषय बहुत ही अच्छा है, जिसे सब राज आता है फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आए जाए, जिए मरे, अमीरी गरीबी, वो सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि बस उपराम अवस्था, कोई फर्क नहीं, देखते हुए भी नहीं देखना, संसार असार लगता है। वो रहते हैं इसी दुनिया में लेकिन उसके मोह में नहीं जाते, उसके रग कमज़ोर नहीं होती, वो इन बाह्य दुनिया से ऊपर उठ जाता है ना, वो आंतरिक दुनिया में खो जाता है। बाह्य दुनिया उसको जैसे ऐसे लगता है कि बस ये ईश्वर की बनाई हुई है, सब कुछ अच्छी है, न वो किसी से नफरत करता है, न किसी के साथ दुश्मनी रखता है, न उसको अच्छा लगता है न बुरा लगता है। हर परिस्थिति में सम अवस्था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा, जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो होने वाला है वो तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसी शुभ भावना के साथ वो इंसान जीता है। और देखिए तो ऐसी अवस्था भी दो लोगों की होती है। एक तो यह कि बहुत दुख देखे हो, बहुत दुख देखे हो, चारों तरफ से परीक्षाएं आई हो, चारों तरफ से लोगों ने घिराने की कोशिश की हो, तो भी एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जाने दो, अब मरे जिए, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई मेरे काम नहीं आए, किसी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो एक स्थिति हो जाती है। फिर कोई आ रहे जा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मर रहा है जी रहा है, ठीक है। एक स्थिति यह है कि वो ईश्वर को अंदर ही अंदर याद करता है और ईश्वर से इतनी लगन लग जाती है कि फिर ये दुनिया उसे फीकी नजर आती है, तो भी उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि बस फिर दुनिया में कोई है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी बुद्धि में सिर्फ एक है और वो उसी के साथ रहता है, उसी में रमण करता है। तो उनकी भी ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये देखिए दो तरह के विषय है। एक वो हो जाता है, वो है जिनको अहंकार आ जाता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, पहले कुछ नहीं होता, बाद में हाथ में पैसा आ जाता है तो अहंकार दिखाता है, फिर उसको ऐसा लगता है कि मुझे क्या लेना देना, मैं तो अकेला ही काफ़ी हूँ, अपने घर में सब कुछ कर सकता हूँ। वो अहंकार की बात अलग है। इसमें जैसे उपराम अवस्था में भी आपको दो स्थिति रखी है आपके समक्ष की, एक तो दुनिया के दुखों से इतना परेशान हो चुका होता है कि फिर एक दिन एक समय ऐसी स्थिति बन जाती है कि बस बहुत सह लिया, बहुत रो लिया, बहुत कुछ हो गया, अब नहीं, अब कोई आए नहीं आए, बोले नहीं बोले, सब गए भाड़ में, वो स्थिति हो जाती है। एक है कि सबको प्रेम की नज़र से देखते हुए भी अंदर ईश्वर के साथ रहता है और दुनिया को देखते हुए भी दुनिया में नहीं रहता है। कितने ही जनों को आप देखते होंगे कि ऐसी स्थिति भी होती है, ऐसे लोग भी मिलते हैं जो रहते हमारे ही बीच है, बात हमारे ही बीच कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे, खा रहे, पी रहे, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ये खोए खोए है, हमारे साथ रहते हुए भी हमारे साथ नहीं है, ऐसा महसूस होता होगा ना आपको भी। तो कोई कोई ऐसे भी होते हैं तो वो हमारे साथ रहते हुए भी उनको स्मरण किसका है, ईश्वर का, और फिर वो हमारे साथ रहते हुए भी वो हमारे साथ नहीं रहते, मन बुद्धि उनकी उधर ही रहती है, तो इस तरह की स्थिति भी होती है। तो चलिए इस विषय को यही समाप्त करेंगे। अगर आप भी जुड़ना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं तो आज का टंग ट्विस्टर सुना दीजिए। काकी काटे काची काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, पाकी काकड़ी काटे काका काटे काकी काची काकड़ी। तो ये बहुत ही सुंदर टंग ट्विस्टर है जिसको आप कम से कम दो बार तो ज़रूर बोलिएगा। अधिक सुनाओ तो तीन बार, नहीं तो दो बार, ठीक है। और अब यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अभय सिंह जी जयपुर से जुड़ चुके हैं। नमस्ते अभय सिंह जी।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: हाँ जी, नमस्कार नमस्कार।
1: हाँ, सभी मधुबन के श्रोताओं को बहुत प्यार भरा हार्दिक बधाई हो। सभी को राम राम
0: जी। और आप आज का टंग ट्विस्टर बोल के सुनाएंगे?
1: या मैडम।
0: हाँ जी, सुना दीजिए।
1: काकी काटे काती काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, काका काटे काती काकड़ी, काकी काटे काती काकड़ी, काकी काटे पाकी काकड़ी, काका काटे काती काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, काकी काटे काती काकड़ी। गलत हो गया।
0: कोई बात नहीं, मैं बोल के सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। काकी काटे काची काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, पाकी काकड़ी काटे काका, काटे काकी काची काकड़ी। चलिए, फिर भी आपने अच्छी कोशिश की है, आपके लिए ढेर सारी तालियां और बहुत बहुत आभार। आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी मैडम, सब्जेक्ट के बारे में तो जो
0: सब्जेक्ट तो पूरा हो गया, रेसिपी कुछ देना चाहे तो दीजिए। हाँ जी, रेसिपी में कुछ आप देना चाहे, आप क्या पसंद करते हैं खाने में, आपको क्या पसंद है
1: खाने में? मैडम जी, जो बैंगन का भुर्ता होता है बहुत स्वादिष्ट होता है।
0: अच्छा, तो चलिए सिखा दीजिए आप। सात्विक
1: बैंगन, बैंगन को जो मिडिल साइज का हो
0: जी,
1: गोल वाला बैंगन
0: जी,
1: उसको जो अपने लकड़ी वाली आग होती है ना मैडम जी।
0: हाँ जी,
1: लकड़ी जलने के बाद में जो
0: कोयले पड़ते हैं,
1: कोयले वाली तपत वाला जो आग होता है
0: जी,
1: उसके अंदर उसको बाहर करके आग को रख दो और उसको धीरे धीरे घुमाते रहो
0: बैंगन को।
1: जी मैडम जी
0: जी,
1: फिर जैसे वो घुमाते घुमाते जो उसमें पानी की मात्रा है वो कम हो जाएगी, तब वो हल्का उसमें जो जैसे वृद्ध आदमी की जो चमड़ी में झुरिया आ जाती है ना मैडम जी, इस टाइप थोड़ा झुरियों में आ जाएगा
0: जी, वो छाल एकदम मुरझाई मुरझाई हो जाएगी, सिक जाएगी,
1: बिल्कुल मुरझाया जैसा लगेगा और थोड़ा काला काला भी हो जाएगा
0: जी।
1: तब उसको समझो कि वो अब वो पक करके तैयार हो गया है, तो उसको आग से हटा ले
0: जी,
1: और उसके बाद में उसको थोड़ा समय के लिए ठंडा होने के लिए ठंडे पानी के अंदर रख दें
0: जी।
1: जैसे वो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो उसका ऊपर का जो छिलका होता है मैडम जी, वो छिलके को धीरे धीरे हटा लें
0: जी।
1: के बाद में उसको जो तलपट्टा और लोडी होता है ना मैडम जी,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: उसके ऊपर उसको रखो और उसके छोटे छोटे पीस बना लो, और जो मसाला है वो नमक मिर्च, साथ में थोड़ा हरा धनिया भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं
0: जी,
1: और कोई जो गरम मसाला पसंद करता है तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं
0: जी,
1: लेकिन गरम मसाला बहुत कम लाइक करते हैं, जो करता है वो डाल सकता है थोड़ा उसके अंदर गरम मसाला की मात्रा
0: जी,
1: और उसके बाद में उसकी लहसुन डाल करके उसकी पिसाई कर दे मैडम।
0: हम क्या सात्विक बनाते हैं भोजन
1: जी? जी मैडम जी, हाँ, सात्विक में लहसुन नहीं डलेगा मैडम जी।
0: जी, तो
1: लहसुन को हटाने से वो पूर्ण सात्विक ही बन जाएगा
0: जी,
1: और कोई ऐसी चीज उसमें है नहीं
0: जी, जी, जी,
1: डालना भी नहीं है
0: जी। तो चलिए,
1: उसके बाद में हाँ, उसमें पिसाई होने के बाद में आप उसको दही के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लस्सी के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं मैडम जी, बहुत स्वादिष्ट और जायकेदार बनता है।
0: जी जी, चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका, आपने अच्छी सी रेसिपी सिखा दी है, इसके लिए तालियां बजाना चाहिए।
1: राधे राधे मैडम
0: जी, राधे राधे। तो ये थे अभय सिंह जी जयपुर से, बहुत ही सुंदर आपने रेसिपी सीखी है, इसको मैं फटाफट दोहरा देती हूँ। देखिए, आपको बैंगन का भरता बनाना है तो आपको मीडियम साइज के बैंगन लेना है, गोल वाले आते ना भट्टा बैंगन, वो थोड़े से मोटे मोटे होते हैं, वो वाले बैंगन लाइएगा, धुलाई करिएगा, धुलाई करने के बाद आप आग में इसको सेकिएगा। अगर लकड़ी के कोयले पड़ते और उसमें सेकना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, चूल्हे पर तो बहुत इसका स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन आजकल चूल्हा कहाँ है, कहीं कहीं पर गाँवों में चूल्हा देखने को मिलता है, बाकी चूल्हा नहीं है, तो फिर आप गैस पर सेकिए छलना रख के। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी मदन भाई, नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते
0: जी मदन भाई, आप टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
2: नहीं आएगा, कौन सा अच्छा? है
0: हाँ, हम अभी दोहरा देते हैं। काकी काटे काची काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, पाकी काकड़ी काटे काका, काटे काकी काची काकड़ी। ठीक है मदन भाई, विषय तो समाप्त हो चुका है, रेसिपी भी पूरी दी होने दी को आ रही है, और सुनाइए कैसे हो आप?
2: बढ़िया हूँ दीदी जी, बढ़िया हूँ, और बस कार्य कर रहे हैं।
0: अच्छा।
2: और बस माहौल थोड़ा गर्मी जैसा है, और बादल की मतलब आज यहाँ सोमवार पूरा हो रहा है, और आज मेले लगेंगे सोमनाथ का, हमारे घर के पीछे ही है, और बस
0: सावन पूरा हो रहा है, सोमवार नहीं सावन पूरा हो रहा है।
2: हाँ मतलब गुजरात के अंदर वैसे तो सावन महीना पूरा हो गया है।
0: हाँ जी,
2: भाद्रवा भी
0: आज अमावस्या है, आज लास्ट दिन है तो
2: जी। हाँ,
0: सावन तो हो गया, भादरवा तो, भादरवा के 15 दिन हो गए
2: जी।
0: हाँ, नहीं गुजरात में तो सावन चल रहा है ना, गुजरात में तो अब आपके भादरवा लगेगा कल से।
2: हाँ यहाँ गुजरात में अब लगेगा, अपना तो आधा हो गया पूरा।
0: हाँ राजस्थान में तो भादरवा आधा हो गया, गुजरात में सावन पूरा हुआ है। हाँ जी ठीक है, और रेडियो चल रहा है?
2: हाँ जी अच्छा चल रहा है।
0: चलिए,
2: नहीं रेडियो नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, नो नो। कल
0: ठीक है,
2: सुबह भी लगाया था, नहीं वही बज रहा है।
0: अच्छा,
2: मतलब मधुबनी बज रहा है, मतलब वो दूसरा बज रहा है अपना, वही गाने और बाबे के सब बज।
0: ठीक है मदन भाई, तो अभी आप समय भी बहुत इशारा कर रहा है, बहुत बहुत आभार, आप सुनिएगा कल।
2: समय को नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी जी जी, तो ये थे मदन भाई मेहसाना से, और आपको मैं बैंगन का भरता सिखा रही थी, अभय सिंह जी सिखा रहे थे, जिसको मैं दोहरा रही हूँ कि आप अगर चूल्हा नहीं है तो गैस पर छलना रख के छलने में आप बैंगन सेक दीजिए। ठीक है, सेकने के बाद ये जब सीखेंगे ना तो ये थोड़े से इसके छाल है वो एकदम मुरझाई मुरझाई हो जाएगी, आप इनको निकाल दीजिए। जल्दी से बनाना चाहते हैं तो फिर इन बैंगन को आप पानी में डाल दीजिए ताकि ठंडे जल्दी हो जाए, और कोई जल्दबाजी नहीं है तो आराम से रहने दीजिए, फिर आपको लगे कि हाँ ठंडे हो गए तो आप छिलके निकाल दीजिए, छिलके निकाल करके बैंगन को मैश कर दीजिए। ठीक है, अब आप इधर मसाला तैयार कर लीजिए, हरी मिर्च, अदरक, मूंगफली के दाने, फिर आप ले लीजिए टमाटर, ये सभी सारे मसाले लेने, तो आप हरी मिर्च, अदरक, टमाटर और मूंगफली के दाने के, टमाटर के अलग पेस्ट करिएगा, मूंगफली के दाने और हरी मिर्च, मीठा नीम, हरा धनिया, इन सब की पेस्ट अलग कर दीजिए। ठीक है, और कढ़ाई रखिए गैस पर, तेल डालिएगा, तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई जीरे का तड़का लगाइए, फिर आप हींग डाल लीजिएगा, हींग पाउडर डालने के बाद अब ये पेस्ट डालिएगा, पेस्ट डाल करके अब इसको अच्छी तरह फ्राई होने दीजिए, अब इसमें आप गरम मसाला भी डाल दीजिए, इसमें आप धनिया पाउडर भी डाल दीजिए और नमक स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा, लाल मिर्च, हरी हल्दी पाउडर भी डाल दीजिएगा, और मसाले को अच्छी ये ग्रेवी तैयार कर लीजिए। जब आपको लगे कि ये ग्रेवी तैयार हो गई है तो मैश किए हुए बैंगन इसमें डाल दीजिएगा, डाल करके अच्छी तरह हिला दीजिए, एक दो मिनट पकने दीजिए। पक जाए एक दो मिनट के बाद आप गैस बंद कर दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए। ये बन गया बैंगन का भरता, सात्विक, बहुत ही स्वादिष्ट। आप पूरी के साथ, परोठे के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। बहुत जने तो चावल के साथ भी खाते हैं, अब वो अपनी चॉइस पर छोड़ा है कि आप कैसे खाते हैं। ठीक है, अपने इष्ट देव को भोग लगा करके खाइएगा। और एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
4: जी आई माँ जी।
3: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
4: जी माँ जी आ गई, चलिए।
3: नमस्ते डॉक्टर नी जी।
5: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
3: डॉक्टर नी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
5: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
3: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
5: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
4: जी वो न, न,
3: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
5: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
6: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
0: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं आपको, तो जरूर आप आजमा सकते हैं चने पर। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो जो रेसिपी में आपको बैंगन का भरता सिखाया है अभय सिंह जी ने, जरूर बना करके खाइएगा। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं बोल के सुना रही हूँ। काकी काटे काची काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी काटे काका काटे काकी काची काकड़ी। काकी काटे काची काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी काटे काका काटे काकी काची काकड़ी। काकी काटे काची काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी काटे काका काटे काकी काची काकड़ी। तो मैंने तीन बार बोल के सुनाया है, स्वयं के लिए भी ढेर सारी तालियां। फिर आज का टंग ट्विस्टर सुनाया है सुरेश भाई जोटाना से, दीपा जी कपासन से, और अभय सिंह जी ने भी अच्छी कोशिश की है। तो आप तीनों के लिए भी ढेर सारी तालियां फिर से। और विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, कंचन भाई मंडाली से, सुरेश भाई जोटाना से, फिरोज भाई पालनपुर से, अभय सिंह जी जयपुर से, और मदन भाई तो लास्ट में जुड़े हैं। तो विषय में आप सभी जुड़े, इसके लिए भी ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती भी बहुत ही सुंदर है। संपन्नता जीवन में तब आती है जब जीवन में धन, वैभव, स्वास्थ्य के साथ आध्यात्मिकता अर्थात स्वयं का ज्ञान हो। अब मैं आपको प्यारा सा भजन सुनाऊंगी हनुमान जी पर, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, क्या है कल बोलो? अंताक्षरी। तो कल की थीम रहेगी रामदेव पीर जी पर, और मतलब बाबा रामदेव जी के और गणपति बापा के भजन, ठीक है? यही, इसके अलावा दूसरे नहीं, क्योंकि दोनों ही त्योहार आ रहे हैं। तो इन दोनों ही त्योहारों की, तो गणपति के भजन आप सुना सकते हैं, रामदेव पीर के भजन आप सुना सकते हैं, ठीक है? हिंदी, राजस्थानी, गुजराती भाषा में। और अभी मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगी, तो मिलेंगे कल। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: दोस्तों, हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं होता है और हर एक व्यक्ति अलग होता है। अलग अलग विचार, अलग अलग संकल्प, अलग अलग जीवन, लेकिन ये सभी चीजों से एक गुलदस्ता बन जाता है और एक ना मिले दूसरे से। हर किसी की विशेषताएं अलग होती है, तभी वो इंसान को यूनिक बनाते हैं। दोस्तों, जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। कोई छोटी उम्र में ही बुजुर्ग हो जाते हैं और जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो उस उम्र में भी बच्चे बन करके रह जाते हैं, यानी कि मन से वो बहुत ही उमंग उत्साह से रहते हैं। तो ये भी एक जीवन का साधना है और इसे कहते हैं जीना इसी का नाम है। चलिए दोस्तों, आज स्वागत करते हैं आदरणीय राजयोगी राम श्लोक भाई जी को। जैसे आप सभी को पता है, जीना इसी का नाम है, इस कार्यक्रम में हम योगियों के साथ बातचीत करते हैं, उनकी जीवन की यात्रा को हम जानते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ है ब्रह्म कुमारी मुख्यालय के एक वरिष्ठ राजयोगी आदरणीय राम श्लोक भाई जी। भाई साहब, आपको जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। ओम शांति
0: जी। भाई जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो लौकिक जीवन है, आप कब और कहाँ जन्मे थे, उस समय का माहौल क्या था, आपकी जो लौकिक परिवार है उसके बारे में थोड़ा हमें परिचय दें।
1: बहुत अच्छा और खुशी की बात है। जीवन जीने की कला की सब्जेक्ट है जिसको सभी की अभी जरूरत है। तो हमारा शरीर का अभी तो स्पिरिचुअलिटी में है, इसलिए आत्मा और शरीर दोनों के साथ हम बात करते हैं, जिसको जीवात्मा कहते हैं। तो शरीर का नाम बीके डॉक्टर राज ऋषि राम श्लोक भाई। हमारा जन्म झारखंड में हुआ, हजारीबाग। झारखंड पहले बिहार में था, लेकिन झारखंड हजारीबाग, वहाँ से वहीं हम पढ़े। हम तो राजपूत फैमिली से हैं, हमारा नाम पूरा राम श्लोक सिंह। तो वहाँ हमारे परिवार से सारे बहुत रॉयल फैमिली में अपना खेती बाड़ी और ये सब चीज़ों को, कई गाँव में अपना रियासत था। ठाकुर ठाकुर के नाम से जानते हैं कि राजपूतों ठाकुरों की एक अपनी मुस्तैदी होती है। तो वहीं हम थे और वहाँ से फिर कमाख्या नारायण सिंह का आर्यन स्कूल में हम वहाँ से पढ़ाई किए 7 तक। उसके बाद हम धनबाद गोमो में से हायर एजुकेशन किए और वहाँ से रांची यूनिवर्सिटी से हम ISC का डिग्री पास करके फिर हमने सोचा कि सोशल सेवा किया जाए। सबके दोनों प्रकार का है कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी, धन दौलत के, हजारों चीज़ों के, गाय बैल बस हर चीज जो लौकिकता में होती है से संपन्न थे।
0: तो आप कितने भाई बहन थे?
1: हम लौकिक में 3 थे।
0: अच्छा।
1: हम सबसे छोटे, हमारे एक बड़े भाई थे और बड़ी बहन थी, लेकिन हम सोचते थे उनका तो मैरिज ये सब सारा हो गया और हमारा अधिक ध्यान पढ़ाई में रहता था।
0: अच्छा।
1: लेकिन हमारे सब ज्वाइंट फैमिली था, एक साथ 10-15-20 बच्चे एक साथ थे। हमारे फादर 5 भाई थे
0: जी,
1: सब ज्वाइंट एक ही साथ रहते थे। पहले ज्वाइंट फैमिली होता था तो उसमें रहना खाना पीना सारा एक साथ होता था, खेती बाड़ी सब चीज़ें। फिर हम पढ़ते पढ़ते पढ़ने में आज तक हम कभी 3rd डिवीज़न नहीं लाए। लाइफ में 1st 2nd ऑलवेज। हम पढ़ते कम थे लेकिन मेमोरी का एक बहुत बड़ा वरदान था। हम भगवान को मानते नहीं थे लेकिन जानते थे कि कोई शक्ति है, कोई पावर है। हनुमान जी को देखकर हम बहुत खुश होते थे। हनुमान जी की इतना ताकत कहाँ है कि एक हाथ से गदा उठाए, पहाड़ उठाए, एक पांव भी उठाए। यहाँ 2 टांग पे खड़े रहने से लोग थक जाते हैं
0: जी।
1: एक टांग में उठा कर कितनी ताकत। तो गांव में गुजरते थे तो हनुमान जी के मंदिर, तो हम वहाँ जाकर कितना टाइम तक तो हम देखते रहते थे, इतनी इसकी शक्ति का। तो हनुमान

0: से बहुत हमको प्रेरणा मिलती थी, पढ़ने के इसका सारा तो कोई है नहीं कि इसका कोई चीज़ मांगे। और तो खेती बाड़ी का भी हमको बहुत अच्छी तरह नॉलेज, कई लोगों के हमको खेत में ले जाते थे अपना अंकल वगैरह, बचपन में हमारे फादर से ही छोड़ दिए थे, इसलिए हम करीब चौथा पाँचवा पढ़ते होंगे उसके बाद, तो सभी फैमिली से पढ़ाई। उसके बाद हम 1968-69 में हमने सोचा कि कौन सा ऐसे कार्य करें, तो लगा मेडिकल करें और फ्री में सबको दवाई देंगे, सब करेंगे, गांव वालों के सेवा करेंगे, सोशल सर्विस। इसीलिए हम फिर अपना एडमिशन 1968-69 में बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में हम वहाँ लिए, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, वहाँ हमारा एडमिशन हुआ। और वहाँ हम चार साल के DHA में डिग्री करके, और उसी समय जब वहाँ पढ़ते थे तो हम हमें एक कोई चीज़ ढूंढने का खोज के, आई वॉन्ट टू रिसर्च, सब चीज़ की हर चीज़ के जानने की जिज्ञासा रहती थी, चाहे राइट हो रॉन्ग हो क्या चीज़, वो बाद में निर्णय करते थे। तो इसी तरह से तो सारा शहर में हम जब आए तो सारा शहर में हम घूमते रहते थे, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस अड्डा हो, या कहाँ कौन क्या कैसे क्या करता है। तो एक दिन एक हमारा दोस्त था, वो हमको मिले और बोला कि अरे भाई कन्याकुमारी से कुछ कन्याएं आई है, वो ज्ञान सुनाती है। तो हम बोले कन्याकुमारी तो साउथ इंडिया में है, है? तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, वहां से आकर के बिहार में ज्ञान सुनावी, इनका इतना ताकत कैसी। तो बोले चलो देखें। तो हम दो तीन दोस्तों के साथ पहुंच गए वहां सेवा केंद्र पे, वहां लिखा था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। हमने उस भाई को ले, हम बोले रे भाई बुद्धू ये कन्याकुमारी थोड़ी है, तो ब्रह्मा कुमारी है। तो उसने बोला कि अरे भैया क्या ब्रह्मा कुमारी कन्या ये सब कन्याएं हैं,
1: अच्छा
0: हाँ ये ज्ञान सुनाती हैं, सरस्वती हैं, कन्याएं सब हैं, इसीलिए। तो हम बोले अच्छा। फिर उसके बाद लोग कोर्स करने के लिए, तो हम थे हमारे साथ दूसरे दोस्त, हमारे साथ हमारे साथी हैं डॉक्टर बनारसी, तो हम लोग दोनों एक ही साथ पढ़ते थे, तो उसके लिए आए। फिर हम तो कहाँ ना रनर थे घूमने वाले, हम तो चले गए वहाँ से नेपाल घूमने के लिए। 5 अगस्त को एडमिशन हुआ था, 15 अगस्त की छुट्टी थी, तो नेपाल हमारे से नज़दीक था मुजफ्फरपुर से रक्सौल सोसर। तो हम एक वीक उधर चले गए, एक वीक हम बोले बनारसी भाई आप जाके कोर्स करो। उसने 7 दिन कोर्स किया। हम जब लौट के आए बोले बनारसी भाई आपने क्या क्या बहनों ने दीदियों ने क्या सुनाया, बोला हमको समझ में नहीं आया। हम बोले अरे क्यों, तुम पढ़ा लिखा है बुद्धू थोड़े है। फिर तो बोला नहीं हमको एक बात समझ में नहीं आया, बताया क्या, बोला शिव शंकर दो हैं। हम सोचने लगे कि शिव शंकर पहले एक थे अभी दो हो गए,
1: अच्छा
0: हाँ। हम बोले कि तो भाई ये कहीं दूसरे देखा, ये शिव शंकर दो कैसे हो गया, बोला मालूम नहीं उन्होंने कहा है। फिर बहुत सारी चीजें, खैर हम तो वेद शास्त्र के ऊपर बहुत स्टडी किया होता, हम 7वां क्लास में जो पढ़ते थे 8वां में, तो वेद शास्त्र गीता रामायण भागवत हर एक चीज को पढ़ करके पूरा कर दिया, और सभी धर्मों में हम जाते रहते थे। मुस्लिम इस्लाम में जाकर के हम नमाज पढ़ना सीखा, पहला कलमा तैयद ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर जब हम हाई स्कूल में गए तो हम क्रिश्चियनिटी क्रिश्चन स्कूल में, हमें बिशप रॉकिस में था, हम चर्च में जाने लगे, तो लोग बोले अरे तुम हिंदू बनेगा क्या, ये है मुसलमान बनेगा क्रिश्चियन बनेगा सब। फिर हम जब कॉलेज में पढ़ते थे हम गुरुद्वारा में रहे 2 साल, वाहेगुरु एक माई जगत भी आए 3 चेले पर, हर धर्मों में सब जगह जाते सबको एक साथ। हम बोले भाई हमें कौन क्या बनेगा वो नहीं, हमको एक इंसान बनना है, इंसान तो बनने दो, बाकी दुनिया तीन इंसान है, इंसानियत नहीं है, लोग हैं। तो हमारे मोटो ही अलग था बचपन से ही, हमारा विचार ही। तो फिर वहाँ से तो उन लोगों ने कोर्स किया, हम कोर्स नहीं, हम डायरेक्ट जा करके जब पिताश्री ब्रह्मा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा जो सुनाते हैं, तो हम बोले पता नहीं हम तो नास्तिक आदमी, हम भगवान को मानते नहीं थे, कोई कुछ होता था तो हम क्वेश्चन आंसर करने लगते थे, लेकिन यहाँ कोई क्या नहीं, हम खुद समझना चाहते थे क्या। तो ब्रह्मा को ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हम बोले ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या पढ़ाई होती है। फिर एक एग्जीबिशन लगा, लोगों ने हमको एग्जीबिशन दिखाया, बोले इसको समझाना है, कौन समझाएगा, तो खुद चुप। हम बोले हम समझा देंगे, तो हम सर समझा करके रखते, लेकिन ब्रह्मा बाबा के देखते थे कौन है, मुझे शायद इनका गुरु होगा क्या, ऐसे ताकि स्टडी नहीं किया था। फिर बहनों ने बताया कि ये शिव बाबा के माध्यम है, निराकार परमात्मा आकर साकार में कैसे करता है तू। फिर वहाँ कोर्स करने के बाद कहीं हमको फिर सुरेश हो जाएगा कि भगवान आता है, भगवान पढ़ाता है, भगवान के ढूंढने के लिए साधु संत ऋषि मुनि कितने वेद शास्त्र गीता रामायण भरा हुआ है, सारा हमारा भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति से बहता है। फिर वहाँ से माउंट आबू में हम आए, संदेशी दादी हमारी टीचर थी, शांतमय दादी और संदेशी दादी, उनके साथ हम आए, और दादा आनंद किशोर यहाँ आए। तो जो गुलजार दादी में उस समय बाबा अव्यक्त उसी समय हुए थे। बाबा अव्यक्त हुए 1969 जनवरी, हम आए ज्ञान में 5
1: अगस्त
0: 1969। अच्छा। तो इसी से हम 70 में तो हम पहले आगे थे, 69 में आखिर उसी समय ये ध्यान रहता था कि हम योग कैसे लगाएं, आंखें बंद करके कैसे लगाएं। तो इसी से हमको को राजयोग मेडिटेशन सीखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम योग में बहुत रुचि रखते थे, फिजिकल योग में हम मास्टर थे। इसीलिए ये स्पिरिचुअल योग है, आध्यात्मिक है आत्मा, फिर वहाँ आत्मा और परमात्मा का लेसन दिया गया। और जब माउंट आबू में आए तो बाबा आए हुए थे, तो बाबा जैसे दृष्टि दिया गुलजार, तो हम ऐसे शरीर से डिटैच हो गए, हमको अनुभव हुआ, हम अनुभव के आधार से चले हैं, ज्ञान सुन के सुना के नहीं, हम अनुभव हैं एक्सपीरियंस, इसलिए हम अनुभवी रथ हैं। तो वहाँ करके
1: तो जैसे आप माउंट आबू आए और आपको इस आध्यात्मिकता की अनुभूति हुई, जैसे कहते हैं कि अध्यात्म में शरीर अलग है आत्मा अलग है, आत्मा चैतन्य है जो इस शरीर को चलाती है, आपने उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया,
0: अनुभव एकदम डिटैच हो गए कि शरीर भले हम बैठे हैं, हम नीचे जमीन में बैठे थे पद्मासन में, लेकिन हमको दृष्टि ले रहे थे, इतना मन बुद्धि जैसे एकाग्र हुआ, जैसे लोग हठ योग में कहते हैं कि वो एकाग्रता में एकाग्र हुआ, तो लगा शरीर से हम डिटैच हो गए हैं, हम कहीं हवा में उड़ रहे, तो फिर हम 2 मिनट तक ऐसा अनुभव करते रहे, तो फिर हम टच किया जमीन को कि हम ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, ऐसे हिलाया देखा तो देखा अलर्ट, फिर हम देह भान में आ गए, बॉडी कॉन्शियस में। जब हम आत्मस्वरूप में थे कि आई एम डिटैच, आई एम ये प्योर एंड पावरफुल सोल, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का संतान हूँ, परमात्मा हमको शक्ति दे रहा है, उस सर्वशक्तिवान के साथ कनेक्ट, जैसे कनेक्ट किया और ये डिटैच, लेकिन फिर हमको लगा कि हम कहीं उड़ तो नहीं रहे, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, फिर हम जमीन को टच किया, फिर जैसे आगे धरती पे, बोले ओहो, तो सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस में तभी हमको अंतर पड़ा, और तब हमारा और जिज्ञासा बढ़ गई और उमंग उत्साह सारा सब चीजें
1: जी। तो जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारे धर्मों का भी स्टडी किया है आपके युवा काल में, और जब राजयोग मेडिटेशन के बारे में आपको पता चला तो आप न सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि अनुभव में आपने विश्वास रखा। तो जब ये पहली बार ये अनुभव किया, आपको लगा कि मैं इतने साल उनसे इतने सारे धर्मों का पढ़ाई कर रहा था और पूजा पाठ भी जो भी हर एक धर्म का होता है, फिर जब अध्यात्म में आए तो वो सभी चीजों का आपको तर्क वितर्क भी समझ में आया होगा?
0: नहीं, तर्क वितर्क नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो हमको पहले से थी, खाली ये था कि हमारा था व्हाट इज ट्रूथ, कि गॉड इज ट्रूथ, इसमें हमको मालूम था, पढ़ाया था बचपन से कि एक सत्य दुनिया में एक परमात्मा सत्य है, बाकी झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार, सब रट रहे हैं, झाल बजा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में, इसलिए हम सभी जगह जाते थे हर धर्मों के व्हाट इज ट्रूथ, और सभी जगह एक ही चीज बताते हैं। जैसे हम मुस्लिम में, इसमें इस्लामिक में गए तो वहाँ भी बोला कि आदम को खुदा मत मानो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम, गॉड इज ए लाइट, वो सातवां आसमान रहने वाला है, या परवरदिगार खुदा सर्व आत्माओं का पिता है। वहाँ भी गए तो वही, सिख रिलीजन में गए तो वहाँ भी यही बताया, एक माई जगत भी आई, 3 चेले परवान, 1 करतार, 1 पंडारी, 1 दीवान, कि एक परमात्मा एक है, निराकार निरंजन निरंकारी, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, वो 3 देवताओं की रचना करता है, 1 करतार, 1 पंडारी, अपना हिंदू रिलीजन में जो है सनातन में है, तो सनातन में यही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वहाँ, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी तीसरे एक अलग शक्ति है जिसको शिव बाबा कहते हैं शिव। क्रिश्चियनिटी में गया तो वो भी बोला कि गॉड इज वन, नो सो जस्टिस क्राइस्ट, क्राइस्ट इज नॉट ए गॉड, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, बट गॉड इज वन। फिर उस हमने बोला गॉड क्यों कहा, व्हाई यू टेल द गॉड, उसमें भी 3 शब्द था, GOD, जी मीन्स जनरेटर, स्थापना करने वाले ब्रह्मा, ओ मीन्स ऑपरेटर टू टेक केयर विष्णु, एंड डी मीन्स डिस्ट्रॉयर विनाश शंकर, बट GOD गॉड, गॉड इज वन लाइट। तो सभी धर्मों का एक ही निचोड़ हमको मिला कि परमात्मा एक है, निराकार, ये पॉइंट ऑफ लाइट, वो ज्योति स्वरूप है, सर्वशक्तिवान है, ही इज नॉट कम इन डेथ एंड बर्थ, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, बाकी जितनी आत्माएं हम लोग देह धारी हैं सब जन्म मरण में आते हैं, चाहे देवी देवता हैं, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, राम लक्ष्मी नारायण, या जो भी धर्म, जितने धर्म पिताएं भी हैं, चाहे जैसिस क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, इब्राहिम हो, सभी हम सब चक्कर में आते रहते हैं, इसलिए सब चक्कर से छूटना चाहते हैं कि आई वांट टू लिबरेशन एंड फ्रूशन, मुक्ति, जीवन मुक्ति, मोक्ष। तो वो चीज हमको यहाँ मिल गया और बस हम बोले हमारी सारी यात्राएं पूरी हुई,
1: सर्च खत्म हो गई।
0: हाँ, मिल गया ना, तभी तो गीत गाते हैं, पाना था जब सारी चीजें सभी जगह एक ही जगह रही।

0: एक ही गीत गाते हैं, दो अट मे गॉड एंड मदर एंड फादर, हर एक जगह एक प्रार्थना, सारा तो एक निराकार का है। तो ये बात हमको बिल्कुल अच्छा लगा। और उसके बाद
1: तो फिर आपको ये ज्ञान समझ में आया और उसमें विश्वास बैठा, फिर आपने घर में भी तो शेयरिंग किए होंगे, फिर उन्होंने आपको सहमति दी थी ये चीजें फॉलो करने के लिए?
0: घर में शेयरिंग बचपन से ही, हम इतना हर चीज में एक्सपर्ट थे, चाहे कुश्ती हो, कराटे हो, खेल हो, हमको क्रिकेट नहीं खेलते थे, हॉकी वाले थे, सारा सब चीजें हमारा ये सब कुछ था ही हम लोग का DNA में, क्या राजपूत फैमिली से थे, वहाँ से होता है कि कंकर करना है, जीत करना है, हमको थोड़े मालूम है कि तो शरीर से जीतना या किसे। तो इसीलिए घर वाले नहीं थे स्टार्टिंग में, अच्छा कहीं करेक्टर में नंबर वन, आज तक कहीं भी कुछ ये सब चीज़ें, आजकल कितना लोग जाके कहीं स्मोकिंग ड्रिंकिंग ड्रग्स ये कितना सारा तमो प्रधानता हो गया, उसमें बड़ी सात्विकता थी वैसे भी। और ये हम लोग गाँव से रहते थे, शहर में आए, शहर में वहाँ के सब वातावरण में, लेकिन किसी चीज़ का हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ। हम संघ के बल संभाल रखते थे, जैसा संघ वैसा रंग, हम संघ में रहते हुए हम डिटैच, कोई स्मोकिंग करने वाला है वो भी हमारा फ्रेंड, कोई झगड़ा करने वाला है वो भी हमारा फ्रेंड, जो शांत वाला है वो भी, वहाँ दोनों हम डिटैच कैसे रखे, उसका बैलेंस, लव का भी बैलेंस तो लव का भी बैलेंस दोनों।
1: So, आपको घर परिवार से कभी कोई विरोध नहीं हुआ?
0: नहीं, बाद में हुआ, जो फिर जब हम लोग चले और जब पक्का धारणाओं चलने लगते, खान पान की शुद्धि तो वहाँ वाले तो सब नन भेज खाते हैं, सब खाते हैं, हमको पहले अच्छा नहीं लगता था, उल्टी हो जाती थी करते थे, लेकिन इसमें और भी स्ट्रांग हो गए। फिर प्यूरिटी के पवित्र काय की पढ़ाई, पवित्रता में होती है ब्रह्मचर्य में, तो इसीलिए लौकिक पढ़ाई भी होते बचपन में, तो भी पवित्रता में काय बुद्धि भटकेगी नहीं, तो जो प्यूरिटी की बात आई ये सब सारा सब चीज़ें, तो फिर उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं आपका शादी करना है नहीं करना है, हम लोग क्यों नहीं शादी करना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहाँ रहते हुए भी घर परिवार में यही एक संस्था है सारे वर्ल्ड में, हमारे अब यहाँ इसमें 1969 से हैं, सारी दुनिया के हम चक्कर लगाए हुए हैं, सारे विश्व में कोई भी कोना हम छोड़ा नहीं, हर साल हम 2 महीने जाते थे लंदन, अमेरिका, जर्मन, जापान, रशिया पूरा, लेकिन हर एक जगह से एक ही चीज़ होता है कि यही हम देखते थे कि यही एक संस्था है जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये प्यूरिटी में खान पान रहन सहन संकल्प आचार विचार मन वचन कर्म, ये चीज़ें जो है ये बड़ी यूनिक लगी और ये हमको बहुत पसंद आया, और ये हमारे जैसे एक लाइफ का एक नेचुरल नेचर बन गया। इसी से अभी हम ना 79 ईयर्स के हैं, लेकिन अभी साइकिलिंग करते हैं, अभी साइकिल से चलाते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए, बीमारी होती नहीं है, लोग बुलाते हैं। जैसे कोई गेस्ट आया, कोई दिन 2-4 दिन रहेगा चला जाएगा, कोई बीमारी वो गेस्ट है और परमानेंट नहीं है, हम उनको परमानेंट रख देते हैं, ये हो गया वो गया, सोच सोच करके डिप्रेशन में इसमें उसमें दुखी हो करके बीमारी को बढ़ाते रहते हैं।
1: तो भाई जी, एक बात तो है कि आपका बचपन से वो चुस्ती फुर्ती बहुत स्ट्रांग है, और जैसे आपने कहा कि आप राजपूत फैमिली से है और शादी इन सभी चीजों का दबाव था, तो फिर समर्पित कैसे हो गए संस्था में आप?
0: समर्पित नहीं, जब हम हमेशा जब हमको कॉलेज में छुट्टियां होती थी तो हम लौकिक घर में बहुत कम जाते थे, हम माउंट आबू आते थे, उसमें पहाड़ियां हरियाली सब, माउंट आबू तो हिल स्टेशन था, तभी कंसेशन टिकट भी मिलता था 42 रुपीज का।
1: अच्छा।
0: हाँ, पहली सारा ट्रेन में ही समय हिल स्टेशन के नाम, बाद में ये सब सारा हुआ ना, तो जब यहाँ आते थे तो यहाँ कोई भी सेवा मिलती थी, तो यहाँ हमारी बड़ी दादी थी, दादी प्रकाशमणि जी, बाबा ब्रह्मा बाबा के बाद दादी प्रकाशमणि, तो वो हमारी बहुत, तो कोई भी कार्य देती थी हम थोड़े में तुरंत करके आ जाते थे, देखती रहती थी, तो दादी ने ऑफर किया कि आपको यहाँ रहना है, तो बोले नहीं दादी, हम अपना पढ़ाई पूरी करके हम डिग्री ले करके आएंगे, वैसे भी विचार भी नहीं आएंगे, इसलिए हम जाते थे पढ़ाई करके एग्जाम दे करके और सब छुट्टियाँ में आ जाते थे। और फिर उसके बाद आए और 1971 से 1972 से हम फिर यहाँ डेडिकेटेड, और दादी जी ने हमको एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में रखा आवास निवास में, नाउ आई एम डी 42 ईयर्स आवास निवास के विदाउट कंप्यूटर, बिना इसका रहते हम 25-30 हज़ार लोगों के एकोमोडेशन कैसे करता था तो गॉड नो, तो भगवान को हम जो नहीं मानने वाले लोग क्यों नहीं मानते हैं, इसका एक कारण है, क्योंकि सभी ढूंढते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है, एवरीबॉडी बिलीव टू गॉड, वर्शिप टू गॉड, प्रे टू गॉड, बट हु इज गॉड, वेल आई डोंट नो, तो फिर

0: का पूजा कर रहे हैं जहां मंदिर है, हम जितने ज्योतिर्लिंग सार स्थान सब धर्मों सब जगह हम इंजॉय करते जाते थे, लेकिन सब वही ढूंढते हैं आई डोंट नो। फिर परमात्मा आके खुद अपना परिचय खुद दे रहा है कि मैं निराकार हूँ ज्योति, मेरा नाम शिव है, सदा शिव, शिव माने कल्याणकारी, उसका अपना शरीर नहीं है ना, इसलिए उसका नाम चेंज नहीं होता है। बाकी हम आत्माएं बर्थ रीबर्थ जन्म मरण के चक्कर में तो हमारा नाम चेंज होता रहता है। ये सारी चीजें केवल फिलॉसफी नहीं, ये प्रैक्टिकल लाइफ है जो आज इतना वर्षों से हम उसको पालन कर रहे हैं।
1: तो फिर आप 72 में समर्पित हो गए, दादी के कहने पर आप आ गए थे, तो घर पे आपको छुट्टी मिल गई थी आसानी से?
0: घर वो तो हमारे पर कहा ना, लोगों को बहन जी किसको कहे या भाई या सुनने वाले श्रोता किसको को आप अच्छे कार्य करेंगे ना तो 10 विघ्न बाधाएं आएंगे और उल्टा काम करेंगे ना तो और भी आपको सहयोगी मिल जाएंगे। कोई स्मोकिंग करने वाला नहीं करेंगे, बोला पंडित बन गया, ड्रिंकिंग नहीं हो जाए, और वो सब आएंगे बोला हाँ चलो एक और ग्राहक बढ़ गया। तो उसी तरह से घर वाले तो थोड़ी छुट्टी दे देंगे। तो ये है, तो जब मैरिज का बात आया तो हमारे जो छोटे कजन ब्रदर्स ये सब थे, एक जॉइंट फैमिली था, तो हमारे अंकल ने कहा कि तुम मैरिज नहीं करोगे तो ये लोग कैसे करेंगे। तो हमने बोला ठीक है हम जा रहे हैं माउंट आबू, हम 5 साल के बाद आएंगे, तब तक आप इंतजार करना 4-5 साल, 4 ईयर के बाद फिर हम आके मैरिज कर लेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो जब हम 4 साल के बाद गए, यहाँ 5 साल तक तो हम कहीं गए नहीं, जैसे अपना योग में तपस्या में ध्यान में सेम हम बिजी थे, सब दुनिया उनको कहते थे आप लोग यहाँ आओ, परिवार वालों को फैमिली वाले को, वो कहते हमारे पास टाइम नहीं हम अपना बिजी हैं। तो हम बोले भाई आपको टाइम नहीं तो हमें भी टाइम नहीं ना, हम भी अपना बिजी हैं ईश्वरीय सेवा में और ये सारी चीज़ों में। तो फिर जब हम 5 साल के बाद गए तो देखे घर में सब बच्चे दौड़ रहे खोद रहे, हम लिए किसके बच्चे हैं, बोले वो छोटे भाई क्या है उस बहन के, हम बोले रे भाई आप लोग तो हमको ठगी कर दिया, हमने कहा था 4 साल इंतजार करो, अब तो 2 साल भी इंतजार नहीं किया, कहते कैसे होगा। सभी की दुनिया भाई अपनी अपनी है, सभी अपना अपना कर्म है धर्म है, कोई किसके लिए रुकता नहीं है, खाली वो सोते वो गाड़ी आगे बढ़े, जैसे आप क्यों में जा रहे हैं, वो सोते ही गाड़ी आगे निकले तो हम साइड से निकाल लें अपना। तो उसी तरह हम जैसे इधर निकले तो हम बोले भाई आपने हमारा बात नहीं माना था, आपके बात हम क्यों सुने, हम भगवान के सुने का आपकी सुने, क्या कि यहाँ पवित्रता ही सच्चरित्रता है, यही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहन जी, जहाँ सभी जो है ना खुशी की बात सुनाते हैं, दुखी का तो बात ही नहीं है, वो तो पूरा हुआ पास्ट इज पास्ट। इसीलिए ये चीजें और ये जीवन यहाँ की और ये सब बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए अभी भी आज तक अभी देख
1: जी। तो भाई जी आप तो जैसे आपने कहा कि 42 साल से आप अकोमोडेशन डिपार्टमेंट का संभालते हैं और 25,000-30,000 लोगों का भी आप बिना कंप्यूटर का अकोमोडेशन करते हैं,
0: कागज में
1: कैसे याद रखते हैं चीजें आप?
0: यही तो लोग बहन हर एक जगह लास्ट में काउंट सा पॉइंट आता है, डॉक्टर भी दवाई दे देगा नहीं ठीक होगा कुछ होगा, तो बोला भाई ऊपर वाले का छोड़ दो परमात्मा के, जब सब ऊपर वाले ही छोड़ते हैं, करण कराउन तो ऊपर वाला, हम तो कार्य करने वाला है, हम तो करण हार है कराउन हार है, तो कैसे मेमोरी हमारी पहले से बहुत फास्ट है अभी भी, जहाँ जहाँ गए जैसे आपको हम पूरे 60 साल के रिकॉर्ड दे देंगे एक एक चीज की, इतना कंप्यूटर तो अभी
1: आपको लगता है ये कि ये ध्यान के कारण आपकी मेमोरी इतनी
0: बहुत शार्प वो तो शार्प हो गया, पहले मेमोरी थी लेकिन थोड़ा जैसे आप कोई पेड़ को काटते हैं तो कुल्हाड़ी लेके काटते, एक भाई एक पेड़ काट रहा है तो और बोला अरे भाई इसका सार्फ करो तेज होगा ना फड़ा कर, तो मेडिटेशन से, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन करना होता है मन की एकाग्रता, एक परमात्मा से जब हम कनेक्ट करते हैं ध्यान में बैठते हैं मन बुद्धि के एकाग्र करते हैं तो उसमें पावर ऑटोमेटिक आ जाती है। अब पहले 2 पावर आपके पास आएगी, 2 शक्तियां, वो है निर्णय शक्ति और परख शक्ति, पावर ऑफ जजमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। 1 सेकंड में आप जज कर लेंगे राइट क्या है रॉन्ग क्या है गलत क्या है सही क्या है, जजमेंट ये पावर। तो इसी से और जैसे इसको कंसंट्रेट करेगा तो 2 शक्ति आती है कैचिंग एंड टचिंग, परमात्मा को टच करेगा कि दिस राइट दिस रॉन्ग, देन हमारा एकाग्रता है। यहाँ मेन मेडिटेशन में कंसंट्रेशन, इसमें कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाती है।
1: और कौन सी ऐसी बातें या सिद्धियां हैं जो आपने इस लंबे साल जैसे एक लगभग 50 वर्ष से भी अधिक समय से आप साधना कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी सिद्धियां आपने प्राप्त की है राजयोग के द्वारा?
0: बहुत सारी सिद्धियां का, जैसे आप एकाग्र करेंगे कंसंट्रेट करेंगे और एक ही संकल्प में कई टाइम तक घंटों तक करेंगे और तपस्या करेंगे। अभी देखिए डेली हम 11 बजे रात को सोते हैं, दो बजे रात को उठ जाते हैं, ढाई बजे या ढाई बजे से पांच बजे एकदम कंसंट्रेट होकर के लगन वो तपस्या में, योग में, ध्यान में, तो उसमें से सारी चीजें, तो उसमें से संकल्पों की सिद्धि हो जाएगी। आपके संकल्प में इतना पल, आज कोई चीज है तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कोई भी चीज देख करके लोग डर हो जाता है, भाई भी जिसको आप पैनिक कहते हैं कि ये बात है पैनिक होगा, घमासान करके उसका सारा पैनिक से कितना लोगों को कोविड हुआ, 50% लोग तो पैनिक से कि किया नहीं, उसको हो गया, थोड़ा खांसी होता था, ये है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये नहीं, तो पैनिक से किसी चीज में उसके घबराने की इसका नहीं है। राजयोग मेडिटेशन में यह है साइलेंस, शांत, वेट एंड सी, देखिए उसके बाद क्या होगा, जो होना होगा वो तो होना ही है, लेकिन हम अपने स्थिति को, अपने मनसा, यहाँ इसलिए माइंड इतना परफेक्ट होता है, फिजिकल तो है, होता ही है, लेकिन फिजिकल पावरफुल माइंड इज प्रेजेंट इन पावरफुल बॉडी। सदा खुशी में रहिए, मेन चीज जो है ना खुशी। खुशी एक ऐसी गुण है जो तीन जगह काम करता है, सभी जगह एक ही जगह काम करेगा, लेकिन खुशी जैसा खजाना नहीं। खुशी में रहिए, बांटिए, दूसरे भी खुश हैं। खुशी जैसा खुराक नहीं, जो खाते हैं खुशी खुशी खुराक, खुशी जैसी जिंदगी, खुशहाली में रहेंगे, आधा बीमारी सब ऑटोमेटिक है। और खुशी के रहने की एक ही जगह है, वो है राजयोग का मेडिटेशन। तभी देखते हैं अभी भी इतना एज में 79 में हम साइकिल चलते हैं, हमारा साइकिल 35 ईयर्स का साइकिल राधि प्रकाश ने दी थी, जंप मार के चलते। अभी दो लोग मिले भाई बहने, बोला आप लगते नहीं इतना ऐसा, हम बोले हम सोचते नहीं कि हम लगते हैं, लोग सोच सोच करके बूढ़े हो जाते हैं और हम सोच सोच के जवान हो रहे हैं। यही राज्यों का मेरी
1: बहुत सुंदर भाई जी, आपने मतलब बात बात में इतनी बातें कह दी कि आपको इस राज्यों की साधना के कारण ये शारीरिक उम्र का असर नहीं होता है,
0: बिल्कुल नहीं,
1: और मन के संकल्प उनसे हल्के रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, और एकाग्रता की शक्ति इतनी है कि आप कोई भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं और याद
0: नहीं, उसका कचिंग और टचिंग उसका पहले आएगा, इसका रिजल्ट क्या क्या है और कैसे हमको पहले टच करता है, क्या हमारा इतना कंसंट्रेट रहता है परमात्मा से, सर्वशक्तिवान से, निराकार से, ज्योति से, जो जिस धर्म वाले जिसको भी मानने चाहे वो अल्लाह कहें गॉड कहें इसका, अगर उनके साथ सही कनेक्शन है और सही पावर आ रहा है, जैसे आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं, स्विच ऑन कर दिया सर, चार्जिंग होकर आप ही उससे पावरफुल हो जाएगा। तो राजयोग मेडिटेशन आल्सो ये चार्जर है कि आत्मा की बैटरी आज डल हो गई है, सारी दुनिया भले तन है, मन है, धन है, दौलत है, बच्चे बीवी, फिर भी लोग पजल है क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है, लोड नहीं ले रहा है। और अगर चार्जर रहेगा आपके पावरफुल चार्जिंग रहेगा तो आप हमेशा एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी खुशहाल खुशहाली में रहेंगे।
1: थैंक यू सो मच भाई जी, आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियोस में आए, और जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम के तहत आप अपनी योगी जीवन की अनुभवों को साझा करते हुए हम सभी को एक उदाहरण दिया कि मेडिटेशन या ध्यान या राजयोग
0: तो सब एक परमात्मा संतान है, आत्मा हम भाई भाई हैं, इसीलिए हमारे जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं आप इस तरह से अपने मनोवृत्ति को शेष बनाइए, सबके लिए आत्मिक भाव रखिए, सबके भाई भाईचारा, तो नेचुरल लगा, नारा लगाने से जरूरत नहीं है कि मैं भाई भाई आत्मा आत्मा भाई भाई फिर पीछे करो लड़ाई, इसकी जरूरत नहीं है। सबकी यही है राज्यों की पढ़ाई, ये सदा खुश रहो, खुशहाली में रहो, बांटिए। बहुत थैंक्स,
1: थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू। दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम जीना इसी का नाम है, और ऐसे ही अनुभवों को फिर सुनेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8।
2: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM, हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे मध्य एक ऐसी एक्सपर्ट हाजिर हैं जो 11 इयर्स यानी कि 11 साल की छोटी उम्र से आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीते आ रहे हैं। लगभग 51 साल से आप राजयोग ध्यान मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप मुंबई से आए हैं, तो मुंबई के सेलिब्रिटीज हो या फिर आम जनता हो या व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो या यूथ हो या बच्चे हो, सबको आप इंस्पायर करती आ रही है इतने वर्षों से। लगभग 40 साल से आप सेंटर पे रहते हुए लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि क्रीना दीदी जी आज हमारे मध्य पधारे हैं जीवन रोशनी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आइए उनसे हम जानेंगे जो बहुत ही जरूरी विषय है आज के समय में कि हम एकाग्र नहीं रह पाते कई बार। तो एकाग्रता क्या है, फोकस्ड कैसे रहें, और कई बार हम चाहते हैं फोकस रहना लेकिन हम अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हैं। तो अटेंशन क्या है, फोकस क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है या दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इस बारे में आज प्रकाश डालेंगे आदरणीय क्रीना दीदी जी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्शी जी।
0: थैंक यू।
1: मुझे बहुत खुशी है कि मैं रेडियो मधुबन के लिए कुछ ना कुछ अपनी छोटी छोटी सेवाएं भी दे सकूं।
0: जी, थैंक यू। तो दीदी, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार सोशल मीडिया का ज़माना भी है, हम इंटरनेट भी यूज़ करते हैं, एआई को लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, कई बार हम सही इस्तेमाल करते हुए भी उससे बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एआई के कारण या इंटरनेट के कारण हम अपने अटेंशन स्पैन घटा रहे हैं और फोकस नहीं रह पा रहे, क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल मीडिया और एआई का उपयोग तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि जितना व्यक्ति इंटेलिजेंट इवन छोटेपन में होता है वो जल्दी से इसको ग्रास्प कर रहा है और बहुत बहुत ही उसका यूज़ कर रहे हैं। अभी कैसे, क्या यूज़ कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, वो तो हर एक की अपनी चॉइस है, पर बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि फोकस या अटेंशन स्पैन जो है वो कोई बाहरी वस्तु के कारण कम हो रहा है ऐसा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन जो उसका प्रभाव अलग अलग हमारे मन और बुद्धि पर पड़ता है, कई बार उनसे हमारे थॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं
0: जी।
1: या व्यक्ति थोड़ा वीक है अपने नेचर में और जितनी भी परिस्थितियां आती है उन सब के प्रभाव में आता जाता है, ही गेट्स अफेक्टेड, तो फिर उसके थॉट लेवल पे बहुत ज्यादा विचार करना शुरू कर देता है। और उसमें भी जरूरी नहीं है कि सब विचार पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव का तो स्पीड ही बहुत ज्यादा होता है, और वेस्टेज जो थॉट्स के होते हैं वो तो खुद को भी पता नहीं पड़ता है, इतना वेस्टेज होता है
0: जी।
1: तो जब इतना सारा क्लाउडेड हो जाता है ना मन और बुद्धि का जो स्पेस है वो, तो उसके कारण वो ज्यादा लंबे समय तक एक बात पर केंद्रित अपने मन बुद्धि को नहीं कर सकता है, क्योंकि पीछे से उसके थॉट्स उसको इंटरफेयर कराते रहते हैं
0: जी,
1: खुद के। तो जितना इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, हर एक बात से उसको कुछ और याद आता है, तो डिस्ट्रैक्ट होता जाता है, तो नेचुरली उसका अटेंशन स्पैन कम होगा
0: जी,
1: फोकस नहीं रहेगा, ऐसा मैं समझती हूँ। क्योंकि बाहर के तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है, लेकिन हमको उसको यूज करना है, जितने भी साइंस ने हमको साधन दिए हैं वो सब यूज करने के लिए दिए हैं
0: जी।
1: तो हम उस पे दोष न डाल के अपने ऊपर अटेंशन ज्यादा दे कि मेरी जो मन की स्थिति है वो ये सब यूज करते समय कैसी है
0: जी,
1: और उस पर अगर हम ध्यान दे करके अपने आप में थोड़ा एनर्जाइज अपने को करेंगे और बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मनुष्य की बुद्धि इतनी वंडरफुल बनी हुई है कि वो जल्दी से बना अपना फोकस तोड़ सके, पर आज ऐसा हो गया है
0: जी। तो ये सब यूज करते हुए हम कैसे मन को एकाग्र रखें, और आपने कहा कि यूज करना भी है, इन्फॉर्मेशंस भी हमें चाहिए क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, तो अगर इन्फॉर्मेशंस या नॉलेज नहीं होगा तो हम शायद कम्पीट नहीं कर पाएंगे
1: जी। सही, प्रैक्टिकल फील्ड में देखो तो ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल उसके बिना जो कई सिस्टम्स है वो आउटडेटेड हो गए हैं. इसलिए जिसकी प्रायोरिटी होती है तो उसको तो हेल्प लेना ही पड़ेगा व्यक्ति को. लेकिन अगर आपको अपना फोकस मेंटेन करना है तो आपको एक प्रैक्टिस तो मिनिमम करनी पड़ेगी
0: जी.
1: कि जैसे फोकस किसको कहा जाता है, डिक्शनरी मीनिंग भी अगर आप देखो ना, जहां पर सारी जो लाइट की रेज है ना वो एक पॉइंट पे मिलती है,
0: एक केंद्र पे,
1: केंद्र बिंदु बोला जाता है उसको
0: जी.
1: उसको फोकस कहते हैं. ऐसे ही अगर हम एक प्रैक्टिस करें कि कोई भी कार्य करने से पहले, भले वो ड्राइविंग हो या अपने लैपटॉप के सामने हो या व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेशन हो, आप जो भी नई परिस्थिति में जा रहे हो उस समय आप हर चीज को वापस समेटते जाओ और वो केंद्र बिंदु पर आप अपने आप को ध्यान केंद्रित करो.
0: ओके तो
1: क्योंकि जैसे टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन आप ऑफ करो तो क्या होता है पता है, पूरी लाइट ऐसे पॉइंट पे आके फिर ब्लैकआउट हो जाता है
0: जी, जी,
1: और जब टीवी चालू भी होता है तो हमको नहीं मालूम पड़ता, लेकिन एक पॉइंट से ही पूरा पिक्चर एनलार्ज होता है. वही सिस्टम हमारे अंदर है. तो क्योंकि हम उसको मिस कर रहे हैं, आजकल कई लोगों को वो टेलीविजन की टेक्निक भी भूल गए
0: जी.
1: उनको लगता है कि हाँ टीवी चालू हो गया, टीवी बंद हो गया. बट ये टेक्निक होती है, कोई भी चीज में कोई जब विजन पे आती है तो वो पॉइंट से इमर्ज होती है
0: जी.
1: ऐसे ही अगर हम प्रैक्टिस करें कि हम पहले जहां से भी निकले वहां से सारे थॉट्स को मर्ज करके एक केंद्र बिंदु पर ला ले, क्या सीखा हमने उससे
0: जी,
1: और फिर थोड़ा उसको डीप साइलेंस में ले जाएं कुछ सेकंड्स के लिए और फिर दूसरी परिस्थिति की ओर जाएं. और ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका अटेंशन स्पैन जरूर बढ़ेगा और आपको जो डिस्ट्रैक्शंस है वो कम महसूस होंगे
0: जी. कई बार जैसे मेडिटेशन में हम बैठते हैं तो वही थॉट्स चलते हैं जो हमने देखा, जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया, तो फिर हम फोकस नहीं रह
1: नहीं कर पाते.
0: तो ये धीरे धीरे होगा करते करते.
1: ये चीज करना जरूरी है जब भी मेडिटेशन में भी बैठो. ये तो हम एक्टिविटी में बैठने की बात कर रहे थे, पर अगर प्योरली मेडिटेशन में भी बैठते हो तो यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग. आपको पहले हर चीज बाहर की मर्ज करके एक पॉइंट पर आपको आ जाना है, भले वो पॉइंट ऑफ लाइट हो, पॉइंट जहां पर सारी रेज मिल गई है, सब कुछ आपकी बाहर की दुनिया समेट ली है, आपको उस पे आना पड़ेगा. और ऐसी पोजीशन पे आप उसमें आएंगे कि वो सेकंड आप सब कुछ भूल जाएंगे.
0: ओके, तो वो क्या टेक्निक से कैसे समेटेंगे अगर मन बार बार बाहर की ओर जा ही रहा है या फिर कुछ और बातें मन में चल रही है, तो क्या बात करेंगे हम मन से?
1: तो जब आप मेडिटेशन में बैठे या एक एक्टिविटी पूरी की तो आप पहले उस एक्टिविटी को रिवाइज करके कि भाई मैंने ये किया, मैं वहां गई थी, मैं वहां मिली, मैंने ये ब्रेकफास्ट खाया, मैंने ये कार्य किया, उस सब को याद करते हुए पूरा जैसे अंदर ले रहे हैं आप कि अब मैं थोड़े समय के लिए इससे भी फ्री हो रही हूँ, ब्रेकफास्ट जो खाया उससे भी फ्री हो रही हूँ, ये भाई से मिली वो उससे भी फ्री हो रही हूँ, ये कार्य कर लिया उससे भी फ्री हो रही हूँ, अब मैं उनमें नहीं हूँ. अपने मन को कहना है, अपने को समझाएं कि अब मैं उन सब में नहीं हूं, मैं सबसे फ्री हो गई हूं.
0: मन को हम ऐसे समझाएं.

0: समझाएं
1: उसको, इसको वो मार्ग दिखाएं। ये सब अभी अगर इसके बारे में सोचोगे तो आप डाइवर्ट हो जाओगे,
0: तो प्रेजेंट में आ जाओगे।
1: हाँ, तो जब प्रेजेंट पल में कैसे आएंगे, जब ये सारे पास्ट की चीजों को आप मर्ज कर देंगे। जैसे समझो कपड़ों का फैलावा है कमरे में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब आपका कोई फ्रेंड आ रहा हो या कोई ऐसा कुछ भी कार्य नेक्स्ट इस कमरे में होने वाला हो, तो आप सारे कपड़े समेट कर घड़ी करके आप कबाट के अंदर रख देंगे ना
0: जी।
1: पहले वो क्लियर करेंगे ना, तभी आप दूसरे को एंटरटेन करेंगे
0: जी
1: में। तो आपको वो विस्तार डिस्टर्ब करेगा
0: जी,
1: और आपको लगेगा कि सामने वाला आएगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा
0: जी।
1: तो आप पहले उसको समेट लेते हैं। ऐसे ही हर बात को, जहां से भी आप आए, जिसके लिए भी आए, एक सेकंड के लिए सब समेट लो कि अब उसका कोई कनेक्शन नहीं है जो मैंने किया पास्ट का, कितना भी इम्पोर्टेंट कार्य क्यों ना हो, पर अब वो नहीं है। अब मैं प्रेजेंट में कहां पर हूं और मुझे इसी के बारे में सोचना है, तो सबसे पहले अंदर सब समेट कर मैं केवल एक पॉइंट हूं
0: जी।
1: हम अपने आप में ही फोकस है। मैं पॉइंट हूं, मैं जहां भी अपनी लाइट को स्प्रेड करूंगी ना, एनर्जी को भेजूंगी, वहां का कार्य होगा
0: जी।
1: तो अगर मैंने उसमें भी 10 जगह एनर्जी भेजी तो फिर कितना वेस्ट हो जाएगा एनर्जी
0: जी,
1: क्योंकि वो दूसरे 9 कार्य तो होने नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: अभी एक ही कार्य होना है, तो फिर वो एक ही कार्य के लिए मुझे एनर्जी भेजनी है, तो एकदम फ्रेश आउटलुक भी मिलता है।
0: ओके, तो कई बार हम अपने आप के साथ भी युद्ध करते रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट में आ जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ, बट हम आ भी नहीं पाते हैं।
1: प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज का, तो आप वापस अपनी उस स्थिति पर आ सकते हो, नामुमकिन नहीं है।
0: तो ये लाइफ के हर सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है,
1: हर सिचुएशन के लिए। और दूसरा, रात को सोने से पहले।
0: ओके,
1: ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। रात को सोने से पहले भी, जैसे आप पैर धुलाई करते हो, हाथ धुलाई करते हो, ब्रश करते हो, बाकी सब चीजें रख देते हो
0: जी,
1: हाँ, फिर यू चेंज योर क्लोथ्स, ये सब आप करते हो ना प्रक्रिया
0: जी।
1: क्यों करते हो? क्योंकि आपको एक माइंडसेट तैयार करना है कि अभी मेरा दिन पूरा हो गया, अब मुझे सोना है। कई लोग प्रेयर करते हैं ताकि उनको लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे ये सबसे अच्छा काम करेगा, कि मेरे को पूरे दिन के जो प्रभाव से मुक्त करेगा, इसलिए वो प्रेयर करते हैं। ग्रैटिट्यूड के लिए कई लोग करते हैं रात को सोने से पहले। ये सब फिजिकल एक्टिविटी है।
0: ओके,
1: वैसे ही आपके सारे दिन की दिनचर्या को आपको अंदर समेट लेना है। ये हम भूल गए हैं, भूली हुई चीज जब वापस करने को कोई बोले तो तकलीफ होती है। बार बार फिजिकल चीजें ही याद आती है
0: जी,
1: और अपने को लगता है कि फिर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेंटली हम करते हैं उसके लिए बहुत कम टाइम चाहिए।
0: फिजिकली
1: जो करते हैं, नहीं, रात को सोने से पहले की बात है। कार्य कर जो फिजिकली करना है उसमें टाइम लगेगा, जैसे ब्रश करना है या हाथ पैर धोने हैं या कपड़े बदलने हैं, लेकिन मेंटली जो आपको एक्टिविटी करनी है सब कुछ समेटने के लिए सुबह से लेकर रात तक, वो तो कुछ सेकंड में भी हो सकता है
0: जी,
1: इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो रात को सोने से पहले भी ये पॉइंट तक वापस समेट लो, ये बहुत जरूरी
0: जी।
1: माना हमेशा समझो कि हर चीज एक स्पार्क से शुरू होती है, हर चीज
0: स्पार्क से शुरू होती है,
1: स्पार्क से शुरू होती है, स्पार्क पे ही एंड होती है। तो हम अपने लिए ये चीज भूल गए।
0: राइट जी। तो बच्चों की बात पूछना चाहूंगी कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो बार बार मन भटकता है, तो वो स्पार्क कैसे लाएं कि हम फिर से वापस पढ़ाई पे आए
1: जी? तो उनको एक सेंटेंस अपने लिए निर्धारित करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को
0: जी,
1: और वो सेंटेंस उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद वापस रिपीट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम अ वेरी स्टूडियस पर्सन
0: जी,
1: या माय इंटेलेक्ट इज रेडी टू ग्रास्प, जो भी सेंटेंस है
0: जी,
1: मेरी बुद्धि पढ़ाई को ग्रहण करने के लिए तैयार है, बस इतना बोलना है मन में। लेकिन ये पढ़ाई के बीच में 10 बार बोलना है
0: जी, पढ़ाई के बीच में
1: 10 बार। उसका इम्प्रेशन बुद्धि पे पड़ता है और बुद्धि उस बात को ग्रास्प करती है।
0: अगर मैं पढ़ाई में सही नहीं हूँ तो भी ओके,
1: तो भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो बुद्धि आपको मदद कर रही है और मन भी साथ दे रहा है कि आप वो अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए भी। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग आपको याद आ रहा है जो आपके लिए और इंटरेस्टिंग है, या समझो आपको बार बार याद आ रहा है पर ये किस काम की पढ़ाई है, किस काम की पढ़ाई है, मैं कर तो रही हूँ, एग्जाम ही देना है बस और कुछ नहीं होगा इसका, जितना उसके लिए नेगेटिव वेस्ट थॉट्स करेंगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट होगा और कहीं और जाएगा। तो आपने जब कहा कि नहीं मेरी बुद्धि अभी ग्रास्प करने के लिए तैयार है, तो वो बुद्धि कैच कर लेते हैं और आपको मदद करती है कि जो कर रहे हैं उसी में ग्रास्पिंग आपका बढ़ जाता है। तो आपकी मन और बुद्धि ही आपका पूरा एनर्जी जो है कहाँ पर आपको ले जाना है, गाइड करना है, डायरेक्ट करना है, वो मदद करती है। लेकिन आज हम यही दो बातों को बहुत जल्दी भूल गए हैं क्योंकि हमारी जो हैबिट्स है, हमारा जो नेचर है, वो ही जो बन गया है वो ही डिस्ट्रैक्ट कर लेता है
0: जी,
1: वो ही डिस्ट्रैक्ट करता है कि नहीं
0: जी। तो जैसे आप हैबिट्स की बात कर रहे हैं और सोमान की बात भी आपने कही कि आप स्टूडियस हो या आप बार बार प्रैक्टिस करो, तो आपकी बुद्धि भी स्वीकार करने लगेगी और शायद यूनिवर्स भी साथ देता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या दिन में कई बार हम ओवरथिंकिंग भी कर लेते हैं, तो ये भी हमें डिस्ट्रैक्ट करती है ओवरथिंकिंग। मान लीजिए किसने कुछ कहा तो हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहेंगे कि हम अपने आप से तो बोल रहे हैं कि हम स्टूडियस हैं लेकिन टीचर ने ये कह दिया कि तुम तो गधे हो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, तो फिर ये ओवरथिंकिंग करने लगता है
1: जी। और ओवरथिंकिंग जो करता है उसका एजुकेशन पे असर भी पड़ता है और उसकी इंटरेस्ट कम हो जाती है
0: जी।
1: तो इतना वीक हम ना बन जाएं जो हम अपने आगे के रास्ते को ही ब्लॉक करें, उसके लिए आपको पहले से ही इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा कि लोग अपना ओपिनियन देते रहेंगे। और मुझे बहुत छोटेपन से ही इसका अनुभव मिलता रहेगा, मेरे पापा, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन, फिर मेरी फ्रेंड, मेरे टीचर, सब अपना अपना ओपिनियन देंगे है ना। और पहले क्या होता है, हम बहुत फ्रेजाइल होते हैं, हम हर एक पे ट्रस्ट रखते हैं, हमको लगता है हर एक मेरे लिए है यू नो, और सबके ओपिनियंस फिर धीरे धीरे घर कर जाते हैं
0: जी।
1: तो उसमें आप अपनी आइडेंटिटी को लूज करने का पूरा चांस अपने आप को दे देते हो
0: जी।
1: भले सब ओपिनियन दे, आपको केवल अपने ऊपर फोकस करके देखना है कि सचमुच ये मेरी गलती है या इस प्रकार से भी चीज की जाती है, या इनका ओपिनियन है पर मुझे अभी भी इस बात का जो मैंने किया उस पर पूरा कॉन्फिडेंस, मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि मैंने जो बोला वो बिल्कुल राइट है, तो चेक करने का। अगर आपको लगे कि नहीं ओपिनियन बेटर है मेरे विचारों से, तो वो ओपिनियन स्वीकार करे और आगे बढ़े। पर हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, समटाइम्स आपका कॉन्फिडेंस भी काम कर जाता है ना। तो इसीलिए आपको बहुत अनबायस्ड रह करके डिसीशंस लेने होंगे। चेक करो क्या मेरी ये मिस्टेक हुई है, मुझे इस मिस्टेक को करेक्ट करना है, मेरे से ये मिस्टेक नहीं हुई है लेकिन सामने वाले का ओपिनियन है, तो मुझे इसी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है। है तो आपकी जीवन
0: जी,
1: है तो आपकी आइडेंटिटी बनाने की बात है ना, तो वो आपको ही डिसीशन अल्टीमेट लेना पड़ेगा
0: जी। तो ये
1: फिर आपका ओवर थिंकिंग नहीं होगा। अगर छोटेपन से ये गाइडेंस दी जाए
0: जी,
1: है ना
0: जी,
1: जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गिर गया तो हम जमीन को ऐसे मारते हैं, कहते देखा इसकी भूल है, इसकी भूल है, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति फिर दूसरों को दोष देने लगता है, वो बच्चा आगे चल के भी
0: जी।
1: लेकिन अगर उसको समझाया जाए कि कोई बात नहीं, देखो तो दूसरी बार इधर ध्यान से चलना तो नहीं होगा, वो भी पॉजिटिवली बोल सकते है ना
0: जी,
1: तो फिर वो उस रीति से समझेगा कि मुझे चलते समय ये ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन अगर हमने कहा अरे तुम गिर गए, अरे बहुत लगा क्या, हाँ चोट लगी, देखो मैं ऐसे कर, तो फिर वो पैम्परिंग से वो ज्यादा वीक हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके है एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए, और फिर वही संस्कार आगे चल करके बच्चा भी प्रदर्शित करता है। तो ओवर थिंकिंग तब होता है जब आपने कुछ रॉन्ग गाइडेंस दे दी और फिर वो उसी रीति से चलता रहा, तो आगे चल के वो लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में हमेशा ओवर थिंक करेगा, क्योंकि वो खुद अपनी एनालिसिस नहीं करता है।
0: जी, तो आजकल हम मल्टीटास्किंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोडक्टिव होता है या इससे हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है?
1: नहीं, मल्टीटास्किंग से कंसंट्रेशन कम होने का कोई मार्जिन वैसे नहीं है, पर अगर आपका ढंग जो है वो हर चीज को अधूरा छोड़ के दूसरे पर जाना, या समझो आपका डेलीगेशन ठीक नहीं है, आपके डिसीशन ठीक नहीं है, तो नेचुरली फिर जो होगा उसके रिपरकेशन में, उसके लिए आपको ओवरथिंकिंग पे ले जा सकता है।
0: मल्टीटास्किंग को आप कैसे देखते हैं? मान लीजिए मैं गाना सुनते सुनते खाना खा रही हूँ, या फिर मैं कुछ और करते हुए अपना ऑफिस का काम कर रही हूँ, वो मल्टीटास्किंग होता है साथ साथ में दो चार चीजें करने में, या फिर कैसे मल्टीटास्किंग करते हुए भी फोकस रह सकता है?
1: द रियल सेंस ऑफ मल्टीटास्किंग माना कि व्यक्ति ऑफिस भी संभाल रहा है, घर के बच्चों का भी देख रहा है, और साथ में कोई सोशल वर्क भी कर रहा है, साथ में कोई डोनेशन का कार्य भी कर रहा है,
0: मतलब बैलेंस करके चल।
1: हाँ, मल्टीटास्किंग वो नहीं है कि मैं गीत सुनते हुए अपना स्टडी कर रही हूँ, दैट इज नॉट कॉल्ड मल्टीटास्किंग। दैट इज योर इंटरेस्ट कि आपको कुछ आवाज चाहिए ऐसी जिससे आप कॉन्सेंट्रेट कर सको, वो अलग बात है। माना आप हॉबी और आपके टास्क को मिक्स कर रहे हैं टू मेक द एटमॉस्फेयर लाइट और व्हाटएवर।
0: जी,
1: है ना, कोई जोर जोर से बोल के पढ़ता है, वो मन में नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि उसको वही ज्यादा बोलना भी चलता है और पढ़ना भी हो रहा है, वॉकिंग भी हो रही है।
0: जी जी,
1: तो ऐसे भी लोग करते हैं, बट दैट इज नॉट मल्टीटास्किंग।
0: ओके,
1: दैट इज मिक्सिंग योर वेज एंड मींस ऑफ डूइंग थिंग्स विद वन एक्टिविटी। बाकी मल्टीटास्किंग माना कि एक व्यक्ति बहुत सारे कार्य बाहर अंदर उस सामाजिक रूप से कर रहा है एंड ही फाइंड्स टाइम,
0: एक टाइम में एक ही चीज कर रहा है, मतलब ऑफिस के टाइम में ऑफिस का काम है।
1: डिपेंड्स, अगर आप एफिशिएंट हो, आप ओवर थिंकिंग में नहीं जा रहे हो, आप इफेक्टिव हो हर कार्य के लिए, तो व्हाई नॉट।
0: ओके,
1: आपके टैलेंट पर है।
0: जी, तो ये चेक करना है कि आप कैसे कर रहे हो।
1: पोटेंशियल तो हर एक में होता है, आप कई बार पोटेंशियल यूज ही नहीं करते, कई बार आपको अवेयरनेस ही नहीं है अपने पोटेंशियल के बारे में।
0: तो कैसे चेक करें कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं?
1: ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती है जब आपको वो अवेयरनेस आती है।
0: ओके,
1: आती है तो उस समय अगर आप अवेयर हो कि इस परिस्थिति ने मेरे पोटेंशियल्स को बाहर निकाले, तो इट इज गुड नो इफ यू कैन एक्नॉलेज। बाकी तो परिस्थितियां लोगों को आती ही है,
0: वो अनुभव
1: फिर अगर, अगर थोड़ी नेगेटिव टाइप की परिस्थिति भी आती है कभी कभी, कभी पॉजिटिव भी आती है, परिस्थिति परिस्थिति है
0: जी,
1: उसमें आपने कैसे अपने पोटेंशियल्स को यूज किया वो आपके ऊपर है।
0: जी, जब मन भारी या दुखी हो तब फोकस को कैसे वापस लाया जाए?
1: जी, मन भारी या दुखी हो तो उस समय पहले तो उसको लाइट करना पड़ता है, लाइट, क्योंकि आप अपना कार्य अपनी जिम्मेवारी नहीं छोड़ सकते हैं।
0: जी,
1: और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर एक बार छोड़ने की आदत पड़ गई ना, तो छोटी छोटी बातों में आप छोड़ते रहोगे, फिर आप कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के योग्य नहीं बन सकते। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले जो चीज आपको लाइट करती है, जैसे आपको कोई संगीत है, फ्लूट प्लेइंग है, या आपको कोई गार्डन में जाके रिलैक्स होना अच्छा लगता है, या कोई वर्कआउट कर लेता है, कोई वॉक पे चला जाता है, कईयों के कई मेथड्स होते हैं, तो जो हर एक को सूट हो, अगर वो थोड़ा अपने को लाइट कर देना, तो फिर अपनी जिम्मेवारी पे वापस आ सकते हैं। तो ये लाइट होने के समय में वो ओवरथिंकिंग को साथ में नहीं लेता है, बिकॉज उसकी जो आदत है ना कि मैं पार्क में जाता हूँ तब मेरा ओवरथिंकिंग नहीं होता है, देखा हुआ है, उसका अनुभव है, इसलिए अगर वो भारी हुआ तो वो सीधा पार्क में जाएगा।
0: जी,
1: और सचमुच ही वो चीज उसको मदद करती है लाइट वापस होने के लिए। माना वो थोड़े समय के लिए वो जगह से, वो सिचुएशन से निकल के एक ऐसी जगह जाता है जहां उसको अनुभव है अंदर कि वो लाइट रहता है, वो कर ऐसे करते जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी जो बड़े हैं दादियां हम जिनको बोलते हैं, तो एक दादी गुलजार जी है, तो उनको एक बार प्रश्न किया था किसी ने कि जब आपका मन भारी है, आपका मूड ऑफ है और कोई क्लास के लिए आता है तो क्या आप क्लास में जा पाओगे? तो दादी ने बोला जाना तो है क्योंकि जिम्मेवारी है, लेकिन उसके पहले थोड़ा मेडिटेशन रूम में जाके अपने आप को हल्का कर, अच्छी बातें कहकर, भगवान से अच्छी बातें कर करके अपने को हल्का कर दो, गीत बजा दो, एक कमेंट्री बजा दो, भले वो बैठे जो आए हैं वो, उसकी चिंता मत करो, और जैसे आपको फील हो कि अभी हो गया है आप जाओ वहाँ, बहुत ब्यूटीफुल क्लास हो जाए, उल्टा यू नो अ डिफरेंट एक्सपीरियंस,
0: क्योंकि आप अपने रोल को मना भी नहीं कर रहे हो,
1: नहीं,
0: और आप जा भी रहे हैं और भगवान से बात करके जाएंगे तो हेल्प तो मिलेगी।
1: हाँ जरूर, या आप साइलेंस में चले गए या आप बिल्कुल अपने को हल्का छोड़ दिया रिलैक्स करके मेडिटेशन रूम में और फिर जाओ, तो आप एक नए व्यक्ति ही हो समझो पास्ट से।
0: बिल्कुल, तो ऐसे हर किसी के घर में एक छोटा सा मंदिर या फिर भगवान की फोटो जरूर होता है, तो आप उसके सामने जा करके अपनी बात कह के जा सकते हैं। जी, तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि ध्यान की अवधि के बारे में कि क्या ज्यादा जरूरी है, लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना या कम समय में गहराई से फोकस रहना।
1: ओके, शुरू तो कम समय से ही होता है, और वो कम समय जैसे 5 मिनट या 10 मिनट में आपको कितना टाइम ध्यान लगा वो इम्पोर्टेंट है
0: जी,
1: है ना। तो वो प्रैक्टिस की अगर नोट की जाती है तो धीरे धीरे आप अपनी अवधि को बढ़ाते हुए देखते जाएंगे
0: जी,
1: लेकिन आपने नोट ही नहीं किया, आपने एक चार्ट मेंटेन ही नहीं किया, तो एक संस्कार बन जाएगा कि भाई मेरे से तो लंबा टाइम का नहीं होता है, मेरा तो 10 ही मिनट इनफ है, मेरा तो 20 मिनट ही इनफ है। तो वो आपने क्या किया, आपने प्रगति के लिए चार्ट नहीं बनाया पर आपने अपना एक नेचर बना दिया, फिर आपको कंसंट्रेशन केवल 10 मिनट या 20 मिनट लगेगा, फिर कोई 1 घंटा बिठा देगा ना तो आपका नहीं होता। वी डोंट हैव टू क्रिएट अ पर्टिकुलर संस्कार, पर हमें चार्ट रख के अपनी अवधि को भी बढ़ाना है, अपने फोकस को भी बढ़ते हुए अनुभव करना है। दिस इज द मोस्ट सिस्टमैटिक वे, है ना।
0: ओके, आपको चेक करते हुए अपने आप को धीरे धीरे,
1: नॉट जस्ट मेकिंग अ नेचर के भाई हाँ मैंने देखा है मैं 10 मिनट बैठती हूँ ना तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा होता है, तो ये नेचर बना दिया। योगी होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, स्टूडेंट होता है, उसको कई बार पूरी रात पढ़ना पड़ता है
0: जी, राइट,
1: और कई बार दिन में 1 ही घंटा पढ़ना होता है, तो वो ऐसा नहीं कह सकता कि आज मैं पूरी रात नहीं पढ़ सकता हूँ, उसको पढ़ना होगा, तो वो एक ही प्रकार का संस्कार नहीं बनाता है,
0: फ्लेक्सिबिलिटी
1: भी लाता है और रोज से प्रैक्टिस से अपनी अवधि भी बढ़ाता है कभी कभी और देखता है कि कितना फोकस रहा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि दीदी जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो ये देखते देखते क्या हमारे अटेंशन स्पैन पर भी असर पड़ता है कि हम भी जो भी काम करते हैं उसमें हम फोकस नहीं रह पाते, 10 मिनट भी नहीं या 5 मिनट के बाद हमारा ध्यान भटक जाता है?
1: थोड़े समय पहले मैंने देखा था कि वेस्ट के टीवी में बहुत जल्दी एड्स और आती है और एकदम फास्ट फास्ट मूव होती है, उतनी स्पीड में इंडिया में नहीं होता था। इंडिया में आप पूरा एड लाइक देख पाते थे अच्छी तरह से, जबकि वेस्टर्न टीवी में बिल्कुल फास्ट होता था
0: जी।
1: तो मुझे भी सोच चलती थी कि ये लोग इतना फास्ट क्यों करते हैं, तो मुझे एक जगह पता चला कि क्योंकि वहाँ उनकी दिनचर्या भी इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट लाइफ है उन लोगों की कि अब उनको लंबा स्लो सुनने को ही नहीं होता है, इसीलिए वो लोग ज्यादा इन्फॉर्मेशन फास्ट फास्ट फास्ट रीलों में देते हैं, ऐसा पता चला
0: जी।
1: और फिर यहाँ भी हम देखते हैं कि अभी थोड़ा फास्ट कर दिया है हर चीज और छोटे छोटे बनाते हैं, क्यों छोटे छोटे, अरे आजकल कोई लंबा देख नहीं पाता है, इसे छोटा ही बनाने का वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ओवरथिंकिंग का है
0: जी,
1: जितना हमारा ओवरथिंकिंग बढ़ता है ना तो नेचुरली अटेंशन स्पैन कम हो जाता है।
0: ओके, तो मूल कारण ओवरथिंकिंग।
1: हाँ जी, इट इज नॉट कि दिस इज मोर इफेक्टिव देन दैट. आप एक लेक्चर भी सुनो एक घंटे का, बहुत इफेक्टिव होता है
0: जी.
1: और उसका ही एक छोटा रील देखो, वो भी इफेक्टिव रहता है.
0: हाँ, क्योंकि आजकल लोग
1: यू कैन एंजॉय बोथ. पर कई लोग ऐसे हैं जो लंबा नहीं सुन सकते.
0: ये सबके लिए लागू नहीं होता.
1: हाँ, सबके लिए लागू नहीं होता. बाकी अगर आपका अटेंशन है, फोकस बराबर है, तो आप दोनों एंजॉय करें.
0: राइट जी.
1: इररिलेटिव ऑफ द स्पैन
0: जी,
1: है ना. जो भी है, आपका इंटरेस्ट बराबर होगा और आप हर चीज को बराबर सुनेंगे
0: जी. तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है. और दीदी ने प्रैक्टिस की बात कही है.
1: हाँ,
0: तो जरूर आप उस प्रैक्टिस करते.
1: प्रैक्टिस केवल नहीं, ओवरथिंकिंग नहीं हो.
0: हाँ, तो उसको चेक भी करना चाहिए हमको.
1: हाँ, ओवरथिंकिंग जिसमें कम होगा ना, वो दोनों एंजॉय करेगा
0: जी.
1: जिसमें ओवरथिंकिंग ज्यादा है ना, तो पेशेंस कम है.
0: ओके, तो पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है फोकस रहने में
1: जी.
0: तो आजकल धैर्यता ज्यादा कम हो रही है.
1: धीरज कम हो रहा है.
0: धीरज कम हो रहा है. तो
1: और जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड है. बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए. इसलिए कोई गोल गोल बात भी करेगा ना, वो भी नहीं पसंद करता है. डायरेक्ट सॉल्यूशन बताओ, ऐसे कहते हैं.
0: डायरेक्ट बात करो, घुमा फिरा के मत करो.
1: घुमा फिरा के मत करो, क्योंकि लोग में धीरज ही नहीं है सुनने की.
0: जी,
1: अभी कोई कह रहा था
0: जी
1: कि होम्योपैथी दवा तो बहुत अच्छी है, लेकिन स्लो है. माना पहले वो सारी दूसरी दवाओं का असर बंद करता है, फिर उसकी असर होती है, तो लोग तंग हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई इसके असर ही नहीं है बीमारी पर. ऐसे होता है.
0: होता है. तो अब हम शारीरिक बात करते हैं. क्या हमारी जो दिनचर्या है, तो स्लीप है, स्लीप साइकिल है, फूड है, एक्सरसाइज है, इसका भी एकाग्रता पर असर पड़ता है?
1: एक्टिविटी तो आप बहुत कर सकते हो. स्ट्रेंथ भी उतनी शरीर को दी गई है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर सकते हो. तो एक्टिविटी में भले कितना भी हो, हाँ उतना भी नहीं हो कि जो आपका स्ट्रेंथ ही नहीं है और फिर भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, वैसा नहीं. पर मैक्सिमम आपको जितना होता है आप कर सकते. अगेन, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना, आपकी एटीट्यूड्स है, उसमें आपके विचार है, आपके नेचर है, आपका वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, ये जो सारी चीजें ना, अगर वो बैलेंस्ड नहीं है ना उन एक्टिविटीज के साथ, तो उसमें आप देखेंगे कि आप एक्टिविटीज कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट इतना जल्दी से सब जगह नहीं मिल रहा है, या आप थक जाते हो, या आप बर्डन फील करते हो.
0: तो जितना हो सके
1: इनसाइड एंड आउटसाइड का बैलेंस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो भले आप कितनी भी एक्टिविटी करो
0: जी. तो क्या हम क्या खाते हैं उसका भी असर पड़ता है?
1: हाँ, खाते हैं उसका असर पड़ता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि एज इज द फूड सो इज योर माइंड. माना जो खाना खाएंगे, जहाँ खाएंगे, जितना खाएंगे, जैसा खाएंगे, जिस रीति से खाएंगे, तो उसका असर मन पर पड़ता है. तो ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है
0: जी.
1: तो खाना भी अगर आप धीरज से खाते हैं, बराबर च्यू करके खाते हैं, अच्छी जगह, अच्छे वाइब्रेशन में खाते हैं,
0: टाइम पर
1: खाते हैं, अच्छी क्वालिटी वाला खाते हैं, और जिसमें आपका मन भारी ना हो जाए, ऐसा फूड खाते हैं, तो आपको मदद मिलेगी जरूर
0: जी. हाँ. और लंबे समय तक हम बैठ करके काम करते हैं सिस्टम के सामने, तो उस समय हमारे ध्यान को कैसे हम बनाए रखें?
1: लंबे समय तक बैठने पर एक ही प्रॉब्लम है कि आपको एक पेन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी को एक ही सिचुएशन में रखना आजकल के नॉर्मल लोगों का करना बहुत डिफिकल्ट है. पहले हमारे संत करते थे, ऋषि मुनि करते थे, घंटों एक ही पोजीशन में बैठ के उनकी तपस्या होती थी और उनको कुछ नहीं होता था, ऐसे ही खड़े होके चले जाते थे. पर अभी जो हमारा बॉडी बना है ना, उसमें एक ही प्रकार का काफी समय तक रहना, जैसे खड़ा रहना, जैसे मॉल में हम देखते हैं ना, कितने घंटे, 12 घंटे व्यक्ति खड़ा ही रहता है
0: जी.
1: और अगर एक ही जगह खड़ा रहे तो क्या हालत होगी उसकी. ऐसे एक ही जगह सिस्टम के आप बैठे हो, तो उसके लिए कहा जाता है कि आपको कभी खड़ा होना है, कभी पांव को हिलाना है, कभी हाथ को, कभी कमर ट्विस्टिंग करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है
0: जी.
1: ऐसे ही आपको कभी कोई प्लेजेंट म्यूजिक भी सुनना चाहिए, या आप अच्छी बातें जो आपको रिलैक्स करती है, लाइट करती है, ऐसी अच्छी बातें भी आप देखो. मीन्स यू शुड फीड योर माइंड एट दैट टाइम विद वेरी पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, वेरी एनर्जाइजिंग थॉट्स और एक्टिविटी, तो अगर ऐसा करते हैं तो आपका बैलेंस अच्छा रहेगा। बाकी तो डेफिनेटली एक ही पोजीशन में अगर आप बैठे हो तो आपका अटेंशन स्पैन कम होने वाला है,
0: तो बीच बीच में आपको उठ के

0: या आप कोई एक्टिविटी दूसरी करो, या आप कुछ फन एक्टिविटी अपने लिए करो, जिससे क्या होता है थोड़ी एक्सरसाइज भी करने की जरूरत है, तो आपका अटेंशन स्पैन अच्छा ही रहेगा।
1: जी, जिस जगह पे हम काम करते हैं कई बार हमें डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता है, चाहे वो चीज वस्तु हो, जैसे आप मॉल की बात कह रहे थे, तो वैरायटीज ऑफ कस्टमर्स आते हैं, तो उनकी व्यवहार से भी हम कई बार परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें तो स्माइल करनी है
0: जी।
1: और हम अपने साथ वालों के साथ रहना ही पड़ेगा
0: जी।
1: और मैनेजमेंट कैसा भी हो, हमें सैलरी की जरूरत है, तो हमें उनकी भी बातें सुनकर के काम करना है
0: जी।
1: तो कई बार व्यक्ति दुखी होने के बावजूद भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है
0: जी।
1: और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे आई थिंक वो डिस्ट्रैक्शन मोड पे चला जाता
0: है। हाँ हाँ,
1: तो उस एनवायरमेंट में रहते हुए भी, उस जगह में रहते हुए भी कैसे अपने आप को बचाए रखें।
0: राइट, इसमें ना अगर हम ऐसा देखें कि ये सब एक्टर्स है अलग अलग, और वो अलग अपना अपना रोल बजा रहे हैं, इनको ये रोल दिया गया है, इनको ये रोल दिया गया है, अलग अलग प्रकार का। हाँ, तो एक है जो एक्चुअली किसी कस्टमर को कन्विंस करने के लिए खड़ा ही नहीं है, वो कम बात करता है, दिखाता है, कस्टमर को लेना है तो लेगा, नहीं तो चला जाएगा। एक जन है वो बहुत अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग वे में बात करता है और इनको ना थोड़ा इंस्पायर करता है कि ये लेंगे, तो वो एक नहीं चार चीजें लेके जाता है। तो हर एक अपना रोल बजा रहा है, ऐसे नेचर वाइज भी हर एक का रोल होता है। अब समझो कि जो सुपीरियर है उसको ये भाई पसंद आता है जो बातें करके एक से चार करता है, तो फिर उसका व्यवहार वो शांत वाले के साथ कैसा होगा? थोड़ा कम होगा ना, कम होगा, ही विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द अदर पर्सन। पर अगर वो समझे कि नहीं, ऐसे भी लोग जरूरी है मॉल में, सभी ऐसे होंगे तो नहीं, हर एक अलग अलग होते हैं एंड दे आर डूइंग दैट ड्यूटी बट इन डिफरेंट स्टाइल्स। ऐसे अगर हम अपनी सोच को बदलें कि भाई इस व्यक्ति को गुस्सा क्यों आ रहा है, वो मेरा इंसल्ट क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे उसके नेचर को समझे कि इसका नेचर क्या है, वो कौन सी चीज से डिस्टर्ब होता है, तो हम अगर समझेंगे तो हम कुछ अपने अंदर पॉजिटिव चेंज भी ला सकते हैं, नॉट टू प्लीज हिम बट टू मेक आवरसेल्व्स मोर इफेक्टिव
1: जी,
0: है ना।
1: तो वो सब देखते हुए भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है,
0: धीरे धीरे ऐसा रिजल्ट आएगा,
1: रिजल्ट आएगा, क्योंकि
0: जब तक आपने एक्सेप्टेंस नहीं है ना, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा।
1: जी जी बिल्कुल, तो एक्सेप्ट करना
0: बहुत जरूरी है। एवरीबडी इज प्लेइंग देयर ओन रोल,
1: भले वो
0: तो मैं किसी का रोल नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन मैं अपने रोल को मोर इफेक्टिव बना सकती
1: हूँ और मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है मेरा नेचर।
0: हाँ,
1: अगर कि मैं, मुझे बात करने नहीं आती है
0: जी जी, कोई बात नहीं,
1: वो
0: कंपेयर किसी से कंपेयर भी करने की जरूरत नहीं, वो अपना रोल बजा रहा है, मुझे अपना रोल बजाना।
1: अगर मैनेजर कंपेयर किया तो,
0: मैनेजर कंपेयर करे तो सुन लो, फिर देखो कि मैं कौन सी चेंज अपने में ला सकती हूँ, और अगर ला सकते हो तो वेरी गुड है, बैलेंस करने के लिए।
1: अगर
0: बाकी आप कि अगर आपने फोर्सिबली अपने में चेंज लाया तो वो न कस्टमर पर इफेक्टिव होगा न आपको अच्छा लगेगा,
1: क्योंकि वो नेचुरल नेचर नहीं है।
0: नेचुरल चेंज अपने में आना चाहिए, तो भले कोई कुछ भी बोले पर अपने को फोर्स नहीं करना है अपने ऊपर, है ना। अगेन फोर्स करेंगे तो फिर आपका विचार बदलता रहेगा अंदर, तो सामने जो आ रहे हैं उनसे डील करने में आपकी जो खुलापन होता है, ओपन माइंडनेस होती है, वो नहीं होगा, वो डिस्टर्ब करेगा वातावरण को और भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि जब आसपास के लोग डिस्टर्ब करते हैं तो शांत रहकर काम कैसे करें, घर में भी, घर में मान लीजिए सब मेंबर्स के साथ हमारा नहीं बनता है कई बार, क्योंकि विचार अलग अलग होते हैं, तो कैसे शांत रखें अपने आप को और काम भी करें।
0: देखिए, शांत रहना ये चुप रहना अलग होता है।
1: ओके जी,
0: कोई चुप हो जाते हैं
1: लेकिन अंदर चलता रहता है जी,
0: चुप हो जाते हैं और कोई भी बात करने को इग्नोर करते हैं। ज्यादा टाइम बाहर चले जाएंगे जब वो व्यक्ति होता है जिसके साथ नहीं जमता ऐसे, तो वो थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है और वो हो सकता है वाइब्रेशन के कारण और भी प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो आपको ये देखना है कि जितना उसका फील्ड है उतना मेरा भी फील्ड है और दूसरे का भी फील्ड है, पर ये फील्ड में हमको कैसे रहना है, है ना। तो अगर उसने गुस्सा किया और मैं भी गुस्सा कर रही हूँ और बार बार ये चीज हो रही है, तो वातावरण में कौन से इमोशन फैलेंगे? नेगेटिव है ना, तो दुख का वातावरण बढ़ेगा। तो ऐसा करना है कि जो लोग पॉजिटिव है घर में वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा दे
1: जी। ओके,
0: सामने वाले को चेंज करने की एक्सपेक्टेशन में ना जिए कि इसका गुस्सा कब कम होगा तब घर में शांति होगी। नहीं, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते जाओ और जब बोलना ही है तब बोलो, बैलेंस से हर कार्य करो
1: जी,
0: है ना। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सामने वाले का गुस्सा भी कम होता जा रहा है। इसी को मेडिटेशन भी कहा जाता है। मेडिटेशन माना अपने माइंड के लेवल से आप कार्य कर रहे हो, केवल हाथ से नहीं, केवल मुख से नहीं, लेकिन माइंड के लेवल को भी आप इसमें ट्रेन कर रहे हो कि जो मन है वो दूसरे तीसरे चौथे डिस्ट्रैक्टिव विचारों में न जाए
1: जी,
0: ऊपर अटेंशन में रख रहे हो और उसको एनर्जी को आप मोबिलाइज कर रहे हो और आप उसमें भी एक अच्छा विचार रख करके कर्म कर रहे हो, जिसको हम कर्म योगी स्टेज बोलते हैं।
1: तो ये अटेंशन सदैव रख सकते हैं हम अपने ऊपर?
0: नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट होता है,
1: धीरे धीरे
0: धीरे धीरे स्टार्ट होता है। कोई भी चीज ABCD से ही होता है। तो ये धीरे धीरे स्टार्ट होगा।
1: लेकिन जैसे 24 घंटा हम अपने ऊपर अटेंशन रख सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए?
0: मे बी नॉट, पर जितना भी आप कर सकते हो ना तो उतना भी थोड़ा बहुत रिजल्ट तो जरूर आएगा
1: जी,
0: है ना।
1: और
0: कभी कभी ना नेचुरल परिस्थितियां भी रिजल्ट को चेंज कर देती है। कई बार उसी व्यक्ति का इतना जोरदार ऐसी परिस्थिति आती है कि वो व्यक्ति एकदम रियलाइज करने लगता है, पछतावा करने लगता है और अपने आप को बदल देता है। आपने भले खाली एनर्जाइज किया पॉजिटिविटी को, पर वो परिस्थिति ऐसी आ गई जो वो व्यक्ति चेंज हो जाता है। तो कोई ना कोई रीति से रिजल्ट जरूर आती है
1: जी।
0: जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू एनर्जाइज्ड पॉजिटिवली कि सामने वाला बदल गया, नहीं, अलग अलग रीति से।
1: क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं,
0: कर रहे
1: मानसिक शांति या फिर डिस्ट्रैक्शन से बचने।
0: और आपने अपने घर के लिए भी किया ना,
1: घर के लिए भी किया।
0: ऐसा थोड़ी एक ही व्यक्ति को टारगेट करके करते हो, पूरे घर के लिए भी किया, तो आपका कंट्रीब्यूशन तो सदा रहेगा ही रहेगा। उस व्यक्ति का जब भी चेंज होना होगा, जैसे भी होना होगा, वो हो जाएगा। पर नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं बनना है अपने
1: जी,
0: तो वो घर को पॉजिटिव नहीं बनाएगा। इतना तो अटेंशन दे ही सकते,
1: तो
0: माना अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा बार बार कि नहीं, मुझे अपना रोल बजाना है, मुझे अपना रोल बजाना है। और अगर हो सकता है उस समय मैं शांत रहूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस व्यक्ति का सुन रही हूं या मैं उस व्यक्ति को गलत रीति से मान दे रही हूं, नहीं। पर उस समय मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। इट्स योर ओन डिसीजन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी एल्स। समझे ना,
1: जब आपको लगता है कि बोलने से फायदा भी नहीं है और बात बढ़ेगी भी, तो नहीं बोलना
0: जी। जी
1: ओके, तो कई बार हम गलत जगह पे भी ना कह देते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, तो क्या ये सही है या कहाँ पे नो बोलना है, कैसे पता करें हम?
0: अभी क्या है कि बहुत ज्यादा नो भी तो कोई सुन नहीं सकता है, है ना। तो नो की जगह अगर आपको दूसरा कोई मेथड आता है, कोई दूसरे रास्ता आता है, तो आप वो उनको पूछ सकते, राय ले सकते कि मैं इस रीति से करूं या मैं ये कार्य करूं इसकी जगह। आप ऐसा ऑप्शन दो
1: जी,
0: तो एटलीस्ट वो व्यक्ति ना तो नहीं सुनेगा। कभी कभार कोई चीज के लिए आपको ना बोलना पड़ेगा, तो आप सॉरी बोल के बोलेंगे, लेकिन हमेशा ना बोलेंगे वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है
1: जी।
0: तो उसको थोड़ा टर्न करके एक ऑप्शन दे करके आप बोलो तो बेटर रहता है
1: जी।
0: बाकी ना बोलना कोई गलत बात नहीं है।
1: जब आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं या वो करने से आप ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, तो तब आप
0: गलत बात बिल्कुल नहीं है। कभी कभी ना बोलना भी सीखना पड़ता
1: राइट। और क्या बीच बीच में जब हम छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं तो हम ज्यादा फोकस रहता है?
0: छोटे छोटे ब्रेक्स माना किस प्रकार?
1: हम
0: चाय पीने जाएंगे ऐसे?
1: हाँ, चाय पीने जाएंगे या फिर घर का काम बहुत ज्यादा है एक साथ कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा बैठ जाए अपने साथ बैठे, ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेना चाहिए?
0: बहुत ज्यादा नहीं, पर लेना जरूरी है। बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि आपके करने की अवधि इतनी लंबी हो जाएगी ना
1: जी,
0: तो हो सकता है आपका कार्य ही पूरा ना हो। पर ब्रेक्स लेना जरूरी है,
1: पॉज होना
0: जरूरी है।
1: ओके,
0: कभी बॉडी को भी रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है। ओवरडू कोई भी चीज को कभी नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: जैसे कोई

0: लेकिन वहां भी अपनी एनर्जी को यूज की
1: जी।
0: ब्रेक लेना मना एनर्जी को कंजर्व करना ताकि आगे के लिए आप ऐड कर सको
1: जी,
0: तो ब्रेक अच्छी है
1: जी। बिल्कुल। और अभी तो वक्त हो गया है कि यहाँ से हम विदा लें आपसे, लेकिन जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे एक दो क्वेश्चंस कि बार बार आजकल हम मोबाइल चेक करते हैं नोटिफिकेशंस और ये सब, तो प्रैक्टिकली कैसे हम बदल सकते हैं इस आदत को?
0: देखिए उधर आता है मोबाइल में, डू यू वॉन्ट टू अलाउ नोटिफिकेशन और नॉट, तो अगर वो आता है और आपको नहीं चाहिए तो उसी समय ना बोल दो, है कि नहीं
1: जी।
0: आप अलाउ भी करते हो और फिर आप नोटिफिकेशंस को कैंसिल करने में टाइम गवाते हो, है कि नहीं
1: जी।
0: तो इतना तो पहला डिसीशन वो पूछता ही है कि आपको अलाउ करना है कि नहीं करना है। तो जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम जाता है तो पहले से ही आप उसको डिसाइड कर लो कि मुझे नहीं चाहिए। दूसरा कि कई बार कई लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं, क्या हो जाता है, फोन फुल हो जाता है।
1: Yes, हम डिलीट भी नहीं करते हैं चीजें, कुछ
0: फुल हो जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको डिलीट करते रहना पड़ेगा
1: और अटेंशन भी देख के डिलीट करना पड़ेगा।
0: हाँ जी, अटेंशन देख के भी डिलीट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इस इंस्ट्रूमेंट्स का, आज का साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स का, ये थोड़ा ज्यादा ही मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं कभी नहीं कैंसिल करती थी कुछ भी, तो एक बार क्या हुआ, मुझे एक फोन से दूसरे फोन में सब ट्रांसफर करना था, तो आप नहीं मानेंगे एक पूरा दिन तक भी ट्रांसफर नहीं हो रहा था। फिर वो भाई ने समझाया मुझे कि देखिए आप तो ओपन भी नहीं कर रहे हैं कहीं व्हाट्सएप, तो आपने क्यों रखा है, क्योंकि आपने ओपन भी नहीं किया, उस जगह लेता जा रहा है और अब यहाँ के लिए वो टाइम लगा रहा है
1: जी।
0: या तो आपको मेरे को ओपन करके देना पड़ेगा सब, तभी थोड़ा जल्दी होगा। तो मैंने देखा सचमुच वेस्ट था इतना सारा। तो ये बिगिनिंग से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो पूरी नॉलेज नहीं है ना मोबाइल की, तो वो फिर ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लेते हैं ना, तो उसकी थोड़ी नॉलेज ग्रास्प करना बहुत जरूरी है ताकि आप उसको इफेक्टिवली यूज कर
1: सको। लाइफ भी ऐसी,
0: अंडरस्टैंडिंग जितनी ज्यादा होगी इफेक्टिवनेस उतना ज्यादा होगा, तो आपका अटेंशन स्पैन भी बेहतर ही रहेगा
1: जी।
0: तो आज तो लाइफ भी कभी कभी मेस में होती है,
1: राइट। तो कौन से नोटिफिकेशंस ऐसे हैं लाइफ में जो हमें बंद रखना चाहिए?
0: एक तो गॉसिप,
1: ओके,
0: गॉसिप तो जरूर, बैक बाइटिंग।
1: और डिलीट क्या करना चाहिए?
0: ना यही जो है
1: ये नोटिफिकेशन बंद है और इसी को डिलीट करना है।
0: फिर दूसरा, दूसरों पर इल्जाम लगाना, दोष डालना, भले आपका भूल, तो ब्लेम गेम भी एक चीज है जो हमको नहीं रखनी चाहिए। फिर तीसरा, कोई को दुश्मनी हम क्यों बनावे, ऐसा ख्याल ही आपके अंदर क्यों आता है कि ये मेरा दुश्मन है, तो वहीं पर अपने एक्शंस को पहले से थोड़ा कंट्रोल करो कि मुझे जरूरी नहीं है किसी को दुश्मन बनाना, भले दोस्त कम हो पर किसी को दुश्मन बनाना ये तो मेरी डायरेक्टरी में होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ कुछ है चीजें। दूसरा कि जितना हो सके मुझे शांति से कार्य करना है, मैं गुस्सा क्यों होती हूँ, क्रोध में क्यों आती हूँ, ये तो मेरी एनर्जी पूरी ये हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है इसमें क्रोध करने में। तो अंडरस्टैंडिंग कि भाई कौन सी चीज मुझे आगे बढ़ा रही है, कौन सी चीज मुझे रोक रही है, तो ऐसी सब नोटिफिकेशंस को हमें पहले से अगर नहीं डाले, डाउनलोड ही नहीं करे या तो डिलीट करते जाए,
1: वो एप्लीकेशन ही ना रहे हैं।
0: हाँ, क्योंकि वो तो ऑफकोर्स अपना फोकस बहुत अच्छा रहेगा लाइफ में, और ऐसे नहीं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है हमारे सामने जिनका फोकस बहुत अच्छा रहा, भले उनके कितने भी जेलिसी वाले दुश्मन बने, उन्होंने क्या क्या उनके साथ किया, उनको वो मैटर नहीं करता है, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया वही मैटर करता है। और ये लोग बहुत फोकस्ड लोग थे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, बहुत फोकस्ड थे, जैसे मदर टेरेसा है, वो अपने जमाने में बहुत फोकस्ड थी
1: जी,
0: है ना, खुद ही अपना जीवन निर्माण किया और खुद ही उसको सस्टेन भी करती रही
1: जी।
0: उसके बाद भले वो ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी किया हो, लेकिन उनके होते समय तो काफी मना फोकस्ड रही। ऐसे हमारे कई राजा महाराजाओं की फैमिलीज है जिसमें काफी फोकस्ड रूप से उन्होंने राज्य भी किया और भारत को दुश्मनों से बचा के रखा, तो भले उनकी फैमिलीज थी, सब कुछ था, लेकिन काफी फोकस्ड लोग थे, उनका क्लियर थिंकिंग, फोकस्ड माना क्लियर थिंकिंग,
1: क्या करना है क्या नहीं करना है,
0: क्या नहीं करना है, बहुत

0: क्लैरिटी होती है उनके थॉट्स में. ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स है, संत ज्ञानेश्वर का भी एग्जांपल है, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट. ऐसे कई संत भी रहे हैं हमारे भारत में और पूरे विश्व में भी ऐसे कई लोग, जैसे अब्राहम लिंकन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहा अमेरिका का, उसका भी काफी फोकस था. कितना कुछ वो डिफीट हो रहा था तो भी उसने अपना रास्ता ही नहीं छोड़ा. और एंड में जब वो 60 साल का हुआ तब अमेरिका ने सामने से बोला कि हमको आपके जैसे प्रेसिडेंट की जरूरत है अभी. तो देखो कैसे वो अपने टारगेट पे पहुंच गया ना. तो ऐसे कई लोग फोकस्ड हैं और उन्होंने हमें सिखाया है. ये तो क्या है कि हमने सीखना ही बंद कर दिया है.
1: जी,
0: सीखना बंद किया तो फिर आप कैसे अपनी लाइफ को गुजार रहे हो, कैसे पर, और फिर गलत एग्जांपल्स ले लेके उसको फॉलो करते जा रहे हैं तो फिर कैसे फोकस्ड रहेंगे.
1: अपने लक्ष्य को भी रिवाइज करना है,
0: करना चाहिए.
1: अगर मैं देख भी रही हूँ कुछ तो क्यों देख रही हूँ.
0: हाँ,
1: मुझे क्या करना है,
0: मुझे क्या मिलना है इसमें से, वो जरूर देखना चाहिए. कोई भी चीज मिलती है ना आपको सामने से तो उसके 3 प्रश्न पूछो. पहला प्रश्न पूछो क्या ये मेरे लिए यूजफुल है. फिर दूसरा प्रश्न पूछो कि क्या ये आगे चल करके मेरी प्रगति करेगा. और तीसरा है कि क्या मेरा इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है. ऐसे कुछ कुछ प्रश्न पूछ के आप उस बात को पहले एनालाइज करो
1: जी,
0: और फिर वो कार्य करो तो आप फोकस्ड रहेंगे.
1: राइट, बिल्कुल. तो अगर आपको एक लाइन में बताना हो डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे पावरफुल मंत्र क्या है.
0: पावरफुल मंत्र यही रहेगा कि आई एम हियर टू रीच माई ओन डेस्टिनेशन फ्रॉम माई ओन फ्री विल.
1: ओके,
0: आई एम हियर टू रीच माई डेस्टिनेशन विच इज क्रिएटेड फ्रॉम माई ओन फ्री विल.
1: जी, मेरी इच्छाओं से ही मेरे को अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचना है. बिल्कुल, इसे हम जरूर याद रखेंगे. दीदी, अभी वक्त हो गया विदा लेने का, तो आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को.
0: इसमें यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू मुझे समय देने के लिए, अपने विचारों को बांटने के लिए आप सबके साथ. और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस पर अपने थॉट्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और हर एक कुछ अपनी लाइफ का थोड़ा एक एनालिसिस करेंगे, जैसे एक मिरर सामने रखते हुए अपनी पूरी जीवन यात्रा को देखेंगे. और आगे ये भी समझो कि हर एक के अंदर वो फोकस है ही है, कहीं नहीं जाता है, केवल हमको वापस उसका अनुभव कैसे करना है. तो जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो जितनी भी नहीं काम की चीजें होती है वो निकाल देता है एंड एट दी एंड वो मूर्ति अपने आप शेप ले लेती है. तो ऐसे ही हमारा भी फोकस अपने आप शेप ले लेगा अगर उसके अलावा जो भी वेस्ट है, जो डिस्ट्रैक्शंस आपको कर रहे हैं, वो आप धीरे धीरे एक बाय एक निकालते जाओ तो लास्ट में क्या रहेगा, आपका प्योर फोकस. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट.
1: थैंक यू सो मच दीदी आज हमारे साथ बने रहने के लिए. उम्मीद है कि जब जब आप शांतिवन आएंगे तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे और हमारे श्रोताओं को आपके जो अमूल्य जीवन के ज्ञान है, जो आप प्रैक्टिकल जीते हैं, वो हमारे साथ शेयर करेंगे. धन्यवाद.
0: थैंक यू. धन्यवाद आपको.
1: दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? डेफिनेटली अच्छा ही लगा होगा. तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं 94-1415 1415 पर. नमस्ते.

0: मैं हूं जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा शुभ प्रेम। ओम शांति।
1: अभी बचे हैं दोपहर के एक।

0: शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान, जिन्हें स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, डॉक्टर रमेश जी उपस्थित हैं। रमेश तेवानी जी हमारे साथ हैं और आप विशेष नेचुरोपैथी के स्पेशलिस्ट हैं, और स्पेशलाइजेशन आपका ये है कि कॉन्स्टिपेशन पर आपने काफी काम किया है, और इसके साथ में आप नेचुरोपैथी का मेडिकल कॉलेज भी आपने खोला है। आप फाउंडर मेंबर है उसके, अमरावती में जो नेचुरोपैथी का विशेष मेडिकल कॉलेज है। तो बहुत बहुत स्वागत है रमेश तेवानी जी आपका। नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: नमस्ते। अच्छे हैं,
0: जी
1: अच्छे
0: जी
1: हैं।
0: बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका विशेष अनुभव हम लोग सुनेंगे, और हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान बांसवाड़ा से भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बातें करेंगे, उनको भी सुनेंगे, और हो सकता है कि वो जुड़ जाएं। अब जब तक वो जुड़े तब तक हम लोग आपसे बातें सुनेंगे। तो वर्तमान में
1: हाँ
0: आप
1: बिल्कुल।
0: कहाँ पर हैं सर जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हम। जी
1: मैंने जो है जो दो दो डिग्रियां की है, और वर्तमान में संत हिरदा राम नगर भोपाल में जो आरोग्य केंद्र है वो मैं सेवाएं दे रहा हूं, और वहाँ जो शिविर है उस शिविर में विशेष रोल हमारा केवल दिशा दिखाने का रहता है, सपोर्ट करने का रहता है, और इसके अलावा ही नहीं, जो आबादी का मसला है वो हमारे

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, विशेष कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और बातें मुलाकातें। इस कार्यक्रम के आज के हमारे खास मेहमान विशेष जुड़े, लेकिन उनका जो है नेटवर्क ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो बीच बीच में कट हो रहे हैं। तो आइए, तब तक हम लोग मिथिलेश कोहली जी से एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं। मिथिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, एक गीत सुनाइए आप। मिथिलेश जी,
1: मिलता है जी, मिलता है सच्चा सुख केवल तुम्हारी

0: Yani
1: मिथिली जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया। और आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको सीधे जोड़ना चाहूँगा फिर से। रमेश देवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है, और आप बता रहे थे अपने बारे में, थोड़ी सी बातें बताइए जी।
0: हाँ, देखिए, हमने क्या पाया है कि अगर आदमी नींद करे और पेट की सफाई हो तो वो आजीवन रोगी रह सकता है। और
1: जी
0: आज दोनों ही जो है इस पे हमारे जितने भी दुनिया है ध्यान नहीं देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। रमेश जी, मैं चाहूंगा कि नेचुरोपैथी से आपका कैसे जुड़ना
0: हाँ,
1: हुआ, वो थोड़ा सा हमें बताइए।
0: 50 साल पहले मैं बीमार हुआ। मेरे को कब्ज, गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार, जलन और जुकाम, सर दर्द, आंखों का दर्द 24 घंटे बना रहता था। लेकिन सब जगह भटकने के बाद जब नेचर की ओर
1: जी
0: में गए तो वो दिन आए दिन फिर बीमार नहीं हुए। 50 साल हो गए।
1: क्या बात है चलिए, बहुत
0: हाँ,
1: अच्छी बात आपने बताया। और बताइए मुझे कि कैसे नेचुरोपैथी का ये जो बहुत बड़ा आपने मेडिकल कॉलेज खोला है, उसके पीछे कैसे, क्या रीजन रहा,
0: देखिए,
1: कैसे शुरुआत हुई जी।
0: क्या है कि अपने को चाहिए एजुकेशन। आज जो इलिटरेसी इज द मेन काज है, तो आज जैसे जगह जगह हमारे एलोपैथी के क्लिनिक्स है, अगर नेचर के और की क्लिनिक खुल जाए तो जगत का कल्याण हो जाए। लोगों को दवाई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिगर दवाई के लिए बिगर दवाई से ही अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं वो। और इस भावना को लेकर के हमने हमें क्वालिफाइड नेचुरोपैथ भी चाहिए और फिर पूरी दुनिया को शिविर के माध्यम से डॉक्टर खुद का डॉक्टर बनाते हैं। 10 दिन मिले क्योंकि
1: जी
0: एजुकेशन
1: जी बिल्कुल
0: चाहिए।
1: बिल्कुल जी। रमेश जी बोलते जाइए आप।
0: हाँ, तो देखिए, हमारा जो कहने का मतलब है, इस एजुकेशन के कारण ही हम चारों तरफ प्रवास करते हैं, किसी से भी कोई पैसा वगैरह नहीं लेते हैं। क्योंकि आज जैसे 50 साल में हमने दवाई नहीं खाई है, क्यों नहीं खाई है? क्योंकि केवल ज्ञान है, ये मशीन है, इसको कब क्या चाहिए। अगर ये नींद होते हैं, पानी मांगती है तो पानी देते हैं, भोजन मांगती है तो भोजन देते हैं, तो विश्राम करते हैं। आज केवल हमने सीखा है, अभी हम फिट हैं।
1: जी
0: तो दुनिया अगर ये सीख ले, ये मशीन देखिए,
1: जी रमेश जी, काफी अच्छी बातें आपने बताया कि अगर कॉन्स्टिपेशन या पेट हमारी साफ होती है तो बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, ये आपने बताया। और हमारे साथ आज के शो में कर्नल सर भी जुड़ गए हैं, और सोलंकी सर, उन्होंने याद भेजा है, ओम शांति रमेश कुमार भाई जी और डॉक्टर रमेश देवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और यशवंत भावसार जो है, विशेष रूप से उन्होंने भी याद भेजा है, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। आज के इस एपिसोड में जुड़कर अपनी भावनाएं, विचार हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और हमारे साथ मुंबई से सूर्य प्रकाश लोना जी भी जुड़ रहे हैं, उनका शायद नेटवर्क इश्यू है इसलिए वीडियो नहीं दिख रहा है, तो उनका भी हम लोग जो है स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। थोड़ा एक बार सूर्य प्रकाश जी, आप अपना वीडियो जो है अपडेट कर ले, गूगल क्रोम में जाकर प्ले स्टोर में गूगल क्रोम को अपडेट कर ले, फिर आप दिख जाएंगे सर जी। रमेश जी, आप भी बीच में गायब हो रहे हैं, नेटवर्क जो है शायद आपका, तो बताइए हमें आपका जो है कैसे मेडिकल कॉलेज आपने शुरू किया नेचुरोपैथी का।
0: बस यही जो मन में ये था, इस चीज के माध्यम से हमें एक खजाना मिला है तो उनके नाम से मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, और खुलने का उद्देश्य यही है कि जो एजुकेशन चाहिए, इलिटरेसी को दूर करना है और समाज को क्वालिफाइड नेचुरोपैथ देना है, और पूरे वर्ल्ड में जगह जगह नेचुरोपैथी के क्लिनिक्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, और कभी भी किसी को तकलीफ होती है तो यहाँ पे स्वस्थ रहने की कला सीखे, और अगर तकलीफ है तो उसका बिगर दवाई के उसका इलाज हो जाए। इस भावना को लेकर के जो मेडिकल कॉलेज खोला है कि हमें हमारे साथी चाहिए, जितनी जितने ज़्यादा साथी होंगे उतना जगत का कल्याण होगा। और अभी भी करीब 300 बच्चियां डॉक्टर बन के निकल रही है, और इसके अलावा केवल यही नहीं हम चाहते हैं जो हमारे जो बच्चे हैं जो टेंथ के बाद हमको बायोलॉजी लें, डॉक्टर बने, क्योंकि आज अगर डॉक्टर होंगे तो समाज में लोग निरोगी होंगे।
1: बिल्कुल, तो नेचुरोपैथी में जैसे कि हम लोग, अभी आपका स्पेशलाइजेशन है कॉन्स्टिपेशन के बारे में, उसके बारे में बताइए कि कैसे हम लोग कॉन्स्टिपेशन से मुक्त हो सकते।
0: देखिए क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं।
1: जी जी
0: तो कॉन्स्टिपेशन कई तरीके हैं, अगर हम नहीं करेंगे और अगर ग्रीन ड्रिंक लेंगे पार्लर के डाले का तो 2 घंटे में पेट साफ होगा। लेकिन इसके बाद भी कुदरत ने हमें एक यंत्र दिया है, वो यंत्र कौन सा, मैं बता दूं, जिससे

0: पुराने जमाने में क्या था, तो हमें छोटे जंगल करना पड़ता था। ये तो हमारी तैयारी काफी
1: जी जी जी
0: बाहर भी जाना होता है तो

0: लिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हम कितनी बार दिन में पेशाब के लिए जाते हैं, कम से कम 4-5 बार, और जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो बाथरूम में हमें जरूर आता है, पेशाब आता है। तो हमारे जो कहने का मतलब होता है नियम है, जितने बार खाना उतने बार जाना, लेकिन जब नहीं होता है
1: रमेश तिवारी जी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है मुझे लगता है। वी आर नॉट गेटिंग क्लियर वॉइस, आपका बिल्कुल क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है। एक बार रीस्टार्ट करके फिर ज्वाइन कीजिए आप, है ना। देखिए फूल सिंह जी भी याद कर रहे हैं, उन्होंने भी मैसेज किया आवाज बरोबर नहीं करके। यशवंत जी ने भी बताया है आवाज साफ नहीं आ रहा है। सुरेश झा ने भी चार्ट नॉट क्लियर करके मैसेज किया है, तो एक बार री एंटर कीजिए आप या नेटवर्क का ठीक वो कर लेंगे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर। जी हाँ, बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, और हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर रमेश तिवारी जी, उनका वीडियो और ऑडियो, वीडियो तो अच्छे दिख रहे हैं लेकिन ऑडियो जो है उनका ठीक से हमें नहीं मिल पा रहा है। तो तब तक मैं उनकी बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बताया, वो था एनिमा पॉट, है ना। तो ये अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं शुरू शुरू में तो कॉन्स्टिपेशन आपका कम हो जाता है, फिर बाद में आपको उन्होंने बताया कि डाइट पे आ जाना चाहिए हमें। जब हम लोग अच्छी तरह से इन चीजों को समझ लेंगे, किसी अच्छे डॉक्टर को ज्वाइन कर लेते हैं या कंसल्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा जो है बहुत ही अच्छा नेचुरोपैथी में तरीके हैं कि कैसे हम अपने जो है पेट को साफ रखे, कॉन्स्टिपेशन ना हो, ये बता रहे हैं। यस रमेश जी नमस्कार।
0: देखिए रमेश जी, हमारा जो कहने का मतलब है, हमारा जो कहने का अर्थ क्या है, देखिए इसी तरह से भी
1: जी जी
0: कि मैं सिंपल एग्जांपल बताऊंगा, जैसे जाम लगा हुआ है, जाम
1: जी
0: जब आगे की गाड़ी को रुक जाती है, आगे की गाड़ी रुक जाती है और लाइनें लगती जाती है, अब समझदारी क्या है, आगे की गाड़ी को हटाएं या पीछे धक्के मारें। इसका अर्थ क्या होता है, हम पानी लें, हरड़ लें, जुलाब लें या और कोई प्रक्रिया करें, भाई नियम क्या है, हम जो आगे की गाड़ी को हटाएं। आगे की गाड़ी का अर्थ होता है कचरा, जब हमारा शरीर हुआ उसमें से सब कुछ लेता है तो आपकी जो थैली है कचरा वहां पे पहुंचता है, मल की थैली हमेशा खाली रहती है, जैसे कचरा पहुंचता है सीधी सोचना चाहते हैं हमें फ्रेश होना है। लेकिन हम जो हमारी गलत जीवन शैली के कारण, जैसे देखिए हमारे पास समय नहीं होता है, हम बिजनेस में बैठे हैं सुविधा नहीं है, हम स्टेशन में बैठे हुए अकेले सामान साथ में है, या जो नींद नहीं करते, इसी तरह से भी हम जो को रोकते हैं, रोकने के बाद उल्टी ट्रैक होती है, पेट से बीमारियां फैलती है। तो अगर हम मल की थैली को क्लीन कर दें तो रोगी नहीं होगा। तो मल की थैली को क्लीन कैसे करेंगे, देखो आपको बता दूं, ये सही में ये 100% रिजल्ट देखे हैं, चाहे कैसा भी रोगी हो, चाहे रोगी हो, चाहे कैसा भी, केवल ये यंत्र माना जो एंड पोर्शन है, जो रेक्टम है, उसको क्लीन करे। तो इसको कैसे करते हैं मैं फिर क्या बता देता हूँ। जैसे देखिए हम क्या करते हैं, ये यंत्र भी महंगा नहीं होता है, बहुत सस्ता यंत्र होता है, इसको 4 फीट हम ऊपर लगाते हैं टॉयलेट में सीट से, और इसमें पानी भरते हैं। कौन सा पानी भरते हैं, जो टॉयलेट में गर्म करना है, ठंडा करना है, तो पानी जब भरते हैं तो ये देखिए ऊपर, और ये जो है कचरा नीचे है, और ये नीचे है, तो पानी बहने लगता है। जैसे ही बहने लगता है हम क्या करते हैं, इसमें क्लैंप होता है, हम इस क्लैंप को प्रेस करते हैं, ये देखिए हमने इसको प्रेस कर दिया तो ये पानी आना बंद हो गया। जब पानी आना बंद हो गया तो छेड़े में हमने तेल लगाया, लुब्रिकेंट लगाया, थोड़ा और जगह नहीं है, मलाशय में रेखा में।

0: ये बोल है इसके लिए कल पानी के लिए इतना बाहर करते हैं पानी पानी और इसमें अच्छा सर्वे के लिए आता है। अंदर खाली होने के बाद फिर जो अपने आप अंदर जाता है फिर प्रेशर बनता है फिर रिलीज करते हैं फिर पानी बनता है फिर प्रेशर बनता है रिलीज करते हैं जो है 5 मिनट में डिब्बा 5 मिनट खाली हो जाता है। और यहाँ बहुत सारे लगते हैं इसको बाहर निकाले फिर वॉश वॉश करते हैं। ये दिन में देखिए जब पेट में भारी बनो या गैस हो तो तुरंत करना चाहिए बजाय इधर उधर भटकने से और बजाय बड़ी बीमारियां पैदा करने से। अच्छा है तुम क्लीन कर देना तो बुराई क्या है बताइए। पेट साफ
1: चलिए रमेश जी देवानी जी बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं कॉन्स्टिपेशन पर, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे, उनको बीच बीच में गायब हो जाता है वीडियो। यस रमेश जी बताइए। हाँ
0: प्रक्रिया कर ले। हाँ ये
1: जी, हेलो

0: हेलो, नमस्ते नमस्ते सूर्य प्रकाश जी, संजय झा, संजय जी नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है आपको?
1: नमस्ते नमस्ते जी, आ रही है। नहीं
0: आपका वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है? नेटवर्क इश्यू है। सूर्य प्रकाश जी, आपको
1: नहीं
0: मेरी आवाज आ रही है? सूर्य प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
2: फोकस करें।
0: जी, अभी
1: मेरी वीडियो आ रही है अभी
0: आ रही है, वीडियो आ रही है आपकी।
1: जी।
0: जी संजय जी नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते, बहुत
0: हाँ,
1: बहुत
0: आपका
1: धन्यवाद
0: नेटवर्क
1: आपका।
0: नेटवर्क में रहा है, कुछ वीडियो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आपका मूवमेंट्स नहीं दिख रहा है मेरे को।
1: अच्छा ऐसा, मुझे तो दिख रही है। 1 मिनट,
0: सूर्य प्रकाश जी नमस्ते, आप कुछ बोलो सूर्य प्रकाश जी।
2: नमस्ते आप। हाँ नमस्ते रमेश
0: आपकी
2: जी,
0: आवाज
2: कैसे हैं
0: नहीं आ रही
2: आप?
0: मुझसे बराबर, आपका वॉल्यूम ही कम है। हाँ अभी बोलो। सूर्य प्रकाश जी नमस्ते।
2: हाँ नमस्ते
0: जी, कैसे हैं आप?
2: नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है आपको?
0: बिल्कुल अभी
2: जी
0: आ
2: आ
0: रही
2: रही
0: है।
2: है। हाँ जी ठीक
0: जी
2: ठाक।
0: बताइए, आप मुंबई में करते क्या हैं?
2: हाँ मुंबई में मैं फाइनेंशियल कंसल्टिंग और बिजनेस कंसल्टिंग का कार्य करता हूँ, बिजनेसेस
0: जी,
2: और एनजीओस के साथ और इंडिविजुअल लोगों के साथ।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं फिर से एक बार। संजय जी, आप अपने बारे में बताइए हमें।
1: जी नमस्कार सभी दर्शकों को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जुड़ने का एक बार फिर से मौका दिया।
0: जी,
1: मैं अभी मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में उड़जांचल जिसे कहा जाता है वहां पे कार्यरत हूँ, और मैं आदित्य बिरला ग्रुप के एसएल माइनिंग कंपनी में माइनिंग डिवीजन में एचआर डिपार्टमेंट में
0: जी
1: काम करता हूँ, और पिछले कई
0: बिल्कुल।
1: महीनों से अभी सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में ही अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और इससे पहले मैं कार्य के लिए मैं विभिन्न राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़ हो, जैसे पानीपत मतलब हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। और फिलहाल मैं ऊर्जांचल, जो ऊर्जा की नगरी जिसे कहा जाता है सिंगरौली, वहाँ पे मैं एसएल माइनिंग कंपनी लिमिटेड में कार्यरत हूँ।
0: जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जुड़ने के लिए, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हुए मैं संजय सर से आपको जोड़ना चाहूंगा। जैसे कि फाइनेंशियल की बात हम लोग कर रहे थे, आप एनजीओस वगैरह के लिए सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली उनको स्टेबल करने के लिए प्रोजेक्ट्स वगैरह करवाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि पिछले कुछ समय में अगर आपने कोई ऐसा काम किया है किसी एनजीओ के साथ मिलकर, तो थोड़ा सा हमें जरूर बताइए। दयाराम जी बोल रहे हैं सर, रमेश जी, संजय जी की आवाज आ रही है बिल्कुल सही, संजय जी। जी सुनाइए संजय जी, सुनाइए आप। संजय जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? यस रमेश जी नमस्ते।
3: नमस्ते नमस्ते नमस्ते,
0: जी
3: आवाज
0: जी जी
3: आ रही है?
0: आ रही है आपकी आवाज आ
3: आवाज
0: रही
3: आ
0: है।
3: रही है? आवाज आ
0: यस
3: रही है
0: यस,
3: ना? मेरा
0: आ रही है मेरे भाई।
3: मेरा ये हाँ मेरा एक नम्र निवेदन है कि हमारे बीके के भाई और बहन, ये अगर इस बात का ध्यान रखेंगे, यानी पेट साफ तो बीमारी माफ, तो वो बहुत ज्यादा कार्य कर सकेंगे। उनको कोई भी व्याधि नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने वैसे ही जो अच्छा रास्ता चुना है, जो राजयोग है वो सबसे अच्छा योग है, लेकिन उसको साधने के लिए ये हमारा तन जरूरी, हमारे एक वैज्ञानिक ने बोला है कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ये जो मशीन दी है, मशीन फिट होगी तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। मेरा निवेदन है कि पूरे जितने भी हमारे भाई बहन और

0: जी जय कुमार जी, नमस्ते।
1: करो।
0: नमस्ते,
1: भैया
0: मेरी
1: ओम
0: आवाज आ रही
1: जी,
0: आपको?
1: भाई जी, ओम शांति।
0: ओम शांति, ओम शांति। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें।
1: जी भाई, बिल्कुल।
0: और रमेश जी का फिर से नेटवर्क इश्यू हो गया। संजय जी का वीडियो नहीं दिख रहा है। शायद थोड़ा सा
1: वीडियो
0: बहुत टेक्निकल इश्यू हो गया है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही। चलिए जय कुमार जी, थोड़ा सा बताइए, आप वीडियो सेटिंग में बहुत टाइम लेते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, फिक्स नहीं कर रखा है क्या आपने?
1: नहीं भाई जी, थोड़ा दूसरे काम में भाई जी का फोन।
0: चलिए अच्छा है। और संजय जी, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, एक बार रीस्टार्ट कीजिए मोबाइल को, नेटवर्क चेक कर लीजिए और अपना प्ले स्टोर में जाके गूगल क्रोम को अपडेट कर लीजिए एक बार। चलिए जय कुमार जी, आपका
1: जी भाई जी, अभी
0: वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है? चलिए बताइए देखो मुझे। हाँ
1: भोपाल जोन है, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले से
0: जी
1: मैं बिलोंग करता हूं। और मैं मतलब अपना छोटा सा काम भी करता हूँ, घर परिवार में रहता हूँ। और जो ज्ञान योग की जो क्लास है, उसमें भी समय निकालकर
0: जी
1: क्लास
0: जी
1: करता
0: जी
1: हूँ। जी,
0: एक छोटा सा गीत सुनाइए फिर।
1: जी भाई जी, बिल्कुल भाई जी।
0: जी
1: एक गीत है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। म्यूजिक नहीं है, ऐसे ही सुना रहा हूं मैं।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सुनाइए।
1: खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। आन मिले प्यार प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में। ओ आन मिले प्यार प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में। ओम शांति भाई जी।
0: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जय कुमार जी, बहुत ही प्यार संगीत आपने सुनाया। खिले है उपवन हमारी राहों में। चलिए आज संजय भाई का भी वीडियो नहीं दिख रहा है, कोई कारण हो सकता है कि नेटवर्क इशू, किसी भी तरह का स्लो फास्ट वगैरह हो सकता है। तो आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर संपन्न करते हैं और फिर मिलते हैं कल इस वादे के साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणेशा, जय हिंद, जय भारत, ओम।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष करके विशेष मुलाकात कार्यक्रम में। मैं हूँ आरजे उषा और आज आपको ऐसे अतिथि से मिलवाने जा रही हूँ जो आप मुंबई ठाणे से पधारे हैं। आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, कहते ना विशेष मुलाकात विशेष से शुरू होता है, तो विशेषताओं से भरा हुआ खजाना है आपके पास। आप बॉम्बे बीएमसी में आप प्रशासकीय अधिकारी के पद पर आप कार्यरत रह चुके हैं, अभी आप कुछ समय पहले ही रिटायर्ड हुए हैं। बैंक में आप डायरेक्टर भी हैं, आप गेम्स में संचालन का कार्य भी करते हैं और आपका शुभ नाम है जालंधर लाहकू चकोर है आपका नाम। और बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आपके माध्यम से ही आपके द्वारा ही हम जानेंगे।
1: ओम शांति कह सकते हैं दीदी।
0: तो ओम शांति जालंधर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में। और हम आपसे यही जानना चाहेंगे, चलिए बचपन से ही शुरुआत कर लेते हैं कि कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचते किस तरह आपको स्ट्रगल करना पड़ा, किस तरह का आपको माहौल मिला, कितने भाई बहन वगैरह है।
1: दीदी जी, कहा जाए तो हमारे जो डैडी थे वो पुलिस विभाग में थे और वो अध्यात्म से जुड़े हुए थे।
0: जी
1: उन हमारे घर में नियमित पूजा पाठ चलता था। हाँ
0: जी,
1: और वो उनका जो जैसा अपने आप सवेरे का जो ये रहता है
0: मेडिटेशन
1: रहता है, वो जैसे हमारे डैडी करते थे उनका हम देखते थे और वो करते करते हम मेडिटेशन में आ गए।
0: अच्छा, क्या बात है, प्रभाव आप पर भी पड़ा
1: पड़ा
0: जी, बहुत अच्छा। तो
1: जो ब्रह्म
0: जो ये
1: मुहूर्त रहते
0: प्रभाव पड़ा मेडिटेशन का, आपको कैसा लगा?
1: मेडिटेशन का प्रभाव अच्छा ही लगा। उसके बाद हमारे जो हमारी मिसेस पत्नी है जिनसे 1995 में शादी हुई, वो भी नासिक के राम मंदिर है वहाँ पे ही पली बड़ी है, उनका भी प्रभाव हुआ। वो भी नॉन वेजिटेरियन है और वो भी अध्यात्म से जुड़ी हुई है।
0: जी, बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि आपको बचपन में माहौल कैसे मिला, जैसे आपके पिताजी अध्यात्म में थे तो माहौल भी अच्छा ही मिला होगा। तो कितने भाई बहन आप हैं?
1: हम दो भाई और एक बहन है। यानी मेरे बड़े भाई पुलिस सब इंस्पेक्टर करके रिटायर्ड हो गए, एक मेरी छोटी सी बहना है उसकी भी शादी हो चुकी है।
0: जी। और आपने कैसे पढ़ाई की शुरुआत की, आपको पढ़ाई में शुरू से रुचि थी या बाद में?
1: नहीं, पढ़ाई से मुझे शुरू से रुचि थी और खेल में भी रुचि थी, मैं दोनों माध्यम से आगे बढ़ते जा रहा था। पढ़ाई भी मैंने मेरी बीकॉम तक पूरी की, उसके बाद में मैंने एलएलबी पूरा किया, उसके बाद में मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशन का मैं डिप्लोमा पूरा किया, उसके बाद में आजकल उसका भी व्याख्या था, वो हमारे यहाँ पे बड़े से लेक्चर्स देता था। और स्पोर्ट्स के माध्यम में जो शूटिंग बॉल कहते हैं, हॉलीबॉल डायरेक्ट जो खेला जाता है,
0: जी
1: उसमें भी हमारे बीएमसी को रिप्रेजेंट करके नेशनल्स टीम में भी हुआ। उसके बाद अभी मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हूँ और ये सब करते करते मैं अभी हमारी जो फेडरेशन है सैलरीड एम्प्लॉयज की महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी एक तज्ञ संचालक करके भी कार्यरत हूँ। और
0: जी
1: सामाजिक एक दो संस्थाएं भी जो अध्यात्म से निगड़ित है और जो है उनसे भी मैं जुड़ा हुआ। और फिलहाल अभी मैं 1 मार्च 2026 में सेवानिवृत्त होके मेरा एलएलबी हुआ था, तो मैंने मेरी जो सनद है लॉ की विधि की वो भी मैंने अभी ले ली है और उसमें
0: अच्छा,
1: मैं कार्य करना चाहता हूँ।
0: तो आप सेवानिवृत्त होने के बाद भी कुछ न कुछ करना चाहते हैं, और अच्छा है। आप एलएलबी क्यों करना चाहते हैं?
1: नहीं, मैंने मेरी एलएलबी में जब बीएमसी में लगने के पहले दो 1996 के पहले मिस 90 to 1996, 1990 से लेकर 1990 तक 6 साल मैंने जिला और सत्र न्यायालय थाना में काम किया था। और उसके बाद में मैं बीएमसी के लगा तो वो दरमियान मैंने 2008 में मेरा विधि की स्नातक की पदवी मैंने ली थी, एलएलबी की
0: जी,
1: पदवी ली थी मैंने।
0: अच्छा, तो आपको जैसे समाज सेवा करनी है या फिर ऐसे ही शौक है आपको?
1: नहीं, विधि में मैं था तो बीएमसी में रहते थे तो हम बीएमसी की केसेस में शासन की केसेस के लिए रह सकते, खुद एज ए एडवोकेट करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमारी रुचि है कि अभी एडवोकेट करके भी अगर कुछ लोगों के लिए समाज भाव कर सको तो अच्छा रहेगा।
0: जी, बहुत अच्छी सोच है। तो आप पढ़ाई में बचपन से होशियार रहे। देखिए, आज तो आप 60 की एज में रिटायर्ड भी हो चुके हैं, है ना, लेकिन इस पद तक पहुंचते पहुंचते आपने मेहनत भी की होगी, काफी चैलेंजेस भी आए होंगे। तो कैसे आपने उसका सामना
1: नहीं,
0: किया?
1: बचपन से मैं होशियार मीन्स एकदम टॉपर भी नहीं था डिस्टिंक्शन में आने वाला, लेकिन मैं मेरे लेवल पे हर मुकाम में जाने के बाद आगे कुछ करना है। जैसा मेरा, मैंने 10वीं किया, बाद में मैंने वाणिज्य शाखे में एडमिशन ले लिया। वाणिज्य शाखे में लेते लेते मैंने वाणिज्य की पदवी ले ली बीकॉम की। उसके बाद में मैंने विधि की पदवी ले ली एलएलबी की।
0: जी
1: एलएलबी की लेने के बाद कुछ बीएमसी में काम करते करते मैंने माहिती अधिकार 2005 जो अन्ना हजारे का कायदा है,
0: जी
1: तो उसमें भी मैंने डिप्लोमा इन राइट टू इन्फॉर्मेशन बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैंने कर लिया। तो उसका भी मुझे आज किसी जगह पे लेक्चर से व्याख्यान देते टाइम उसका भी मुझे सहयोग होता है।
0: अरे वाह, क्या
1: उसके बाद
0: बात
1: में
0: है।
1: मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका मानवीय हक आयोग का भी एक डिप्लोमा कर लिया। आजकल जो साइबर फ्रॉड होते हैं तो उसका
0: जी
1: मैंने साइबर क्राइम का भी एक डिप्लोमा कर लिया। उसके बाद ये जर्नलिज्म है, जर्नल करके भी मैं थोड़ा बहुत कुछ लिख लेता हूँ, जर्नलिज्म भी मैंने कर लिया है।
0: क्या बात है, आपने क्या छोड़ा ये बताइए। जी
1: नहीं, जैसे भी मेरे
0: जी
1: किसी के मैं सानिध्य में आ जाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता है। जैसे कि 2005 में मैं स्पोर्ट्स विंग में, मैं हॉलीबॉल से जुड़ा हुआ, तो स्पोर्ट्स विंग के थ्रू हमारी जयश्री बिन खिलारे है और ये हमारे अभी कमलेश भाई पांचाल है, उनकी यहाँ से हम 20-21 जन यहाँ पे तभी आए थे। यहाँ
0: जी
1: पे पार्थिव पटेल इंडिया के विकेट कीपर थे और ऐसी बड़ी मानी जानी हस्ती यहाँ पे मुझे मिली। और यहाँ पे आने के बाद मेरे पास से बहुत से, मेरा एंगर कम हुआ, मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया,
0: क्या
1: ऐसे
0: बात
1: बहुत
0: है।
1: से बदलाव मेरे में आ गए।
0: जी।
1: और आज फिर से आज मैं दोबारा माइंड मनी मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है उसके लिए 12 से 16 अगस्त तक इसके लिए मुझे ब्रह्मा बाबा ने बुला लिया, ऐसा मैं सोच रहा हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आपका स्वागत है
1: अरे
0: रेडियो
1: खुशी की,
0: मधुबन और इस संस्था में।
1: अरे खुशी की बात है कि साथ में मेरी धर्मपति शीतल जी भी है, वो भी अध्यात्म से जुड़ी हुई है।
0: जी, इनसे तो बात करेंगे, पहले हम आपसे बात करते हैं। तो यहाँ आने के बाद और विशेष आपने क्या सीखा? जैसे आप दुनिया में तो बहुत कुछ कर चुके हैं, है ना, आपको पढ़ाई में भी रुचि है, इतनी सारी डिग्रियां भी आपने प्राप्त की है, और ये आप किसी से गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़े या आप अपने ही दम पर?
1: नहीं, हर गाइडेंस के बिना, गुरु जो कहते हैं, हर क्षेत्र में एक गुरु रहता
0: जी
1: है। जैसे तुम शिक्षा में जाते हो तो गुरु रहता है, अध्यात्म में आते हैं तो जैसे हमारे जयश्री बिन खिल्लारे बोला कि मधुबन के लिए जो विक्रोलिया सेंटर से जुड़ी हुई है उनका गाइडलाइंस मिलता है। हर फील्ड में कोई ना कोई मुझे जो मेरे गुरु है वो मिलते गए।
0: जी तो जो आपको अच्छा लगता गया वो आप स्वीकार करते गए।
1: हमारे जो डैडी के गुरु थे वो भी हमारे महाराजा, वो मेरे गुरु है विशेष थी।
0: जी, हर एक से आपने सीखा।
1: हर एक से मैंने कुछ ना कुछ ली, जैसे क्रीड़ा में मैंने किसी से लिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या, माहिती के अधिकार में किसी से लिया, ह्यूमन राइट से किसी से लिया। मेरे यहाँ पे बहुत से विधि के स्नातक है उनसे, वो मेरे दोस्त है। कोई
0: जी
1: बैंक के डायरेक्टर से वो दोस्त है, बड़े बड़े बैंक के जो महाव्यवस्थापक है वो हमारे दोस्त है।
0: जी

0: हमारे घर में आ गया और इसकी जो मेरे से बहुत से जो मेरे साथ में मेरे कोई आते हैं, मेरा जब भी लेक्चर्स रहता है तो मुझे जुड़ जाते हैं और उनको जहाँ पे भी कोई संकट आ जाता तो मुझे कॉल करते हैं। और ये सब गुरु है या सबकी शिक्षा की वजह से मैं उनको हर संकट में या जहाँ किसी को मेरी सहयोगता लगती हो मैं मार्गदर्शन करते रहता हूँ।
1: बहुत बढ़िया। वो कहते हैं ना कि समाज में ऐसा ही होता है ना, लेन देन, किसी से हम लेते हैं फिर हम किसी को देते हैं। तो काफी आपसे प्रेरणा भी ले रहे हैं। और चलिए, वो कहते हैं चैरिटी बिगेंस एट होम, शुभ शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। तो आपके बच्चे भी काबिल हैं, आपका पूरा परिवार अच्छा तरह चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल देखते हैं कि आपसी मनमुटाव इतने होते हैं कि एक का विचार अलग, दूसरा दूसरी दिशा में जाता है। लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं है, आपसे सभी प्रेरणा ले रहे हैं, घर वाले बाहर वाले। बहुत अच्छा लगा। और आपकी धर्म पत्नी से भी हम बात कर लेते, फिर आपसे वापस बात करेंगे। आइए शीतल जी।
0: नमस्कार
1: हाँ जी, ओम शांति। नमस्ते शीतल जी, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में।
2: नमस्ते, ओम शांति।
1: अच्छा, आप भी अपने पहले से शॉर्ट परिचय जरूर दीजिएगा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की, क्या करते हैं आप?
2: मेरा नाम शीतल जालंधर चकोर, शादी से पहले शीतल दत्तात्रेय दराड़े, जैसे हमारे में पहले पिता
1: सभी
2: का
1: में
2: नाम लगाते हैं
1: जी
2: वैसे
1: जी
2: सभी
1: जी
2: में। वैसे मेरा
1: हाँ
2: बचपन पूरा नासिक में गया,
1: जी।
2: नाइन्थ
1: पढ़ाई
2: में।
1: कहाँ तक की है आपने?
2: पढ़ाई मैंने BSc तक की, उसके
1: जी
2: बाद एक कंप्यूटर का डिप्लोमा किया, और फिर 95 में शादी हो गई।
1: जी
2: हाँ
1: तो जालंधर जी के साथ आपका कैसा तालमेल है?
2: अच्छा है, बहुत 30 साल की शादी बहुत अच्छे से जा रही है।
1: बहुत अच्छी बात है कि मतलब 30 साल किसे कहते हैं, आजकल हम देखते हैं 3 दिन में खिटपिट शुरू हो जाती है।
2: शादी तो एडजस्टमेंट का नाम है, कभी उन्होंने आवाज किया तो मैं चुप रहना चाहिए, कभी मैंने किया तो वो चुप रहना चाहिए, ऐसे चल रही
1: जी जी जी
2: है। और ऐसे बोलते हैं, इतने 30 साल के बाद साथ में रहते हैं तो बाद में वो मियाँ बीबी से ज्यादा एक दूसरे का स्वभाव देख के भी पहचान जाते हैं कि अभी उनके मन में क्या चल रहा है
1: जी बिल्कुल,
2: ऐसे
1: वो तो मन की बात समझ ही जा लेते
2: जाते
1: हैं
2: हैं।
1: ना।
2: हाँ
1: तो विशेष जालंधर जी के साथ रह करके क्या सीखने को मिला स्पेशल?
2: सबसे उनकी खूबी तो है कि सबको मदद करने की, और कभी भी किसी को ना नहीं बोल सकते हो। उनके डिक्शनरी में ना शब्द ही नहीं है। कोई बोलेगा कि ये फोन करेगा ये करने का है, हाँ जरूर मदद करने के, घर फैमिली को से पहले वो समाज कार्य के लिए बहुत तत्पर रहते। वो इतना बोल नहीं पाए, खुद के बारे में कैसे बोलेंगे इसलिए।
1: जी जी
2: हाँ लेकिन 24/7 उनका फोन कभी भी ऑफ नहीं रहता है, कभी
1: जी
2: भी फोन उठाएंगे। और कौन से भी फील्ड का आदमी रहे, उसको मेडिकल की जरूरत है, उसको कुछ गाइडेंस की जरूरत है, बच्चों का एडमिशन की जरूरत है, तो हाँ ही बोलेंगे उसको। और उनकी तरफ से जितना मदद कर सकते हैं ना, उतनी वो करेंगे ही करेंगे।
1: कभी ऐसा तो नहीं लगा कि कभी आपका कार्य रह गया हो और दूसरों के कार्य में वो
2: वो
1: व्यस्त हो गए
2: ऐसा
1: हो तो थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है ना कि ये क्या घर का काम पड़ा है और बाहर जा रहे हैं?
2: ऐसे ऐसे हुआ है, मन में आया है, लेकिन अभी नहीं लगता है। वो हर एक स्टेज रहता है ना, तभी
1: जी
2: कभी कभी हो जाता है कि क्या है ये, दूसरों का ही ज्यादा सोचते हैं, ऐसा हो जाता
1: जी
2: है होता था, अभी नहीं लगता है कि जो
1: जी
2: अभी तो हम लोग मान चुके हैं कि ये दूसरों के लिए ज्यादा पहले अवेलेबल रहेंगे।
1: आपको सभी को इस काबिल बना दिया कि आप खुद का खुद कर सको।
2: हाँ, मतलब फैमिली टाइम भी देते हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी, क्वांटिटी टाइम नहीं देंगे, क्वालिटी टाइम दिया है उन्होंने, बच्चों को भी मुझे भी।
1: जी जी चलिए बहुत अच्छा है, क्वालिटी टाइम दिया है तो उससे क्वालिटी ही आई है
2: यस यस
1: और दुआएं भी कमा रहे हैं दूसरों की सेवा करके।
2: यस
1: तो
2: यस यस
1: ऐसे लोग समाज में आजकल बहुत कम है,
2: कम है
1: ऐसे
2: सब
1: नहीं कहेंगे कि नहीं है लेकिन कम है।
2: कम है।
1: तो ऐसे लोगों की समाज को आवश्यकता है
2: यस
1: और
2: यस
1: इसमें आप सभी सहयोग कर रहे हैं। ये भी
2: यस
1: देखो आप भी दुआएं कमा रहे हैं, कहीं आप मना कर दो तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप भी
2: नहीं
1: जब पीछे से कहते हैं ना कि सपोर्ट मिल जाता है तो निश्चिंत होकर के इंसान कर सकता है।
2: यस
1: तो चलिए, और आप अपने बारे में बताइए कि आपकी क्या ख्वाहिश थी अभी, जैसे आप जॉब नहीं करते, कभी आपके जॉब की इच्छा थी या विशेष आपको क्या करना था और कर नहीं पाए?
2: मैंने पहले शुरू में जॉब किया है, फिर बाद में इनका व्यस्त स्वरूप देख के मैंने एक पीछे कदम ले लिया, क्योंकि बच्चों को भी अच्छी परवरिश देना जरूरी था।
1: जी
2: और इनका एक एक ही खाली सुबह

0: बजे जाओ, 6 बजे आओ जाओ, ऐसा नहीं था कि स्पोर्ट्स भी कर रहे, कुछ नया नया सीख भी रहे। एक करके दो दो जॉब भी किए हैं उन्होंने शुरू के इसमें, कि
1: जी
0: हाँ अपने परिवार के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी थोड़ा बच्चों के परवरिश के लिए मैं रुक जाती हूँ, इसके लिए मैं रुक गई। इसका मुझे अफसोस नहीं लगा, कभी लगा होगा एक हाथ बार,
1: जी
0: लेकिन अभी तो मैं बहुत खुश
1: क्योंकि
0: हूँ।
1: ज्यादातर महिलाओं को त्याग करना पड़ता
0: हाँ, लेकिन अच्छी होममेकर बनना भी बहुत बड़ी बात है, और वो
1: जी
0: मैं हूँ। इसका मुझे
1: जी
0: अभिमान है कि मैं अच्छी होममेकर हूँ। मेरे को दोनों बच्चों को मैंने अच्छे संस्कार दिए, अच्छा बड़ा किया। तो
1: यही
0: सब
1: बहुत है।
0: बोलते हैं कि नहीं, मेरा मतलब मेरी खुद की सिस्टर जॉब करती सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसको मैं कभी कभी बोलती ना कि देख तू अच्छे पोस्ट पे, मैं भी रहती अगर मैंने नहीं छोड़ा होता। तो बोलती नहीं, तूने दो बच्चों को इतने अच्छे से बड़े पोस्ट पे गए, ये 2 डिग्रियां है तेरे पास।
1: सही है, बिल्कुल। संस्कारिक बनाना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि बच्चे किधर जा रहे हैं, माता पिता की सुनते नहीं है, तो वो संस्कार भरना बहुत अच्छा। तो कभी आपको
0: और
1: अफसोस
0: ये
1: तो नहीं
0: ना,
1: हुआ कि जॉब छोड़ दी?
0: नहीं
1: और
0: नहीं कभी भी बच्चों का पहला नंबर आता तो मेरे हस्बैंड उसको रिपोर्ट कार्ड देख के बोलते थे, तू पहला नहीं आया, तेरी मम्मी पहली आ गई। तो
1: क्या
0: उसमें
1: बात
0: मैं
1: है।
0: खुश हो जाती
1: जी
0: थी।
1: जी बहुत बढ़िया।
0: और
1: तो
0: मैं एक आध्यात्मक, जो हमारा परमार्थ निकेतन करके है,
1: जी
0: परमच कलावती देवी,
1: जी
0: वो मेरे गुरु है। तो उनकी संस्था की मैं 6 साल ट्रेजरर थी, उधर
1: अरे वाह,
0: का सब जो था वो मैं संभालती थी। अभी भी मैं उधर जाती हूँ, अभी
1: जी
0: पोस्ट पे नहीं हूँ, मतलब कमिटी में नहीं हूँ, लेकिन साधना के लिए जाती हूँ।
1: बहुत
0: वहाँ
1: अच्छा
0: भी
1: है।
0: 3 टाइम साधना होती है, भजन और ध्यान लगाना, नाम जप वगैरह ऐसा सब होता है।
1: जी, बहुत
0: हाँ
1: बढ़िया। जाते जाते हमारे श्रोता बंधुओं को क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज?
0: मतलब अगर हस्बैंड वाइफ और फैमिली के लिए तो मैं बोलूंगी कि महिलाओं के लिए भी बोलूंगी कि अगर जॉब भी करनी है तो भी घर संभाल के करनी चाहिए, और जो घर में है होम मेकर, उन्होंने कभी गिल्ट नहीं लेना चाहिए कि हम लोग क्या होम मेकर है। होम मेकर ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। बाहर जाकर तो सब अपने करियर में तो करते हैं, लेकिन होम मेकर बनना ये सबसे इम्पोर्टेंट है
1: जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी
0: पूरा।
1: पड़ती है।
0: हाँ,
1: जी
0: तो वो बताने चाहूंगी। और
1: जी तो
0: अगर अपने हस्बैंड आगे जा रहे हैं तो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, ये भी बताऊंगी। कभी कभी उस वजह से भी मन मुटाव हो जाते हैं,
1: जी
0: तो ऐसा ना करके उनको सपोर्ट कीजिए और अच्छा होममेकर बन के दिखाइए।
1: जी बहुत बहुत आभार शीतल जी, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपना खुद का परिचय भी दिया, खुद का अंदर के जो आपके फीलिंग्स थी वो हमारे श्रोता बंधुओं तक पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद। ओम शांति।
1: ओम शांति। तो जालंधर जी, जैसे आपकी धर्मपत्नी बता रहे थे कि किस तरह आपने जॉब छोड़ करके परिवार पर ध्यान देना शुरू किया कि भाई बच्चों का करियर बनाना बहुत जरूरी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
0: उन्होंने एक बात नहीं बताई, आपने यहाँ पे भी ब्रह्म का मुहूर्त जो रहता है ना,
1: जी
0: वैसे ब्रह्म मुहूर्त 4 से 4:45 है, तो ये मेरी बीवी 6 बजे के पहले सबका टिफिन से वो सब, तो उनके मैं बोला ना डिवोशन अध्यात्म, जैसे आज भी ब्रह्मा बाबा है अपने यहाँ पे डिवोशन, मैं 2005 में आया और आज ये जो मेरा 25 साल का जो फैसला है ना, उस 20 साल का, तो मुझे लग रहा है मैं बहुत मिस कर रहा हूँ करके, इतने साल के बाद है मैं डिवोशन से जुड़ा, उतनी डिवोशन से वो जुड़ी हुई, और कभी भी मैंने उसको जो जैसा ब्रह्म मुहूर्त पहला उसके पहले वो रेडी होके उसके अध्यात्म उसका जो सेंटर है वहाँ पे वो चली जाती है, वो उसका मेन मेडिटेशन मेन रीजन है उसका,
1: जी
0: घर
1: जी
0: गृहस्थी उसके वजह से वो संभाल सकती है।
1: जी जी तो जैसे आपको जॉब छोड़नी पड़ी, वो कहते हैं कि महिला त्याग क्यों करती है?
0: नहीं, महिलाओं ने त्याग नहीं किया, उसने बहुत बार स्कूल में जॉब किया, कंप्यूटर क्लासेस में ये सब किया, और जब बच्चों के पढ़ाई आई तो उन्होंने जॉब नहीं छोड़ा, उन्होंने और एक जॉब उन्होंने चालू किया। अगर बोलते हैं कि अपने एक महिला अगर सुशिक्षित और सुसंस्कृत हो जाए और उनके दो बच्चे हैं, उनका परिवार सुशिक्षित और पूरा वो समाज को सुशिक्षित कर सकते हैं।
1: जी, वो कहते हैं कि महिला पढ़ी लिखी होगी तो पूरे परिवार को भी शिक्षित कर
0: समाज
1: पाएगी।
0: समाज हाँ
1: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप हमारे श्रोता बंधुओं को क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं श्रोता बंधुओं को इतना ही करूंगा, अगर तुम अध्यात्म से जुड़ जाओगे तो तुमको एजुकेशन आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा तो तुम समाज के लिए बहुत कुछ कर जाओगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे हम स्पोर्ट्स विंग के कार्यक्रम में 2005 में आए थे, आज हम माइंड मनी मैनेजमेंट में यहाँ पे मानसरोवर में आए हुए हैं, और जैसे अभी भी हमारे यहाँ का विक्रोली का सेंटर है, ठाणा का सेंटर है, वहाँ पे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे मेडिटेशन, जब तुम्हारा माइंड फिट रहेगा तो तुम समाज को कुछ तो भी दे पाओगे। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे अभी जो मनी माइंड मैनेजमेंट का है जो सेशन मैं ये 12 से 16 में करने वाला, उसके बाद मैं समाज के लिए और कुछ दे पाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है।
1: क्या बात है, तो बहुत बहुत आभार, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपना पूरा परिचय दिया, कैसे आपने शुरुआत की, कैसे आपने जॉब की। अच्छा, लास्ट में ये पूछना चाहूँगी कि आप भाई 60 साल की उम्र तक आपने जो कारोबार संभाला, उसमें चैलेंजेस भी तो आए होंगे।
0: चैलेंजेस बहुत आए। मैं अभी आपको बताया कि 1 मार्च 2026 में एट द एज ऑफ 58 मैं रिटायर्ड हो गया। वहाँ पे मैं जॉब करते, मैं बोला पहले 6 साल में 1996 में जिला व सत्र न्यायालय में था। उसके बाद में मैंने 29 साल 6 महीना मैंने बृहन मुंबई महानगर पालिका के विविध 11 से 12 डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। जैसे कि हमारा बॉम्बे सेज द क्लीनलीनेस, आखिर वो डिपार्टमेंट SW में, वहाँ से मैं, उसके पहले कोविड में मैं केम हॉस्पिटल में था। लोगों को मालूम है कि मैं केम में हूँ तो आज भी मुझे आते कि बाबा हमारा कोई पेशेंट को ये हुआ, या मैं कुछ कर नहीं सकता, बट आई कैन गिव देम द गाइडेंस। और ये जब मैं बोला कि मैं चुनावी मामले में, जैसा कि कोऑपरेटिव जो फील्ड है, कोऑपरेटिव मूवमेंट है, उससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। हमारा जो कोऑपरेटिव म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक है, उसके इलेक्शन होते हैं, उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ।
1: जी, तो यहाँ मैं चैलेंज की बात कर रही हूँ कि कभी किसी ने मन में ईर्ष्या भी आई होगी, कभी आपको पीछे खींचने की भी कोशिश की होगी।
0: चैलेंजेस में तो रहता है, कोई अच्छे लोग भी रहते, बोलते हैं अच्छे दिन और बुरे दिन रहते हैं ना दैट, लेकिन तुम्हारा पॉजिटिव माइंड रहेगा तो यू कैन गो अहेड।
1: जी हाँ, क्या बात है।
0: देखो मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, जब तुम हारते हो तो उसमें भी जीत समझने की, और जीतते हो उसमें भी जीत समझने की।
1: जी, बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत आभार जहाँ आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन का परिचय दिया, किस तरह आपने अलग अलग क्षेत्र में कार्य किया और इस मुकाम तक पहुँचे हैं, बहुत बहुत आभार आपका।
0: ओम शांति दीदी जी।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विशेष मुलाकात, और विशेष मुलाकात में हम आज के लिए बस इतना ही, अगली बार नए मेहमान से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते दोस्तों, आज सुबह जब मैंने गर्मा गर्म मेथी के पराठे खाए तो मैंने सोचा घर के खाने की बात तो कुछ और ही है। स्वाद और सेहत दोनों का मजा। चलो अब मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से, जो कि मुरली, राजू और लल्ला के साथ पकड़न पकड़ाई का खेल खेल रही है।
1: मुरली, मुझे पकड़ो।
2: मीना, तुम कितना तेज दौड़ती हो।
3: तेज दौड़ती हो, सबको पीछे छोड़ती हो।
4: मुरली, मुरली बेटा, तुमने आज आंगन के पेड़ से अमरूद तोड़े थे क्या?
1: नहीं तो माँ, क्यों?
4: कोई हमारे अमरूद चुरा रहा है मुरली, देखो तो ये पेड़।
1: अरे हाँ माँ, अब क्या करें मीना?
5: हम सब इस पेड़ के आसपास छुप जाते हैं। हाँ मुरली, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं वहाँ छत पर, और लल्ला राजू तुम दोनों पास वाले आम के पेड़ पर, ये ठीक रहेगा, ऊपर से सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा और जो भी अमरूद चुराता है वो जरूर पकड़ा जाएगा।
0: अमरूद चोर को पकड़ने के लिए सब अपनी अपनी जगह छुप गए, लेकिन मुरली।
5: मुरली, पेड़ पर चढ़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन तुम तो बिल्कुल थक गए।
2: थका थोड़ी हूँ राजू, बस ऐसे ही जरा।
0: मुरली, मीना, राजू और लल्ला चौकन्ने होकर नीचे देख रहे थे। अचानक एक लड़के ने फल तोड़ने के लिए अमरूद के पेड़ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मुरली पेड़ से उतरकर उस लड़के के पीछे भागा, लेकिन थोड़ी सी दूर भागने से ही मुरली थक गया। वो लड़का मुरली से काफी आगे निकल गया और मुरली हाँफता हुआ वापस लौट आया।
5: मुरली, तुम थोड़ा और तेज भागते तो उसे जरूर पकड़ लेते।
2: राजू, मैं तेज भागता हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होने लगता है।
4: कोई बात नहीं बेटा, हमने उस लड़के का चेहरा ठीक से देख लिया है, अगली बार कहीं मिला तो हम उसे पकड़ लेंगे। अब तुम मुँह हाथ धो लो, मैंने गर्मा गर्म पालक के पराठे बनाए हैं।
2: माँ, मुझे पराठे नहीं खाने, मुझे पालक अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी अब मैं बहुत थक गया हूँ। मीना, राजू, लल्ला, कल स्कूल में मिलते हैं।
0: और अगले दिन मीना की क्लास में।
6: देखा बच्चों, 17 का पहाड़ा कितना आसान है। मुरली, अब तुम एक सवाल का जवाब दो।
2: जी बहन जी।
6: अगर एक डिब्बे में 17 कंचे हैं, तो ऐसे 9 डिब्बों में कितने कंचे होंगे?
2: एक डिब्बा 17 कंचे, मतलब 9 डिब्बों में। बहन जी, मुझे इसका जवाब नहीं आता।
7: 17 निम्मे 153, हाँ 153 कंचे।
6: शाबाश कृष्णा। देखा मुरली, अगर तुमने क्लास में पूरा ध्यान दिया होता तो जवाब तुम भी दे सकते थे।
2: जी बहन जी।
0: और स्कूल की छुट्टी के बाद।
5: मुरली, वो देखो, वही लड़का जो अमरूद चुरा रहा था।
1: अरे हाँ मीना, ये तो वही लड़का है, चलो उसे पकड़ते हैं।
0: चोर मीना और मुरली को अपनी तरफ आते देखकर भागने लगा। मीना बहुत तेज भागी, लेकिन तब तक चोर बस पर चढ़ गया।
2: मीना, क्या हुआ?
1: वो लड़का कहाँ गया?
5: वो मेरे पहुँचने से पहले ही बस में चढ़ गया मुरली, लेकिन तुम इतना हाफ क्यों रहे हो?
2: मीना, ना मैं पढ़ाई में ध्यान लगा पाता हूँ, और खेलने कूदने और भागने से भी जल्दी थक जाता हूँ।
5: एक बात कहूँ मुरली, मैंने कई बार देखा है, ना तुम हरी सब्जियाँ खाते हो, ना ही अंडे, और
2: वो मीना, मैं अब चलता हूँ, पिताजी को घुटनों में बहुत दर्द है, डॉक्टर बाबू को भी आज ही उनकी जांच के लिए आना था।
5: ठीक है मुरली, कल मिलते हैं।
0: और जब मुरली घर पहुंचा।
4: मुरली बेटा, डॉक्टर बाबू का कहना है कि अब तुम्हारे पिताजी का घुटना पहले से काफी बेहतर है, तुम मुँह हाथ धोकर खाना खा लो, मैंने आज पालक की सब्जी बनाई है।
2: पालक? नहीं माँ, अभी भूख नहीं है, बहुत थक गया हूँ मैं।
8: क्या हुआ मुरली?
4: डॉक्टर बाबू, ये जरा सा भी भागता है तो थक जाता है, और बहन जी कहती हैं कि क्लास में भी ध्यान नहीं लगा पाता, समझ नहीं आता क्यों।
8: मुरली, जरा अपने नाखून दिखाओ। तुम्हारी आंखें भी कुछ फीकी सी लग रही हैं। तुम अपने खाने पीने का ध्यान तो रखते हो ना?
2: जी वो मैं
4: बताती हूँ डॉक्टर बाबू, ये अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। जब देखो कचौड़ी, लड्डू, समोसे, बस ऐसी ही चीजें खाने की जिद करता रहता है।
8: मुरली, तुम्हें जो खाना पसंद है वो स्वादिष्ट तो होता है, पर तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इनमें आयरन नहीं होता। खाने में आयरन का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो शरीर में ताकत कैसे आएगी।
5: आयरन? आयरन से क्या होता है डॉक्टर बाबू?
8: मुरली, आयरन से ही शरीर में खून बनता है और ताकत मिलती है, और तो और दिमाग भी तेज चलता है। अभी तो तुम्हारी बढ़ने की उम्र है, इसीलिए खूब सारी हरी सब्जियां, अंडे वगैरह खाया करो, इनमें आयरन होता है।
5: डॉक्टर बाबू, अगर मैं ये सब खाऊं तो क्या मैं तेज भाग सकूंगा?
8: बिल्कुल ना, तुम ऐसे थकोगे और क्लास में भी पूरा ध्यान लगाकर हर सवाल का सही जवाब दे पाओगे।
4: मुरली, पालक की सब्जी के साथ मैंने अंडे की भुर्जी भी बनाई है, खाओगे ना?
5: ढेर सारी खाऊंगा माँ।
8: शाबाश, और ये लो
5: दवाई।
8: दवाई नहीं, ये है आयरन की गोलियाँ। रोज आयरन की एक गोली खाने से धीरे धीरे तुम्हारी कमजोरी भी दूर हो जाएगी।
0: उस दिन से मुरली ने रोज हरी सब्जियाँ, अंडे, आयरन से भरपूर चीजें खाना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद एक दिन मुरली की माँ ने उस अमरूद चोर को फिर से देखा।
1: चोर, चोर, अमरूद चोर!
5: तुम चिंता मत करो माँ, मैं अभी उसे पकड़ता हूँ।
0: और इस बार मुरली ने उस अमरूद चोर को भाग कर झट से पकड़ लिया।
5: तो तुम ही हमारे पेड़ से अमरूद चुरा कर खाते हो?
7: मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे अमरूद कभी नहीं चुराऊंगा।
5: चुराने की जरूरत भी नहीं, अब से जब भी अमरूद खाना हो बस बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ खाऊंगा। अमरूद में आयरन जो होता है।
0: तो देखा दोस्तों, आयरन से भरा खाना अगर रोजाना खाते रहो तो ताकत भी मिलेगी और दिमाग भी तेज रहेगा। तेज दिमाग और चुस्त शरीर, यही है आयरन की शक्ति। अब देखते हैं मीना और मिट्ठू क्या कर रहे हैं।
9: इससे मिलती ताकत है चलता तेज दिमाग,
3: आयरन की शक्ति मिलते ही कमजोरी जाए भाग।
0: इस कविता का तो मजा ही कुछ और था। अब एक बढ़िया सा गाना भी हो जाए।

0: इस मजेदार गाने के बाद अब चलते हैं मीना की क्लास में, जहां बहन जी एक और मजेदार खेल खिलाने वाली है। चलो
1: बच्चों, आज हम खेलेंगे बीच में छुपकर कौन बैठा है। आज के खेल में मैं चार पक्षियों के नाम बताऊंगी और इन्हीं चार पक्षियों में से तुम्हें एक छुपे हुए पक्षी को पहचानना है जो बाकी तीनों से अलग है। तो तैयार?
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो उन पक्षियों के नाम, चील, हंस, शुतुरमुर्ग और कोयल।
3: बहन जी, छुपा हुआ पक्षी है कोयल।
1: वो क्यों दीपू?
3: क्योंकि बहन जी, कोयल ही एक ऐसा पक्षी है जो गा सकता है, कू कू कू।
1: दीपू, कोयल की आवाज मीठी तो होती है पर हर चिड़िया की अपनी आवाज होती है।
4: बहन जी, फिर तो वो छुपा हुआ पक्षी चील ही होगा, क्योंकि चील ही खाने के लिए शिकार करती है।
1: सुमी, चील की नज़र बहुत तेज होती है और वो अपने शिकार को बहुत दूर से पहचान लेती है, पर कुछ हंस भी पानी में तैरते हुए मछलियों का शिकार करते हैं।
4: बहन जी, मैं समझ गई, छुपा हुआ पक्षी है शुतुरमुर्ग।
1: शाबाश मीना, पर शुतुरमुर्ग बाकी तीन पक्षियों से अलग क्यों है?
4: बहन जी, शुतुरमुर्ग ही इन चारों में से एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता।
1: शाबाश मीना, बिल्कुल ठीक पहचाना।
5: बहन जी, शुतुरमुर्ग अपने पैरों पर चलते हैं, कभी बहुत तेज तो कभी बिल्कुल धीरे धीरे।
1: ठीक कहा मीना और कृष्णा। तो बच्चों, आया ना मजा?
2: बहुत मजा।
0: दोस्तों, मजा तो हमें भी काफी आया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
4: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: ओए रुके रुके रुके। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई, हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे, और बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे। और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: EIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पहला पाठ, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। पृष्ठ 1। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। क्यों होता है ऐसा, सोचकर बताओ। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। है ना जानवरों की भी अजीब दुनिया। पृष्ठ 2। कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। सोचो और बताओ, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं? पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? करके देखो और लिखो। चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज जमीन पर रखो। अब इंतजार करो चींटियों के आने का। अब देखो चींटी कितनी देर में आई। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया? चींटियां खाने की चीज का क्या करती हैं? वे उस जगह से कहां जाती हैं? क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? पृष्ठ 3। अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियां कैसे चलती हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। क्या अब बता सकते हो, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो? मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो, कुत्ता क्या क्या सूंघता होगा। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। यहाँ एक रेशम के कीड़े का चित्र बना है। वह कहता है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। पृष्ठ 4। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? किन किन मौकों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए, खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज के जलने का पता चलना। तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखो। किन्हीं 5 ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं 5 ऐसी चीजों के नाम भी लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती। क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? पृष्ठ 5। चर्चा करो। क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है? किसके? कभी किसी भीड़ से भरी जगह, जैसे मेले में, बस में, ट्रेन आदि में, तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? बताओ कैसा लगा? ऐसा क्यों? आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी यानी लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। सोचो और चर्चा करो। सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहां की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीजें बीनता है। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है? पृष्ठ 6। कैसे दिखा? किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तुम भी अलग अलग तरीकों से देखो। तुम अपनी दाईं आंख बंद करो या हाथ से ढको। इसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? पृष्ठ 7। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके। किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा? सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी? मजेदार बात। और जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे? जैसे जिस चित्र में हमें गुलाबी, लाल, हल्का हरा, गहरा हरा, पीला, काला ये रंग दिखाई पड़ते हैं चिड़िया को भी ये रंग दिखाई देते हैं और कुत्ते को केवल हरा और पीला और चूहे को तो कोई रंग ही दिखाई नहीं देता, उसे तो बस काला और सफेद दिखता है। आम तौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। पृष्ठ 8। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। लिखो 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। सोचो तुम्हें क्या लगता है क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? करके देखो। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो। वहां एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले और बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। किस बार आवाज ज्यादा साफ सुनाई दी? अपने साथियों से भी पता करो। तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज सुनाई देती है ना? पृष्ठ 9। एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज आती है? अब जैसे चित्र में दिखाया गया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज आती है? क्या दोनों आवाजों में कुछ अंतर है? सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। आवाजें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। पृष्ठ 10। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। लिखो, क्या तुम कुछ जानवरों की आवाजें समझ सकते हो? किस किस की? क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से? आओ खेलें एक मजेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाजों की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाजें निकालनी हैं और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर के आने पर कितना सोएं? बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहाँ गुम हो जाती हैं? सोचो, वे ऐसा क्यों करती होंगी? पृष्ठ 11। ये भालू जैसे दिखते हैं, पर भालू नहीं हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, तभी वे

पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। 24 घंटों में से स्लॉथ केवल 6 घंटे जागता है और 18 घंटे सोता है। घड़ी बनाकर इन जानवरों का सोने और जागने का समय दिखाओ। छिपकली, गाय, अजगर, जिराफ और बिल्ली। अपने आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन से? कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। पृष्ठ 12। यहाँ पर बाघ का एक चित्र दिया गया है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज। कभी करहाना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। सोचो, जंगल के बाघ को किन चीजों से खतरा होगा? क्या हम भी जानवर के लिए खतरा बन रहे हैं? कैसे? क्या तुम जानते हो, हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मारा जाता है? कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पता करो, भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ कहाँ हैं? इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके रिपोर्ट तैयार करो। हम क्या समझे? क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, बहुत से गायक गायिकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं। वे ऐसा क्यों करते होंगे? कुछ उदाहरण देकर समझाओ, जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। पृष्ठ 14। आओ बनाएं कागज का कुत्ता। सामान: थोड़ा मोटा कागज, पेंसिल और कैंची। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। अध्यापिका की सहायता से कुत्ता बनाना सीखें। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को? अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पहला पाठ। प्रस्तुति CIET
NCERT, नई दिल्ली, भारत।

0: बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: हानी, तुम्हें पता है कल मैंने सपने में क्या देखा?
5: क्या देखा?
4: हम दोनों तो कश्मीर घूमने गए थे।
5: कौन दोनों?
4: अरे तुम और मैं, और कौन दोनों?
5: वाह, कश्मीर! वैसे मैं तो हिमाचल गई हुई हूँ।
4: कोई बात नहीं, मेरे साथ कश्मीर भी चल पड़ना।
5: अच्छा,
6: कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो भाई आप लोग?
7: कहाँ घूमने की बातें हो रही हैं भाई?
4: दीदी, कश्मीर।
7: कश्मीर जा रहे हो? और कहाँ, हिमाचल भी सुना था मैंने तो।
5: अरे दीदी, सपने में जा रहे हैं।
7: अच्छा, हाँ,
4: असली में तो जा नहीं सकते इसलिए सपनों में ही जा रहे हैं।
7: सपनों में तो कहीं भी घूम सकते हैं ना?
5: अरे दीदी, असली में तो मैं भी गई हूँ हिमाचल।
7: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, असली में घूमने की बातें भी करेंगे, लेकिन आज आपके सपनों के बारे में बात करते हैं बच्चों की दुनिया में। सब लोग तैयार हैं?
5: हाँ।
7: तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बच्चों की दुनिया, क्योंकि बच्चों की दुनिया होती है बहुत ही अमेजिंग। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में कौन कौन जुड़ा है?
8: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ।
9: मेरा नाम रूहानी है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ।
10: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ।
11: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में पढ़ती
12: हूँ। मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ।
13: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
7: ओके, तो हमारे साथ है बहुत सारे

0: भी आते हैं, तो एक एक करके अपने सपने शेयर करेंगे, सब लोग क्या क्या क्या सपने आते हैं, कौन बताएगा पहले?
1: दीदी मेरे को तो ऐसा होता है कि कभी कभी लगातार आ जाते हैं और बीच बीच में गैप हो जाता है, और बहुत बार तो डरावने सपने भी आते हैं भले ही मैंने कोई हॉरर मूवी नहीं देखी हो तब भी, और कभी कभी ऐसा लगता है मैं बिल्डिंग से गिर रही हूँ नीचे अपने बेड पर बैठे बैठे ही।
0: और डरावने सपने कैसे आते हैं?
1: जैसे मेरे पीछे कोई भूत पड़ गया ऐसे, मैं इधर उधर भागती हूँ चिल्लाती हूँ, फिर मेरी आँख खुलती है तब मैं सच में रो रही होती हूँ।
0: हाँ। रोना आ जाता है?
1: हाँ।
0: फिर क्या करते हो जब उठते हो तब?
1: कुछ नहीं, आंसू पोंछ के फिर सो जाती हूँ।
0: अच्छा ठीक है, और किसको क्या सपने आते हैं भाई?
2: दीदी एक बार ऐसे आया कि मैं पलंग पे सो रही हूँ पर मेरे को ऐसा लगा कि मैं नीचे गिर रही हूँ, पर फिर उठ के देखा तो मैं पलंग पे ही थी।
0: ऐसा लगता है ना गिर रहे हैं, और सच में वो लगने लगता है बॉडी को भी कि हम नीचे गिर रहे हैं, मगर नहीं गिर रहे होते हैं।
1: एकदम बॉडी ऐसे लगती है जैसे नीचे की तरफ वेट जा रहा है सारा।
0: लेकिन असल में तो वो बस एक सपना होता है। ओके, और कौन बताएगा अपने सपनों के बारे में?
3: दीदी एक बार तो मैंने सपनों में मूवी बनाई थी खुद।
0: अच्छा,
3: कभी उसमें डोरेमोन आ रहा था, कभी एलियंस आ रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी भूत आ रहे थे, पता नहीं सब मिक्सचर होके आ रहा था।
0: ओके, मतलब कार्टून्स भी आ गए उसमें, एलियंस भी आ गए उसमें,
3: सब कुछ।
0: एलियंस वाली कोई मूवी देखी थी क्या आपने?
3: नहीं, वैसे मन में आ गया।
0: ओके ठीक है, ऐसा भी होता है भाई, मूवी बन जाती है सपनों में कभी कभी, मिक्स हो जाता है ना सब कुछ।
4: दीदी मेरे सपनों एलियन आए धरती पर, मेरे से हाथ मिला के वापस चलेगा।
0: एलियन धरती पर आके आपसे
4: हाथ मिलाए, मेरे परिचय लिया, चले गए वापस, बोलते आपसे दोबारा मिलने आएंगे।
0: अच्छा, ये बोल के गए कि दोबारा मिलने आएंगे?
4: हाँ, पर पता नहीं दीदी कौन सी भाषा में बोल के गए,
0: लेकिन आपको समझ में आ गया।
4: हाँ।
0: वाह, यानी आपने एलियन वाली भाषा सीख ली है।
4: हाँ।
0: ओके ठीक है, इंटरेस्टिंग सपना था काफी। आपको कोई सपना आया शिक्षा?
5: मुझे कभी कभी सपने आते हैं, और सपनों में ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स आते हैं, कभी वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मैं भाग रही होती हूँ, और फिर मैं ना कभी कमरे में बंद हो जाती हूँ, कुंडी लगा लेती हूँ कि कहीं वो आ ना जाए, मुझे डर लगता है, और मैं सपने में ये ना उठ जाती हूँ, और उठती हूँ तब मेरे को ऐसा लगता है हाँ अभी भी यहाँ कहीं है, पर ऐसा होता नहीं है, डरती हूँ, फिर उठती हूँ, थोड़ा आंसू वगैरह निकल रहे होते हैं, पोंछती हूँ, थोड़ी देर जगती हूँ, उसके बाद लाइट ऑन करके थोड़ी देर बैठती हूँ, जब लगता है कि हाँ अब नहीं आएगा सपना तब लाइट ऑफ करके सो जाती हूँ।
0: तो मतलब आप पहले खुद को पहले अश्योर कर लेते हो कि ये सपना था।
5: हाँ।
0: और मैं ठीक हूँ और यहाँ कोई भी नहीं आसपास, फिर वापस सोते हो।
5: हाँ।
0: ओके ठीक है, ऐसा होता है, डरावने सपने भी आते हैं कभी कभी, किसी के में तो एलियंस आ जाते हैं, किसी के में जानवर भी आ जाते हैं। बिल्कुल,
5: ज्यादा से ज्यादा सपने कभी कभी तो बादलों पे चले जाते हैं।
0: बादलों पे चले जाते हो?
5: हाँ।
0: क्या करते हो बादलों पे?
5: मैं एक बार सपने में एक से दो बार ही गई हूँ बादलों पे। तब गई थी मैं तो उड़ने की कोशिश कर रही थी वहाँ पे।
0: अरे वाह, तब तो बड़ा अच्छा लगा होगा।
5: हाँ, वो सपना मेरा सबसे बेस्ट सपना था।
0: बादलों में उड़ने में तो मजा आता है ना?
5: हाँ।
0: पर रियल में पंख होते तो कितना अच्छा लगता ना।
4: ये आपसे एक बात पूछो, यदि आपको कभी सपने आए हैं?
0: बताऊंगी मैं भी बताऊंगी, पहले आप लोग तो कंप्लीट कर लो।
6: मेरे को तो बहुत डरावना सपना आया था, मैं पूरे 5 बिल्डिंग की ऊंचाई से नीचे गई।
0: अरे बाप रे, फिर आपको तो डर,
6: बहुत डर लगा।
0: फिर नींद खुली आपकी? फिर क्या किया? नींद खुली तो?
6: नींद खोला, फिर मुंह धोया, फिर बाद में तो नींद ही नहीं आ रही थी।
0: ओहो,
6: थोड़ी देर बाद नींद आई।
0: थोड़ी देर बाद नहीं, क्योंकि डर गए होते हैं ना तो एकदम से कभी कभी नींद नहीं आती। रूहानी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप?
1: हाँ दीदी, मेरे को ना सबसे अजीबोगरीब सपना आया था।
0: क्या?
1: मैंने समाधि ले ली।
0: हाँ? अच्छा, ओके।
1: चिता पर बैठ रही थी मैं खुद मरने के लिए।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो भी रो के।
0: रो रहे थे आप?
1: हाँ।
0: ओके, उसके बाद नींद खुली या नहीं?
1: खुली थी, तब भी रो रही थी मैं, फिर आंसू पोंछ के सो गई।
0: तो घर में किसी को बताते हो आप लोग जब आपको? हाँ, ऐसे सपने आते
1: हैं? ऐसा सपना आया था ना, तब मेरे घर वाले सब साइड में खड़े थे, देख रहे थे मेरे को, फिर मेरे को पता चला कि उसमें ना मेरे को कैंसर हो गया था, इसलिए मैं खुद ही मर रही थी।
0: अच्छा। हाँ। बाप रे, तो आपके घर वालों को जब आप उठे तब बताया आपने कि मेरे को ऐसा सा सपना आया?
7: नहीं, तब तो सब सो रहे थे, अगले दिन बताया।
0: अगले दिन बताया? तो क्या बोला सपने?
1: ऐसा कैसा सपना है, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था।
0: किसने थोड़ी ऐसा सोचा, पता नहीं कैसे आ गया ना।
1: हाँ।
0: तो आप लोग क्या करते हो जब सपना आता है? तो सो तो जाते हो, अगले दिन फिर बताते हो सबको घर में?
6: हाँ, बताते हैं।
0: हैं?
1: कभी कभी तो ऐसा होता है कि सपना ही मन से चला जाता है, थोड़ा थोड़ा याद आता है,
0: भूल जाते हैं।

0: सपने?
1: हाँ
0: ओके और आप लोग जब बताते हो तो फिर क्या बोलते हैं घर वाले?
1: मैं तो सपने ही भूल जाती हूँ अपना,
0: सपना
1: थोड़ा बहुत याद रहता है वो बता देती हूँ,
0: फिर भूल जाते हैं ना।
1: हाँ।
0: पूरा तो नहीं याद रहता, कभी कभी भूल जाता है, वो तो है।
2: तो मम्मी पापा बोलते हैं कि तुझे पूरा याद क्यों नहीं रहता, मैं बोलती हूँ कि मैं तो वो डरावना था इसलिए आधा भूल गई।
0: डरावना था तो भूल जाता है कभी कभी, उस समय डर लगता है लेकिन बहुत है ना?
3: दीदी जब मैंने एलियन वाली बात मेरे घर में बताई ना, मम्मी बोली नाश्ता पानी करवा देती हूँ उनको, वो
0: कुछ खिला पिला के भेजना चाहिए था।
3: मेहमान आया खाली हाथ चलेगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, वापस बुलाओ उनको,
0: वापस बुलाओ, दूसरे प्लैनेट पे चले गए, इतना दूर सफर किया बिना कुछ खाए पिए।
3: हाँ।
0: गलत बात है, बुरा मान जा।
3: दीदी उनको पता नहीं 2 दिन लगे थे आने में, अब 2 दिन जाने में लगेंगे।
0: में अलग भाषा थी कुछ।
3: सपने में तो पता नहीं मैं जैपनीज।
0: अच्छा हाँ भाई हो सकता,
3: पहाड़ों में।
0: अच्छा ओके, कुछ भी हो सकता है सपनों में, कुछ भी भाषा हो सकती है, कोई भी एथनिसिटी हो सकती है, क्योंकि देखो एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और दूसरा कौन सा होता है?
1: अनकॉन्शियस।
0: सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पता है सबको?
1: हाँ।
0: किसने पढ़ा है? सच्ची सच्ची बताओ, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा है तो नहीं जानते बोलो।
2: नहीं जानते।
3: नहीं जानती।
0: कोई भी नहीं जानता?
1: नहीं।
0: नहीं जानते। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, एक तो कॉन्शियस माइंड है जो एकदम अलर्ट है, एक्टिव है, आप जो पढ़ रहे हो, जो देख रहे हो, जो एक दूसरे से बात कर रहे हो, हम एक दूसरे के चेहरे याद रखते हैं ना, तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। वो आपसे मैं बात कर रही हूँ तो अमीक्षा का मुझे याद है कि नाम क्या है, कैसी दिखती है, और बाकी लोगों का भी जिनका मुझे जिनसे मैं बात कर रही हूँ। हमारा सबकॉन्शियस बहुत सारी चीज़ें पिक करता है, आसपास क्या रखा हुआ है, मेरा कॉन्शियस माइंड उस पर ध्यान नहीं दे रहा, बट मेरे सबकॉन्शियस ने काफ़ी चीज़ें आसपास की रखी हुई भी पिक कर ली और अपने अंदर रख ली। और जो बचपन की भी मेमोरीज होती हैं बहुत, जब आप छोटे थे या आपने कभी तो कुछ चलते फिरते ऐसे ही देख लिया, कॉन्शियस माइंड भूल गया, कॉन्शियस माइंड तो दूसरी चीजें देखने लगा और एब्जॉर्व करने लगा, पर सबकॉन्शियस में सब कुछ स्टोर हो जाता है। तो जब हम सोते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो उसमें जो कुछ सेव हुआ होता है ना, बहुत सारी फाइल्स, पुरानी पुरानी पुरानी पुरानी मूवीज देखी थी, टीवी देखा था, किसी से मिले थे, किसी के बारे में पढ़ा था, वो सब उसके अंदर है। तो जब हम सो रहे होते हैं ना तो कभी तो कोई फाइल निकाल देता है, कभी तो कोई फाइल निकाल देता है, और 2-3 फाइल एक साथ खुल गई तो वो मिक्स होके कुछ और ही बन जाता है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए कहा जाता है जब आप सोते हैं ना तो उससे पहले कुछ अच्छे अफर्मेशंस लिख के सोएं या बोल के सोएं, क्योंकि जैसे हम सोए हुए होते हैं ना फिर वही वाली फाइल्स ऊपर रहती हैं फिर हमारे, तो हमें स्लीप में मदद करती हैं वो वाली जो ऊपर खुली वाली फाइल्स हैं, है ना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोने के समय और उठने के समय बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो जो आप उसको दोगे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सोचो उसके अंदर क्या क्या खजाना भरा पड़ा होगा जो हमको याद भी नहीं है, वो भी जो आपने कहीं ऐसे ही निकल गए हो तो किसी दुकान से, आपको नहीं याद होगा वहाँ क्या क्या रखा था, आपके सबकॉन्शियस माइंड में काफी कुछ रहता है उसमें। कमाल की चीज है ये, इसके बारे में पढ़ना कभी, है ना। आप तो पढ़ते हो, गूगल यूज करते हो ना आप लोग?
1: हाँ।
0: है ना, यूट्यूब भी देखते हो?
1: हाँ।
0: तो कभी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ के देखना, कितना इंटरेस्टिंग है।
1: ठीक है
0: ठीक है। अच्छा ये तो हुए बंद आंखों से देखे हुए सपने, चलो खुली आंखों से देखे हुए सपनों के बारे में भी एक अलग से एपिसोड करेंगे। या तो ये बताओ अच्छे सपने आए हैं किसी को बंद आंखों से, मतलब सपने तो देखे, डरावने भी देखे, भी देखे, अच्छे सपने देखे कोई, जैसे उन्होंने बताया बादलों के ऊपर थे, वैसे कोई अच्छा सपना आया है कभी, या सब कुछ डरावने ही सपने आते हैं?
3: दीदी आपको पता है एक बार मुझे आसमान में उड़ना था, घूमना था, है ना, तो क्या हुआ मैं सोचने लगी, सामने आया डोरेमोन, उसने निकाला अपने वो पॉकेट में से गैजेट और मुझे ऊपर भेज दिया घूमने के लिए।
0: वाह, उड़ने वाला सपना दो लोगों को आ गया।
3: हाँ दीदी, वो उसने पता नहीं मेरे सर पे क्या पहना है, चक्री।
0: अच्छा तो वो आप उड़ गए उसको चक्री को लगा?
3: हाँ दीदी, पूरा आसमान 2-3 दिन में घूम के आई थी मैं।
0: वाह क्या बात है, 2-3 दिन तक ऊपर घूम रहे थे?
3: वाह। और वो खाना आगे दे रहा, तो ऊपर खाना खा लेना, पानी पी लेना।
0: ओके ठीक है। हाँ मीक्षा।
2: और दीदी एक बार है ना मुझे एक फेरी मिली थी सपने में, वो बोल रही थी आपको मेरे घर देखना है, मैंने कहा हाँ आपका मुझे घर देखना है, तो मुझे वो लेके गई थी, मैं 4-5 दिन बाद वापस आई थी।
0: अच्छा,
2: उसका घर इतना बड़ा था।
0: कैसा था उसका घर?
2: बहुत अच्छा था,
0: बहुत सुंदर था। हाँ। क्या क्या था वहाँ पे?
2: वहाँ पे खेलने के लिए बहुत कुछ था, और बुक्स का मतलब पूरा शेल्फ था, उसमें बहुत सारी स्टोरीज बुक रखी हुई थी।
0: अरे वाह,
2: बहुत कुछ था। और
0: ओके अच्छा लगा होगा ना आपको?
2: हाँ
4: दीदी, मेरी तो अच्छे सपने की स्टार्टिंग भी बुराई से ही हुई है।
0: कैसे?
4: अरे एक जलपरी ने मेरे को काट लिया, फिर मैं जलपरी बन गई। फिर मैं समुंदर के अंदर जाके समुंदर एक्सप्लोर किया था।
0: कैसा लगा था समुंदर अंदर?
4: बहुत मस्त था, और अंधेरा भी बहुत ज्यादा था अंदर जाके।
0: तो सुंदर क्या लगा वहाँ पे?
4: वो रोशनी आ रही थी ना उसमें बबल्स बहुत अच्छे दिख रहे थे.
0: तो बबल्स अच्छे लग रहे थे
4: और बहुत सारी फिशेज भी बहुत झुंड बना के ऐसे गोल गोल घूम रही थी वर्लपूल जैसे.
0: फिशेस कितनी कलरफुल होती है ना, कितनी सुंदर होती है ना.
4: क्लोन फिश भी थी.
0: हाँ वो तो काफी फनी होते हैं, वो भी एक टाइप है फिश का. बिल्कुल. और फिशेस तो देख सकते हैं हम, प्रकृति ने क्या क्या कलर्स दिए हैं ना, कमाल के.
3: दीदी मैं एक बात बताऊँ?
0: बोलिए.
3: मैं खुद भी जलपरी से मिल के आई हूँ.
0: अच्छा.
3: उसने अपना घर बनाया था मोतियों से, वो भी देख के आई थी. उसमें कम से कम 4-5 दिन लग गए थे देखने में.
0: 4-5 दिन लग गए थे. तो आपको सपने में पता चल गया था कि इतने दिन लग गए अभी. अभी घर जाना.
3: क्योंकि गिन रही थी मैं.
0: अच्छा गिन रहे थे.
3: हाँ. एक दिन कम्प्लीट हुआ, दूसरा दिन कम्प्लीट हुआ, तीसरा दिन कम्प्लीट हुआ, और जा रही थी ना मैं अपने 5वें दिन, वो जलपरी उल्टा रोक के मेरे को चाय पिला रही थी.
0: वाह, समुद्र में चाय.
3: हाँ
0: बात है. वाह, तो उसमें पानी नहीं चला गया फिर चाय में सारा?
3: नहीं, मैंने घर के अंदर बैठ के पिया.
0: घर के अंदर बैठ के पिया. ओके.
3: और वो मैंने जो मतलब जहाँ कोने में बैठी थी ना वहाँ से पानी हटाया था मैंने.
0: अच्छा, पानी हटा के फिर बैठी साइड में. कैसा घर था जलपरी का?
3: दीदी उसमें सोचोगे नहीं, तो मतलब ऐसे बनाया था ना, मोती मोती मोती मोती जोड़ कैसे ही पूरा वो महल खड़ा कर दिया.
0: मोतियों का महल था.
3: हाँ.
0: अंदर क्या क्या था?
3: अंदर वहाँ पे कुर्सी थी मोती वाली.
0: अच्छा.
3: उनका पूरा मतलब क्या बोलते किचन का सेट
0: मोतियों वाला.
3: हाँ मोतियों वाला. बेड भी था मोतियों वाला. उनकी ड्रेसेस रखी थी वहाँ पे मोतियों वाली.
0: वो भी मोतियों वाली, कितना सुंदर होगा.
3: और दीदी वहाँ पे एक मतलब बड़ा सा वो रखा था जिसके अंदर वो मोती निकाल के वहाँ पे जोड़ दी थी बार बार.
0: अच्छा. मतलब स्टॉक था उनके पास पूरा.
3: वो थोड़ी थोड़ी देर में मोती बनाया जा रहा था, वो जोड़ती जा रही थी, जोड़ती जा रही थी. मैंने भी जुड़वा उनके साथ.
0: वाह, मतलब जहाँ गए वहाँ मदद भी करके आए. वाह. हाँ मीक्षा.
2: और दीदी मैंने वो फेरी के घर में गई थी ना, तो वहाँ पे फेरी के खेलने के लिए ना एक बादलों का घर बनाया था उसने.
0: अच्छा.
2: बहुत सुंदर था वो भी, उसके घर के जैसा ही था, बस बादलों से बना हुआ.
0: बादलों से बना हुआ था.
2: हाँ. उसको वो पेंट कर रही थी तो मैंने बोला मैं भी करूँ, तो बोला हाँ.
0: आपने पेंट कराया?
2: हाँ.
0: कौन से कलर के कर दिया आपने बादल फिर?
2: बादल मैंने ब्लू कलर के किए.
0: ब्लू कलर के किए, पहले व्हाइट थे.
2: हाँ.
0: कितना अच्छा लगा होगा ना. और अनुष्का ने कोई अच्छा सपना देखा कि नहीं?
4: हाँ.
0: क्या?
4: वहाँ पर मैं तो परी बन गई थी, मेरे तो पंख आ गए थे ऐसे. पूरे 2 दिन घूम के आए आसमान में.
0: अच्छा. बस आप परी बन के उड़ गए थे. कौन से कलर की परी थे आप?
4: मेरे पिंक कलर के पंख आए थे.
0: पिंक कलर के पंख आए थे.
4: मेरे को वो भी नहीं पता पिंक कलर के कहाँ से आ गए.
0: अच्छा. ओके. तो कैसे लग रही थी ऊपर से दुनिया?
4: बहुत अच्छी लग रही थी.
0: बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत मजा आया. और आपको कोई सपना आया ऐसा?
5: मेरे को तो बस एक ही बार सपना आया था बादल वाला, तब मैंने तो बस बादल पे चल के उसको घूम रही थी पूरा अच्छे से. वहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट थी, बहुत सुंदर व्यू था वहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा था. उसके अलावा बस मुझे हॉरर सपने ही आए.
0: हॉरर सपने? कैसे हॉरर सपने?
5: मैं सपने में ना डायनासोर वगैरह, मेरे को ज्यादा ज्यादा एनिमल्स मिलते हैं सपने में.
0: अच्छा, तो डायनासोर भी मिलते हैं आपको?
5: हाँ.
0: अरे बाप रे.
5: डायनासोर मैं बेड के नीचे छुपी हूँ, वो घूम रहा है आसपास ढूंढ रहा है, मैं ना कवर्ड में बंद हो गई, ऐसे मैं उससे बचने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे ढूंढ रहा था. ऐसे मेरे को सपने बहुत डरावने आते हैं, डायनासोर कभी है ना, डीमंस वगैरह आ जाते हैं सपने में, जॉम्बीज वगैरह, ऐसा सपना भी आ जाता है.
0: आ सकता है. आपने कभी वो जुरासिक पार्क या जॉम्बीज वाली मूवी देखी है?
5: हाँ.
0: तो हमारा सबकॉन्शियस ना वो सब चीजें रिकॉर्ड कर लेता है. जैसे पहले बात हुई थी ना, कॉन्शियस माइंड तो शिफ्ट हो गया वो मूवी देख के, आगे बढ़ गया, अब कुछ और देखने लगा, पर सबकॉन्शियस में वो चीजें अंदर तक चप गई और वो चीजों ने आपको बहुत इम्पैक्ट किया था उस समय. तो बहुत पावरफुल है सबकॉन्शियस में, तो वो निकल निकल के बाहर आती है ना. इसलिए हम जो चीजें देखते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है. और लग रहा है हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है अभी.
6: दीदी हमें तो कभी अच्छे सपने आए ही नहीं, हमेशा एक्शन या हॉरर ही आते हैं.
0: एक्शन सपने आते हैं?
6: कभी आप किसी से लड़ाई कर रहे होते हैं, किसी को किसी से बचा रहे होते हैं, या फिर कभी भूत आ जाते हैं.
0: किससे लड़ाई कर रहे होते हो?
6: याद भी नहीं रहता किससे लड़ रहे हैं. बस वो रियलिटी में जब बेड पे होते हैं तो भाई बहन को ही मारते हैं.
0: अच्छा.
6: बेड पे भाई बहन को, सपने में किसी और को.
0: मतलब लेकिन चल रही होती है मार पिटाई.
6: हाँ जी.
0: ओके ठीक है. हाँ मीक्षा.
2: और दीदी हम लोग कोई भी सपना देखते हैं ना उसमें मजा आता है, बस थोड़ा डर लगता है.
0: डर तो लगता है. पता है एक बार किसी ने अपने एक सपने की स्टोरी बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि उनको शेर दिखाई देता था सपने में और शेर के पीछे भाग रहा होता था और वो डर के उससे भाग रहे होते थे। तो फिर उनको किसी ने हेल्प करी और उनसे कहा कि अगली बार जब सपने में वो शेर आए ना तो उससे दोस्ती कर लेना, उससे बातें करना कि तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या करते हो, मेरे फ्रेंड बनोगे, और ये याद रखना फ्रेंडशिप कर लेना, उससे बातें करना, और ये याद रखना सपने में कि तुम बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल हो, एकदम शेर से तो डबल ट्रिपल 100 times पावरफुल हो। तो अगर ऐसा लगता है कि वो शेर तुम पे हमला कर रहा है तो उसकी तुम पिटाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तुम।
4: दीदी ऐसा करने का मन करता है लेकिन ऐसा लगता है कि सपने में हम खुद ही कंट्रोल हो रहे हैं।
0: हाँ तो इसीलिए क्या करना है, जब रात को सोना है ना तो खुद को बोल के सोना है कि आई एम वेरी पावरफुल। इसको बहुत बार लिखो, या तो लिखते हो ना तो वो भी माइंड में हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। आपको बहुत सारी अच्छी फाइल्स देनी है सबकॉन्शियस में, अभी ये सब डरावनी फाइल्स दी हुई हैं आपने, तो आप अच्छी अच्छी पावरफुल फाइल्स दे दोगे ना तो वो उसको ओवर पावर कर लेंगी। लेकिन अभी बहुत सारी नेगेटिव ये वाली फाइल्स जमा है क्योंकि हमने ऐसी मूवीज देखी हैं, ऐसी चीज़ें देखी हैं ना, कभी पहले भी देखी हो सकती हैं, हो सकता है अब हमने छोड़ भी दी हो, तो पर वो जमा तो हो जाती है फाइल, तो अब उसको पावरफुल पॉजिटिव फाइल्स आपको खोल के देनी पड़ेंगी। आई एम वेरी पावरफुल सोल, आई एम वेरी पावरफुल, ये लिखना है आपको बहुत बार, है ना। और भी ऐसे स्वमान आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अफर्मेशंस ले सकते हो, है ना, आई कैन डू एनी थिंग, आई नो, सबसे ऐसा कुछ लिख के भेजो, आई एम गॉड्स चाइल्ड, मेरे अंदर सारे ताकत है, मैं कुछ भी फेस कर सकती हूँ। इसको आप एटलीस्ट 50 times 100 times लिखोगे ना तो वो सबकॉन्शियस फिर आपका अब्सॉर्ब कर लेगा, तो अगली बार वो वाली फाइल भी खोल देगा वो, है ना। तो आप अपने सपने में हैंडल कर लोगे सारी सिचुएशंस।
6: दीदी कई कई बार तो पता ही नहीं लगता कि रियल लाइफ में है या सपनों की लाइफ में है।
0: हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है, है ना,
6: कई हाँ। बार अगर कहीं से गिरते होते हैं ना तो एकदम ऐसे आँख खुलते कि जैसे हम गिर गए
0: हैं, ऐसा होता है, होता है।
2: और दीदी एक बार तो क्या हुआ, मैं सपनों में लड़ाई कर रही थी तो मैंने एक बार है ना अपनी नानी को एक गुस्सा मार दिया।
0: सपने में लड़ाई करते करते ना, असली में तो नहीं किया ना।
6: दीदी मैंने तो सपने में मम्मी की बहुत बार चाय गिरवाई है, मम्मी जैसे पैर के आगे बैठते हैं ना तो ना ऐसे पता लग जाता है हाँ कोई बैठा है, पर सपने में जब लड़ रहे होते हैं ना तो पैर एकदम ऐसे आगे जाते हैं, मम्मी की चाय गिर जाती है।
0: असल में तो नहीं गिराई ना,
6: असल में ही तो गिराई है।
0: अच्छा असल में गिरा दी।
6: बहुत बार गिरवाई है।
0: अच्छा ओके।
3: दीदी
0: हाँ
3: चलो मैं आपको अपना हॉरर सपना बताती हूँ।
0: बताओ।
3: एक बार क्या हुआ, मैं घूम रही थी जंगल में, एक हवेली दिखी, मैं उसमें गई, वहाँ पे गई, अपने आप गेट बंद हो गए, मैं बैठ के वहाँ पे भजन करने लगी, पता नहीं क्या दिमाग चला, भजन करने लगी, पास में से आई एक आत्मा, बोली तुम्हारा नाम क्या है, मैंने बोला मेरा नाम पल्ला, के मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है, बोलती है भूतनाथ, मैंने बोला अच्छा भूतनाथ और कैसे बनूं, उससे मैंने बातचीत की, फिर बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा, मैंने बोला मार दो, हमने खूब मस्ती की दीदी, सोचा कि नहीं, 2 दिन तक मैं हवेली में थी।
0: वाह, मस्ती करते रहे भूत के साथ।
3: हाँ, और मैं भूत को बाय बोल के जा रही थी, बोलता है नहीं तुम भी मेरे साथ भूतनाथ नहीं बन जाओ, मैंने बोला नहीं बनना मुझे।
0: नहीं नहीं जाने तो बाद में आके बातें करूंगी मैं। ओके
6: दीदी इनको तो पता भी लग रहा है कितने दिन लगा के आ रहे, मेरे को तो पता भी नहीं लगता मैं कितने दिन लगा के हूं, क्या करके आ रहे।
0: हाँ ये थोड़ा मुश्किल है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे अनुष्का?
2: हाँ दीदी हमने तो बहुत सपने देखे, आपने कौन से सपने देखे?
0: मैंने कौन से सपने देखे
2: दीदी आप भी बताओ ना।
0: मैं अभी तो मुझे बहुत समय से कोई सपना नहीं आया, लेकिन पहले जैसे आप लोग बोल रहे हो ना कि गिर रहे हैं, ऐसा वाला सपना आता था मुझे भी कि आप किसी बिल्डिंग से गिर रहे हो अचानक से, और ना एक सपना आता था कि एग्जाम में लिख रही हूँ और ना पेन की रिफिल खत्म हो गई और फिर लिख ही नहीं पा रही हूँ मैं एग्जाम, ऐसा सपना आता था मुझे।
6: दीदी इतना खतरनाक सपना।
2: फिर दीदी आपने क्या किया?
3: फिर मैम से पेन मांग लिया होगा।
0: हाँ नहीं उस समय मेरा पेपर ही छूट जाता था एग्जाम में।
4: सबसे बड़ा डर
3: रिजल्ट
2: आता था। असलियत में तो नहीं छूटा ना,
0: असलियत में एक बार छूट गया था मेरा, वो भी बोर्ड्स के एग्जाम में,
6: रिफिल खत्म हो गई थी
0: 6 marks का मैथ्स का पेपर, नहीं बिना रिफिल के छूट गया था, मगर ठीक है मार्क्स ठीक आ गए,
6: टाइम रिफिल नहीं हुआ होगा।
0: हाँ क्या कह सकते हैं, अब असल लाइफ में तो भाई दोबारा सपना तो नहीं है कि दोबारा देख सके, है ना, जो हो जाता है वो हो जाता है, तो उससे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना।
2: दीदी मेरी भी मम्मी सपना देखती है अभी भी।
0: आते हैं सपने, बड़ों को भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों को आते हैं,
2: पर आपको तो नहीं आते अभी इस टाइम।
0: हाँ इस टाइम नहीं आते, क्योंकि पहले जब मुझे सपने आते थे ना तो बहुत ऐसे डर जाती थी मैं बहुत ज़्यादा. तो फिर मेरी मम्मी को भी डर लगता था कि भाई बाहर पढ़ने जाओगे तो कैसे रहोगे, क्योंकि बहुत डर जाते थे.
6: अभी कई कई बार ऐसा होता है मैं सपने में उठ के बेड पे से मतलब खड़ी हो जाऊंगी, फिर दूसरी तरफ सिर करके सो जाऊंगी. मैं खुद को पता नहीं होता मैं कब उठी कब उधर सिर रखा कब सोगी.
0: सपने में बहुत चीजें होती है, लेकिन सपनों की दुनिया अपनी अलग है और रियल दुनिया अलग है. अब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो हम बातें करेंगे लेकिन बच्चों की दुनिया के अगले एपिसोड में. तो तब तक के लिए हम लेते हैं इजाजत और अपने दोस्तों को कहते हैं बाय बाय.

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी। क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

0: Academic guidance,
1: मेरे तो घेरे
0: दरगोपाल असिस्टेंट मेरे तो घेरे दरगोपाल दूसरों
1: कोई
0: दीपक पांडे असिस्टेंट इन प्रोडक्शन।

0: रेडियो कार्यक्रम बाल संसार थीम मर्यादित कार्यों का संपादन और आत्म जागरूकता शुरुआत। डॉक्टर अजय शुक्ला कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बच्चों को मर्यादित कार्यों के संपादन के महत्व के बारे में बताते हैं। वे समझाते हैं कि कैसे यह कौशल हमें दक्षता, प्रभावशीलता और सटीकता प्राप्त करने में मदद करता है। मुख्य बिंदु, योजना और प्राथमिकता। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले योजना बनाना और उसे प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। स्मार्ट लक्ष्य, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड निर्धारित करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करें और विचलन को कम करें। ध्यान केंद्रित करने के लिए शांत जगह पर काम करें, फोन बंद करें और सोशल मीडिया से बचें। पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें जिसमें 25 मिनट काम और 5 मिनट का ब्रेक शामिल हो। कार्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़े। बड़े कार्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़े। इससे अभिभूत होने से बचा जा सकता है और प्रत्येक चरण पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। नियमित रूप से ब्रेक ले। लंबे समय तक काम करने से मानसिक थकान और त्रुटियां हो सकती हैं। नियमित रूप से ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है। अपनी प्रगति की समीक्षा करें। अपनी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें। इससे यह देखने में मदद मिलती है कि आप ट्रैक पर हैं या नहीं और यदि आवश्यक हो तो समायोजन करें। त्रुटियों से सीखें। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और उनसे बचने के लिए रणनीति विकसित करें। प्रतिक्रिया और सहायता प्राप्त करें। दूसरों से प्रतिक्रिया और सहायता प्राप्त करने में संकोच न करें। यह आपके काम को बेहतर बनाने और त्रुटियों को कम करने में मदद कर सकता है।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे और पिछले एपिसोड में हमने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाई थी। आइए उसी से आगे हम लोग आज इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग हर बार कुछ नई चीज़ें आपको नए पाठ्यक्रम की ओर जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो अब हम अपना जो बाल संसार है उस पाठ्यक्रम में 10वां जो पाठ्यक्रम है उस पर बात करेंगे, जिसमें मर्यादाओं के संपादन का स्पष्टीकरण, ज्ञान अर्जन, मर्यादाओं का संपादन एक महत्वपूर्ण शैल है जो हमें समझना है। तो इस बात को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं और आशा करूंगा मर्यादा एक बहुत बड़ी जो चीज़ है, जिस शब्द को हम लोग संस्कार में बचपन से अगर हम लोग सिखा दें तो बच्चों के लिए भी अच्छा हो जाता है और हम भी उन चीज़ों का प्रतिपादन करते हैं, उनके सामने एग्जाम्पल बने। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उन चीज़ों को करते हैं और बच्चों को मना करते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि शब्द और आपका व्यवहार, एक्शन मोर वर्क्स। शब्द आप भले ही कितना भी बोलें वो बहुत कम परसेंटेज में काम करता है, तो इसीलिए एक्शन ज़्यादा काम करता है। तो अगर आप एक्शन में कुछ और कर रहे हैं और बोल कुछ आ रहे हैं तो तालमेल बिल्कुल नहीं बैठेगा, तो एक्शन डायरेक्टली डिकोड हो जाएगा बच्चे के मन में और वो छुप के उस चीज़ को कर देगा जिसके लिए आप मना कर रहे हैं, क्योंकि आपको उन्होंने देख लिया। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा जो है सीक्रेट है, शायद हम लोग इसको ठीक से नहीं समझ पाए, इसलिए हमारे जीवन में हमने इम्पोर्टेंस जिस चीज़ को नहीं दिया, हम उस इम्पोर्टेंस को बच्चों में बोल रहे हैं कि भाई आप इसको इम्पोर्टेंस दो, तो वो कभी भी चीज़ें जो है डायरेक्टली नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें या तो थोड़े समय के लिए उसको प्रैक्टिकल में लाना होगा, तब हम बच्चों को अगर कहते हैं तो शायद उसका असर होगा। तो इसके लिए कई एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन अब सीधे मैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी से आपको जोड़ना चाहूँगा जो व्यवहारिक वैज्ञानिक हैं, तो काफ़ी लंबे समय से इसी फील्ड में बच्चों की मनोस्थिति, बाल मनोस्थिति के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आज हम लोग इस विषय को लेकर बातें करेंगे उनसे। तो अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत धन्यवाद भाई जी। ओम शांति।
1: ओम शांति। तो मर्यादाओं के संपादन के लिए योजना और प्राथमिकता क्यों महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आप अपने विचार सुनाइए।
2: बहुत ही मर्यादित स्थिति में इंसान जब स्वयं को लेके जाता है तो सर्वप्रथम एक दृष्टि में ऐसा फील होता है भाई जी कि शायद मेरे ऊपर बहुत सारे नियम और कानून लगा दिए गए और ज़िंदगी को बहुत सरल तरीके से गुजारना अब मुश्किल होगा। कुल मिला के अगर कहें, आज बच्चों से हम मर्यादा शब्द की बात करते हैं तो बड़े ही वो एक प्रश्नवाचक शैली में मुद्रा में वो दिखाई देते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जिस समय दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मर्यादाओं का हनन हुआ हो और ये शब्द पूरी तरह से लोगों ने या आम आदमी ने खारिज कर दिया हो, उस संदर्भ और प्रसंग में अगर बड़े उनसे कुछ बोल रहे हों तो थोड़ा सा उनके अंदर एक स्तब्धता आना नैसर्गिक है, और उस स्तब्धता के बाद में एक छोटी सी ख्वाहिश या कहना चाहिए कि एक अपेक्षा उनके मानस पर प्रतिबिंबित होती है, और वो अपेक्षा है कि जो लोग हमको, चाहे वो बड़े हमारे गार्जियन हो या माता पिता गुरु जिन्हें हम बड़ा सम्मान देते हैं, तो वो उनके अंदर उनके दैनिक व्यवहार में मर्यादा क्या होती है इसको खोजने का प्रयास करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इस समय कुछ शब्द जिसका अवमूल्यन बहुत तेज़ी से जब हो जाता है समाज के अंदर, तो वो शब्द बड़े ही अलग ढंग से उस पर काम करने की आवश्यकता होती है, और इस शैली को यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक संतुलित जीवन शैली जब समाज से समाप्त हो जाती है, और कहना चाहिए एक छोटा सा उदाहरण देके कि दिन भर अगर परिवार के अंदर, संयुक्त परिवार के अंदर तुम शब्द का संबोधन हो रहा हो, और हम शाम को ये सिखाने का प्रयास करें कि बच्चों अपने जीवन में आपको केवल आप शब्द का संबोधन करना है। मैं ये हिंदी के दो शब्द यहाँ लेने का प्रयास कर रहा हूँ, तो जहाँ आप शब्द अगर दिन भर परिवार में बोला जाए, क्या फर्क पड़ता है छोटा हो या बड़ा, वहां पर इसी शब्द का प्रयोग अगर दिन भर होता है और बच्चे ने अगर तुम शब्द का प्रयोग किया, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे परिवार में, पूरे संगठन में कहीं भी सुबह से शाम तक इस शब्द का प्रयोग नहीं होता है, और आप बेटा ऐसा कर रहे हो तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या आपने कहीं सुना है या आस पड़ोस में इस शब्द को सुनने का प्रयास किया है, स्कूल में या और प्लेग्राउंड में। कुल मिला के आपकी जो संगत है, संगत से मैं यहाँ अर्थ ले रहा हूँ कि जब मर्यादित आचरण की बात होती है तो एक स्टेटमेंट आता है कि एज द फूड सो द माइंड, एज द कंपनी सो द पर्सन, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, और जैसा साथ होगा वैसा व्यक्ति होगा। ये एक कोडिंग जब हमारे मानस में जाती है तो हमें लगता है कि मर्यादाओं के आचरण के लिए हमें कहीं किसी भी रूप में मोटिवेट किया जा रहा है, या हमारे अंदर कोई दिक्कत खड़ी हो रही है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं बड़ों और छोटों के बीच में जो एक अंतराल है, इस गैप को समाप्त करने के लिए ओबीडियंस टू ऑर्डर, अर्थात आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता। एक आज्ञा हमको मिली है और उसको हमने हंजी करके रिस्पेक्ट से रिसीव किया और उस पर चलने का प्रयास किया, और इस प्रयास में जब मैं छोटा था और माँ ने कोई कार्य मुझे कहा, और जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो पिताजी अखबार पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, ये काम मैं तुमको दे रहा हूँ, इसको पूरा कर लो। तो मुझे लगा बड़ा द्वंद कि अभी माँ ने कुछ आदेश दिया है, उसे पूरा मैं करने जा रहा हूँ, उसी बीच में पिताजी का ये नया आदेश है, तो अब मैं काम करता हूँ कि उनसे पूछ लेता हूँ, चूँकि मुझे जिस परिवार में मेरी पालना हुई वहाँ पर तमाम स्थितियों में अपनी बात को रखने का या एक ओपननेस थी, कहना चाहिए कि एक फैमिली डेमोक्रेसी की सिचुएशन थी, और पारिवारिक प्रजातंत्र अगर बहुत ही उन्मुख होता है और सहज होता है तो वहाँ अपने प्रश्नों को हम बच्चे दबा के नहीं रखते हैं, मन महसूस के नहीं रहते हैं, बल्कि अपनी बात को वो कह सकते हैं। मैंने पिताजी से आग्रह किया कि पिताजी भी माँ ने मुझे ये कार्य सौंपा था, इस बीच में आपने ये कहा, तो मेरे मन में थोड़ा द्वंद्व आ गया कि मैं अभी किसका कहना पहले करूँ, माँ ने जो कहा वो पहले कर दूँ या जो आपने आदेश दिया वो पहले कर दूँ। तो उन्होंने बड़े अच्छे से मुझे समझाया कि देखो बेटा, परिवार के अंदर माँ का जो रुतबा है वो बड़ा है, और उन्होंने अगर आपको कोई आदेश दिया है तो उनकी स्थिति धरती वाली है, और पिता किसी परिवार में आकाश की भूमिका में है, तो आप पहले उनका कहना कर लीजिए, बाद में जो मैंने आपसे कहा है वो आपको करना है। ये मैं उदाहरण इसलिए दे पा रहा था कि एक छवि मेरे मन में उसी बालमन के रूप में स्थापित हो गई, और ये क्रम या अनुक्रम मेरे जीवन में आज तक बना रहा, और कहीं भी जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो मैं अपने बड़ों के प्रति वही श्रद्धा भाव रखता हूँ और उनके आदेश का पालन करने का प्रयास करता हूँ, और वो जो संस्कारगत मामला है वो जेहन में बैठ गया, और उसी की परिणति यह है कि जब हम आदेश उपदेश की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मर्यादाओं के आसपास में रहती है, और वो मर्यादाएं हम अंतर मन से स्वीकृत भी कर लेते हैं और उनके प्रति हमारी आस्था क्रिएट होती है और उस पर कुछ समय हम चलकर निश्चित तौर पर एक नई दिशा के लिए स्वयं को तैयार कर लेते हैं। जी
1: जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। और आइए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बाल संसार।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद। और बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, और इस गीत के साथ साथ आपको कहीं मायने जो है क्लियर भी होगा और काफ़ी चीज़ें जो है आपको अच्छी भी लग रही होंगी। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को फिर से डॉक्टर अजय शुक्ला जी से जोड़ना चाहूँगा। एक और जो प्रश्न है वो मैं आपको पूछना चाहूँगा। यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने और विचलन को कम करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं?
1: जी, बहुत अच्छी बात है कि बच्चों का जो संसार होता है उसमें एकाग्रता की बड़ी पृष्ठभूमि होती है, और अभी सोशल मीडिया और तमाम ऑब्स्टिकल इस समय सोसाइटी में क्रिएट हो गए हैं। मैं ऑब्स्टिकल इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार जब हम अपने आप को एकाग्र करने की बात करते हैं तो कुछ गजट्स जब हमारे साथ में रहते हैं, ये मुझे भी संज्ञान है कि इन गजट्स का हमारे एजुकेशन में और उससे संबंध जोड़ने में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी भूमिका है। उसके बावजूद भी अगर आप कोई एकाग्र होकर स्वयं को प्रकृति के साथ जुड़कर कुछ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उस ध्यान की मुद्रा में जब आप होते हैं तो आपकी जो वर्किंग शैली है उसमें इजाफा हो जाता है, और कुछ जो बढ़ोतरी होती है वहाँ आप देख पाते हैं कि आपने कम समय में जो टारगेट रखा था उसको आपने फुलफिल कर लिया। इसी बीच में गजट्स आपके पास में है, मोबाइल आपके पास में, किसी भी ऐप में आप इंटर हुए और आप कहीं चले गए तो ये तो एक समुद्र है, और उसमें जाने के बाद में जिस ऑब्जेक्टिव से आप गए हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ लर्निंग करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ नई क्रिएटिविटी को अंजाम देने के लिए, या उस क्रिएशन के बाद में कुछ नवाचार आपके मन में आता है, तो ये सारी स्थितियों के बीच में अगर हमने 2 से 3 घंटे सुबह या शाम में स्वयं को एकाग्र करने का प्रयास किया और थोड़ा सा सोशल मीडिया से अपने को बचा के रखा तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि होल डे की दिनचर्या में ये जो 4 घंटे हैं वो 20 घंटे के लिए आपको एक एनर्जेटिक सपोर्ट दे देंगे। मैं यहाँ एनर्जी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी हम इस फील्ड में जाने का प्रयास करते हैं तो आप जब इंटर होते हैं तो उस समय पता नहीं चलता है कि कितने कम समय में अपने आप को आप बाहर कर लेंगे, लेकिन उस जब आप बाहर नहीं हो पाते हैं तो पता चलता है कि सारा दिन सारा समय हमारा चला गया, और उस समय हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ हैं उस पर इन तमाम चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है। और चाहकर भी आपने जो गोल अपने बनाए हैं लाइफ में, या आप चाहते हैं कि बहुत सारी सफलताओं के बाद में एक अचीवमेंट मुझे गेन हो, तो वो बहुत सारी जो सक्सेस है, सक्सेस की सिचुएशन क्रिएट होती है, लेकिन वो सक्सेस हम प्राप्त भी कर लेते हैं लेकिन इंटरनल जो सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन हमें नहीं मिलती, हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ वो सफलता के साथ साथ में कुछ क्वेश्चन भी हमारे मन में होते हैं कि हम चाहकर भी सफलता को अर्जित नहीं कर पाए। और जब बहुत सारी सफलताएं इकट्ठा होती हैं उसके बाद ही हमें अचीवमेंट मिल पाएगा। ये सारी बातें संज्ञान में रहने के बाद में हमारी ड्यूटी बनती है कि कुछ चीज़ों को हम बड़े नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से, भले ही वो स्वाध्याय की बात हो, क्योंकि स्वाध्याय से आप किसी सत्य तक पहुँच रहे हैं और वो आपके जीवन में उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है कि आप कहीं ना कहीं आपका निर्माण होने वाला है, राष्ट्र निर्माण की ये प्रक्रिया है और स्वयं को एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में आप स्थापित करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान और अर्थात एकाग्रता को अपने जीवन में, अर्थात कुल मिला के नियम और संयम के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा और उसे अपने जीवन में आत्मसात करते हुए गतिशील होना पड़ेगा, तभी हम ध्यान की वास्तविकता को समझ पाएंगे और इससे मिलने वाले जो प्रतिफल हैं उसके प्रति हम अधिक संवेदनशील हो पाएंगे। जी
0: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। ध्यान केंद्रित करने के लिए मन आपका कभी कभी विचलन होता है या बहुत बार ऐसा होता है, तो ये कम हो इसके कौन कौन से तरीके हैं? तो आपको पहले से थोड़ा सा अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। अगर बच्चा है तो उसका लक्ष्य क्या है कि उसका लक्ष्य ये होना चाहिए, छोटे गोल्स में पढ़ना है, खेलना भी है, सब चीज़ों को थोड़ा डिवाइड कर लें। जिस तरह से आप खाना भी खा रहे हैं, नहा भी रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना एक बार में एक क्रिया होगी, तो आप नहा लेंगे उसके लिए आधा घंटा, आप खाना खाएंगे उसके लिए 20 से 25 मिनट, तो वैसे पढ़ने के लिए आप एक दिन में 2 घंटा निकालेंगे और 2 घंटा खेलेंगे। तो ये अगर आपका लक्ष्य को निर्धारित छोटे छोटे चीज़ों को करने के लिए, जैसे बचपन से ही आप उन चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हो, नहाने के बाद आप फिर कपड़े पहनना, बाल बनाना, इसके लिए भी टाइम देते हैं, हर चीज़ के लिए आपके पास टाइम निकालना होता है और वो आपके नेचर में है। लेकिन जब बात करते हैं ध्यान

0: तो आप अथॉरिटी है और आपका हक है। तो वैसे ही मन के ऊपर भी आप राजा हो। मन अगर आपको कहीं विचलित कर रहा है तो मन को कहिए अब रुकिए, मैं थोड़ी देर के बाद आप पर ध्यान करूंगा, लेकिन मुझे आप सपोर्ट तुम करो कि मुझे एकाग्रचित होकर एनर्जी रिसीव करने में। तो शायद ये आपका बात करने का, खुद से खुद बात करने का तरीका भी सीखना पड़ेगा, ताकि आपका ध्यान बन जाए और ध्यान में आप मगन भी हो जाए और शक्ति भी प्राप्त करें और आपका मन भी विचलित नहीं होगा। क्योंकि मन के विचलन को समझ लिया आपने, तो उसको समझ के आपने उसको कहा कि थोड़ी देर में, है ना, जैसे आप स्कूल जा रहे हो मान लीजिए, और स्कूल जाते वक्त आप स्कूल ही जाएंगे ना अगर उस समय कोई दूसरा बंदा जो है आपके रिलेटिव भी आगे होंगे तो घर पे, तो वो अगर फ़ोन करेंगे तो आप क्या स्कूल छोड़ के आ जाएंगे? नहीं, आप बोलेंगे दीदी मैं जो है स्कूल में हूँ और हमारा स्कूल अभी 12:30 तक चलेगा और मैं आपको 12:30 से 1 बजे तक घर पे पहुँच जाऊँगा, तो 1 बजे हम बात करते हैं, है ना, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो बिल्कुल मन भी जब आपके ध्यान में बाधा डालती है तो उनको बोलना भाई 2 घंटा मेरे को ध्यान करने दें, उसके बाद मैं आपके साथ हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बोलने में मुझे भी आसान लग रहा है, आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये उतना ही प्रैक्टिकल में मुश्किलें पैदा करती हैं, क्योंकि इट नीड्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और आखिरी प्रश्न पूछते हैं डॉक्टर अजय जी से, और बड़े कार्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ने का क्या लाभ है, ये थोड़ा सा बताइए डॉक्टर अजय जी।
1: जी, जब भी हम कार्य का निर्धारण करते हैं तो उस समय जैसा कि आपने भी कहा भी, और कुछ अति मूलभूत बातों को जब आपने कहा बड़े ध्यान से सुन रहा था, निश्चित तौर पर देखिए लर्नर लर्न्स वन थिंग एट ए टाइम, एक समय में एक ही काम किया जा सकता है, उस कार्य की पूर्णता के बाद ही हमारी शिफ्टिंग हो सकती है। और मन को समझाने की जो गतिविधि भाई जी आपने शेयर किया, निश्चित तौर पर वो एक ऐसा ऑटो सजेशन की प्रक्रिया है मनोविज्ञान में, जहाँ इंसान स्वयं से बात करता है, स्वयं से संवाद करता है, और स्वयं से संवाद करते समय ये सारी स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं, और कहीं कोई बात विरोधाभासी सिचुएशन की आई तो हम उसको पोस्टपोन करते हैं। इसी को अध्यात्म की भाषा में कहा जाता है कि मन को मारो नहीं, मन को सुधारो। अब इस सुधार की प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे सामने जो हमारा लक्ष्य है उसे करने के लिए हमारे अंदर एक उत्सुकता आती है, क्योंकि मन हमारे नियंत्रण में आ गया। तो जब इंसान अपने जीवन में कर्मेंद्रियों पर बहुत अच्छे से राज्य करना शुरू कर देता है, जिसको स्वराज्य हम लोग बोलते हैं, तो जब हमने अपनी कर्मेंद्रियों को डायरेक्शन दिया और उस अनुरूप कार्य हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जिस कार्य को हमने हाथ में लिया है उसको हम अलग अलग तरीके से वहाँ डिवाइड करते हैं। डिवाइड से यहाँ अर्थ है कि कोई बड़े कार्य को करते समय अगर आपने कुछ की नोट्स डेवलप कर लिए तो निश्चित तौर पर वो बड़ा कार्य संपादित होने में हमारी मदद हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई लेख आपको लिखना है, अब आपने कोई लेख का सृजन करने का विचार किया, उस स्थिति में आपके मन में आया कि इसका टॉपिक क्या हो, अब आपके मन में आया कि क्यों नहीं हम कुछ स्पिरिचुअलिटी पर लिखें। अब स्पिरिचुअलिटी पे आप लिख रहे हैं, मन में आएगा कि अध्यात्म इतनी बड़ी चीज़ है और उसका तो मनुष्य जीवन से कोई संबंध नहीं हो पाता है, थॉट्स बहुत ऊँचे होते हैं, ये जीवन में कैसे आएंगे। लेकिन उसी समय आपके मन ने कहा कि क्यों नहीं हम इसका एक टाइटल दें, तो आपने कहा कि नहीं स्पिरिचुअलिटी इन द प्रैक्टिकल लाइफ। अब व्यवहारिक जीवन में अध्यात्म, इसकी आप बातचीत करने लगे, अब व्यवहारिक जीवन में अध्यात्म कैसे आएगा ये भी फिर आपको कठिन लग रहा है, तो इसके ऑप्शंस में आप जाते हैं कि क्यों नहीं इतना लंबा ये शीर्षक है, ज़्यादा अच्छा है कि हम इस शीर्षक को थोड़ा सा और छोटा करें। फिर आपके मन में आया कि क्यों नहीं हम रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी रख लें, अर्थात अध्यात्म का प्रतिबिंब। अब अध्यात्म का प्रतिबिंब जैसे ही आप रखते हैं टॉपिक, तो आपको पता चलता है कि इसकी रेंज बड़ी हो गई, क्योंकि आप उसको जब छोटी रेंज में बांध देते हैं किसी विशेष सामग्री को, तो वहां पर विशेष सामग्री का अभाव हो जाता है, और जहां आपने रेंज को बढ़ा दिया, अब स्पिरिचुअलिटी इन द प्रैक्टिकल लाइफ की बात की, तो बार बार आपके मन पर एक तनाव होगा कि क्या अध्यात्म ये प्रैक्टिकल जीवन में आ सकता है, और आपको कोई मॉडल दिखाई भी नहीं देता है। आपको लगता है कि जब भी हम किसी ऊंची हस्ती से मिलने जाते हैं तो वो सब चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती, ये संवाद में बातें आती हैं लेकिन व्यवहार में दूर दूर तक नहीं आपको स्पर्श होता है, तो ये सब चीज़ें आपके मन में चलती हैं, तो फिर लगता है कि इस पे मैं कैसे लिखूंगा। तो ये जो लिखने की शैली है वो आपको धीरे धीरे धीरे धीरे आप चिंतन के पक्ष में गए, कुछ आपने लिटरेचर को रेफ़र किया और ये जानने का प्रयास किया कि आखिर दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई बात तो आती होगी ना, तो वहाँ एक प्रश्न आ गया, हु एम आई, मैं कौन हूँ। अब मैं कौन हूँ इसको भी आपने ढूंढने का प्रयास किया, अब मैं कौन हूँ ये अध्यात्म का विषय। तो जैसे ही आप अपने को शरीर मान रहे थे तो पता चला

0: आत्मा का अध्ययन करते समय कि आपको पता चल गया कि इस शरीर में आत्मा रहती है। तो ये सारी बातें आपने जब करनी है या लिखनी है पढ़नी है तो आप क्या करेंगे, इसके स्टेप्स तय करेंगे। तो जहां आप रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, अध्यात्म के प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, तो उस प्रतिबिंब में बहुत सारे पक्ष आपको दिखाई देंगे। फिर आपने छोटे छोटे टॉपिक्स बना लिए, तो ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके की नोट्स हो गए। जब इसको एलिब्रेट करेंगे, जब आप इसका विश्लेषण करेंगे, तो एकदम विश्लेषण नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन तक मनन चिंतन करते करते आपके संज्ञान में आएगा कि मैंने इन इतने बड़े ऋषि मुनि को के बारे में पढ़ा है। हिस्ट्री के अंदर कुछ हमारे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय जो ऊर्जा है, राष्ट्रीय का जो बहुत बड़ा पक्ष है, जिसे आप कहते हैं कि बहुत बड़ा चिंतन है, मानस है। तो ये जो ऋषि मुनियों ने ग्रंथ लिखे, इनको आप इनकी ओर जाने का प्रयास करेंगे, लोगों से मिलेंगे, विचार करेंगे, बार बार आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या अध्यात्म जीवन में आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें आपको एक फ्रेमवर्क दे देंगे। जब आपने एक फ्रेमवर्क बना लिया तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो चिंतन है, और कई बार आपने जो शीर्षक बनाया है वो मैटर लिखने के बाद अंदर आर्टिकल में कोई ऐसी बात निकल के आ जाती है, लगता है कि नहीं इसको हम हाईलाइट कर दें, इससे हमारे आर्टिकल का संपूर्ण मैसेज मिल सकता है। तो मैंने एक छोटा सा एक स्वरूप आपको बताने का प्रयास किया। तो ये क्रिया जब हम करते हैं, छोटे छोटे भागों में इसको बांट देते हैं, और जब एक पक्ष हो जाता है, जैसे एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च की हम बात करें, तो मीडिया में हम पहले कंक्लूजन निकाल के देंगे, फिर बताएंगे कि इसके बाद ये सारी चीजें कहां से आएंगी। लेकिन एक नॉर्मल राइटिंग वर्क में क्या होगा कि इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम पूरा करेंगे, उसकी एक प्रस्तावना बनाएंगे, उसके इंपॉर्टेंस को हम शो करेंगे, उसके ओरिजिनल मीनिंग को हम बताएंगे। तो ये तमाम चीजें आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगी, क्योंकि उस विषय वस्तु के अलग अलग भाग आपने कर दिए। इसी प्रकार से किसी भी कार्य को, चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो, उसको जब हम अलग अलग भागों में स्थापित कर देते हैं तो वो एक वो गाइडलाइन के रूप में काम करता है। जरूरी नहीं है कि वो हूबहू वही वहाँ प्रिंट आउट फाइनल शेप में क्रिएट हो, लेकिन एक नई आपको दिशा मिल जाती है और काम करने में उमंग भी आ जाता है, और इस प्रकार हमें ये महसूस होने लगता है कि कुछ भाग हमने पूरा कर लिया और शेष भाग को हमें पूरा करना है। जी
1: जी जी जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया, आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। तो जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में हमने जो बातें सुनी वो हमारे अंतर्मन को और हमें अच्छा लग रहा है, और मैं चाहूँगा कि हमारे माता पिता या बच्चे सुन रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी इन चीज़ों पे जितना आप सुनते हो सकता है कभी कभी डोज बारी भी लगता हो, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं भी समझ में आता हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि नहीं समझ में आए तो उसको समझने की ज़रूरत नहीं, जितना समझ में आ रहा है उसको प्रैक्टिस कीजिए।
0: क्या बात?
1: तो हम लोग चाहेंगे कि आप उसका प्रैक्टिस करके उसका अनुभव हमारे साथ मैसेज करके साझा कर सकते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा कि कम से कम आपने आधा घंटे के इस एपिसोड में 20 मिनट हमारी रिकॉर्डिंग होती है, उसमें अगर एक मिनट भी आपने समझा तो हमारे लिए खुशी है, और आपको कोई बोझ भी नहीं देना चाहते, लेकिन आप समझ के एक मिनट का भी अगर एप्लीकेशन करते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त करेंगे, ये गारंटी है। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बात लेकर, और इसी क्रम में आपको जोड़ेंगे। आप सुन रहे हैं बाल संसार, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अजय शुक्ला बच्चों को याद दिलाते हैं कि मर्यादित कार्यों का संपादन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो उन्हें सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। वे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे इन सुझावों का पालन करें और अपनी दक्षता, प्रभावशीलता और सटीकता में सुधार करें। साथ ही वे आत्म जागरूकता और विनम्रता के महत्व पर भी जोर देते हैं, जो हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और दूसरों का सम्मान करने में मदद करता है। क्या आप इस कार्यक्रम के किसी विशेष हिस्से पर और जानकारी चाहते हैं, या किसी अन्य विषय पर चर्चा करना चाहेंगे? फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं कि आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और खुशी की बात यह है कि भाई आप फिर से जो है सफर कार्यक्रम में आ गए हैं और एक सुंदर विचार के साथ कहते हैं, लोग चाहे मुट्ठी भर हो लेकिन संकल्पवान हो, अपने लक्ष्य में बहुत ज्यादा मजबूत आस्थावान हो, वे इतिहास को भी बदल सकते हैं, वे ही इतिहास को बदल सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। और आइए अब बात करते हैं आज विशेष कुछ खास लोगों की जीवन कहानी से आपको रूबरू कराना चाहूँगा। और आज के दिन विशेष जैसे कि कुछ खास लोग हैं, विनोबा भावे, आत्माराम राव जी देशपांडे, लाला अमरनाथ, कन्हैयालाल सेठिया, प्रहलाद जोशी, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही महादेवी वर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, सुब्रमण्यम भारती, बाबा हरभजन सिंह, स्वामी अग्निवेश, नरेश चंद्र सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज विनोबा भावे की कहानी और कुछ लोगों की बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा करते रहें। ऐसी शुभ आशा के साथ चलिए एक बहुत ही सुंदर गीत की तरफ ले चलता हूं आपको। एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए आप बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में। जी हाँ, विनोबा भावे के बारे में। महात्मा गांधी के आदरणीय अनुयायी, भारत के एक सर्वाधिक जाने माने समाज सुधारक और भूदान यज्ञ नामक आंदोलन के संस्थापक भी थे। इनकी समस्त जिंदगी साधु संन्यासियों जैसी रही, इसी कारणवश ये एक संत के तौर पर प्रख्यात हुए। विनोबा भावे अत्यंत विद्वान और विचारशील व्यक्ति वाले शख्स थे। महात्मा गांधी के परम शिष्य जंगे आज़ादी के इस योद्धा ने वेद, वेदांत, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल आदि अनेक धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। अर्थशास्त्र, राजनीति और दर्शन के आधुनिक सिद्धांतों का भी विनोबा भावे ने गहन अवलोकन चिंतन किया गया। विनोबा भावे का जन्म आज ही के दिन 11 सितंबर 1895 को गोहदे गुजरात भारत में हुआ। विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्मे विनोबा भावे ने गांधी आश्रम में शामिल होने के लिए 1916 में हाईस्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। गांधी जी के उपदेशों ने भावे को भारतीय ग्रामीण जीवन के सुधार के लिए एक तपस्वी के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। विनोबा भावे की बुद्धि अत्यंत प्रखर थी और गणित उनका जो है सबसे प्यारा विषय बन गया था। हाईस्कूल परीक्षा में गणित के सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे और बड़ौदा में ग्रेजुएट करने के दौरान ही विनायक का मन वैरागी बनने के लिए अति आतुर हो उठा और 1916 में मात्र 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और साधु बनने के लिए काशी नगरी की ओर रुख किया। काशी नगरी में वैदिक पंडितों के सानिध्य में शास्त्रों के अध्ययन में जुट गए और महात्मा गांधी जी की चर्चा देश में चारों ओर चल रही थी। वह दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे और आज़ादी का बिगुल बजाने में जुड़ गए थे। अखंड स्वाध्याय और ज्ञान अभ्यास के दौरान विनोबा भावे का मन गांधी जी से मिलने के लिए ही पहुंच गया अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में। जब पहुंचे तो गांधी जी सब्जी काट रहे थे। इतना प्रख्यात नेता सब्जी काटते हुए मिलेगा, ऐसा तो वो सोचा भी नहीं था। विनोबा भावे को आश्चर्य लगा। बिना किसी उपदेश के स्वावलंबन और श्रम का पाठ पढ़ लिया। इस मुलाकात के बाद तो जीवन भर के लिए वो बापू के ही हो गए। आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की कहानी सुनाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। आइए, बातें चल रही थी विनोबा भावे के बारे में। विनोबा भावे जो है बापू जी के मुरीद हो गए और उनके जीवन से काफी कुछ वो सीखते रहे। बापू के सानिध्य और निर्देशन में विनोबा भावे के लिए ब्रिटिश जेल एक तीर्थ धाम बन गई। सन 1921 से लेकर 1942 तक अनेक बार जेल यात्राएं की और 1922 में नागपुर का झंडा सत्याग्रह किया। ब्रिटिश हुकूमत ने CRPC की धारा 109 के तहत विनोबा भावे को गिरफ्तार किया। इस धारा के तहत आवारा गुंडों को गिरफ्तार किया जाता है। नागपुर जेल में विनोबा भावे को पत्थर तोड़ने का काम दिया गया। कुछ महीनों के पश्चात आखोला जेल भेज दिया गया। विनोबा भावे का तुमानो तपोयज्ञ आरंभ हो गया। 1925 में हरिजन सत्याग्रह के दौरान जेल यात्राएं हुई और 1930 में गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस ने नामक सत्याग्रह को अंजाम दिया और इस तरह से गांधी जी और विनोबा भावे एक दूसरे के पूरक बनते हुए, सहयोगी बनते हुए दांडी मार्च का भी कार्यक्रम शुरू किया। फिर से जेल पहुंच गए दांडी मार्च के दौरान। इस बार उन्हें दूलिया जेल में रखा गया। राजगोपाल आचार्य, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता था, उन्होंने विनोबा भावे के विषय में यंग इंडिया में लिखा था कि विनोबा को देखिए, देवदूत जैसा पवित्र है उसमें, पवित्रता है उसमें। आत्मविविध तत्वज्ञान और धर्म के उच्च शिखरों पर विराजमान है वो। उसकी आत्मा के आत्मा ने इतनी विनम्रता ग्रहण कर ली है कि कोई ब्रिटिश अधिकारी यदि पहचानता नहीं तो उसे विनोबा भावा की महानता का अंदाज़ा नहीं लग सकता। जेल के किसी भी श्रेणी में उसे रखा जाए, वह जेल में अपने साथियों के साथ कठोर श्रम करता रहता है और अनुमान भी नहीं होता कि ये मानव जेल में चुपचाप कितनी यातनाएं सहन कर रहा है। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा भावे को चुना गया और प्रसिद्धि की चाह से दूर विनोबा भावे सत्याग्रह के कारण बेहद मशहूर हो गए। उनका गांव-गांव ये युद्ध विरोधी तकरारे करते हुए आगे बढ़ते चले जाना था और ब्रिटिश सरकार द्वारा 21 अक्टूबर को विनोबा भावे को गिरफ्तार किया गया और सन 1942 में 9 अगस्त को वो गांधी और कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं के साथ गिरफ्तार किए गए। इस बार उनको पहले नागपुर जेल में, फिर वेल्लूर जेल में रखा गया। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, बहुभाषी व्यक्तित्व होने के कारण अरबी, फारसी, हिंदी, गुजराती, बंगाल, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, फ्रेंच, अंग्रेजी, बंगला, ये सारी भाषाएं उन्हें आती थी। तो इसलिए भारत में कहीं भी जाते तो उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता था। वो समस्त अर्जित ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में लागू करने का उन्होंने अप्रतिम और अथक प्रयास किया और भारत के श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विनोबा भावे जी के नम्र, उनके स्वभाव को देखकर कविता लिखी थी, धन्य तू विनोबा, जन की लगाए बाजी, जन की लगाए बाजी, गाय की बचाई जान, धन्य तू विनोबा, तेरी कर्तित अमर है, दूध बलकारी जाको पूत हलदारी हुए, सिंदारी लाजत मल मूत्र ओवर है, घास पात कात दीन वचन उच्चारे जात, मारी के हुकाम देत चाम जो सुगर है, बाबा ने बचाए लीन ही दिल्ली दलाए दिनी, बिना लव लश्कर समर किनो सर है। तो धन्य तू विनोबा, इस तरह का जो है कविता विनोबा भावे के लिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने लिखा था। तो साहित्यिक योगदान की बात करें तो इन्होंने काफ़ी साहित्य लिखा और भूदान आंदोलन इसके लिए जाना जाता है। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन का विचार 1991 में जन्मा और वो आंध्र प्रदेश के गांव में भ्रमण कर रहे भूमिहीन अछूत लोगों या हरिजनों के समूह के लिए जमीन मुहैया कराने की अपील के जवाब में एक जमींदार ने उन्हें
एक एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव किया। इसके बाद वह गांव गांव घूमकर भूमिहीन लोगों के लिए भूमि का दान करने के लिए अपील करने लगे और उन्होंने इस दान को गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों से संबंधित बताया। भावे के अनुसार ये भूमि सुधार कार्यक्रम हृदय परिवर्तन के तहत होना चाहिए, न कि इस जमीन के बंटवारे से बड़े स्तर पर होने वाली कृषि के तार्किक कार्यक्रमों में अवरोध आए। और भावे जी की ये हृदय के बंटवारे की तुलना में जमीन के बंटवारे को ज़्यादा पसंद किया गया। हालांकि बाद में उन्होंने लोगों को ग्राम दान के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें ग्रामीण लोग अपनी भूमि को एक साथ मिलाने के बाद उसे सहकारी प्रणाली के अंतर्गत पुनर्गठित करते। अपने भूदान आंदोलन के प्रेरित होकर हरदोई जनपद के सर्वोदय आश्रम टाडीवा द्वारा उत्तर प्रदेश के 25 जनपदों में श्री रमेश भाई के नेतृत्व में ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया गया। तो ये विशेष उनका काम था। और फिर 1975 में पूरे वर्ष भर अपने अन्यायों के राजनीतिक आंदोलन में शामिल होने के मुद्दे पर भावे ने मौन व्रत रखा और 1979 के एक आमरण अनशन के परिणाम स्वरूप सरकार ने समूचे भारत में गौ हत्या पर निषेध लगाने हेतु कानून पारित करने का आश्वासन दिया। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर कार्यक्रम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन सुनने वालों को सुरेश ओबरॉय का नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मित्रों, यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा। जहाँ हमें मृत्यु से डर लगता है और विनोबा भावे मृत्यु को एक उत्सव बना दिया। अब सुनिए इनकी कहानी अंतिम समय की, कि विनोबा भावे सचमुच संत थे और उनका समाधि स्थल पावनार आश्रम में बना हुआ है। कभी मौका मिले तो ज़रूर वहाँ पर जाइएगा। और उनका अंतिम दिन जो समय चला, वो भी एक तपस्या का जो है, एक संत की तरह ही रहा। तो आइए सुनते हैं उनके आखिरी दिनों की बात आपके लिए। जब ये देख लिया कि वृद्धावस्था ने उन्हें आ घेरा है, तो उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। जब आचार्य विनोबा जी ने अन्न और जल त्याग दिया, तो उनके समर्थकों ने उनसे चैतन्य अवस्था में बने रहने के लिए ऊर्जा के सूत्र की जानकारी चाही। तो उन्होंने बताया कि वे वायु, आकाश आदि से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आचार्य विनोबा ने कहा कि मृत्यु का दिवस विषाद का दिवस नहीं, बल्कि उत्सव का दिवस है। इसीलिए उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए दीपावली का दिवस 15 नवंबर को निर्वाण दिवस के रूप में चुना। इस प्रकार अन्न जल त्यागने के कारण एक सप्ताह के अंदर ही 15 नवंबर 1982 वर्धा महाराष्ट्र में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। विनोबा भावे जी की शरीर त्यागने के उपरांत पावनार आश्रम के सभी बहनों ने उन्हें संयुक्त रूप से मूक अग्नि दी। इतिहास में इस तरह की मृत्यु के उदाहरण गिने चुने ही मिलते हैं। इस प्रकार मरने की क्रिया को प्राय प्रवेश कहते हैं, है ना कमाल की बात। तो ये थी कुछ खास बातें विनोबा भावे के अंतिम समय की। वो मृत्यु को भी उत्सव के रूप में कैसे परिवर्तन किया, ये कहानी अभी आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर कार्यक्रम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। तो कितना सिंपल विनोबा भावे जी का जीवन रहा। जब व्यक्ति सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो निश्चित तौर पे वो ज्ञान उसके साथ काम करता है। और इसीलिए कहा गया है, ज्ञान जो है एक शक्ति का काम करता है, और उनके अंदर वही शक्ति काम कर रही थी अंतिम समय तक। और मृत्यु को भी उन्होंने एक उत्सव का रूप दिया और खुद ही जल अन्न त्याग कर मृत्यु का उत्सव मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, है ना कमाल की बात। तो ये चैतन्य समाधि की अवस्था कह सकते हैं हम लोग। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी किसी महान संतों की कहानी सुनकर मन जो है प्रफुल्लित भी हो जाता है, और जीवन का रहस्य भी समझ में आ जाता है कि जीवन कितना आसान है और हम बिना मतलब के परेशानी मोड़ लेते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो 107.8 FM सफर कार्यक्रम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया आप हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। आत्माराम राव जी देशपांडे, इनके बारे में जानते हैं अभी। और ये भी एक मराठी भाषा के बहुत ही पॉपुलर कवि थे। ये कवि अनिल नाम से अधिक पॉपुलर रहे। समाज शिक्षा विशेषज्ञ विदर्भ के प्रसिद्ध मराठी कवि अनिल के प्रसिद्ध कविता संग्रह के कुछ नाम इस तरह से हैं, फलवत, बनभूर्ति, पेत्रवा, संगति, दशपति। अनिल मालवन के मराठी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे। उनके गीतों के कई रिकॉर्ड भी बने हैं। उनकी पत्नी श्रीमती कुसुमवती देशपांडे की बड़ी विदुषी थी। दोनों का पत्र व्यवहार कुसुम अनिल नाम से छपा गया। तो आइए इनके बारे में और बातें ना जानते हुए सीधे इनको अगर मैं बात करूं, तो ये एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। 11 सितंबर आज ही के दिन 1901 को महाराष्ट्र मुतरजापुर में इनका जन्म हुआ। 8 मई 1982 को नागपुर महाराष्ट्र इनका देहांत हुआ। और काव्य साहित्य सामाजिक शिक्षण इनका विशेष विषय था। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपको सुनाते हैं अभी। और जीवन के कई बार ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ राइटर जो है अपने आप को जो है भुला भी देता है, लेकिन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए साहित्य से ही गुजरना पड़ता है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

से एक नाम आता है इनका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक लगाने का गौरव भी इन्हें ही प्राप्त है। लाला अमरनाथ भारत के एक ऐसे ऑलराउंडर थे जिन्होंने बल्ले के अलावा गेंद से भी अपने विचारधाराओं की अपने विरोधियों के नाक में दम कर दिया था। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1991 में खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इनके निधन पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शोक संदेश में कहा था, भारतीय टीम भारतीय क्रिकेट का आइकॉन करार दिया था इन्हें, और लाला दाएं हाथ के बल्लेबाज और मध्यम गति के तेज गेंदबाज थे। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। लाला अमरनाथ का जन्म आज ही के दिन 1911 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। उनका मूल नाम नानक अमरनाथ भारद्वाज था। इनके दोनों बेटे सुरेंद्र अमरनाथ और महेंद्र अमरनाथ भी भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं। उनके खेल के स्तर और चरित्र को आंकड़ों में नहीं बांधा जा सकता। इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 1933 और 53 के दौरान कुल 40 पारियां खेलते हुए करीब 25 के औसत से 878 रन बनाए और 45 विकेट भी लिए। लाला अमरनाथ ने अपना क्रिकेट करियर एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर शुरू किया था, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी के अलावा शिवांग गेंदबाजी के लिए भी जाना गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके खेल जीवन के सुनहरे वर्ष बर्बाद हो गए, जैसे कि महान बल्लेबाजों डॉन ब्रैडमैन और लेन हटन के साथ भी हुआ था। 1938 में मुंबई में हुए पेंटेगुलर टूर्नामेंट में लाला अमरनाथ ने हिंदूज की तरफ से खेलते हुए 241 रनों की एक बेहतरीन यादगार पारी खेली, जिसे लंबे समय तक याद रखा गया। फिर इसके बाद कुछ चीज़ें उनके साथ हुई और फिर उतार चढ़ाव भी आए और भारतीय टीम का नेतृत्व भी उन्होंने किया। उल्लेखनीय बात यह है कि लाला अमरनाथ टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के पहले बल्लेबाज थे। उन्होंने शतक मुंबई के जिमखाना ग्राउंड पर इंग्लैंड के विरुद्ध जारी टेस्ट मैच के तीसरे दिन 17 दिसंबर 1933 को लगाया था। लाला अमरनाथ न सिर्फ बेहतरीन बल्लेबाज थे बल्कि एक शानदार गेंदबाज भी रहे। 1946 में इंग्लैंड दौरे के दौरान एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 5-5 विकेट झटके थे, साथ ही 3 बार 4-4 विकेट भी निकाले थे। लाला अमरनाथ की कप्तानी में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार पाकिस्तान को हराया था। 1952 में भारत के दौरे पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने आई पाक टीम को टीम इंडिया ने दिल्ली में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 1 पारी और 70 रन से शिकस्त दी थी। तो ये थी कुछ खास बातें लाला अमरनाथ के बारे में। और 5 अगस्त 2000 को इनका मृत्यु दिल्ली में हुआ। तो ये थी कुछ खास बातें लाला अमरनाथ क्रिकेट प्लेयर के बारे में। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे अब चाहूँगा इजाज़त और जाते जाते आपके लिए कुछ विचार ज़रूर सुनाऊँगा। तो विचारों का जो ताता है वो चलता रहना चाहिए, है ना। जितने सुंदर विचार आप करने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा होगा। लोग चाहे किसी भी तरह का हो, लेकिन उठो जागो और लक्ष्य तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य आपके कदमों में ना आए। आप सुना है रेडियो 107.8 FM पर, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और कार्यक्रम शुरू हो चुका है युवा मंच का। और आज हमारे साथ एक गेस्ट है जिनसे हम जानेंगे कि करियर में हमें जो डिसीजंस लेने होते हैं, कभी कभी ऐसा पॉइंट आता है जब हमें ये जानने का होता है कि हमें आगे कौन से ऑप्शंस लेने हैं और कौन कौन से डाइवर्स फील्ड हमारे लिए ओपन है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे साथ एक करियर कोच हमारे साथ हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: जी। हमारे साथ शोभित सर हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में। सर,
1: तो मैं एक करियर काउंसलर हूँ, लाइफ कोच हूँ और एक स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, और लखनऊ में मेरी सर्विसेज में प्रदान करता हूँ। हमारा ऑफिस यहाँ पर है। हमको इस फील्ड में काम करते हुए, सेवाएं देते हुए करीब 15 वर्ष हो गए हैं, और हम लोग अलग अलग स्कूल के साथ काम करते हैं। हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं ताकि उनको एक दिशा मिले जीवन।
0: जी सर, थैंक यू सर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की मुलाकात को। सबसे पहला सवाल लेकर कि जैसे कि कई बार हमारे पास चॉइसेस आती हैं, सबसे पहली चॉइस जो हमें लाइफ में मिलती है करियर को लेकर, वो क्लास 10th के बाद मिलती है कि हमको साइंस में जाना है कि कॉमर्स में जाना है। सर, तो वहाँ हमारे कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, उनके मन में हमेशा उन्हें ये बताया जाता है कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो या जो तुम्हें अच्छा लगता है वहां जाओ, लेकिन मन में एक डर रहता है कि क्या मैं इस चीज को आगे कर पाऊंगा कि नहीं, इसका कितना स्कोप है। और कभी कभी व्यक्ति फैमिली प्रेशर में भी आ जाता है और पेरेंट्स प्रेशर देते हैं कि नहीं, उन तुमको यही सब्जेक्ट लेना है, यही पढ़ना है। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहली चीज हम कैसे पहचाने कि हमें कहाँ जाना है, और अगर पेरेंट्स हमें फोर्स कर रहे हैं अगर इस चीज को लेके, तो हम उन्हें कैसे कन्विंस कर सकते हैं उस फील्ड में जाने के लिए।
1: तो आपने जो अपना प्रश्न पूछा है उसका मैं उत्तर कुछ तीन भागों में दूंगा, क्योंकि एक प्रश्न में कई प्रश्न और कई पहलू समाये हुए हैं।
0: जी,
1: तो जैसे पहले आपने कहा कि 10वीं के बाद बच्चों को एक मौका मिलता है चुनाव करने के लिए कि वो साइंस लें कि कॉमर्स लें, तो बच्चों के पास साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, जिसे आर्ट्स भी कहते हैं, ये तीन विकल्प होते हैं चुनने के लिए। और हर स्कूल ये तीन विकल्प जरूरी नहीं है कि वो दे। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आपके स्कूल में अगर ह्यूमैनिटीज नहीं है या फिर कॉमर्स नहीं है, तो फिर ये मत समझिएगा वो विकल्प है ही नहीं दुनिया में या अन्य स्कूलों में। अब बात आती है कि हम ये चुनाव कैसे करें कि हम कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करें। तो अगर हम विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की, तो साइंस के लिए आमतौर पर स्कूल में कट ऑफ होता है कि जैसे जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के जो स्कूल होते हैं वहां पर कहते हैं कि अगर 80% से ज्यादा आपके अंक आए हैं 10वीं के बोर्ड की परीक्षा में, तो आप साइंस के लिए आप चुनाव करिए। और ये न्यूनतम जिसे एलिजिबिलिटी कहते हैं वो ऐसा कहते हैं। फिर साइंस जो विषय है इसको अन्य विद्यालय, अन्य स्कूल भी देते हैं, और वहां पर जिसे कहेंगे कि परसेंटेज कट ऑफ हो सकता है 65 हो जाए, 70 हो जाए, या 60 ही रहे, ऐसा भी होता है। तो जरूरी है कि बच्चों को ये बात समझें कि विज्ञान में भी हमारे पास क्या अलग अलग शाखाएं हैं साइंस में। जैसे साइंस में अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स का होना जरूरी होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, और अगर किसी को जीव जंतु और पेड़ पौधों में रुचि है तो उनको बायोलॉजी लेना होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये भी अलग क्षेत्र हैं जो कि व्यक्ति साइंस लेकर उसको आगे कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं उस क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए आमतौर पर कोई कट ऑफ नहीं होता है, और इसको कोई भी विद्यार्थी अपना जो है करियर के रूप में या अपने इच्छा या रुचि के अनुकूल उस विषय का वो चयन चुनाव कर सकता है। लेकिन बात ये समझनी होगी कि हर करियर जो है अच्छा करियर है, और ये बात, ये धारणा, अवधारणा बनाना कि अगर विज्ञान हमने लिया है, साइंस हमने लिया है, तो हम बुद्धिमान मन समझे जाएंगे, और यदि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज आर्ट्स लिया है तो हमको मंद बुद्धि का समझा जाएगा, कहेंगे कमजोर है पढ़ाई में तो भी आपने ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स ले लिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जहां पर हमारी रुचि होती है वहां पर हम विषय का, उस सब्जेक्ट का हम चुनाव करेंगे तो हम सफलता को प्राप्त करेंगे। तो दूसरा पहलू आपने कहा कि माता पिता जोर करते हैं, एक एक प्रकार का जैसे आपने कहा प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं कि आप फला फला सब्जेक्ट स्ट्रीम ही आप चुनाव करेंगे। आमतौर पर देखा गया है कि माता पिता जिस क्षेत्र में होते हैं वो उसी क्षेत्र में बच्चों को अपने विषय का चुनाव करने के लिए प्रेरित करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर माता पिता डॉक्टर हैं तो वो चाहेंगे कि बेटा पीसीबी बायोलॉजी विषय लें, अगर माता पिता इंजीनियर्स हैं तो वो चाहेंगे पीसीएम लें, और अगर माता पिता बिजनेस में हैं तो कहेंगे कि आप कॉमर्स दो बेटा, और अगर माता पिता संगीत में हैं तो वो प्रेरणा देंगे बच्चों को संगीत में जाएं, अगर वो कत्थक घराने से हैं तो कहेंगे कि आप ह्यूमैनिटीज लेके कत्थक आगे घर के नाम को रोशन करिए, आप आगे लेके चलिए। कोई अगर साइकोलॉजी में है और वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो भी उनको प्रेरणा देंगे कि ह्यूमैनिटीज में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लें। तो बच्चों को खुद, या एक तो बच्चों को ना, क्योंकि 15 वर्ष की आयु होती है, 16 वर्ष की आयु होती है, आज के समय में बच्चों के पास जानकारी उपलब्ध कराने की कमी नहीं है। गूगल के माध्यम से वो ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा विवेकशील बनना होगा, और जैसे आपने सवाल हमसे पूछा, ये सवाल आप गूगल से पूछेंगे, और गूगल ये सारी जानकारी आपको वहां पर विस्तार से आपको देगा कि 10वीं के बाद कौन कौन से विषय हमारे पास हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि हम आज के समय में डिजिटल युग जिसे कहते हैं, हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं, सारी सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं, सारा काम ऑनलाइन हो गया है, यहाँ तक घर बैठे आपको सामान मिल जाता है, खाना सब्जियां मिल जाती हैं, और अगर आपको प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, तो वो भी घर बैठे आप, कई एप्स हैं जैसे उबर है, उबर सर्विसेज, वहां से आप सेवाएं ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से जानकारी भी हम हर प्रकार की गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त बच्चे कर सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान देने की बात यह है कि उनको शांति से अपने साथ बैठकर ये आंकलन करना होगा कि मेरी रुचियां किस क्षेत्र में और मेरी काबिलियत किधर है, वेयर माई इंटरेस्ट लाइज एंड वेयर माई एप्टीट्यूड लाइज। एट द सेम टाइम अगर हम केवल अपना चुनाव इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के ऊपर छोड़ देते हैं और हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं उसको हम नहीं समझते हैं, तो भी यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि 12वीं के बाद फिर क्या करेंगे, 12वीं के बाद फिर चुनाव करना होगा। तो चुनाव केवल
0: जी
1: आप अपनी रुचियों के आधार से नहीं करते हैं, क्योंकि रुचियां भी 2 प्रकार की होती हैं, और बच्चे अक्सर इस बात में मूंझ जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक रुचि होती है मनोरंजन के लिए और एक रुचि होती है पैसा कमाने के लिए। तो दिन भर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा हम क्या काम करेंगे, जैसे लोगों, क्या हमको धूप में बाहर बाजार में घूमना अच्छा लगता है? तो कई युवा कहेंगे हाँ अच्छा लगता है, लेकिन क्या रोज आपको ये काम अच्छा लगेगा, 8 घंटा 14 घंटा रोज करना? हाँ, तो ये एक प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो या फिर कहते हैं कि हमको गैजेट के साथ, हाँ गैजेट के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो शौकिया अच्छा लगता है, जैसे कि कुछ लोगों को फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एडिट करना, फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसको रोज आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वो भी 8 घंटा निरंतर, 14 घंटा निरंतर? हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक जैसे एक प्रोफेशन के रूप में आ गया है, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनना ये भी एक प्रोफेशन के रूप में आ गया है। तो ये हमको पूछना होगा अपने आप से, और ये अलग करना होगा। रुचियों की जो मनोरंजन के लिए है वो अलग है, और जीविका के लिए जो हमारी रुचियां हैं वो अलग हैं। तो इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम नहीं आकलन कर पा रहे हैं, तो तो हम वैज्ञानिक तरीके से साइकोमेट्रिक टेस्ट के माध्यम से एक करियर काउंसलर से परामर्श लेकर और एक एक सुलझे हुए और वैज्ञानिक ढंग से हम अपनी काबिलियत, अपने एप्टीट्यूड को, अपनी क्षमताओं को और अपनी रुचियों को समझ सकते हैं।
0: जी सर, बहुत अच्छा लगा जान के। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे हम अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ की पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए, और हम ये नहीं सोच सकते कि वो दूसरा व्यक्ति वो ले रहा है या उसके से मेरे को क्या होगा करके। अगर मन में डर है तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। और ये तो सर हमारे स्कूल की बात हो गई कि यहाँ पे हमने टेंथ के बाद चॉइस ली, यही चीज़ ट्वेल्थ के बाद भी अप्लीकेबल होगा कि इस फील्ड में हमको जाना है, उसकी प्रॉपर रिसर्च करके इंटरनेट में सारी जानकारी हमें मिल जाती है और हम अपने उस स्ट्रीम में जा सकते हैं। सर, अब जब हमारे स्टूडेंट्स जो है कॉलेज में आ गए, कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, लेकिन जैसे मैं पर्सनली बात करूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग करते करते या कोई भी जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, कुछ एडिशनल स्किल्स भी हमें जरूरत होती है कि हम जब फ्यूचर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो वहाँ वो स्किल्स चाहिए जो कॉलेज में हमें नहीं सिखाई जाती, या हो सकता है कि कई कॉलेजों में वो चीजें स्किल्स सिखाई नहीं जाती, होता क्या है वो सब बताया ना जाता हो। तो कौन कौन सी स्किल्स है? पहली चीज तो ये कि वो जो हम सीखें जो हमें आगे जॉब में काम आए, और हम वो कहाँ से सीख सकते हैं?
1: देखिए, स्किल्स जो होती है ना दो प्रकार की होती है, अगर हम उसकी शाखाएं बनाए, एक हार्ड स्किल्स होती है और एक सॉफ्ट स्किल्स होती है। तो ये दोनों ही हमको जरूरत होती है जीवन में सफलता पाने के लिए। हार्ड स्किल होगी जो कि आपके विषय से संबंधित है, तो जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियरिंग की जो शाखाएं हैं वो 22 से भी ज्यादा शाखाएं वर्तमान में है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मरीन, पेट्रोलियम, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। तो आप जिस इंजीनियरिंग एरिया में स्पेशलाइज करना चाहते हैं उसके हार्ड स्किल्स तो आपको सीखने होंगे, और उसके लिए ऑनलाइन माध्यम से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर आप ऐप मेकिंग का ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। आप जैसे टैली और जो बेसिक MS ऑफिस है वो आना जरूरी हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में बहुत ढेर सारे काम को कम समय में, जिससे करने में पहले काफी समय लगता था, वो तुरंत खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार की कलाओं को हम अगर सर्टिफिकेशन के माध्यम से या फिर डिप्लोमा के माध्यम से, हम डिग्री कोर्स के साथ साथ हम उसको करें तो हमको लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हमें कुछ प्रैक्टिकल काम, व्यवहारिक काम करने का मौका मिलता है, देखिए डिग्री कोर्सेज में एक महीने या दो महीने का इंटर्नशिप मिलता है करने को, लेकिन जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स मिलते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि असल जिंदगी से संबंध रखते हैं, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए संबंध रखते हैं। तो हमें अगर मौका मिलता है किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो सहयोग करके सीखने के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाने के लिए, तो ये विन विन सिचुएशन होती है और बच्चों को काफी उसमें जानकारी मिलती है, स्किल एनहांसमेंट होता है उसमें। फिर उनको समझ में आता है कि किताबी रूप से तो कैसा लग रहा है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल रूप से किया जाएगा तो वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स, देखा गया है कि जब उन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया और वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो ब्लड देखते हैं और फिर डाइसेक्शन बॉडी का करना होता है, तो कई बच्चे ना वो बेहोश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, और फिर वो डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये भी एक मौका मिलता है अपने को आकलन करने के लिए कि क्या प्रैक्टिकल में मेरे लिए वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब एक होता है ना कि डबल श्योरिटी हमारे लिए हो जाती है। तो इसके अलावा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एम्पैथी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इस तरह की कलाएं भी हमको अपने अंदर विकसित करनी होती है, क्योंकि विजडम और होशियारी का होना बहुत जरूरी है, और वो तब हमारे अंदर आएगा जब हम इन सब चीजों को भी उतनी ही अहमियत देंगे जितना हम हार्ड स्किल्स को देते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स को भी हमको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सारा काम दुनिया समाज में एक संगठन में होता है, ग्रुप में होता है। तो टीम स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, हाँ, ये सब भी हमको आना चाहिए, और ये तब आएगा जब हम वॉलंटियर करेंगे अपने आप को कॉलेज के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेंगे या कॉलेज के बाहर हमें कुछ करने को मिलता है तो उसमें हम भाग लेंगे।
0: जी सर। और ये भी है कि अभी हमारी सबकी छुट्टियां आ रही हैं गर्मी की, और स्कूल्स में भी और कॉलेज में भी समय हॉलीडेज पड़ने वाली है, तो हम इस हॉलीडे जो हमें वेकेशन मिला है, हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को बिल्डअप करने के लिए कि वो हमें फ्यूचर में काम आए, जॉब में क्या क्या कर सकते हैं वो आपसे जानना चाहेंगे सर।
1: बहुत कुछ कर सकते हैं। छुट्टियों का मतलब ये होता है कि बच्चे और यूथ उसको ना एंजॉयमेंट के साथ उसको कोरिलेट करते हैं,
0: जी सर।
1: और ये एक मौका मिलता है कि हम एंजॉय करें लेकिन एंजॉय को अपने लक्ष्य से हम मिलाकर चलें। तो जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग वो सीख सकते हैं, फोटोग्राफी है, गार्डनिंग है, कुकिंग है, कई प्रकार की चीजें आप ऑफलाइन तरीके से ट्यूशन लेकर आप सीख सकते हैं या फिर ऑनलाइन तरीके से सीख सकते हैं। कई प्रकार के सर्टिफिकेशन हैं जो कि एक दिन से लेकर एक महीने के या 3 महीने के होते हैं और 1 घंटा 2 घंटा आपको देना होता है उसको, 5 डेज अ वीक या ऑल्टरनेट 3 डेज अ वीक। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो गया या हेल्थ केयर न्यूट्रिशन के ऊपर कोर्स हो गया, तो इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और हम लोगों को एक राय दे सकते हैं। आमतौर पर देखा गया है यूथ जब उनको कॉलेज में ऐसे पेइंग गेस्ट की तरह रहना होता है, हॉस्टल में रहना होता है, तो उनकी सेहत खराब हो जाती है। तो न्यूट्रिशन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे तो वो उस समय तो उनको फायदा करेगा लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद भी वो उनको फायदा देगा, क्योंकि वो जो समय होता है 18 से 22 23 वर्ष की आयु में वो हेल्थ का पीक जिसे कहते हैं, वहां तक जाने के लिए जो कि युवा अवस्था होती है वहां जा सकते हैं। तो अगर पोषण अच्छा मिलता है शरीर को तो मन भी स्वस्थ रहता है और तन भी स्वस्थ रहता है। इसके अलावा कई प्रकार की रीडिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरीज होती हैं या फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं या एजुकेशनल वीडियोस पॉडकास्ट हैं, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो या वो दर्शन फिलॉसफी से संबंधित हो या वर्तमान में विश्व में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स करंट इवेंट्स को लेकर। आजकल वर्चुअल वर्कशॉप्स और वेबिनार, जिनके पास पैसा है तो वो पैसा खर्च करके, जैसे मैं आपको बताऊं ऋषिवुड यूनिवर्सिटी 15 दिन की पॉलिसी मेकिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है, समर कैंप जो कि सोनीपत में है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में जब गर्मियां आती हैं तो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और केवल यूथ और कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए नहीं बल्कि किंडरगार्टन प्राइमरी और जूनियर स्कूल के बच्चों के लिए भी तमाम एक्टिविटीज पब्लिक डोमेन में हमको देखने को मिलती हैं। तो वो ऐसे कर सकते हैं या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, हाँ कई प्रकार के। आज तो पिनिंटरेस्ट एक ऐप है जहाँ पर काफी DIY जिसको कहते हैं डू इट योरसेल्फ वो सीखने को मिलता है, या फिर फिटनेस और वेलनेस को लेकर जैसे वर्कआउट वीडियोस देख सकते हैं या फिर योगा क्लासेस हैं, सेल्फ अवेयरनेस वेलनेस को लेकर स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन, हाँ इन सब चीजों के प्रति भी थोड़ा समय निकाल सकते हैं जो कि बहुत फन इंटरेस्टिंग होता है और मिलके अगर करा जाए तो हाँ एक एक सुंदर एक्टिविटी बनती है जहाँ पर हम लोग शेयरिंग भी करते हैं और प्रेम भी बढ़ता है लोगों का, क्योंकि सेहत भी अच्छी हो रही है और मन मन दुरुस्त भी जैसे कहते हैं, मन भी दुरुस्त हमारा बनता है। या फिर हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, तो जैसे मम्मी पापा महीने खर्चा देते हैं 5,000 रुपये या 3,000 रुपये या 10,000 रुपये या 20,000 रुपये खर्च करने के लिए, तो हम थोड़ा समझें कि हम पर्सनल फाइनेंस बजटिंग कैसे करें और रुपए को हम कैसे बचा सकते हैं, या किसी को गिफ्ट करना है तो हम कितना पैसे रखें, अगर हमको दान करना है मन में भावना आती है तो उसके लिए कितना पैसा निकाल के रखें, हमें कोई सामान कपड़े खरीदने हैं या हमको खाने का सामान खरीदना है। आजकल फ्रेंडशिप्स बहुत होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, तो वहां पर कितना, या कोई कोर्स हमें करना है, तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की समझ है इसके प्रति भी जागरूक होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ लैंग्वेज लर्निंग, तो भाषा भी अगर सीखना चाहें क्योंकि विश्व भी एक छोटा होता जा रहा है, तो चाहे वो भारत में तो तमाम भाषाएं हैं, गुजराती मलयालम तेलुगु आप हिंदी और उर्दू और उड़िया बहुत भाषाएं हैं, लेकिन जैसे कि फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, तो अगर कोई युवा विदेश में रहना चाहता है, तो जिस देश में रहना चाहता है वहां की अगर भाषा भी सीखना शुरू करे थोड़ा थोड़ा, तो उनको काफी लाभ मिलेगा और वहां पर संबंध, रिलेशनशिप बिल्डिंग वो अच्छा कर पाएंगे, और जीवन में सफलता पाने के लिए रिलेशनशिप का होना भी जरूरी होता है। तो देखिए बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, और अगर ऑनलाइन बात करें तो कोर्सेरा, यूडेमी, खान अकेडमी, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बहुत तरह की आप फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में, रुपए में आप कोर्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से यूथ अपना टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं।
0: जी सर, और हम जब स्किल्स की बात कर ही रहे हैं तो हमारे युवा ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में कौन कौन से स्किल्स हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड में रहेंगी, क्योंकि कईयों का सवाल होता है कि जैसे जो चीज ज्यादा यूज आगे होने वाली है, जैसे AI हो गया या और भी कई सारी चीजें हैं जो आगे आ रही हैं, तो कौन सी वो स्किल्स हैं जो हम करें जिसका हमें आगे फ्यूचर में लाभ रहेगा?
1: देखिए जो न्यू एज करियर्स हैं वो सारा सारा काम डिजिटल हो रहा है अभी, और पेपर लेस काम हो रहा है, ई पेपर की तरफ चीजें शिफ्ट हो रही हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी, सबसे पहले मैं टेक्नोलॉजी का नाम लूंगा, एक बहुत ही बड़ा बूमिंग करियर है जो कि अब रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता ही जाएगा। चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी, आप देखिए कितना ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। तो अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाऊं, तो उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखिए, तो वो ये जो फील्ड है ये बूमिंग फील्ड है और बहुत पैसा है इसमें, और भारत जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। KPMG की रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं और वो यही बात दर्शाती है कि भारत आने वाले समय में 2040, 2050, इट वुड बी लाइक वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लिव एंड वर्क इन फॉर। तो टेक्नोलॉजी एक बड़ा एरिया है। दूसरा हेल्थ केयर, हाँ, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी, हाँ देखिए मेडिकल में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो गया, हेल्थ केयर में भी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो वो चाहे जैसे नर्सेस हो, या फिर मेडिकल टेक्नीशियंस हो, या फिर हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, या फिजिशियंस हो, उनके असिस्टेंट्स हो, तो और आप देखिए बीमारियां भी कितनी बढ़ती जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ा एक एरिया होगा। फार्मेसी, जैसे बैचलर्स इन फार्मा कहते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। हम लोगों ने कोविड देखा था, तो कोविड में देखिए सारे प्रोफेशन एक तरह से ठप हो गए थे, लेकिन हेल्थ केयर वो सबसे आगे था। और अगर देखा जाए तो हम, अगर हम इतिहास देखें 100 साल का, तो जैसे जैसे एक एक दशक बीतता गया है, बीमारियां और बढ़ती गई हैं, बीमारियां कम नहीं हुई हैं, और नई नई बीमारियां आ गई हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो हेल्थ केयर इज अ बूमिंग सेक्टर। तीसरा, ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो क्लाइमेट चेंज हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, एनवायरमेंटल साइंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सब बहुत बड़े करियर्स हैं, क्योंकि ये सब प्रकृति से संबंधित रखते हैं और मनुष्य का जीवन आसान बनाते हैं। तो अगर हम सोलर पे काम करते हैं, या विंड एनर्जी पे काम करते हैं, या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, या फिर अर्बन प्लानिंग, टाउनशिप प्लानिंग, सस्टेनेबल जो की है, तो ये करियर्स भी युवाओं के लिए बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा काम है। आज देखिए घर बैठे हर व्यक्ति सामान चाहते हैं, तो उसके लिए बैंकिंग का भी काम होता है, तो फाइनेंस और फिन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, देखिए हर शब्द में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस का तो बहुत बड़ा फील्ड है ही, लेकिन चाहे वो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, या फिर वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है, तो या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो फाइनेंस भी बहुत अच्छा इवॉल्विंग, रैपिडली डेवलपिंग करियर है युवाओं के लिए। और पैसा अब देखा जाए तो वो हार्ड करेंसी यूज नहीं होती, कैश यूज नहीं होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है। तो ई कॉमर्स, पेमेंट ट्रांजैक्शन सब डिजिटल तरीके से हो रहे हैं, तो इसमें लोग अच्छा करियर बना सकते हैं। और एग्जाम्पल हम देखें तो पेटीएम का हमने एग्जाम्पल देखा है, और जीपे का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। और आप यूथ हैं, आप खुद हमको बताइए वेदांत, ऐसे कौन से माध्यम है जिससे यूथ अभी पेमेंट करते हैं, आप बताइए मुझे दो ऐसे नाम।
0: जिससे हम लोग अभी ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे,
1: ना देखिए, आपने फोन पे एक तीसरा नाम हमको बताया, तो युवा काफी स्मार्ट है और उनको मालूम है कि क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो रिमोट लर्निंग, जिसको यानी टीचिंग में जाना जाता है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आज के समय में ऑनलाइन टीचिंग बहुत हो गया है। तो जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो अपने आप को वो ऑनलाइन टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागॉजी से वो अपने आप को इक्विप करे, ताकि वह शिक्षा ऑफलाइन अगर नहीं है तो ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकता है। और आजकल तो लोग अपने कोर्सेज बना देते हैं ऑनलाइन और फिर उसको बेचते हैं। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर ज्ञान है जो कि लोगों को उससे फायदा हो सकता है, तो उसको एक ऑनलाइन कोर्स बनाकर भी आप उसको बेच सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी की मैंने बात करी, ये बहुत बहुत ही बूमिंग करियर है, सोफेस्टिकेटेड करियर है, क्योंकि बहुत तरह तरीके से ठग बैठे हुए हैं और वो भी पढ़े लिखे ठग। तो पढ़े लिखे ठगों को पढ़े लिखे लोग ही अच्छे से उनको निपटारा कर सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी लोग प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में उनका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है कि वहां पे, और गवर्नमेंट तो काम करती ही है, तो हर शहर में, हर स्टेट में, भारत में वहां पर साइबर सिक्योरिटी का पूरा विभाग होता है, बहुत बड़ा विभाग है। और दिन प्रतिदिन इसके जो तरीके हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे एथिकल हैकिंग हो गया, या साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी जब कोई बिजनेस कोई करता है तो उसके बारे में भी सोचता है और कंसल्टेंसी लेते हैं। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी एक बढ़ता हुआ फील्ड है। तो अगर कोई रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं, तो बहुत कुछ ये सब न्यू एज करियर्स का फायदा ले सकते हैं।
0: और एक सवाल फिर मेरा यहाँ पे एक और आता है कि इंटर्नशिप्स को लेकर, क्योंकि अभी मैं भी अपने थर्ड ईयर में हूँ जहाँ पे हमें कहा जा रहा है कॉलेज की तरफ से कि हमें इंटर्नशिप करनी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि गाइडलाइंस हमें नहीं दी जाती हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ हम कॉलेज में सीख रहे हैं और जो चीज़, क्योंकि मैंने भी देखा कि जो चीज़ हम कॉलेज में सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट हमें नहीं सिखाया जा रहा है, बट हम जब किसी इंडस्ट्री में गए तो वहां पे कुछ नई चीजें हमने देखी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तो कुछ और ही डिमांड है जो हमें कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब इंटर्नशिप के लिए, और हमें कोई फैकल्टी हमें बता भी नहीं रहा है सपोज, कि हमें कहाँ जाना है, कौन इंटर्नशिप के लिए कहाँ हम अप्लाई करें, तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि कंपनीज डायरेक्ट तो एंटरटेन करती नहीं है स्टूडेंट्स को, तो कैसे हम अप्लाई करें, कौन से ऐसे साइट्स या पोर्टल हैं, या क्या तरीका है किसी कंपनी को अप्रोच करने का इंटर्नशिप के लिए?
1: देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स को ना, ये ट्रांजिशन युग है, ये जो समय वर्तमान का समय चल रहा है ये बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, काम करने के ढंग बदलते जा रहे हैं, तो अपने आप को अडेप्ट करना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट को लेकर ना अपने आप को अडेप्ट करना होगा, एंड दे हैव टू बिकम प्रोएक्टिव, विच मीन कि वो फर्स्ट ईयर से ही वो खुद अपने लेवल पे पता करें, और अब कि उनका जो इंटरेस्ट है, वो जो बनना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक्चुरियल साइंटिस्ट बनना चाहता है और उसने एक्चुरीज की वो स्टडी कर रहा है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है एक्चुरीज में। एक्चुरीज का काम मतलब होता है इंश्योरेंस प्लानिंग से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस, वेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो वो जो स्टूडेंट है वो फिर फर्स्ट ईयर से ही सोचना शुरू कर देता है कि अगर मुझे एक एक्चुअल साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी कंपनीज है जहां मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो उसकी वो लिस्ट बनाता है। तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट बनाएगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट बनाएगा, और वो स्टेट लेवल की लिस्ट बनाएगा, और वो जोन जैसे नॉर्थ जोन, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसे करके लिस्ट बनाएगा और एक नेशनल लिस्ट बनाएगा, कीपिंग इन माइंड कि फैमिली या उसकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस उसको ये इजाजत देते हैं कि वो उस शहर में, उस स्थान में जाकर वो इंटर्नशिप कर सके। तो इसी प्रकार से, और इन सब चीजों में समय लगता है। फिर दूसरा, जो कॉलेज का प्लेसमेंट होता है, तो आपके जो प्लेसमेंट हेड होते हैं उनसे फिर आप एक विवेकशील और एक समझदारी से आप बात कर पाएंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और कॉलेज आपको क्या दे रहा है। फिर आप उनको भी दिशा दिखा सकते हैं कि मैम सर, हम चाह रहे थे कि आप नॉर्थ इंडिया में हमको जॉब्स दें। हमने एक लिस्ट खुद बनाई है जो गवर्नमेंट की है और प्राइवेट की है, अगर आप इस तरफ कोशिश करें तो हमको फायदा मिल सकता है। तीसरा जो लिस्ट आप प्रिपेयर करते हैं उन कंपनीज के एचआर डिपार्टमेंट में आप अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं, अपनी खुद मेहनत करके कि यू आर इंटरेस्टेड, आप इस कॉलेज में हैं और आप 2 महीने का इंटर्नशिप करना चाहते हैं। आप वो इंटर्नशिप लेटर अपने कॉलेज से इशू करवा सकते हैं और वो ईमेल में आप भेज भी सकते हैं साथ में। अगर वो लेटर मिल जाता है समय से, अच्छी बातें, नहीं मिलता है तो कम से कम आप ईमेल भेजिए, उसमें लिख सकते हैं कि कॉलेज से जो हमको लेटर मिलेगा वो हम बाद में आपको भेज देंगे, अभी हम लोग को इशू नहीं हुआ है, ऐसे करके। इसके अलावा अगर आपके रिश्तेदार हैं या आपके घर परिवार में कोई ऐसे काम करते हैं जैसे कि वो इंश्योरेंस एजेंट है, फॉर एग्जाम्पल, मैं यही एग्जाम्पल लेकर आगे चलता हूँ, और तो आपको अगर मौका मिलता है उनको सहयोग करने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए, तो वो भी आपके लिए इंटर्नशिप का काम करेगा। जरूरी नहीं है कि इंटर्नशिप एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो या फिर एक लार्ज स्केल कंपनी में हो, अगर वो कोई स्टार्टअप है या छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि छोटे में ना बहुत तरह के काम करना होता है, जॉब रोटेशन बहुत होता है, तो सीखने का मौका बहुत मिलता है। तो स्टूडेंट्स को तैयार होना चाहिए अलग अलग काम सीखने के लिए, ना कि कई बार स्टूडेंट्स के अंदर ये होता है कि ये तो हमने इंटर्नशिप में हमको नहीं बताया गया था हमको सिखाएंगे या हमको काम देंगे, अरे इंटर्नशिप पे हमको ले लिया है लेकिन बहुत काम हमसे कराते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
0: जी सर।
1: हाँ, तो स्टूडेंट्स को भी तैयार होना होता है कि अगर उनको जीवन में कुछ करना है, सफलता पानी, बड़ी सफलता पानी है, तो एक लक्ष्य को लेकर उनको चलना होगा, उसके प्रति मेहनत करनी होगी। इसके अलावा कई प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि नॉमिनल फीस लेती हैं और वो आपको समय समय पर बताती हैं कि आप कहाँ जॉब कर सकते हैं या फिर आपको इंटर्नशिप कहाँ मिल सकती है। और कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज या इंटर्नशिप एजेंसीज होती हैं जो कि कॉलेज के साथ टाई अप कर लेती हैं और सारे ही स्टूडेंट को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने के लिए काम करती हैं। तो ये सब चीजें पता करके हम अपने कॉलेज के जो चेयरमैन हैं या प्लेसमेंट के जो हेड हैं उनके साथ हम ये शेयर कर सकते हैं। जैसे लखनऊ में यहाँ पर एक इंटर्नशिप कंपनी है जो कि MBA स्टूडेंट्स को वो इंटर्नशिप कराती है, तो उनका कॉलेज के साथ टाई अप है और कॉलेज स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देती है कि अगर आप कॉलेज के थ्रू इंटर्नशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर आप खुद अपनी इंटर्नशिप कहीं से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और जो इंटर्नशिप डिपार्टमेंट बना है तो वो कई ऑप्शन स्टूडेंट्स देते हैं। तो इस तरीके से भी इंटर्नशिप का काम होता है।
0: जी सर। सर आपने ये भी बात एक बताई कि हम HR डिपार्टमेंट में अपना रिज्यूम भी भेज सकते हैं, रिज्यूमे भेजने से फिर हम ईमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो सर यहाँ एक क्वेश्चन ये भी होता है हमारे युवाओं का कि हम रिज्यूमे में ऐसे कौन सी पॉइंट्स को डालें या बनाने का क्या सही तरीका है, प्रॉपर वो एरियस फ्रेंडली हो, कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु है जिन्हें हम उसमें लिखें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और वो एक अच्छा पोर्टफोलियो का काम करे, उसकी थोड़ी टिप्स लेना चाहेंगे आपसे।
1: वेदांत, इसमें युवाओं को ध्यान देना होगा पहले जिस कंपनी में उन्होंने अप्लाई किया है वो कंपनी क्या करती है। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है वो इंटर्नशिप CV भेज देंगे और लिखेंगे हमको आपके यहाँ इंटर्नशिप करना है। अरे इंटर्नशिप तो करना है लेकिन आप किस एरिया में इंटर्नशिप करना चाहते हो वो तो लिखो। फिर अगर मान लीजिए HR ने फोन किया और फिर उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी के बारे में आपको कैसे मालूम चला या हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं मैम सॉरी वो तो मुझे मालूम नहीं अभी। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो स्टूडेंट्स को जो वो बनना चाहते हैं उस हिसाब से वो कंपनीज की जैसे सिलेक्शन लिस्ट बना ली तो वो हर कंपनी के बारे में रिसर्च करें कि वहां पे क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो कंपनी बनाती है, और अगर वो खुद एक एनालिसिस कर पाए कि अपॉर्चुनिटी गैप क्या है और कंपनी के HR को बताए कि मैम हमने आपकी वेबसाइट और आपके प्रोडक्ट्स है उसके बारे में हमने कुछ एनालिसिस किया और हमको लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी गैप है, इस तरह की बातें अगर HR सुनते हैं या फिर जो भी इंटर्नशिप रिक्रूटर समझता है वो काफी इंप्रेस होगा। या फिर हम उनको खुद बोलें कि आई एम ओपन टू, अगर आपको समझ में नहीं आता, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि हमें किस चीज में इंटर्नशिप करनी है, बस चूंकि वो हमको 2 महीने का बोला गया है हमको मार्क्स मिलेंगे तो हमको इंटर्नशिप करनी है, तो फिर वो सच बोले फिर एचआर वो कंपनीज में कि आई एम ओपन टू डू इंटर्नशिप इन एनी फील्ड और आई एम लाइक अ फ्रेशर, तो आप जो जैसा गाइड करेंगे हम उस रूप से करेंगे. तो इंटर्नशिप कराने के लिए अब तो जो कंपनीज है वो चार्ज करती हैं, जैसे 3,000 रुपीज, 5,000 रुपीज इफ द स्टूडेंट इज नॉट केपेबल एट ऑल पर मंथ. जैसे मैं बात करूँ जो क्लिनिकल साइकोलॉजी सेटिंग है, तो हॉस्पिटल में कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप करने, तो उनको फिर 3,000 रुपीज पर मंथ या 5,000 रुपीज पर मंथ फीस देनी होती है वो काम सीखने के लिए. आप समझ रहे हो, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना टाइम निकाल कर और अपने रिसोर्सेज निकाल रहा है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा, और ऑर्गेनाइजेशन की क्या जिम्मेदारी है कि वो हर स्टूडेंट को वो ट्रेन करें, क्यों ट्रेन करें, हाँ, और स्टूडेंट क्या वैल्यू ऐड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि ऑर्गेनाइजेशन जानता है कि इस स्टूडेंट छोड़ के चला जाएगा, 2 महीना आया है उसको तो अपनी अपनी बस रिपोर्ट बनानी है, एंजॉय करेगा चला जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो द स्टूडेंट हैज टू प्रिपेयर हिमसेल्फ टू शो द ऑर्गेनाइजेशन एज एज अ वैल्यूएबल एसेट, और ये दिखाना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल रहेगा और अगर मौका मिलेगा या सब ठीक रहेगा तो मे बी ही कुड जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो.
0: जी सर,
1: आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. सो इट वर्क्स बोथ वेज, क्योंकि इंडस्ट्री इज ऑल्सो लुकिंग फॉर गुड गुड ह्यूमन रिसोर्स, और लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को भी समझदार होना होगा क्योंकि आज के समय में एम्प्लॉयमेंट की क्या कहते हैं जो लोग
0: बहुत कमी चल रही थी.
1: हाँ, तो बहुत लोग आप जॉब तो बहुत लोग लेना चाहते हैं लेकिन जॉब कम लोगों को मिलती है फिर. हाँ,
0: जी सर,
1: वो इसी कारण से. तो सीवी जो हम लिखेंगे, सीवी में हम फिर हमारा हर सीवी अलग होगा, हम एक सीवी बनाकर 10, 20, 30 कंपनी में नहीं भेज सकते हम. ये बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं.
0: जी सर.
1: हाँ, तो हर कंपनी को स्टडी करिए, उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस प्रोफाइल या किस इंटर्नशिप टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, उस हिसाब से अपने सीवी को ट्वीक करिए और वो कस्टमाइज करिए अपने सीवी को, तब भेजिए. और फिर फॉलो अप करना जरूरी होता है, ऐसा नहीं बस ईमेल डाल के छोड़ दिया.

0: उसके उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, कॉलिंग नंबर दिया होता है, तो उनको फिर कॉल करके मैसेज करके डाला जाता है कि मैम सर थैंक यू एन ईमेल, इट विल बी वेरी कॉन्सिडरेट ऑफ यू इफ यू कुड यू नो सेंड मी एन एक्नॉलेजमेंट रिप्लाई और इफ समथिंग कैन बी लुक्ड इनटू इट आई एम टोटली फाइन एट योर कन्वीनियंस, जो भी टाइम आप देंगे हम उस टाइम पर आकर मिलने के लिए तैयार हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि आई कैन कम ओनली एट दिस टाइम, आप तो कंपनी एचआर को लगता है अरे अभी तो कुछ यू नो दे विल थिंक यू नो, मैं आपको बहुत रॉ शब्द में बताया अभी तो पंख भी नहीं निकले और ये लोग ऐसे बात कर रहे
1: हैं। ऐसा बोलते हैं जी।
0: सो यू और कई बार स्टूडेंट्स के अंदर ये मेंटालिटी होती है हम बहुत होशियार हैं, हम तो सब कुछ कर लेंगे, इन लोगों को तो कुछ नहीं आता, जो लोग कंपनियां चला रहे हैं उन लोगों को तो कुछ नहीं आता, हमें जितना आता है। They have this mentality. So they need to, you know, come in terms with the reality of life and not live in a balloon, in a bubble.
1: Yes, sir.
0: क्योंकि जब वो बबल अचानक फूटता है ना तो फिर बहुत दुख होता है।
1: हाँ सर, वही सर, क्योंकि कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कोई एक चीज उन्हें ज्यादा अच्छी आती है तो वो फिर वही समझने लगते हैं कि हमको ये चीज बहुत अच्छी आती है, अगर इनकी जगह मैं होता तो बहुत अच्छे से करके दिखाता, लेकिन जब वो रियलिटी आती है उनके सामने तब वो उसे फेस नहीं कर पाते और इसी वजह से फिर उनका जो वहाँ बिहेवियर है और बाकी सब चीजें वहाँ पे इफेक्ट होता है।
0: बिकॉज लाइफ इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, वो एक मुखी नहीं है, वो बहुमुखी है। तो स्टूडेंट्स जब काम करते हैं तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या दो तीन है बस उतना ही है, बट जब आप रियल जिंदगी में आते हैं तो आपको सारा मतलब आंख नाक कान सब कुछ एकदम अलर्ट रखकर और आपको काम करना होता है और आपको एक स्किल नहीं मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए टू परफॉर्म एंड टू बी अ यू नो अ रोल मॉडल ऑफ एक्सीलेंस।
1: जी सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई और ये सब बहुत जरूरी था। लास्ट अब हम शो को खत्म करते हैं सर, आपसे लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द की टू बी सक्सेसफुल इन एनी करियर।
0: ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और की टू बी सक्सेसफुल जो सफलता की मैं आपको 10 चाबियां बताता हूँ मैं टू बी सक्सेसफुल। पहली चाबी है कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए और आपके अंदर प्रेरणा होना चाहिए और रुचि होनी चाहिए जो भी आप काम कर रहे हो उसके प्रति, और वो स्थायी परमानेंट होना चाहिए, टेम्प्ररी नहीं। अगर टेम्प्ररी है तो समझ लीजिए वो मनोरंजन वाला आपका काम है, अगर वो स्थायी रहता है बना रहता है और जितना भी मेहनत करने के लिए हमको समय देना चाहिए उसमें सफल होने के लिए तो पहली चाबी ये है। दूसरा है कि हमें निरंतर सीखने की हमारे अंदर ये वृत्ति होनी चाहिए कि हम निरंतर अपने आप को सीखें, हम हर तीसरे साल दूसरे साल अपने बदलते हुए समय के हिसाब से जो कलाएं हमको विकसित करनी है उसको हम विकसित करें। तीसरा, बिना मेहनत के तो हम सफल नहीं हो सकते, तो परसिवियरेंस कंसिस्टेंट एफर्ट कंसिस्टेंट हमको होना बहुत जरूरी है और हमारे सामने चुनौतियां भी आएंगी तो हम ये सोचे चुनौती आ गई तो चलो सारा काम रोक कर बैठ जाओ, जब चुनौती खत्म हो जाएगी तब हम फिर से शुरू करेंगे तो वहां पर वो ब्रेक लग गया। तो हमें ये अपने आप को बनाना होगा कि समस्या आई लेकिन काम चल रहा है, समस्याओं से भी निपट रहे हैं और काम भी चल रहा है। फिर चौथा, गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट अगर हमें सफलता में चाहिए कि जैसे 10 साल का हमने हमारा लक्ष्य है लेकिन उसको छोटे छोटे गोल्स में हर पहला साल का गोल दूसरा साल का गोल जिसको हम एक्शनेबल भी बनाए मेजरेबल भी बनाए और उसको समय समय पर हम उसका आंकलन करते रहे उसको असेस करते रहे और जो गोल्स हम बनाए वो अचीवेबल होने चाहिए, वो ख्वाबी ड्रीम गोल्स नहीं होने चाहिए, दे शुड बी रियलिस्टिक गोल। पांचवा, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग। आज के समय में अगर आपके अच्छे संबंध लोगों के साथ नहीं है तो फिर ये गारंटी है कि आप भले कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपके नंबर कितने अच्छे हो, कितनी भी कलाएं आपके अंदर हो, अगर आपके अंदर संबंध लोगों के साथ अच्छे नहीं है तो फिर आपको मौके जीवन में नहीं मिल पाएंगे या अगर जो मौके होंगे वो सब आपसे छूट जाएंगे। तो कल्टीवेटिंग गुड रिलेशनशिप्स हमारे पीयर्स हमारे सहपाठियों के साथ हमारे मेंटर्स के साथ इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ ये जरूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि रिलेशनशिप बिल्डिंग तो घर से शुरू होती है, अपने भाई बहन माता पिता अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छे बनाए। फिर छठा पॉइंट मैं बोलूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। जैसे कई बार चेंज को लोग रेजिस्ट करते हैं, आप पुराने तरीके से ही काम करना चाहते हैं, नई चीजों को अपनाते नहीं है। तो नई चीजों को अपना कर हमारी तरक्की हो सकती है अगर हम उसको ना बोल देंगे। हाँ, जैसे अभी कई लोग कहते हैं कि अरे नहीं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया कोर्स करें, अब जैसे चल रहा है चलने दो, अब टाइम निकालना पड़ेगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो वो टाइम निकालिए, वो होता है शार्पनिंग योर एक्स जिसे कहते हैं। तो हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं तेज तीव्रता से बदलते हुए समय में। फिर सातवीं बात है कि प्रभावशाली वक्तव्य, मतलब वार्तालाप, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हमारा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। और बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, जितना जरूरत है, जितना मतलब का है वो आप बोलिए, और चाहे वो लिखित रिटन हो चाहे वो वर्बल हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होगा तो हमारे संबंध भी लोगों के साथ अच्छे बनते हैं और हम अपने विचारों को अच्छे से हम लोगों के साथ साझा कर पाते हैं। आठवीं बात, प्रोफेशनलिज्म और इंटेग्रिटी, कैरेक्टर होना चाहिए। तो हमारे अंदर जैसे हमने जो कहा वो हमने किया, अगर हमने नहीं कहा तो आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर इट। तो ये मतलब प्रोफेशनलिज्म हम अपने ध्यान में रखें, चाहे वो क्लाइंट्स हो, हमारे स्टेक होल्डर्स हो, हमारे कोलीग्स हो, तो उससे क्या होता है, विश्वास और क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। और नाइन्थ पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारा मतलब भावनात्मक रूप से हम बहुत समझदार हो, हमारे अंदर ये ज्ञान इस चीज का होना चाहिए कि हम जैसे कोई आया, किसी ने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, ये प्रॉब्लम है, बॉस ने मुझे बोल दिया, ये काम मैं कब से कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, और मैं कहूँ हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दुख दर्द को, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो बताना, जितना हो पाएगा मैं करूंगा। तो इस तरीके से हम जब लोगों के साथ डील करते हैं तो ये भी हमको सफलता की तरफ लेके जाता है। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। तो हम ये कई बार क्या होते हैं, लोग वन डायरेक्शन हो जाते हैं, प्रोफेशनली बहुत अच्छा करें लेकिन पर्सनल लाइफ बहुत खराब है, या पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन लाइफ में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों को बैलेंस करते हुए हम चलेंगे तो एक होलिस्टिक जिसे सक्सेस बोलते हैं लाइफ में वो हमको मिल पाएगी। तो ये 10 सूत्र, 10 में चाबियां आपको सफलता की मैं आपको देना चाहूंगा।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हमारे श्रोता जो भी हमें सुन रहे थे, जो भी युवा हमें सुन रहे थे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, कई सवाल थे उनके जिनका जवाब आपने हमें दिया, और ये बहुत हेल्पफुल होंगे। और क्योंकि सबसे ज्यादा युवाओं को ही समस्या आती है, क्योंकि यही एक पीक पॉइंट है जहाँ पे उन्हें अपने करियर के लिए सोचना पड़ता है, जॉब्स के लिए सोचना पड़ता है, जहाँ पे उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और सर आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहते हैं?
0: मुझे लगता है मैं इतना बहुत कुछ बोल चुका हूँ, कुछ क्या मैं बोलूँ।
1: जी सर, और वही है कि सर आप जैसे मार्गदर्शक जब हमें मिलते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है, कई बार रियलिटी नहीं पता होती है कि हाँ ये चीजें भी एग्जिस्ट होती है। जैसे कई रिज्यूम में आपने जो चीजें बताई हमको, कंपनी में इस तरह अप्लाई किया जाता है, ये सब कई सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती है, लेकिन जैसे सर आपने बताया उस तरह हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप सुन रहे थे अभी युवा मंच कार्यक्रम रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, और हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नया डिस्कशन लेकर आपके साथ। सर थैंक यू, सर थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई विश एवरीवन अ वेरी सक्सेसफुल एंड अ ब्राइट करियर अहेड। अभिदान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण देने का।
1: थैंक यू सर। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

कार्यक्रम है याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत देश को आजाद कराने में सभी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों, किसान हों, पत्रकार हों, वीरांगनाएं हों, एक बहुत बड़ी लिस्ट है ये। इस आजादी के समर में जिनका नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत बड़ा संगठन बनाया, आजाद हिंद फौज की स्थापना करी, और आजाद हिंद फौज की स्थापना का दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनका जन्म 1897 को 23 जनवरी को कटक में हुआ था। उनके पिता वहां के एक बहुत सफल वकील थे, वकालत से बहुत सारा धन उन्होंने कमाया था। वहीं बहुत बड़ा भवन भी बनाया उन्होंने, जिसमें सुभाष ने बाद में उत्कल कांग्रेस को दे दिया। सुभाष शुरू से ही अच्छे छात्र थे। 1920 में वे ICS बने और उनका मन नौकरी में नहीं लगा। जल्द ही वे देशबंधु चितरंजन दास के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। तब से वे कांग्रेस के नेता बन गए और धीरे धीरे कांग्रेस के एक महान नेता मान लिए गए। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस भारतीय नौजवानों के नेता माने जाते हैं, पर जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए तब से वे कुछ नरम पड़ गए थे, यद्यपि वे भीतर से इतने नरम नहीं थे जितना कि लोग समझते हैं, क्योंकि समाजवाद के प्रति उनकी भक्ति उसी प्रकार बनी रही। जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में फर्क यह था कि सुभाष को हर समय बंगाल के क्रांतिकारियों से अनुप्रेरणा मिलती रही, यहां तक कि वे स्वयं एक क्रांतिकारी नेता भी बन गए। और इसके विपरीत जवाहरलाल नेहरू को अनुप्रेरणा या तो पुस्तकों से मिली थी या कुछ हद तक जनता से। जहां तक समाजवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का संबंध है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस संबंध में ज्यादा सचेत रहे, पर सुभाष के नजदीक स्वतंत्रता प्राप्त करना और जिस किसी प्रकार से भी प्राप्त हो सके यही उनका मुख्य लक्ष्य रहा। इस प्रकार वे एक तरफ कांग्रेस आंदोलन में बने रहे और दूसरी तरफ भीतर ही भीतर क्रांतिकारी भी बने रहे। सुभाष कभी किसी अर्थ में गांधीवादी नहीं बने। सच तो यह है कि बंगाल के युवकों ने गांधी को कभी गंभीरता के साथ लिया ही नहीं और उसे महज साधन समझते रहे। इसी कारण कभी वे गांधी के पक्के शिष्य बने तो कभी गांधी जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा भी उठी। श्रोताओं, ऐसे बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे विचार आज हमें पुस्तकों में मिलते हैं, मगर उनके बारे में कुछ और हम टिप्पणी करेंगे। पहले सुनते हैं एक छोटा सा देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, जैसे कि हम बात कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष 1924 में 24 अक्टूबर को विशेष ऑर्डिनेंस के अनुसार गिरफ्तार कर दिए गए और इसी नजरबंदी में के जमाने में उन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया, जहां वे बहुत अधिक बीमार पड़ गए और इस कारण जो आंदोलन हुआ उससे सरकार ने 1927 की 16 मई को छोड़ दिया और इसके बाद सुभाष ने जोरों से पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का प्रचार करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने भी 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया था। इस प्रकार गरम दल वालों की विजय रही और 1930 में सत्याग्रह छिड़ गया था। पर यह जल्दी ही गांधी इरविन समझौते की चट्टान से टकरा करके समाप्त हो गया। जनता के दबाव के कारण, बल्कि यह कहना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार की बेईमानी के कारण फिर से आंदोलन छिड़ा, पर अब की बार आंदोलन में वह कदम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस गिरफ्तार कर लिए गए पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण फिर एक बार 1933 में उनको छोड़ दिया गया। वे फौरन ही स्वास्थ्य सुधार करने के लिए यूरोप चले गए और इस बार की यूरोप यात्रा में सुभाष हिटलर, मुसोलिनी और डी वेल्ला से मिले। वे देख रहे थे कि कौन सी शक्तियां ऐसी हैं जो भारत से ब्रिटिश शासन को हटाने में दिलचस्पी रखती है, उन्हें मदद मिल सकती है। ब्रिटिश सरकार को सुभाष के इन कार्यों का पता चल गया। सुभाष लौट करके यह प्रचार करने लगे कि जल्दी ही भयानक युद्ध छिड़ने वाला है और उस समय भारत को बेड़ियों को खोल फेंकने का एक और मौका मिल गया। 1929 में यह लड़ाई छिड़ गई पर कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। घटनाएं फिर भी बहुत प्रबल सिद्ध हुई और गांधी जी को आंदोलन छोड़ना पड़ा, पर इसके पहले ही देश के बाहर क्रांतिकारी फिर से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने में लग गए। रास बिहारी बोस किस प्रकार जापान के युद्ध में कूदने पर आजाद हिंद फौज का संगठन किया, ये तो बाद की बात है, पर इसके पहले एक अन्य क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने क्या किया उसका वर्णन यहां आना बहुत जरूरी है। जलियांवाला बाग में माइकल डायर ने किस प्रकार लगभग 1000 भारतीयों को मिनटों के अंदर गोलियों से भून डाला था, इसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। जनरल डायर ने जिस प्रकार से भारतीयों की हत्या की थी वह भारत का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। वहां से गांधी जी चमके और भारत के नेता बन गए। पुराने नेता समझ नहीं पा रहे थे कि इस हत्याकांड का कैसे उत्तर दे, और उसके पास तो एक ही अस्त्र था और प्रस्ताव पास करना, और वह अस्त्र इस समय बेकार लग रहा था। तभी गांधी जी सत्याग्रह का तर्कश लेकर के सामने आ गए। जनरल डायर हत्या करा करके विलायत चले गए और सुख से भारत की पेंशन पर जी रहे थे। इतने में लड़ाई छिड़ गई। संसार भर में जहां भी भारतीय था उसे फिर से स्वतंत्रता प्राप्त करने की आशा दिखाई देने लगी। सरदार ऊधम सिंह नामक एक युवक इन दिनों लंदन में ही थे, जिनका जन्म 1903 में हुआ था और वे इंजीनियर थे। लड़ाई छिड़ते ही ऊधम सिंह के मन में यह बात आ गई कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। यह एक अजीब सी बात है कि ऊधम सिंह पहले से ही क्रांतिकारी नहीं थे, पर महायुद्ध ने उनकी चेतना को उभार दिया और वे एकदम से कुछ करने के लिए व्याकुल हो गए। सरदार ऊधम सिंह ने क्या किया यह हम आपको बताएंगे एक छोटे से देशभक्ति गीत के बाद। आइए सुनते हैं ये दूसरा प्यारा सा देशभक्ति गीत।

श्रोताओ, 1940 को 23 मार्च का दिन था। लंदन के कैक्सटन हॉल में ब्रिगेडियर जनरल डायर सीपी सैक्स विश्व स्थित अफगानिस्तान विषय पर भाषण देने वाले थे। लॉर्ड जेंटल अध्यक्ष बनाए गए। पूर्वी देशों पर व्याख्यान था। सभा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की देखरेख में बुलाई गई थी, इसलिए पूर्वी देशों पर एक विशेषज्ञ के नाते सर जनरल डायर भी इसमें पधार गए। पहले से ही यह तय था कि वे पधारेंगे। उधर सिंह भी एक भरी हुई पिस्तौल लेकर के उस सभा में पहुंच गए। मुख्य वक्ता बोल चुके थे, जनरल डायर भी बोल चुके थे और सभा भंग होने वाली ही थी। तब उधम सिंह ने 3 गज की दूरी से माइकल डायर पर गोली दाग दी। दूसरी गोली से ही माइकल डायर गिर पड़े, फिर भी गोली चलती रही। लॉर्ड जेंटलैंड को और लॉर्ड मिल्टन को 2 गोलियां छूते हुए निकली, मगर वो बच गए। लॉर्ड स्विस जैन को कुछ चोट आई भी और उसके बाद उधम सिंह हॉल से निकलने लगे तो हवाई सेना के एक सार्जेंट क्लाउड वटी चेस ने उन्हें पकड़ लिया। सरदार उधम सिंह ने अपने बयान में कहा कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के नालदार जूते के नीचे अपने देशवासियों को जो रोनते हुए देखा है, इस प्रकार अपना प्रतिवाद पेश करते हुए मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे इस बात की रंज भर भी शंका नहीं है कि मुझे आप फांसी दे देंगे या सजा देंगे। मृत्यु का भय मुझमें नहीं रह गया है। बुढ़ापे तक लड़खड़ाते हुए जीने का कोई अर्थ नहीं होता है। देश के लिए जवानी में मर जाना कहीं ज्यादा अच्छा है। और इस प्रकार सर माइकल जनरल डायर ने जो भयंकर अपराध 1918 में किया था, एक क्रांतिकारी ने उसे उसकी सजा उसे दे दी। क्या कोई यह कह सकता है कि एक भारतीय के जीवन का मूल्य किसी भी प्रकार एक अंग्रेज के जीवन के मूल्य से कम है? विनायक दामोदर सावरकर ने इस अवसर पर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने अहिंसा की निंदा की और साथ ही कहा कि इस तरह के भी देशभक्त मौजूद हैं जो सरदार उधम सिंह की तरह 20 साल तक बदले की भावना को अपने मन में जगाए हुए हैं और अंत में उन्होंने वो काम कर डाला। उस समय महायुद्ध तेजी से चल रहा था। जर्मन अखबारों ने उधम सिंह के विषय में लेकर के यह लिखा, संसार के लोग यह देख लें कि भारत किस प्रकार ब्रिटिश शासन से सुखी है। भारत तो फौरन स्वतंत्र होना चाहता है। सरदार उधम सिंह को फांसी की सजा दे दी गई और इस प्रकार एक तरफ उधम सिंह ने अलग जगा दिया और दूसरी तरफ अन्य क्रांतिकारी भी यह सोच रहे थे कि किस प्रकार इस मौके को हाथ से ना जाने दिया जाए। प्रथम महायुद्ध में हम रह गए, पर अब दूसरा महायुद्ध भी कहीं हाथ से ना निकल जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस बारे में क्या सोच रहे थे, उनके मन में क्या उथल पुथल चल रहा था, ये हम आपको बताएंगे विस्तार से, मगर इस छोटे से देशभक्ति गीत के बाद। सन 1941 की जनवरी में एक दिन प्रातःकाल लोगों ने यह आश्चर्यजनक समाचार पढ़ा कि एक युवक नेता सुभाष अपने घर से गायब हो गए हैं। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि वे साधु बनकर के हिमालय में चले गए हैं। पर यह कहानी कुछ बनती भी थी, क्योंकि बचपन से ही सुभाष बाबू का झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर भी था। सुभाष बाबू के एक प्रधान सहयोगी सरदार सरदुल सिंह ने तो यहां तक वक्तव्य दे दिया कि उनको ज्ञात है कि उन दिनों सुभाष बाबू की प्रवृत्ति वैराग्य की ओर हो रही थी और वे साधु होकर के दक्षिण की ओर चले गए हैं। जितने मुंह उतनी बातें सुनाई पड़ रही थी। इन बातों को सुनकर के देश के नवयुवकों को बड़ी निराशा हुई। और सच तो यह है कि लोगों ने जहां एक तरफ सुभाष बाबू को साधु बनकर के हिमालय या दक्षिण में चले जाने की बात पर विश्वास किया, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर भी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सबसे अधिक खिन्न तो ब्रिटिश सरकार थी, जो समाचार पर विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं थी।
उन दिनों लड़ाई बड़ी तेजी से चल रही थी और जर्मन सेना के सामने ब्रिटिश सेना के दांत खट्टे हो रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने सुभाष बाबू के साधु होकर के चले जाने वाले समाचार पर भी कभी विश्वास नहीं किया, परंतु उसे भी कुछ पता नहीं लग पा रहा था कि सुभाष बाबू कहां हैं, और इस कारण वह भी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे यह डर था कि सुभाष बाबू किसी तरह शत्रु सरकार के पास पहुंच गए तो ब्रिटिश सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। जब इस प्रकार से सारा भारत और एक प्रकार से सारा संसार कुछ समझ नहीं पा रहा था, तब एकाएक सुभाष बाबू को क्या हुआ? उस समय सुभाष बाबू गाड़ी पर सवार होकर के पेशावर की यात्रा पर चल पड़े थे। घर से गायब होने से पहले भी वो कई सप्ताह पहले से किसी से मिल नहीं रहे थे, और उन्होंने यह खबर भी उड़वा दी कि वे कोई अध्यात्म साधना कर रहे हैं और इस समय किसी से मिल नहीं सकते हैं। कुछ बहुत विश्वासपात्र लोगों को ही इन दिनों वे उनसे मिल सकते थे, और सच बात तो यह है कि वे इन दिनों दाढ़ी बढ़ाने में लगे हुए थे। वे यह नहीं चाहते थे कि किसी को कानों कान इस बात की खबर लग जाए, क्योंकि ऐसा होने से विपत्ति की संभावना थी। यदि सरकार को यह ज्ञात हो जाता कि दाढ़ी बढ़ा युवक जो गायब होने की खबर फैलते ही, तब सब समझ में आ जाता कि सुभाष बाबू किसी मुस्लिम देश की ओर जा रहे हैं, और इस कारण उन्होंने दाढ़ी बढ़ाने की बात को एकदम से गुप्त रखा था। दाढ़ी जब बढ़ गई तो वे पेशावर के लिए रवाना हो गए। हावड़ा से रेलगाड़ी पर बैठना असंभव था, घर में उनके चित्र थे, और इस कारण दाढ़ी बढ़ा लेने पर भी पहचाने जाने का डर था उन्हें। श्रोताओं, इसके आगे क्या हुआ, कैसे वे देश से बाहर निकले, इस पर हम रोशनी डालेंगे, मगर इस छोटे से देशभक्ति गीत के बाद। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, देशभक्ति गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि सुभाष बाबू ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और धीरे से बिना किसी को बताए हुए वे घर से गायब हो गए। वे मोटर से कलकत्ता से 40 मील दूर एक स्टेशन पर पहुंच गए। वहां से रात के 8 बजे एक गाड़ी पर सवार हुए। उनके पास दूसरी श्रेणी का टिकट था। रात को कोई घटना नहीं हुई। दिन में भी केवल एक फौजी अफसर आया और जिसे उन्होंने इधर उधर की बातों में कह करके टरका दिया। वे उस समय जियाउद्दीन नाम अपनाए हुए थे और वे उस समय जियाउद्दीन नाम अपनाए हुए थे। उन्होंने अपने को बीमा कंपनी का संगठनकर्ता बताया। जब कोई बड़ा स्टेशन आता तब वे समाचार पत्र पढ़ने का बहाना करके मुंह ढक लेते थे। इस प्रकार वे 17 जनवरी को पेशावर पहुंच गए। वहां पहले से ही लोग तैयार बैठे थे और वे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे और कई कारणों से 2 दिन तक पेशावर में ही उन्हें रुकना पड़ा और उसके बाद 19 जनवरी को उन्हें पठानी कपड़े दिए गए। तब उनके साथ एक और व्यक्ति चला जिसका नाम था रहमत खां। यह व्यक्ति पाश्तो बोल लेता था और यह सुभाष बाबू को अपना बड़ा भाई बता करके परिचय देता था। सुभाष बाबू वहीं से गूंगे और बहरे बन गए थे और वो इसलिए कि उनके लिए बोलना कई तरह से विपत्तिजनक था। वे बने तो पठान थे परंतु उन्हें ना फारसी आती थी और ना ही पाश्तो। इस कारण गूंगा और बहरा उनको बनना पड़ा। रहमत खान लोगों से यह कहता रहा कि हम लोग कबायली क्षेत्र के रहने वाले हैं, हम काबुल से भी आगे तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग उधर आते जाते रहते हैं। इस कारण किसी को संदेह नहीं हुआ और वे कुछ हिस्सा मोटर पर तो कुछ हिस्सा पैदल चल करके काबुल पहुंच गए। परंतु काबुल पहुंचने से सुभाष बाबू की समस्या हल नहीं हुई। यद्यपि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश है, फिर भी किसी सरकार पर उस समय ब्रिटिश सरकार का दबाव बहुत अधिक रहता था। इसलिए आवश्यक यह था कि वो काबुल से जल्द बाहर निकल जाएं और किसी बड़े देश में पहुंच जाएं। सुभाष बाबू रूस जाना चाहते थे परंतु कलकत्ता में बैठ करके उन्होंने जो व्यवस्था की थी वह काबुल पहुंचने पर समाप्त हो जाती थी। उन्हें आगे की यात्रा अपनी बुद्धि के बल पर ही करनी थी। सबसे कष्टकर बात यह थी कि काबुल पहुंचते ही उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि अफगानी गुप्तचर उनके पीछे पड़ गए हैं। काबुल में वे पहले पहल एक बहुत ही गंदी सराय में ठहरे। यहां पर एक गुप्तचर उनके पीछे लगा। रहमत का यूं तो कहता था कि वह तीर्थ यात्रा के लिए भाई को लेकर के चला है, परंतु वह गुप्तचर किसी प्रकार नहीं मानता था। वह रहमत खां ने उसे कभी 2 रुपए दिए तो कभी 4 रुपए और इस प्रकार उसका मुंह बंद रखा। और अंत में एक दिन उस लालची गुप्तचर ने रहमत खां के हाथ से बंधी हुई सुभाष बाबू की घड़ी भी ले ली। रहमत खां इधर उधर हाथ पांव मार रहा था कि किसी प्रकार रूसी राजदूत से संबंध हो जाए, परंतु इसका अवसर नहीं आया। एक दिन रूसी राजदूत की मोटर को रोक करके रहमत खां ने टूटी फूटी फारसी में सारी बात बताई, परंतु रूसी राजदूत को विश्वास नहीं हुआ और वह बात वहीं की वहीं रह गई। अब स्थिति भयंकर होती जा रही थी। बड़े कष्ट से रहमत खां को काबुल के एक महाजन उत्तम चंद का पता चला। वह व्यक्ति देशभक्त होने के साथ साथ काबुल के प्रभावशाली व्यक्तियों में भी था। उत्तम चंद पहले तो घबराया परंतु बाद में देशभक्ति ने विपत्ति की आशंका पर विजय पाई और उन्होंने सुभाष बाबू को सब प्रकार से पूरी सहायता दी। उन्हीं की सहायता से इटालियन दूतावास को खबर दी गई और धीरे धीरे यह खबर रोम और बर्लिन में भी पहुंच गई। परंतु सुभाष बाबू रूस जाना चाहते थे। वे डरते थे कि कहीं जर्मनी और इटली में फंस गए तो वे लोग उनसे काम लेने को तैयार हो जाएंगे, पर वे जिस काम के लिए यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए निकले हैं उसमें कुछ सहायता नहीं दे पाएंगे। चेष्टा करने पर भी रूस से कोई संबंध स्थापित नहीं हो सका। इटली के दूतावास ने जल्दी से कोई सहायता नहीं दी, पर
इस प्रकार कई सप्ताह निकल गए और यह खबर तो सुभाष बाबू को मिली कि उनके भागने की खबर रोम और बर्लिन में पहुंच चुकी है, फिर भी उधर से कोई प्रस्ताव भी नहीं आया। इन सारी बातों से उबे हुए सुभाष बाबू के परामर्श पर उत्तम चंद इस बात की चेष्टा करने लगे कि चोरी से सुभाष बाबू रूस चले जाएं। जब इस बात की तैयारी होने लगे तो उत्तम चंद को स्मरण हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति है जो इस काम में सहायता दे सकता है। उस व्यक्ति से किसी तरह भेंट की गई और उनसे परामर्श लिया गया और वह बोला कि यह काम कुछ भी नहीं है, वह इस काम में मदद देने के लिए तैयार हो गया। जब यह बातचीत चल गई तो यह पूछा गया कि वह व्यक्ति इस काम में सहायता देने के लिए क्या लेगा। 700 अफगानी रुपयों पर यह काम तय हो गया। भीतर ही भीतर इटालियन दूतावास से बातचीत चल ही रही थी, परंतु उससे अधिक प्रगति इस कारण नहीं हो पा रही थी। काबुल में उनका जो दूतावास था उसको यह अधिकार नहीं था कि वह ऐसे महत्वपूर्ण विषय में कोई निर्णय अपने आप करे। इस कारण जो भी बात मालूम होती थी उसे वे रोम और बर्लिन में लिख करके भेजते थे। उन दिनों रोम और बर्लिन प्रत्येक विषय में एक दूसरे से मिलकर के काम करते थे। बात यह है कि उन दोनों देशों की यानी कि इटली और जर्मनी की सेनाएं एक होकर के महायुद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही थीं। जब सुभाष बाबू तथा उत्तम चंद ने यह देखा कि इटली के दूतावास की ओर से कोई निर्णय नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से वे चोरी से बाहर जाने के कार्यक्रम पर अधिक ध्यान देने लगे। यहां तक कि उस व्यक्ति को रुपयों का कुछ अंश भी दे दिया गया। यह योजना इतनी परिपक्व हो गई कि काबुल से चल देने की बात आई और उस व्यक्ति ने कहा कि यदि जल्दी है तो अफगानिस्तान की पश्चिमोत्तरी सीमा की ओर से जाने वाली लारी में आसन सुरक्षित करा लेते हैं, यानी कि सीट रिजर्व करवा लेते हैं। इतने में इटालियन दूतावास की ओर से यह समाचार आया कि इटली के कुछ व्यक्ति सुभाष बाबू को लेने के लिए आ रहे हैं, परंतु साथ ही यह बताया गया कि उनके आने में 6-7 दिन लगेंगे। ऐसे समय में उत्तम चंद ने बुद्धि से काम लिया और चोरी से अफगानिस्तान के रास्ते ले जाने में सहायता करने वाले व्यक्ति को यह कहकर के प्रतीक्षा करने के लिए कहा कि जो व्यक्ति बाहर जाने वाला है वह एकाएक बीमार पड़ गया है, उसके अच्छा होने के पश्चात ही यह कार्यक्रम चालू हो सकेगा। उस व्यक्ति को यह नहीं बताया गया कि बाहर जाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं सुभाष चंद्र बोस है। उसे इतना भेद बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। संभव है कि उसे भेद बता दिया जाता तो वह और रुपए मांगता, क्योंकि वह एक पेशेवर तस्कर व्यापारी और जुआरी था, जो कुछ भी कमाता था उसी को जुए में फूंक करके बैठ जाता था। सौभाग्य से इटालियन दूतावास की ओर से संदेश आ गया और वह सही प्रमाणित हुआ। एक दिन वह आया जब दूतावास की ओर से यह संदेश मिला कि सुभाष बाबू का फोटो उतरवाया जाए जिससे कि उनका पासपोर्ट बन सके। संदेश पाकर के सुभाष बाबू ने अपना फोटो उतरवाया और मिस्टर कैरोटना के नाम से उनका पासपोर्ट बनाया गया। उनका सारा सामान सूटकेस में बंद कर दूतावास के हवाले कर दिया गया। 17 मार्च को सुबह सुभाष बाबू अंतिम बार उत्तम चंद से मिले। 18 मार्च को सुबह 9 बजे सवेरे सुभाष बाबू 2 जर्मनों और 1 इटालियन के साथ रवाना हो गए। दोनों जर्मन इस कारण भेजे गए कि हिटलर यह चाहता था कि सुभाष बाबू बीच में फंस करके इटली में न रह जाएं। हिटलर चाहता था कि वे आकर के जर्मन में रहें और वहीं से अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार प्रसार करें। सुभाष बाबू 28 मार्च को सकुशल बर्लिन पहुंच गए। यात्रा की दृष्टि से यह उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि इसमें कोई शारीरिक कष्ट झेलना उन्हें नहीं पड़ा और इसके विपरीत यदि वे चोरी से उस व्यक्ति से सहायता के रूप में रूस या जर्मनी चले जाते तो रास्ते में बहुत सारे कष्टों का उन्हें सामना करना पड़ सकता था। श्रोताओं, आगे क्या हुआ यह हम आपको बताएंगे एक छोटे से देशभक्ति गीत के बाद।

तैरने वाले विराट विस्फोटक भी लगे हुए थे, जिनसे स्पर्श होते ही पनडुब्बी के उड़ जाने का भी खतरा बना हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सकुशल सिंगापुर पहुंच गए। सुभाष बाबू ने बंदी करके लाए गए भारतीय सैनिकों को तथा प्रवासी भारतीयों की एक सुसंगठित सेना बनाई। सुभाष बाबू की आज्ञा पाकर सारे प्रवासी भारतीयों ने अपने खजाने के मुंह खोल दिए। लाखों रुपए चंदे के रूप में उनके पास आ गया। ऐसा लग रहा था कि मानव भारतीयों ने अपना सर्वस्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था। जापानी सरकार सहायता दे रही थी, परंतु सुभाष बाबू ने जापान की सब बातों को आंख बंद करके नहीं मानना था। कई बार जापानी अधिकारी सुभाष बाबू के बीच गहरे मतभेद भी हो गए थे, परंतु सुभाष बाबू अपने ही मत पर डटे रहते थे और वे इतना कष्ट उठाकर के किसी सरकार का एजेंट बनने नहीं आए थे कि वे यह समझकर आए थे कि अंग्रेजों के दुश्मन होने के नाते जापानी भारतीयों को स्वतंत्र होने की सहायता देंगे। इसलिए जहां भी उन्हें जैसा ज्ञात हुआ उसके विपरीत आचरण हो रहा था, उन्होंने उसका विरोध भी किया। यदि कोई व्यक्ति जापानियों से इस प्रकार मतभेद व्यक्त करता है, जापानी उसकी एक नहीं सुनते थे। फिर भी सारी परेशानियों के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां पर केवल आजाद हिंद फौज बनाकर ही शांत नहीं हुए, उन्होंने एक आजाद हिंद सरकार भी बनाई। जापानियों तथा जर्मनियों से यह कहा कि सरकार के साथ उन्हें कई प्रकार के व्यवहार करना पड़ेंगे, जैसा कि वे किसी भी स्वतंत्र सरकार के साथ उनके अधिकारी करते हैं। जर्मनी और जापानियों ने इस बात को मान लिया और जर्मन पक्ष से लड़ने वाले सब सरकारों से आजाद हिंद फौज को नियमित रूप से स्वीकार कर लिया गया। और एक बार एक बहुत बड़ा जापानी अधिकारी सुभाष चंद्र बोस से मिलने आया। सुभाष बाबू आजाद हिंद फौज सरकार के राष्ट्रपति थे, परंतु उस व्यक्ति ने मिलने के लिए जिन नियमों और अनुष्ठानों का पालन करना आवश्यक समझा था, उन्हें वो पूरा नहीं करता था। इस पर सुभाष बाबू ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। जब जापानी सरकार ने सब नियमों तथा अनुष्ठानों का पालन किया है, तभी उसे मिलने की अनुमति दी गई। और ऐसी उनके जीवन में एक नहीं कई घटनाएं हुई। और श्रोताओं, इस तरह से आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हो गई। श्रोताओं, इसके बाद आजाद हिंद फौज ने बर्मा के जंगलों के मार्ग से भारत पर आक्रमण किया, परंतु इस समय जर्मनी और जापान दुर्बल पड़ने लगे थे। अमेरिका के युद्ध में आ जाने से ब्रिटिश पक्ष का पड़ला भारी पड़ रहा था। आजाद हिंद फौज सफल नहीं हो सकी थी। जो जो ब्रिटिश सेना विजयी होने लगी, त्यो त्यो आजाद हिंद फौज के नेतागण ब्रिटिश कारागारों में पहुंचने लगे। यहां इनकी सारी कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है कि देश के नेताओं ने आजाद हिंद फौज की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, और जब उन पर लाल किले में मुकदमा चलाया तो जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं ने उनकी ओर से मुकदमे की पैरवी की। सुभाष बाबू पकड़े नहीं जा सके। कहा जाता है हवाई जहाज से यात्रा करते हुए हवाई जहाज में आग लग गई और वो उसी में शहीद हो गए, और इस प्रकार देश के एक साहसी नेता का अंत हो गया। श्रोताओं, ऐसे महान क्रांतिकारी को रेडियो आजाद हिंद शत शत नमन करता है, जिनके नाम से अंग्रेज सरकार थर थर कांपती थी। अपने मित्र प्रमोद शर्मा को अनुमति दीजिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं सभी वर्गों से मिलते हैं, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे स्वास्थ्य जगत हो, चाहे प्रशासन हो, सभी वर्ग से मिलते हैं। स्कूल, आंगनबाड़ी और पंचायत गांव में दिनों बहुत आवश्यक मैंने प्रशासन से होता है। तो आज हमें खुशी है क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा प्रस्तुतकरण होता है। तो आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करतौल में पहुंचे, बहुत खुशी और हर्ष का साथ आज एक विषय पर हम आलोकपात करेंगे और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए महान महान हस्ती आज इस कार्यक्रम को रंगारंग करेंगे, जानकारियां देंगे और हमारा वरिष्ठ शिक्षक इस कार्यक्रम को सजाएंगे और संस्था प्रधान श्रीमती सुनीता मैम को भी स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। खासकर आज का कार्यक्रम के संदर्भ में सहयोग देने के लिए, क्योंकि रेडियो मधुबन हर फील्ड में बच्चों का, बड़ों का, सबका विकास के लिए कुछ न कुछ करता रहता है, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों का मिलित सहयोग से विद्यार्थियों का विकास, नाना स्कूल का विकास अर्थात गाँव का विकास और खुद का विकास। इस संदर्भ में सबको पता है नशा, नाम सुनते तो बहुत प्रकार नशा होता है, नारायणी नशा, कोई कोई पूरा नशा करते भगवान को ही ध्यान करते, कोई कोई नशा करते अपना शरीर को, मन को, धन को ध्यान नहीं देते, नशा भी करते, बहुत सारे नशा करते हैं जैसे तंबाकू, बीड़ी, शराब, बहुत कुछ आता है। लेकिन विद्यार्थी जीवन में ये सब तो दूर रहता ही है, लेकिन उनका अभिभावक, उनका माता पिता, उनका पड़ोसी, उनका रिलेटिव करते, जिसका चलते उनका पढ़ाई में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जब ये पढ़ाई करके जाते हैं घर में मम्मी पापा किसी संग दोस्त में नाचा हालत में करते तो बच्चों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो नशा नाच की जड़ इस टॉपिक पर आज हमारे साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए पर्वत सिंह चार उपस्थित है। पहले भी उनका आवाज सुने हैं और नाम कितना सुंदर, पर्वत जैसे काम करते हैं पर्वत जैसे काम करेंगे, मैंने पर्वत मतलब विराट विशिष्ट काम करते। तो आपको स्वागत करते सर जी, जी आप अपना परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए।
1: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार और पवित्र भाई को भी नमस्कार। मैं प्रभुत सिंह देवड़ा, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करतौली। अभी जैसा कि पवित्र भाई ने बताया कि आज हम नशा नाश की जड़ विषय पर बातचीत करने के लिए हैं, और ये बताया गया कि विद्यालय में इस बात की चर्चा करना इसलिए ठीक रहता है कि यहाँ जो विद्यालय में बालक पढ़ते हैं और बालक से समाज से जुड़ने का सीधा माध्यम है। हम अपनी प्रार्थना सभा के माध्यम से, जैसे हमारे विद्यालय में 150 बच्चे हैं, तो हम सीधे सीधे एक गणित बिठाए तो 150 परिवारों तक सीधा अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो स्कूल एक अच्छा मंच है, माध्यम है, और वैसे कहा भी जाता है कि शिक्षा है वो समाज में परिवर्तन का माध्यम है। हम शिक्षा और विद्यालय और बच्चों के माध्यम से समाज में जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। तो आज का जो विषय है नशा नाश की जड़, वो प्रासंगिक है। प्रासंगिकता यह है कि वर्तमान समय में जो नशा है वो नाश यानी समाप्त, विनाश की जड़ बना हुआ है। नशे के कई रूप होते हैं, जैसे सामान्य तौर पर हम सभी जानते हैं कि एक शराब के कई प्रकार आ गए, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक हो या हार्ड ड्रिंक हो, अफीम है, गांजा है, चरस है और बीड़ी, तंबाकू से संबंधित सारे नशे। अब इसमें नशा किसी भी रूप में लिया जाता है। अब मैं जैसे तंबाकू की बात करूं तो तंबाकू में लोग आमतौर पर इसके बारे में क्या कहते हैं वो विषय पे बताऊंगा, फिर मैं आगे चलूंगा कि इसका प्रारंभ कैसे होता है। तो तंबाकू के विषय में लोग इसको कई रगड़ कर चूने के साथ खाते हैं, कई गुटखे के रूप में, कई इसको जलाते चिलम के रूप में लेते हैं, कई अपने गांव के बड़े बुजुर्ग उसको सूंघने के काम में भी लेते हैं, कई इसको दांतों के मंजन के रूप में भी करते हैं। और उसमें ये तर्क दे दिया जाता है कि मैं तो ये थोड़ा से रूप में लेता हूँ, कम मात्रा में, कभी कभार इसका यूज करते हैं, इससे कुछ नहीं होता, ये सब आत्मसंतुष्टि के लिए और अच्छा लगाने के लिए किया जाता है। जबकि तम्बाकू का किसी भी रूप में सेवन किया जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए हानिकारक होता है। जैसा कि पवित्र भाई ने कहा कि नशा तंबाकू हो या कोई भी नशा हो, वो तन, मन, धन और सम्मान, इन चारों चीजों को नष्ट करता है। अब नशे का प्रारंभ कैसे होता है? नशे का प्रारंभ शुरू में एक आनंद के साथ होता है, मस्ती के साथ होता है, अबोध अज्ञानता वश शुरू करता है, क्योंकि उसके परिवेश में आसपास कुछ लोग होते हैं जो इस नशे से ग्रस्त होते हैं, लगे हुए नशा करते हैं। तो वो क्या है, कभी कभार टेस्ट के रूप में ले लिया, स्वाद के रूप में थोड़ा चख के देखो, या अपने में थोड़ी अपनी धार्मिक बातों से इसको जोड़ू, तो जैसे शराब का सेवन है तो कई देवी देवताओं को तो उसको प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है, तो कई बार प्रसाद का रूप भी दिया जाता है कि थोड़ा सा प्रसाद है, इसमें कुछ नहीं होता। भगवान के नाम पर, जैसे तो भगवान शिव का उदाहरण ले ले, भगवान शिव की स्तुति करते हैं और हम सभी भक्त हैं और श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, तो इसमें भगवान शिव को बोले अफीम, गांजा, भांग, बोले भगवान शिव को बहुत अच्छे लगते हैं और हम उसके भक्त हैं, तो थोड़ा थोड़ा चख ले, इसका स्वाद कर ले। तो
0: साथी अभी मैं आपको यही बार रोक रहा हूँ, क्या जब हमको पसंद नहीं है, क्या भगवान शिव को ये चीज पसंद है? लोग तो अपना फायदा के लिए भगवान का नाम लेते हैं।
1: हाँ तो मैं वो
0: और ना, तो आपका स्कूल में रखते हैं क्या भाई, भांग पर रखते नहीं, तो उनका नाम लेकर जो ये जो अंधश्रद्धा, ये चीज को कैसे मिटाना है हम तो उनको पता नहीं, क्योंकि हम जो बता रहे कोई चीज खराब चीज जो होता है तो भगवान का नाम पर हम क्यों ले, जो हो चुका हो चुका, अभी आगे के लिए आपको ध्यान देना है। आसपास पड़ोस में जो गंदगी का जो पेड़ रहेगा तो सरकार उसको बैन करता है ना, वो उस समय तो बोलते नहीं हम लोग ये भगवान के लिए हम कर रहे हैं, क्यों जब बोलबम जाते हैं तो भगवान हम लोग प्रसाद बोल खाते हैं, है ना। लेकिन ये चीज जानकारी होना चाहिए, जब कोई भी तम्बाकू जो हमारा नशा करता है, जब आसपास रहते हैं तो सरकार उनको क्या करता है, पेनल्टी बात दंड देता है, नियम विरुद्ध है, लेकिन मनुष्य अपना स्वार्थ के लिए
1: ये कह रहा हूँ,
0: ये चीज के लिए आज एक को दूसरे को देख कर वो भी करना कुछ नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा खराब है, तो पैसा तो जाएगा और जो नशा करते तो दंड होता है, कितना नष्ट होता है, लेकिन और कुछ जानकारी लेंगे, लेकिन और कुछ जानकर सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 स्कूल के बच्चों का साथ रूबरू हो रहे, बच्चे भी सुन रहे आज, क्योंकि बच्चे तो करते नहीं, लेकिन बच्चों का जो अभिभावक भी करते नहीं, मेरा विश्वास है वो करेंगे नहीं, करते तो आज से छोड़ दें, जाकर बच्चे मम्मी पापा को बताएंगे भाई इस तरह नाश होता है, नष्ट होता है शरीर का धन का, लेकिन और कुछ जानकारी देंगे, लेकिन और कुछ जानकर सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: समस्त कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नशा नाश की जड़ है, चाहे तन चाहे मन चाहे धन सभी से हमारा क्षति होता है। तो इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए हमारे साथ सभी का सहयोग मिल रहा है, बच्चे भी अपना भाव को रखेंगे। नशा देखते हुए कभी किसको मना किए कि वो भी बताएंगे, कोई नशा करता हुआ देखे तो आप कभी जीवन में नशा का विरोध में मना के उनको समझा भाई नशा नहीं करो, चाहे अपना परिवार हो चाहे अपना दोस्त हो किसी से भी। बच्चे सब सुन रहे ना, तो ध्यान से सुनना, जब आप कभी भी कुछ स्टेप लिए भलाई के लिए, स्कूल के लिए हो चाहे आपका दोस्त के लिए, आपका परिवार बड़ों के लिए, ऐसे कभी किए होंगे तो आप हाथ उठाकर अपना बात को रखना, ये एक बहादुर का काम है। ठीक है, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ भगवत सिंह जी उपस्थित थे। तो नशा नाश की जड़ है, नशा करते हैं लेकिन दूसरे का नाम पर जो करते हैं ये ठीक नहीं है। खुद खुद को देखना चाहिए, करने से हमारा क्या नुकसान होता है। क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक संग का बात को रखने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने में गट्टर में जैसे जा रहे, क्योंकि आज सरकार भी चाह रहा है कि नशा मुक्त भारत हो। नशा मुक्त भारत तब होगा जब नशा खुद से मुक्त होंगे, क्योंकि हमको लेकर ही भारत, भारत कहाँ से आएगा, ग्रास रूट जमीन स्तर और शिक्षा जो विद्यालय स्कूल ये शिक्षा का मंदिर है। यहाँ पर कभी कोई करता है सर मंदिर में, जैसे मस्जिद मंदिर में करते हैं, यहाँ पर कोई करते हैं, पहले तो कभी करते नहीं, भाई लोग कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन ये सिंह का नाम पर तो करते हैं कलंक, ये नहीं होना चाहिए। रेडियो का माध्यम से ये जागरूकता कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि नशा नाश की जड़ चाहिए। कोई देवी देवता का नाम पर लेकर कहा शराब भी चढ़ाते हैं किसी नाम का, लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए। भगवान का उनका हाथ पैर नहीं, वो कैसे खाएगा, शिव मंदिर में शिवलिंग में जाते हैं तो उसका तो हाथ पैर कुछ नहीं है, ज्योति पूजा करते हैं, ज्योति निराकार है, तो उनका हम गंजा कैसे भांग कैसे खिलाएंगे, वो तो संभव नहीं है। चलिए
1: सही
0: आप क्या कहना चाहेंगे
1: पवित्र भाई, मैं यही कह रहा था कि व्यक्ति इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है मनुष्य, और मनुष्य बड़ा स्वार्थी है और इतना अपने पक्ष में वकील बनकर आता है, चाहे वो धार्मिक मान्यता के नाम पर या अवसाद बोले मुझे ये टेंशन है यह तनाव है, ऐसा करने से नशा करने से मुझे ठीक हो जाता है इसलिए मैं नशा करता हूँ, या परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, किसी प्रकार का कलह है, दुख है, उस दुख को मिटाने के लिए मैं नशा करता हूँ, कई तरह के तर्क देता है, लेकिन वो सारे तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि नशा किसी भी बात का हल नहीं है, नशा आने वाली गंभीर समस्या का द्वार है, वो जितनी भी है चीजें वो गलत है। अब मैं इसके कारण से अपने नशा का प्रारंभ होता है और ये परिवेश में बड़े बुजुर्ग करते हैं तो उससे बच्चों तक भी यह आता है। अभी एक पवित्र भाई बात बता रहे थे कि यह बच्चों को क्यों बताया जा रहा है या देश के लिए क्यों है, तो देश के लिए जो सबसे बड़ा धन होता है वो मानवीय संसाधन होता है ह्यूमन रिसोर्स, और उसके मानव है वो सबसे बड़ी, उसकी देश की जो जनता है प्रजा है मानव है या लोग है वो देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है, सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर वो पूंजी नशा नहीं करेगी तो स्वच्छ होगी, दीर्घायु होगी, तो वो देश के लिए एक बड़ी संपत्ति है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नशे से कैसे नुकसान होते हैं। नशे के तौर पर चाहे आप गुटखे की बात करें, तम्बाकू से ही बात करें अपन, कि तम्बाकू की बात करो तो तम्बाकू का रूप किसी भी रूप में दिया जाता है, तम्बाकू के लिए उसके पैकेट पर जितने भी इसके प्रोडक्ट उत्पाद है उस पर लिखा जाता है कि इसका सेवन करना हानिकारक है, ऐसा करने से कैंसर होता है, वो होता है, सारी चेतावनियां लिखी हुई होती है, सरकार द्वारा जारी भी की जाती है, लेकिन समाज पर इसका असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इसका कारण है कि समाज के, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि समाज में कुछ रोल मॉडल भी होते हैं, रोल मॉडल यानी जिनको हम गलतीवश भ्रमवश नायक मान लेते हैं, तो अपना देश का जो असली नायक है वो अपने देश के सिपाही है, सैनिक है जो बॉर्डर पर रहकर अपनी रक्षा करते हैं, वो अपने नायक है, या वो लोग जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया, वो अपने नायक है। लेकिन हम थोड़ा अज्ञानता के बस हमारे जो चलचित्रों में फिल्मों में पिक्चरों में जो काम करते हैं उनको अपना नायक मान लेते हैं, और नायक मानने के बाद उनका वो भी अपने दायित्व से विमुख हो जाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते और वो गुटखे और तम्बाकुओं की एड करते हैं, उसका विज्ञापन करते हैं, तो वो बड़े और दुख का विषय है। 5 रुपए के विमल के विज्ञापन में वो कहते हैं कि दाने दाने में केसर है, अब वो केसर नहीं है, लेकिन समाज में उनकी एक छवि है। तो हमारा जो अबोध बालक है या समाज का जो अज्ञानी व्यक्ति है वो उनको नायक मान लेता है और नायक मानकर उनके कहे अनुसार उन चीजों का उपयोग करने बोला, कह रहा है दाने दाने में केसर है। तो ये ऐसे चीज का सरकार को इन चीजों पर भी पाबंदी लगानी चाहिए कि इस तरह के विज्ञापन नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि समाज उनको फॉलो करता है, उनका अनुकरण करता है। ये चीज एक इसके लिए बच्चों या समाज पर असर नहीं पड़ता और उनमें भी दोहरापन है। अब उन नायकों को भी शर्म नहीं आती, एक तरफ तो विज्ञापन करते हैं कि सिगरेट थू थू करने में मजा नहीं है, सिगरेट छोड़ो, वही नायक दूसरी तरफ आके कहता है कि गुटखा खाओ दाने दाने में केसर है, तो उनके कहने में भी विरोधाभास है। तो हमको इस तरह की बातों में नहीं आना चाहिए और सरकार को भी दूरदर्शन या जो टीवी पर और मोबाइलों पर जितने भी एड दिए जाते हैं इस तरह के एड विज्ञापनों पर रोक लगाई जानी चाहिए और हमको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। 5 रुपए में केसर मिलता है क्या? 5 रुपए में केसर नहीं मिलता, केसर का भाव बड़ा महंगा है, तो वो हमको भ्रमित कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको और बताता हूँ कि जो कैंसर आज महामारी के रूप में आ रहा है और आने वाले समय में और ये महामारी का रूप लेगा, इसका जो 90%, वैसे कैंसर के कई कारण होते हैं लेकिन जो 90% कारण होता है वो तंबाकू होता है, तंबाकू से ही कैंसर होता है। 10% में अन्य कारण भी होते हैं, अपना खान पान रहन सहन सारी चीजें होती है, लेकिन 90% संभावना तंबाकू की रहती है। और तंबाकू जो सेवन किया जाता है तो सबसे ज्यादा इसका जो मुख कैंसर, मुंह का जो कैंसर की संभावना ज्यादा रहती है, तो इसका हम सेवन नहीं करें, ये हमारे लिए बड़ा हानिकारक है। इसके अलावा जैसा कि और नशे के लिए वाहन के संबंध में चले जाए,
0: अभी जो बात कर रहे थे नशा क्यों करते हैं, सामने बताया कभी टेंशन होता है, कभी पूरा हार्ड वर्क होता है तो थोड़ा टीकर थोड़ा विराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, मैंने मेडिसिन तौर पर उसको लेते हैं। जब मेडिसिन होता है जैसे कैंसर का दाना नाम दिए, ये सब जो नाम सामने होता है, जब ये चीज होता है उसका जगह भी उस जगह में होना चाहिए, मेडिसिन का जगह में रहना चाहिए, शराब तंबाकू गुटखा मेडिसिन स्टोर में होना चाहिए। आपको चाहिए तो मेडिसिन स्टोर में जाइए, तो वहाँ पर तंबाकू शराब के लिए अलग शराब काउंटर क्यों खोला जाए, उसको पूरा मेडिसिन का हिसाब से आपको दर्द लग रहा है, आप खेती से आए कि स्कूल में पढ़ाई के टेंशन हुआ, घर में कुछ बोल दिए टेंशन हुआ, हाँ घर में मारपीट हुआ, टीचर सो जाते हैं, तो आपका भले के लिए तो मेडिसिन स्टोर में रहना चाहिए, लेकिन मेडिसिन स्टोर में रहता है क्या शराब तंबाकू रहता है? बोलो बच्चे नहीं, क्यों? वो मेडिसिन नहीं है और मेडिसिन का नाम देकर हम पी रहे हैं। सर ने बताया जैसे टेंशन होता है जो कुछ होता है हम ले लेते हैं, जैसे केसर का नाम आया, केसर होता तो भाई ड्राई फ्रूट में रहना चाहिए, ड्राई फ्रूट का जगह लेता है क्या? वो तो नहीं ले पाएगा कहीं, उसमें तो केसर है नहीं। तो सोचो, क्योंकि यूथ जो चाहेगा वो कर सकता है और अपने देश के लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए तो जिम्मेदार है, लेकिन जो अंधश्रद्धा जो हमारा पूर्वज जो बोले हमको रटते रटते जा रहे, लेकिन अभी हमारा सोचने का समय आ चुका है, क्योंकि भारत आजादी का अमृत महोत्सव का साथ साथ अमृत काल मना रहा है। जो अगला 25 साल जो आने वाला समय है, आप लोग का समय होगा और आप लोग होशियार होंगे तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, आपको लेकर ही बनेगा। और राइज ऑफ इंडिया, भारत जो उत्थान की ओर जा रहा है, क्यों आज हर जगह में मोरल व्यवहारिक ज्ञान नशा से दूर क्यों सिखाया जाएगा? क्योंकि आपका ही समय है। इस मंच का माध्यम से सिर्फ तरतल स्कूल के बच्चों का नहीं, आज इस मंच का माध्यम से जहां जहां हमारे रेडियो कार्यक्रम सुनाई दे रहा है तो उसी में आप कुछ शिक्षा मिलेगी हमारा प्रयास है। लेकिन छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बच्चे भी सुन रहे, कुछ बच्चे भी अपना कार्यक्रम को लेकर 2 शब्द बताएंगे तो हमारा प्रोग्राम गुलदस्ता जैसे बन पाएगा, क्योंकि हमारा मैम भी आज उपस्थित है तो मैम भी 2 शब्द बोलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो 107.8 FM पर।

0: में।
1: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते, राम राम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का बाद हम पुनः मिल रहे हैं। ब्रेक का पहले हम सुन रहे थे परबत सिंह सर जी को, नशा नाश की जड़ है उसका तहत किस तरह हमारा तन मन धन को क्षति पहुंचाता है वो उसका बारे में विस्तृत जानकारियां चल रही। तो तत्पश्चात हम पुनः आपका पास रख रहे हैं, क्योंकि नशा नाश की जड़ है, हमारा तन मन धन का साथ साथ सम्मान भी को बाधा पहुंचता है। नशा अनेक प्रकार के होते हैं, कोई कोई तो नशा, उनको इतना नशा लगा रहता है पढ़ाई में, जहीं भी देखो मैं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कोई बोलता है भाई इसको नशा है पढ़ने में, कोई खराब चीज में नशे में लत हो जाते हैं, खराब संग भी एक प्रकार के लत है, नशा है। कोई कोई तो व्यसन लेते हैं, शराब बीड़ी गुटखा आदि जो कि क्षतिकारक है शरीर प्रति, वो भी करते, उसी में वो नशा क्षतिकारक है। विद्यार्थी जीवन में नशा करना चाहिए तो पढ़ाई के प्रति नशा हो, ईश्वरीय नशा हो, सत्संग का नशा हो, अच्छा चीज में नशा हो। इस कार्यक्रम को और चार चांद लगाने के लिए बच्चों को उमंग उत्साह दिलाकर नशा से कैसे मुक्त रहे उसका ऊपर में आलोकपात कराने के लिए मैडम हमारे साथ उपस्थित है, उनको स्वागत करते हैं। मैम, आप अपना परिचय के साथ नशा बच्चों का प्रति किस तरह उनका करियर में बाधा पहुंचता है उसका बारे में बताइए, आपका स्वागत।
1: नशा नाश की जड़ है। विद्यार्थी जीवन में जो बच्चे अभी काफी उम्र में भी छोटे हैं और उनको भी ऐसी लत लग गई है, बड़े बच्चों को देखकर या अपने घर पे पेरेंट्स को देखकर वो लोग बाजार से गुटखा खरीद के या लाला के और चुप चुप के खा रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है उसमें, लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा है कि ये हमारे भविष्य के लिए कितना खतरनाक है। हमारा भविष्य पूरा उजड़ रहा है इस तम्बाकू के सेवन से, गुटखों के सेवन से। विशेष कर से मैंने ये चीज देखी कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा परिवार इतना गरीब है, लेकिन फिर भी अपने पिताजी को वो लोग समझा सकते हैं। कई ऐसा नहीं है कि हर पेरेंट्स कहना ना माने, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें रख के अपने पेरेंट्स को इस चीज से हटा सकते हैं कि हमें इस चीज से दूर रहना। अगर हम इन्हीं पैसों का, जो पैसा तुम इन चीजों को खरीदने में खर्च कर रहे हो, उसी पैसों को हम अपने परिवार को चलाने में, हम इन्हीं पैसों से फ्रूट्स है, सब्जियां है, अच्छी चीजें लाने में इसका व्यय कर सकते हैं और अपने परिवार को अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। बल्कि क्या होगा, आज हम नशा करेंगे कल हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, इस स्वास्थ्य को, बिगड़े हुए स्वास्थ्य को लेकर बीमारी होगा, इस बीमारी को ठीक करने में हमें काफी पैसा डालना पड़ेगा और जरूरी भी नहीं है कि वो ठीक हो जाए। पहले इसको खरीदने के लिए पैसा खर्च करो और फिर इसको ठीक करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए काफी पैसा डालना है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। विशेषकर से अभी से अगर बाई चांस किसी विद्यार्थी की ऐसी आदत पड़ गई है तो हमें आज से ही, क्योंकि अभी कच्चा कोमल मिट्टी होती है ना, उसको तो किसी भी आकार में डाल सकते हैं, लेकिन जब वो पका हुआ मटका हो जाता है ना, तब उसको वापस उस आकार नहीं जा सकता। इसीलिए मैं बच्चों से विशेषकर निवेदन है मेरा कि बाई चांस इस लत के तुम शिकार हो गए हो तो अभी से अपनी आदत सुधार दो, अभी से इस गंदी लत को दिमाग से निकाल लो और अपना पूरा जीवन पढ़ाई को समर्पित कर दो। जैसा कि सर ने बताया कि वास्तव में नशा होना चाहिए, पढ़ाई का नशा होना चाहिए, इतना नशा होना चाहिए कि हमें कंपटीशन के माध्यम से कि हमें आगे बढ़ना है, बस ऐसा नशा आगे रखना चाहिए कि मुझे फर्स्ट आना है, ये नशा तुम्हारे काम आएगा, बहुत काम आएगा। तो बस मैं इतना ही चाहूंगी कि तुम्हारे परिवार में भी यदि कोई, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे बड़े भाई, तुम्हारे दादा ताऊ, जो भी यदि किसी भी नशे के शिकार है, तो कोशिश करो। अगर हम बार बार कोशिश करेंगे ना तो हम सफलता अवश्य हासिल करेंगे। उन्हें हर बार टोको, बार बार टोको उन्हें।

0: उनसे इनसे कहती थी कि ये लोग ड्रिंक क्यों नहीं छोड़ते, तो बोले तू समझा के देख ले। और मैंने ये कोशिश की और मुझे गर्व है इस बात का, मैंने लिया और काफी कम से कम उन 8-10 मजदूरों में से 5 मजदूरों ने बिल्कुल आज भी वो नशा बिल्कुल भी नहीं करते। उनको मैंने कहा कि तुम इसी पैसों का उपयोग अपने परिवार को पालने में करो ना, देखो तुमको कितना मजा आएगा। उनके लिए अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेके जाओ, उनके लिए कपड़े लेके जाओ। तुम इस पैसों को नशे में धो धो के घर जाते हो, पूरा परिवार बिखर जाता है, रोते हैं बच्चे, रोते हैं पत्नी, रोती है। तो तुम करके तो देखो, कोशिश करके देखो, आराम से छूट जाता है। ऐसी बात नहीं है कि हम किसी चीज को नहीं छोड़ सकते, अपनी इंद्रियों को बस में रखना हमारे हाथ में है। अगर हम अपने मन पर काबू रख लेंगे तो हम छोड़ सकते हैं किसी भी चीज को। ऐसी बात नहीं है कि हमसे नहीं छूटेगा, धीरे धीरे आराम से हम छोड़ सकते हैं और अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हैं इस गंदी लत को छोड़ के।
1: मैम अपना परिचय दीजिए।
0: सरस्वती अग्रवाल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तरतोली।
1: मैम का नाम सरस्वती है, नाम जैसे उस तरह शिक्षा भी देते हैं। जैसे बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी को हम पकड़ते हैं इसे, है ना, ऐसे खाते ना सिगरेट दोबारा ऐसे करते हैं, ये हम ही पकड़े हैं, ऐसे अंगुली को दोहाकर चिप कर रखते हैं, पूरा प्रेस करके। जब हम खुद ऐसे कर देंगे क्या होगा, सिगरेट हो जाए बीड़ी नीचे गिरेगा ना ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, खोल देंगे तो नीचे गिरेगा ना। जब तक हम नहीं उठाएंगे, मैं नहीं उठाऊंगा वो बीड़ी, और सिगरेट का इतना ताकत नहीं है जो मेरे पास आ जाए, आ जाएगा, कितने भी ताकत लगाए वो हमारे पास आएगा नहीं जब तक मैं

को ने उठाऊ, अर्थात जिम्मेवारी कौन है, खुद है, खुद जिम्मेवारी है। जब सिगरेट बाल एक एग्जांपल मैंने लिया है, जब तक हम नहीं उठाएंगे वो उठेगा ही नहीं, और हम उठाएंगे तो हमारा क्षति करता है। नशा नाश की जड़ है। तो बचपन का समय, अभी इस समय जो है, नारायणी नशा करो, पढ़ाई का प्रति नशा करो, अच्छा चीज में नशा करो, बुराई चीज में नशा नहीं करना चाहिए। बुराई चीज हमेशा बुरा ही होता है, चाहे कोई भी हो, तन मान धन, और लास्ट में राम नाम सत्य ही होगा। क्या होगा अंतिम पुरस्कार, जैसे मैम बताया ना, इस अंतिम जो समय होगा, राम नाम ने मृत्यु की वरण करेगा, पैसा देने से भी कुछ नहीं हो पाए, क्योंकि भगवान का दिया हुआ इस शरीर है, एक बार रिप्लेसमेंट करेंगे तो कभी भी वो ठीक जॉइंट ही आएगा, काम करेगा नहीं। इसलिए कैंसर वगैरह जो होता है सबको मालूम है बच्चों को, लेकिन उसमें ज्यादा नहीं, हमको निवारण कैसे करना है वो चीज सोचना है। ये चीज तो हो रहा है, उसको निवारण कैसे करेंगे, क्या ध्यान देंगे। तो जैसे मैम बोले, ये चीज आपका चीज नहीं, उसको नहीं करना, हम ही करते हैं, हम जब नहीं करेंगे तो हमारे पास आएगा नहीं। और उसमें ध्यान देना क्या है, कोई भी चीज, कोई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अनजान बच्चे होता है घर में, 5 साल का 4 साल का बच्चे जो होता है, वो ब्लेड में और कैंची में जहाँ धार होता है, जैसे हम सब्जी काटते हैं, वो खेलते हैं, आग से खेलता है, उसको मालूम नहीं है, लेकिन उसको रोकेंगे तो रोता है, रोता है कि नहीं। फिर माँ बाप बहुत होशियार है, चला के उसको समझदार, वो क्या करता है, उसको निकालने के लिए, उस चीज से दूर रखने के लिए क्या करता है, आप लोग सब अनुभवी है, आपका मम्मी पापा आपके लिए भी क्या होगा, जो गलत चीज में आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन चला जाते हैं, माँ बाप उसको रोकते हैं। छोटे बच्चे खराब चीज में जो लगते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको चॉकलेट, अच्छा बिस्किट, आज का एड्रेस दिखाते हैं, बच्चे देखो ये तुम्हारे लिए लाए, तुम्हारे लिए लाए। वो क्या करता है, लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, और जो चीज पकड़ा हुआ ना, कैंची, चाकू, आग, वो गिर जाता है, वो गिराता नहीं, वो खुद गिर जाता है, गिर जाता है कि नहीं, और अच्छा चीज लेता है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही सिखाता है, जैसे मन और बुद्धि को अच्छा चीज लो, ईश्वरीय नशा करो, सत्संग करो, हमारा घर में मन को ऐसे सोचो जो हमारा अंदर में वापसी आए। तो आप लोग ऐसे सोचो, हम अच्छे बच्चे हैं, हमें विद्यार्थी लाइफ है, मैं गांव का परिवार का नाम रोशन करूंगी बा करूंगा, ऐसे सोचेंगे ना, ये चीज दूर भागेगा। आपको उसको चिंता नहीं करना है, एक बस जीवन में हमें अच्छा बनना है, ऐसे सोचना, मन को बार बार संकल्प देना, मैंने ये अच्छा चीज लेना, अच्छा संस्कार, तब जाकर हम अच्छा बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद बच्चों का थोड़ा बात भी रखेंगे, बच्चे तो बहुत समय से सुन रहे, बच्चों का भावना क्या है, उनका भी पास में आता होगा तो निकलता नहीं कैसे, निकलता कि नहीं वो बताएंगे। अनुभव आधार से सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।

0: प्रभु।
1: माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर। मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी। मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं। माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम। एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा। और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है।

0: সবিতা আবাজ
1: ইউনিটা আবাজ
0: পদসিং সাদা আবাজ মরা আবাজ
2: অরুণ সিং জি গাও
0: হইলে সাদা বচ্চটা কার্যক্রমে বচ্চটা অনুরোধটা কে লিয়ে হ্যালো কে নাম হে
2: হরমত সিং হরমত সিং
0: সিং মন নাম বসে পড়েগা আর কিয়া আজ সব শুন রহা থা কিয়া আপকো আচ্ছা লাগা
2: हमको ये अच्छा लगा सर कि नशा छोड़ने के बारे में आप ये बातें बोल रहे हो मतलब नशा नहीं करना चाहिए
0: आप करते
2: नहीं
0: आप किसी को करते हुए देखे हैं
2: नहीं आज नहीं देखे
0: आज तक नहीं देखे देखना भी नहीं चाहिए और देखना भी नहीं चाहिए नशा का और नीचे खुद भी नहीं करेंगे बहुत अच्छा और क्या कहना चाहिए नशा नाश की जड़ है जो टॉपिक है ये टॉपिक आपको कैसे लगा
2: बहुत अच्छा लगा सर
0: तो इस चीज के लिए आप कुछ गाँव में कुछ अवेयरनेस कर सकते हैं
2: हाँ सर
0: क्या कर सकते
2: सर जो नशा करते हैं उनको बोलूंगा सर नशा नहीं करने का शरीर खराब हो जाता है और घर का नाश हो जाता है
0: परिवार में कोई नहीं करता होगा
2: मेरे पिताजी करते हैं
0: महीने में कितना खर्च होता है
2: महीने में होता है
0: डेली कितना खर्च होता है नशा में
2: नशा में होता है सर ऐसे तो वो पैसे नहीं लेते सर
0: मिनिमम 10 रुपए का खर्च होता है कोई भी एक दिन में 10 रुपया महीने में कितना होगा
2: 300 रुपया
0: और साल में होशियार बच्चे 3000 रुपया
3: इसको सरल रूप में इस बात को अपन ये ऐसे समझा सकते हैं कि नशा करने के लिए जो अपन नशा करते हैं उसको हजारों रुपए खर्च करके एक गलत चीज करते हैं और उस गलत चीज के बाद शरीर में जो बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं तो एक तो अपन पैसा खर्च करके बीमारी गलत चीज लाते हैं और उसी को ठीक करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं तो दोनों तरफ अपना नुकसान है धन का दोनों तरफ नुकसान है तन का इसके नुकसान है मन का और इससे कोई नशा करने वाले का समाज में जो सम्मान है वो भी नष्ट होता है तो तन मन धन और सम्मान सभी का नुकसान की जड़ है नशा इसलिए नशा है नाश की जड़
4: वाह ताली बजा भाई बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति और सिर्फ तरतली स्कूल के बच्चों को क्यों सभी बच्चे जो सुन रहे हैं जरूर इसे फायदा मिलेगा इन शुभ भावना के साथ सभी को धन्यवाद आभार आज का कार्यक्रम को सुंदर में सजाए सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल 107.8 FM पर ये था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तरतली

0: भावना को प्रकट किए। तत्पश्चात ब्रेक के बाद हम पुनः पहुंच रहे हैं आपके पास और हमारा इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में देखे हैं, तो उनका भी दिल का भाव को रखेंगे। स्कूल के संस्था प्रधान मैम को स्वागत करते हैं। मैम, आपका वेलकम। आज नशा नाश के जड़ के तहत जो कार्यशाला हुई उसका बारे में थोड़ा बताइए। आपका वेलकम, आपका परिचय के साथ।
1: सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुनीता बड़ाना है। आप हमारे विद्यालय में पहुंचे। वैसे तो पूर्व में भी आप बीके बंधु हमारे भाई बहन कई बार विद्यालय में अलग अलग कार्यक्रमों के अंतर्गत पहुंचते रहते हैं। व्यवहारिक काम जो शिक्षा का है पाठ्यक्रम के माध्यम से, चाहे वो शैक्षिक हो, सह शैक्षिक हो, अन्य कोई गतिविधियां हैं, वो हम सभी निरंतर हमारे स्टाफ साथी हमारे विद्यार्थी आपस में करते रहते हैं। परंतु इस व्यवहारिक ज्ञान के साथ में कुछ और भी है जो आज के परिप्रेक्ष्य में निरंतर लुप्त होता जा रहा है, और वो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण एक शिक्षा के साथ में जोड़ा जाना अनिवार्य है, वो है नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य। समाज में जिस तरह से परिस्थितियां निरंतर परिवर्तित हो रही है, हमारे आज के बालक और बालिकाएं क्या सीख रहे हैं, इस पर एक गंभीर चिंतन करना आवश्यक है। नैतिक शिक्षा जो प्रारंभ से ही, बहुत प्रारंभ और प्राचीन काल से ही हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है, या कहें कि जिसको सबसे ऊपर माना गया है, उसको आज नए परिप्रेक्ष्य में किस तरह से हम हमारे बालक और बालिकाओं को दें कि वो एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे इंसान बने। नैतिक शिक्षा आध्यात्मिक मूल्य के साथ में जोड़ना आवश्यक है। यहाँ अध्यात्म का मतलब किसी एक विशेष संदर्भ में नहीं है। अध्यात्म का मतलब उस परम शक्ति पे विश्वास रखना, जो कई सारी अलग अलग हमारे जीवन में विशेष परिस्थितियां आती है जहां हमें अध्यात्म की आवश्यकता महसूस होती है, कि कोई भी एक परम शक्ति जिस पे हम पूर्ण भरोसा करके अपने जीवन में कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सके, उस शक्ति पे भरोसा हम हमारे विद्यालय में किस प्रकार करें, साथ ही नैतिक मूल्यों से उसको जोड़ते हुए कैसे चले। नैतिक मूल्य कई तरह के सत्य है, अहिंसा है, और भी हमारी बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है, वो सब हम बालक बालिकाओं को किस प्रकार दें, उसमें हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, मगर आपकी संस्था है, उस संस्था के द्वारा भी समय समय पर जिस तरह का ओरिएंटेशन हमारे विद्यालय में किया जा रहा है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। बालक और बालिकाएं भी हमारे साथ साथ जब आपके यहाँ से कोई आते हैं और उन्हें समझाते हैं, तो निश्चित तौर पे, क्योंकि बच्चों का मन कोमल है, वो ग्रहण करता है जो आसपास के परिप्रेक्ष्य में उसे मिल रहा है, और उसकी छाप जीवन पर्यंत बनी रहती है। तो हम सभी पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि जो भी नैतिक मूल्य है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, या हम कहें आज के समय में जिस तरह से तम्बाकू मुक्ति का एक अभियान चल रहा है आज के समय में, इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो हम उस तम्बाकू मुक्ति के संदर्भ में निरंतर बच्चों को अवगत करा रहे हैं कैसे नशा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, या कहें कि पूर्णतः उसको नष्ट कर देता है। वो सब बातें हम बच्चों को बता रहे हैं, उनको जो जीवंत उदाहरण है वो भी दे के बता रहे हैं। अलग अलग माध्यमों के माध्यम से हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का नशा हो, तम्बाकू हो, या और कोई जो उनके जीवन को गलत तरह से प्रभावित करता है, उसको वहीं रोक देवे और अपने जीवन में अच्छी आदतों का समावेश करे। जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जिसका हमें बहुत ज्यादा हमें आवश्यकता है आज के परिप्रेक्ष्य में, उनको वो ग्रहण करें और अच्छे से अच्छी शिक्षा के साथ में नैतिक और आध्यात्म को जोड़ते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए। तो इस विद्यालय से परीक्षा पूर्ण करने के, परीक्षा तो केवल एक मूल्यांकन की प्रक्रिया है, मगर साथ में जो कुछ हम हमारे विद्यालयों में प्राप्त करते हैं इस प्रारंभिक स्तर पे, वो हमारे जीवन को निश्चित रूप से प्रभावित करता है, और उस पक्ष को हम जितना अधिक मजबूत बना पाएंगे, अच्छे ही नागरिक हमारे देश में तैयार होंगे, जो नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होंगे, जिसकी आज के समय में न केवल हमारे देश को ही बल्कि पूर्ण विश्व को अत्यधिक आवश्यकता है कि उनका पतन तत्काल रोके हम, और रोकने में हमारे ये बालक और बालिका ही सबसे महत्वपूर्ण धुरी है, जिसके आधार पर हम अच्छे नागरिक है वो तैयार कर पाएंगे, और यही हमारे शिक्षा का सर्वागीण उद्देश्य भी है। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता मैम को। इतने सुंदर रूप में बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि बच्चों का जो कच्चा मिट्टी

ये उनका अंदर में जैसे हम व्यक्तित्व डालेंगे वो व्यक्तित्व आगे जाकर देश के लिए एक अच्छा व्यक्तित्व मिलेगा। डिग्री नहीं चाहिए, बस एक सुसंस्कारित बुद्धिमान बच्चा चाहिए, वर्तमान समय का मांग है। तो देश का नागरिक ऐसे बच्चे यहाँ से ही जो ज्ञान का मंदिर विद्यालय है वहाँ से ही बच्चे सीख कर जाते हैं, तो देश के लिए बहुत कुछ अवदान देते हैं। तो उनका संस्कार, शिक्षकगण का संस्कार ढालते हैं, जिसका चलते एक अच्छा इंसान बन पाते। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों का साथ, प्रिंसिपल महोदय और सब स्टाफगण का अपना दिल का बात सहयोग देने के लिए सभी को धन्यवाद, आभार। पुनित काम में सबका उंगली लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रुका ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टैंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है। और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस? इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ज्यादा, सर्दियों में सर्दी ज्यादा। कहा जाता है इसका कारण एटम बम के टेस्ट हैं। अभी चीन ने एटम बम बनाकर दूसरा टेस्ट किया। सूचना यह भी मिली है कि फ्रांस ने भी एटम बम बना लिया है। भारत का अटल फैसला है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे संसार के नष्ट होने का भय हो। एटमी दौर में रूस और अमरीका सबसे आगे हैं।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए, घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: पर।
1: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हम
1: हम
2: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढई गावड़ी रेवन वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनता रहा।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं।
1: मैया मोरी मैं नहीं मां खायो,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं, जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। वैसे जिंदगी को एंजॉय करने के काफी सारे तरीके हैं और सबके पास अपना अपना कुछ जरूर होता है। मैंने एक गाना सुना था, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। अब कभी कभी हम कुछ ऐसा भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जो रियलिटी से बहुत दूर होता है और वो हमें बहुत परेशान कर देता है। कभी कभी अपने इमोशंस को पहचान नहीं पाते, कभी कभी दूसरों के इमोशंस को गलत समझ लेते हैं। तो आइए जिंदगी से प्यार थोड़ा और बढ़ाते हैं और रियलिटी चेक देते हैं खुद को। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई हैं कल्पना जी, सीधे ग्लोबल अस्पताल से, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं और एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया, शुक्रिया आरुषि, और इस एक बार आपके साथ जुड़ के बहुत बहुत मजा आ रहा है।
0: थैंक यू सो मच दीदी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपने टाइम निकाला। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट श्रीनिधि जी, जिनको आप पहचानते हैं क्योंकि जाने माने रेडियो मधुबन के आरजे भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी, नमस्कार। कल्पना जी आपको भी नमस्कार, हमारे सभी श्रोता मित्रों को। और लव यू जिंदगी के एक और एपिसोड में आते हैं तो जिंदगी से प्यार करने के नए तरीकों के बारे में जानने का हमें भी मौका मिलता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम एक्सपर्ट्स हैं तो हम आपको बताने आए हैं, मगर इस बातचीत में हम कुछ ऐसी नई चीजें सीखते हैं जिससे हमें भी बहुत कुछ नया सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है और खुद की जिंदगी को बेहतर नजरिए से देखने का एक अनूठा मौका मिलता है।
0: बिल्कुल, और ये मौका सबको मिलना चाहिए, इसीलिए हम चाहते हैं दोस्तों इस कार्यक्रम से आप जरूर जुड़े, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। दीदी मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, इमोशंस बोलते ही ऐसा लगता है बड़े कॉम्प्लेक्स महसूस होता है कि क्या हम फील कर रहे हैं, और आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात होती है, बहुत वर्ड सुनते हैं, पर ऐसे तो आसान है, दुखी होते हैं पता चलता है, सुखी होते हैं पता चलता है, हंसते हैं रोते हैं, लेकिन इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी हम जब बड़े होते जाते हैं तभी आ जाती है या बचपन से होती है, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी।
1: इमोशंस तो बचपन से ही हम एक्सप्रेस करते आए हैं
0: जी।
1: जैसे छोटे बच्चे भी जब खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं, छोटा बच्चा जिसे बात भी करने नहीं आता है, जो पालने में लेटा हुआ है, वो भी कभी मुस्कुराता है और कभी रोने लगता है। तो अगर छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो रोने लगता है, तो उसकी किस तरह की इमोशंस होगी? नेचुरली कुछ चाहिए,
0: चाहिए
1: तो उसके इमोशंस हैं। अगर छोटे बच्चे के हाथ से कोई खिलौना छीन ले तो उसकी क्या इमोशंस होगी?
0: गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा,
1: गुस्सा आएगा, इरिटेट होगा, चिड़चिड़ाहट होगी, लेकिन अंदर सोच क्या चल रही होगी कि ये मेरा है,
0: मेरा टॉय,
1: मुझे खेलना है और आपने मुझे छीन लिया। तो इमोशन हो गया एंगर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हैप्पीनेस है, लव है, ये सारी इमोशंस है जो हम मनुष्य होने के नाते समय प्रति समय पैदा होने से लेकर मृत्यु तक फील करते ही है। हम कभी सैड होते हैं, सैड किस लिए होते हैं कि भाई कुछ तो बुरा हो रहा है, हम मैं एग्जाम में फेल हो गई या मुझे कम मार्क्स मिले, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी एंड कम मार्क्स मिले, तो मुझे दुख होता है, सैडनेस होती है। एंड देन गुस्सा आता है, कभी कभी मेरे साथ कोई मिसबिहेव करता है, इरिटेट होते हैं। समझो कि आप रास्ते में चल रहे हो, आजकल ये सारी बातें देखने सुनने को लोगों को मिल रही है कि रास्ते में चल रहे हो, किसी ने आपको छेड़ लिया और आप कुछ कर नहीं पाए, तो आपको क्या होगा? बहुत गुस्सा आएगा, बहुत बुरा भी लगेगा और ऐसे लगेगा कि अरे ये क्या चीज है, ये कितनी लाचारी है, कितनी गलत बात है। तो एक जोश भी आएगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, परंतु कुछ कर नहीं सकते हैं तो अगेन फ्रस्ट्रेशन भी आएगा। तो ये सारी इमोशंस हम कभी ना कभी अपने लाइफ में, इनफैक्ट हर रोज एक्सपीरियंस करते ही हैं,
0: एक साथ भी फील करते हैं दीदी सब कुछ।
1: हाँ जी
0: तो ओके, जैसा आपने कहा कि बचपन से जब बच्चा है तो वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो इमोशंस हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो अवेयरनेस की जरूरत कहाँ पड़ने लगती है? मतलब हमें बचपन में समझ में आ रहा है कि बच्चा ये फील कर रहा है, इस वक्त ये फील कर रहा है, क्लियर है, लेकिन बड़े होते होते ऐसा क्या हो जाता है कि हमें समझ में आना बंद हो जाता है या फिर हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें कि वो इमोशंस को समझ ही नहीं पाते कभी कभी? श्रीनिधि जी आप आंसर करना चाहेंगे?
2: मैं समझता हूँ, अभी कल परसों ही हम एक चर्चा में हिस्सा ले रहे थे और वह ये चीज एक प्रश्न के रूप में उभर कर आई कि जब हम सभी जानते हैं कि हम सब भावनात्मक जीव हैं, हम सब अलग अलग प्रकार के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो जब हम बचपन से इन अनेक एक्सपीरियंसेस को, इन भावनाओं को महसूस करते आए हैं, जैसे विकल्पना जी कहते थे कि हम कभी सैड फील करते हैं, कभी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, कभी एंग्शियस फील करते हैं, अलग अलग प्रकार के इमोशंस को महसूस करते आए हैं, तो जब ये अनुभवी हो चुके हैं हम, तो क्यों जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम इन्हीं इमोशंस को डील करने में स्ट्रगल करने लगते हैं? और ये स्वाभाविक रीति से ये प्रश्न उठता भी है। जैसे बच्चों का उदाहरण दे रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि कई बार बच्चे अपने इमोशंस को स्वाभाविक समझ लेते हैं, यानी गुस्सा होना या इरिटेट होना हम मान लेते हैं कि ये स्वाभाविक है, और मुझे चॉकलेट नहीं मिला तो गुस्सा होना और मुझे टैंट्रम्स दिखाना और चिड़चिड़ा होना, ये होना ही चाहिए, और उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं बच्चे। और जब तक आप बच्चों को इस विषय पर सही तरीके से काउंसिल न करें, या उनके अपने इस इमोशन को समझने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं करें, या उस अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए उस इमोशन को सही तरीके से आप ये कहें कि उसको हम अलग अलग तरीकों से उस इमोशन को ब्रेक करके ये क्या इमोशन है, इसे कैसे प्रोसेस किया जाना चाहिए, ये समझाते नहीं या डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते पेरेंट्स या उनके आसपास जो बड़े हैं वो ये चीजें नहीं करते, तो बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट करके चलने लगता है कि भाई ये ठीक ही है, ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि ऐसे घरों में या ऐसे परिवारों में जहाँ पर बच्चों को इस प्रकार की इमोशनल एजुकेशन नहीं दी जाती, या बच्चे जो कर रहे हैं उनके टैंट्रम्स को चुपचाप सह लिया जाता है, तो कई सालों बाद हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे उसी स्वभाव के हो जाते हैं। और कई बार पब्लिक में लोग ये कहते भी है कि क्या इनके माँ बाप ने इनको इतना भी नहीं समझाया कि पब्लिक में भी ऐसे बिहेव कर रहा है, और हम देखने लगते हैं कि बच्चे वो उनके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है, कि हम उन बच्चों को ऐसा कह के डिस्क्राइब भी करने लगते हैं, अरे भाई इसके तो टैंट्रम्स बहुत होते हैं, अरे ये तो बड़ा नखरे वाला बच्चा है भैया, इसके तो बचपन से इसको जैसे पाल पोस के बड़ा किया भगवान ही जाने, ये इसको जो चीज चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए तो मतलब ये सारा घर से पे उठा लेगा। तो ये चीजें होती हैं कि अगर हम इन इमोशंस को प्रोसेस करने के तरीकों के बारे में एजुकेट ना करें बच्चों को, तो आगे बढ़ के एक समय ऐसा आ जाता है जब वो सोशल इंटरेक्शंस में इन इमोशंस को कैसे प्रोसेस किया जाना चाहिए, उसके उसको प्रोसेस करने का पॉजिटिव तरीका क्या है, वो न जानने के कारण वो लाइफ में चैलेंजेस महसूस करते हैं। इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलता है। सबसे एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल पियर का है, और ये एग्जाम्पल नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा जाता है। नेपोलियन को हम सभी नेपोलियन द ग्रेट के नाम से इतिहास में जानते आए हैं, फ्रांस के बहुत बड़े मिलिट्री कमांडर हुए हैं, मगर बचपन में उनके मन पर बिल्लियों के प्रति एक ऐसा डर बैठा हुआ था जिसके कारण वाटरलू का युद्ध उन्हें हारना पड़ा। ब्रिटेन के साथ युद्ध में हारने की वजह कोई कमजोर रणनीति नहीं थी, जिस समय वो रणनीति बना रहे थे उस युद्ध के लिए, उस समय पर किसी ने उनके शिविर में बिल्ली छोड़ दिया, और क्योंकि वो बिल्ली वहां से गुजर गई तो नेपोलियन का सारा ध्यान उस बिल्ली पर था, वो सही निर्णय नहीं कर पाए, और उस समय पर उनका मन बिल्ली के भय से ही आक्रांत था, जिसके कारण वो सही रणनीति नहीं कर सके, जिसकी वजह से युद्ध में हार हुई। ये बात अक्सर हिस्ट्री में कोट की जाती है। तो ये पता चलता है कि आप फियर हो, एंग्जाइटी हो, या इरिटेशन हो, या अनेक प्रकार के हेट्रेड हो, जेलसी हो, बच्चे ये स्वाभाविक रीति से इमोशंस उभर कर आते हैं, बट इन इमोशंस को मैनेज करने के तरीके या इन इमोशंस के प्रति हमारी अवेयरनेस होना कि हाँ ये इमोशन ये है, इस इमोशन का ये नाम है, और ये प्रोसेस करने का एक पॉजिटिव तरीका है, या दूसरे तरीके से भी मैं इसको हैंडल या मैनेज कर सकता हूँ, अगर ये नहीं समझाया जाता या उस प्रकार की अवेयरनेस नहीं होती, तो आगे चल के ये चीजें व्यक्ति इन्हीं इमोशंस के कारण, खुद के ही इमोशंस के कारण सकम करने लगता है, इमोशंस के कारण सफर करने लगता है,
0: करते हैं। कल्पना जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी, जैसा सफर करने लगते हैं हम, मुझे लगता है सबको एक्सपीरियंस है, सफर करते हैं इमोशंस के कारण, भावनाएं कई बार कंट्रोल में ही नहीं आ पाती, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम राइट भावना को आइडेंटिफाई कर पाते हैं? जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो क्या वो वही फील कर रहा है उस वक्त, या वो पेन फील कर रहा है और दिखा कुछ और रहा है, या हमारे साथ भी ऐसा होता है कि इमोशन अंदर कुछ और है और हम एक्सप्रेस कुछ और कर रहे हैं, क्या ये कन्फ्यूजन्स होते हैं या फिर वो इमोशन पता चलता है कि कौन सा है?
1: कोई भी इमोशन जो है वो बिना रीजन के नहीं होता है। अगर मैं गुस्सा हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्यों गुस्सा हूँ। किसी ने मेरा अपमान किया है, किसी ने मुझे जो चाहिए वो नहीं दिया है। जो भी रीजन है मेरे इमोशन के पीछे, वो मुझे पता होता है क्यों मेरा ये इमोशन है। अगर मुझे किसी से नफरत है या मुझे किसी से प्यार है तो क्यों है। सो ये हर इमोशन के पीछे का रीजन तो पता होता है हमें, और वो औरों को भी पता होना चाहिए। जहां तक इमोशनल अवेयरनेस की बात आते हैं, अर्थात अपनी भावनाओं को समझने की बात आते हैं, कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है उनको सडनली उदास क्यों फील हो रहा है, क्यों उनका मूड खराब हो रहा है, क्यों चिड़चिड़ाहट हो रही। कोई रीजन नहीं, छोटा सा कारण बनता है और चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है। सो जब हम उनको पूछते हैं कई सारे प्रश्न, जैसे कि आपकी नींद पूरी हुई है क्या, कितने दिनों से आप सही तरह से सोए नहीं, क्या आपको भूख सही लगती है, क्या कुछ दिनों से आपकी भूख कम हुई है या फिर आपने खाना ठीक से नहीं खाया है, क्या बात है, या कहीं कोई ट्रिगर ऐसा हुआ है, हर्ट हुआ है, क्यों आपको सैडनेस फील हो रही है। तो जब ये सारी बातें हम पूछते हैं तो कई बार पता चलता है कि नींद हुई नहीं है, काफी दिनों से नींद ही नहीं आई। कई बार पता चलता है कि खाना से ठीक से नहीं मिला है। कई बार ये पता चलता है कि उनके घर में किसी की सडन डेथ हुई है। सो नेचुरली रीजन तो है, परंतु कई बार कारण पता नहीं चलता है कि क्यों। कई बार और भी एक है, हमारा जो मूड है ना, फीलिंग्स और मूड है, वो हमारी गट हेल्थ के साथ बहुत जुड़ी हुई। जो भी हमारा भोजन हम करते हैं, अगर उसका सही तरह से डाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका एलिमिनेशन नहीं हो रहा है टाइम पर, अर्थात हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है काफी दिनों से, वो भी हमारे मूड पर असर करता है।
0: ओके,
1: इमोशनल अवेयरनेस का मतलब है कि मेरी फीलिंग्स जो इस समय है वो क्यों है, किस लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम बात कर रहे हैं, हम तीनों मिलके आपस में बात कर रहे हैं, श्री जी है, आप है, मैं हूँ। अगर मैं इसी समय अपने आप से पूछूं कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, है ना, अगर उस मीटर को मैं चेक करूं, इमोशनल मीटर को, कि 0 से 10 के बीच में मैं इस समय कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव फील कर रही हूँ। अगर हम 10 को नेगेटिव समझे और 0 को पॉजिटिव समझे, तो कहाँ तक मैं रिलैक्स हूँ, कहाँ तक मैं खुश हूँ, कहाँ तक मैं ओरिएंटेड हूँ, ये मुझे अगर समझ में आ रहा है तो उसे कहेंगे हम इमोशनल अवेयरनेस।
0: ओके, अगर मैं फिगर आउट कर पा रही हूँ कुछ करते हुए या बात करते हुए भी अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अक्सर हम जब रो रहे होते हैं तब समझ में आता है हम उदास हैं, या फिर बुरा फील हो रहा होता है तब समझ में आता है उदास हैं, पर बात करते करते ऐसे तो शायद रैंडम नहीं सोचा कि क्या फील कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करना होगा शायद हमें थोड़ा और अपने इमोशंस को, कि किसी से बात करते वक्त भी क्या बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये दीदी।
1: एक जरूरी बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ जो मुझे अभी याद आई, मैं भूल ना जाऊँ, कि कई बार कहा जाता है गर्ल्स के पास सिक्स सेंस होता है, है ना। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी नए व्यक्ति से, वो हमें फील होता है, हमें रियलाइज होता है कि इस व्यक्ति के साथ बात करते समय मेरी जो फीलिंग्स है, मेरी जो इमोशंस है, वो थोड़ी डिस्टर्ब है।
0: बिल्कुल,
1: इंट्यूशन आता है। सो जब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं, मैं डिस्कम्फर्ट फील कर रही हूँ, ये सही नहीं है, उसी समय अगर हम उस चीज को हैंडल कर पाते हैं और अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए उस व्यक्ति के सामने से हट जाते हैं, या फिर अवॉइड करते हैं, या फिर अपने आप को

0: पहचाने का कोई तरीका सोचते हैं, तो इसलिए इमोशनल अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
1: मतलब हम बेटर हैंडल कर पाएंगे सिचुएशंस को और खुद को अगर हम इमोशनली अवेयर हैं तो।
0: जी
1: वंडरफुल। श्रीनिधि जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बिकॉज आप बहुत सारे यूथ से इंटरैक्ट करते हैं, कभी क्या आपको लगता है कि हर बार वो सही इमोशंस या हम उस एज में आइडेंटिफाई कर पाते हैं या उसको मिसइंटरप्रेट भी कर लेते हैं, गलत भी समझ लेते हैं?
2: ये बहुत ही मजेदार बात है जब आप पूछ रहे हैं आरुषि जी, और युवाओं के सिलसिले में जब आप ये बात पूछते हैं तो ये चीज अक्सर देखने को मिलती है कि बहुत सारे हमारे युवा साथी अपने इमोशंस को लेबल करना नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ एक्चुअल में क्या चीज है।
1: ओके।
2: मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे एक जानकार थे, उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में जेलेसी के इमोशन को फील नहीं किया था।
1: अच्छा।
2: जब उन्होंने ये चीज देखा कि कोई उनके किसी चीज पर जेलस हो रहा है कि भाई उनको ये चीज मिल गई है और इसके कारण वो उनसे नफरत कर रहे हैं या उनसे एक डिफरेंट तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, तो मेरे पास आए बोल रहे हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैंने उनको कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं। तो मुझे उनको ये समझाने में काफी मेहनत लगी कि आपने और उन्होंने दोनों ने मिलकर एक चीज के लिए अप्लाई किया, आपको ये चीज मिली, उनको ये चीज नहीं मिली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मगर चूंकि वो चीज आपको मिली और उनको नहीं मिली है इसलिए वो आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, उन्हें एक जेलसी फील हो रही है इस मोमेंट पे, वो एक डिसकम्फर्टिंग फीलिंग है उनके लिए भी, और क्योंकि वो एक डिसकम्फर्ट महसूस कर रहे हैं और वो आपसे बातचीत करेंगे तो आप इस बात की खुशी का इजहार करेंगे कि देखो मुझे तो ये चीज मिल गई, और इसलिए वो आपको अवॉइड करते हुए चल रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही स्वाभाविकता से ये बात कही कि ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ।
1: अच्छा।
2: मैंने कहा बिल्कुल आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा, हो सकता है ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में आए नहीं हो, या हो सकता है आपके घर में पहले से परवरिश ऐसी दी गई हो कि किसी को कोई चीज मिलती है तो उस चीज को एक्सेप्ट करना आपको सिखा दिया गया है, आप शायद कंपेयर ही नहीं करते अपने आप को कि उसको मिला मुझे क्यों नहीं मिला, ये क्वेश्चन ही आप रेज नहीं करते, शायद बचपन से आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, घर में आपके घर में ज्यादा बच्चे रहे होंगे तो आप शेयरिंग करना सीख चुके होंगे, या किसी को कोई चीज मिलती है तो ना मिलने पर भी उसका बुरा ना मानना आप स्वाभाविक रीति से अनुभव करते आए होंगे। तो ऐसा बहुत सारे इमोशंस के साथ होता है, और युवा काल एक ऐसा काल होता है कि जहां पर आप अभी अभी चीजों को एक एडल्टहुड में एक्सप्लोर करने लगे हैं, आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप वयस्कों जैसा बर्ताव करें, आप एक मैच्योर इंडिविजुअल जैसा बर्ताव करें, और कभी कभार इस प्रेशर के चलते भी आप अपने इमोशंस को सेग्रीगेट नहीं कर पाते। जैसे कल्पना जी कह रहे थे कि भाई एक्टिविटी जो अक्सर वर्कशॉप्स में हम लोग कराते हैं वो ये है कि शुरुआत में हम कहते हैं कि एट द मोमेंट हाउ आर यू फीलिंग, तो लोगों को अलग अलग चीजें बताने का, उनके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। कभी कभार उस फीलिंग के ऊपर ही आपको, जब कल्पना जी कह रहे थे कि ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 हाउ हैप्पी आर यू फीलिंग, हाउ एक्साइटेड आर यू फीलिंग, हाउ एंग्शियस आर यू फीलिंग, आप इन चीजों को पूछते हैं तो पहली दफे लोग कभी इस बारे में सोचते हैं कि हाँ यार, मतलब ऑन अ स्केल भी मैं अपने आप को माप सकता हूँ।
1: बिल्कुल,
2: ये भी पॉसिबल है। हाँ, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इससे पहले कभी किया नहीं होता, इससे पहले किसी ने उस चीज पर बातचीत नहीं की हुई। और इसलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना आवश्यक है। कई बार बच्चे लफ्जों में चीजों को समझने लगते हैं, कई बार आजकल मैं बच्चों को सुनता हूँ, वो कहते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। मैंने पूछा भाई किस बात के लिए डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो बोलता है आज मैं इतना सब कुछ पढ़ना है मेरे को और मेरे को बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। तो हालांकि कोई 11-12 साल का बच्चा अगर आपसे ये कहे कि वो डिप्रेस्ड फील कर रहा है तो हमें लग सकता है कि ये तो होना नहीं चाहिए, कि 12 साल की उम्र में तुम्हें किस बात का डिप्रेशन होना चाहिए, किस बात के लिए तुम्हें डिप्रेस्ड फील करना चाहिए। अब वो पढ़ाई नहीं करना चाहता या वो पढ़ाई का बोझ उसके ऊपर महसूस हो रहा है, उसको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और वो उस चीज को डिप्रेस्ड फील कर रहा है। कई बार हम इन इमोशंस को आइडेंटिफाई करना भी नहीं जानते, क्योंकि हम कुछ शब्दों को सुन लिए होते हैं टेलीविजन में, मीडिया में, या हमारे टीचर्स या बड़ों को घर वालों को बातचीत करते सुन लेते हैं तो हमको लगता है कि भाई ये सैड होना ही डिप्रेस्ड होना है या मूड ठीक नहीं होना ही डिप्रेस्ड होना है। तो इसलिए इमोशनल अवेयरनेस बहुत आवश्यक है कि हम इमोशंस को समझें। आज मैं इस घड़ी कैसा महसूस कर रहा हूँ, उस इमोशन का एक नाम है, वो क्या चीज है। अगर मुझे वो समझ आ जाए, वो अवेयरनेस आ जाए, तो फिर शायद मैं उसे बेहतर तरीके से मैनेज करने के बारे में भी सोच पाऊंगा।
1: एक्चुअली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये और हमारे पास इस एपिसोड में टाइम कम बचा है, लेकिन हम आगे जरूर कंटिन्यू करेंगे इस पे बातचीत करना। मैं कल्पना जी से भी आने वाले एपिसोड्स में ये जानना चाहूंगी कि क्या जैसे हम जेलस फील कर रहे हैं तो 2 नंबर पे हैं कि 10 नंबर पे हैं, वो रेटिंग क्या हमें करनी चाहिए और उससे क्या फर्क करता है डील करने पे, ये सब कुछ जानेंगे। फिलहाल दीदी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी प्रेजेंटली जो भी हमने बातें सुनी उससे हम अपने करंट इमोशन को समझ पाए या उसको अनुभव कर पाए, इसके लिए क्या कुछ मेडिटेशन हम कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जो हमें मदद करे?
0: बिल्कुल, जैसे कि मेडिटेशन का मतलब ही है कि अपने अंदर में जाकर अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को रिफ्लेक्ट करना। तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान हम चारों तरफ से अपने अटेंशन को कट ऑफ करके उसको पूरी तरह से खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे विचार क्या चल रहे हैं, हमें कैसा फील हो रहा है, कितना इंटेंसिटी है उस फीलिंग की, क्या वो फीलिंग सही है या नहीं है, या वो फीलिंग जैसा मुझे फील हो रहा है वही है या कुछ और है।
1: कुछ और है,
0: जैसे फॉर एग्जाम्पल लव, ये हम ओपन अप करके फिर छोड़ देंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए, कि जैसे हम कहते हैं कि मुझे इससे प्यार हो गया है, वो आकर्षण हो सकती है, इन्फैचुएशन हो सकता है, वो प्यार हो जरूरी नहीं है, तो उस चीज को समझना। तो चलिए इस चीज के लिए हम थोड़े से,
1: मुझे लगता है दीदी ये बहुत लोग जानना चाहेंगे क्योंकि फील करते हैं कि प्यार है और वो सच में है या नहीं, ये बहुत लोग जानना जरूर जाएंगे, तो अगले बार में जाने को
0: चर्चा करेंगे। सो चलिए हम अपने भीतर चलते हैं और थोड़ा सा चारों तरफ से अपने अटेंशन को कलेक्ट करके अपने ऊपर एकाग्र करते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी श्रोताओं से कि वो गहरी और लंबी सांस ले, जहां भी है 2 मिनट के लिए रुक जाए, आराम से बैठ जाए। ये 2 मिनट का अभ्यास हमें आने वाले 2 घंटे के लिए बहुत पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी देकर जाने वाला है। अपनी आंखों को आराम से बंद करें, सांसों पर ध्यान दें, गहरी और लंबी सांसें लें, सांस के स्पर्श को नाक के भीतर महसूस करें, थोड़ा सा अपने आप से मेंटली डिटैच हो जाए, जैसे हम दूर से रोड पर चलने वाली गाड़ियों को देखते हैं, वैसे दूर से अपने मन में चलने वाले विचारों को देखिए, केवल देखिए, उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करें, भावनाओं में न बहे, जस्ट विचारों को आते हुए जाते हुए देखते रहे, किसी विचार को पकड़े नहीं, जाने दे। अब एक सुंदर विचार को अपने मन में दोहराए, आज मैं बहुत खुश हूं, इस समय आज मैं बहुत खुश हूं। रिपीट करें इस विचार को अपने मन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। और देखिए उस विचार से ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती जा रही, मेरा मन अपने आप खुशी का कारण ढूंढ रहा है, गर्मी के इन दिनों में ठंडी हवा चल रही, चारों ओर हरे भरे पेड़ पत्ते फूल और उनकी खुशबुएं हैं। मेरी खुशी के कई सारे कारण हैं, परंतु मैं बिना कारण के भी खुश होना जानती हूं, मुस्कुराना जानती हूं। गहरी और लंबी सांसें। इसी विचार के साथ आज सारा दिन व्यतीत करें, मैं खुश हूं। कारण ढूंढे खुशी के लिए, और ना हो तो बिना कारण के भी खुश होना अपनी आदत बना ली। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच कल्पना जी। एक थॉट में हम कैसे स्थित हो सकते हैं अपने, और मल्टीपल आने वाले थॉट से अवेयर होते हुए जाते हुए भी कैसे देख सकते हैं और कैसे टिक सकते हैं उस इमोशन में जो हमारे लिए अच्छा है, जो हम चाहते भी हैं, तो उसका प्रोसेस आपने बताया, एक्सपीरियंस भी कराया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन अगर और राज जानना चाहते हैं, अपने इमोशंस को और बेहतर पहचानना चाहते हैं, अपने जीवन को और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो जुड़ना मत भूलिए लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दिल से कहिए लव यू जिंदगी।

0: भारत को आजादी दिलाने में सैकड़ों गुमनाम क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। उन्होंने ना अपने मौत की परवाह की, ना देश से निकाले जाने की, ना वो जेल जाने से डरे और ना ही संपत्ति जब्त होने से। कमाल की बात ये भी रही कि आजादी की ये लड़ाई भारत के साथ साथ विदेशों में भी समान रूप से लड़ी गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, मैडम भिकाजी कामा, बैरिस्टर सरदार सिंह राणा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप और चंपक रमन पिल्लई जैसे लोगों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। वंदे मातरम वो स्वर था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आत्मा दी। ये गीत प्रत्येक भारतीय के भीतर ये भावना जगाता रहा कि हमारी धरती केवल भूमि नहीं बल्कि हमारी माँ है। माँ भारती, यानी जिनके चरणों की रज भी हमारे लिए पवित्र है। इस गीत की गूंज ने क्रांतिकारियों को अपना सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि गीत को सुनते ही हर भारतीय के भीतर गर्व, उत्साह और समर्पण की लहर दौड़ जाती है। वंदे मातरम के स्वर ने भारत को एक शक्ति दी जिससे वो अपने स्वाभिमान, अपनी अस्मिता और आजादी के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर सके। देशवासियों को विश्वास दिलाया कि भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ एक जीवंत राष्ट्र है। कालांतर में ये गीत उस चेतना का प्रतीक बना जिसने जाति, भाषा और प्रांत की सीमाओं से परे जाकर सभी को एक ध्वज तले एकत्र किया।
1: दीदी, मैंने सुना है एक क्रांतिकारी ऐसे भी थे जो महज 25 साल की आयु में देश की खातिर फांसी पर झूल गए थे।
2: हाँ बन्नू, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। वे एक जोशीले देशभक्त थे जिनमें अदम्य साहस था। उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कैसे भूल सकती हूँ मैं वो तारीख, 17 अगस्त 1909, जब लंदन के पेंटन विले जेल में उस 25 वर्षीय क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। फांसी पर चढ़ने से पहले उनके अंतिम शब्द थे, वंदे मातरम। वे महान क्रांतिकारी और कोई नहीं, मदन लाल ढींगरा थे। उनके लिए वंदे मातरम सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का सर्वोच्च मंत्र था।
1: दीदी, आपने ये तो बताया नहीं कि उन्हें फांसी दी क्यों गई थी।
2: बन्नो, मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी थी।
0: दरअसल साल 1908 के उस दौर में हिंदुस्तान की धरती पर स्वतंत्रता की चिंगारी धधक रही थी। शूरवीर क्रांतिकारी अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रण ले चुके थे। उसी दौर में मदन लाल ढींगरा ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। उन्होंने खुलेआम अंग्रेज अफसर कर्जन वायली को गोली मार दी ताकि ये संदेश दे सके कि भारतवासी अब गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस घटना से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया और मदन लाल को सिर्फ 46 दिनों में फांसी पर चढ़ा दिया गया। मगर उनकी शहादत ने हिंदुस्तानी युवाओं के दिलों में आजादी की आग और भड़का दी।
1: मुझे एक बात बताओ दीदी, आखिर इतनी छोटी उम्र में मदन लाल के भीतर इतना देश प्रेम पनपा कैसे?
2: लोग बताते हैं कि वे शुरू से इतने देशभक्त नहीं थे, लेकिन लंदन में पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उनकी राह बदल गई। लंबी कद काठी और हंसी ठिठोली करने वाले इस नौजवान को उनके जीवन का एक उद्देश्य मिल गया।
0: दरअसल मदन लाल का जन्म पंजाब के अमृतसर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। पिता नेत्र चिकित्सक थे। पढ़ाई में काफी तेज होने के कारण मदन लाल का लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग में

0: दाखिला हो गया। रहने की व्यवस्था इंडिया हाउस में हुई, वही इंडिया हाउस जिसे श्याम जी वर्मा ने साल 1905 में खरीदा था, जिसके एक हिस्से में यूथ हॉस्टल था और जहां देश की आजादी की योजनाएं बना करती थी। तमाम छोटे बड़े क्रांतिकारी वहां बैठक करते थे। बताते हैं कि 1907 में ग्रेट ब्रिटेन में करीब 700 भारतीय स्टूडेंट्स थे, जिनमें अकेले लंदन में 380 स्टूडेंट्स थे।
1: ओ, समझ गई, मदन लाल को देशभक्ति की प्रेरणा कहां से मिली? इंडिया हाउस में आने वाले क्रांतिकारियों से। ठीक सोच रही हो ना?
2: अरे जरा ठहरो, ये प्रेरणा से कुछ अधिक थी।
1: क्या कह रही हो दीदी, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा।
2: मदन लाल का आकर्षक व्यक्तित्व था। कम समय में ही वे इंडिया हाउस में युवक युवतियों के आकर्षण का केंद्र बन गए थे। उनके दोस्त बड़े शोर शराबे वाले थे, अक्सर प्रेम गीत गाया करते थे। उन दिनों मदन लाल के मन में मातृभूमि की आजादी का विचार खास तौर पर नहीं था। एक दिन इंडिया हाउस में रविवार की बैठक चल रही थी, उसमें वीर सावरकर भारत की आजादी पर एक जोशीला भाषण दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर मदन लाल और उनके दोस्त बगल वाले कमरे में खूब शोर शराबा मचा रहे थे। इससे सावरकर को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। वे बगल वाले कमरे में गए, जहां मदन लाल और उनके दोस्त मौज मस्ती कर रहे थे। सावरकर ने उन्हें टोका और एक तरह से डांटते हुए बोले,
3: क्या बात है मदन, तुम काम और बहादुरी की बातें तो करते हो, लेकिन हमारी साप्ताहिक बैठकों में आने से कतराते हो। क्या यही वह बहादुरी है जिसकी तुम हमेशा बातें करते रहते हो?
0: सावरकर के शब्दों ने मदन लाल धींगरा को अंदर से हिला दिया। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो चुपचाप इंडिया हाउस से निकल गए। फिर कई दिनों तक सावरकर को अपना चेहरा नहीं दिखाया। समय गुजरा, उन्होंने हिम्मत जुटाई और दोबारा इंडिया हाउस लौटे। मन में कई विचार चल रहे थे।
4: मैं लौट तो आया हूँ, लेकिन पता नहीं सावरकर जी अभी भी मुझसे नाराज हैं या नहीं।
0: मदन लाल अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि अचानक उनका सावरकर से सामना होता है।
3: अरे डिंगरा, कहाँ थे इतने दिनों से, दिखाई नहीं दिए। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, किसी ने कुछ बताया नहीं। सब ठीक तो है ना घर परिवार में? पढ़ाई कैसी चल रही है?
0: मदन लाल को उम्मीद नहीं थी कि सावरकर उनसे इतने स्नेह से बात करेंगे, मानो उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। इससे हिम्मत पाकर ढींगरा ने सावरकर से पूछा,
4: क्या शहादत का समय आ गया है?
3: अगर कोई शहीद अपना मन बना चुका हो और तैयार हो, तो आम तौर पर यही समझा जाता है कि शहादत का समय आ गया है।
0: ढींगरा ने अब मन बना लिया था। ये जुलाई 1908 की बात होगी। उन्होंने जानबूझकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन में शामिल होने का फैसला किया। ये एसोसिएशन भारतीय छात्रों को उग्रवादी रास्ते से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। इस एसोसिएशन के कार्यक्रमों में ब्रिटेन के कई बड़े बड़े लोग शामिल होते थे। ढींगरा ने उनकी मौजूदगी में सावरकर और दूसरे क्रांतिकारियों की बुराई की। जल्द ही उन्हें नेशनल इंडियन एसोसिएशन की सेक्रेटरी मिस एमा जोसेफिन बेक का भरोसा जीत लिया। इस प्रकार उन्हें अलग अलग कार्यक्रमों में आने वाले खास अंग्रेजी मेहमानों के आने जाने के समय के बारे में पता चलने लगा। ढींगरा ने अपना मिशन तय करने के बाद इंडिया हाउस छोड़ दिया। दरअसल उन्हें दिखाना था कि वो सावरकर से सहमति नहीं रखते। इस तरह साल 1909 में ईस्टर के बाद मदन लाल मिसेस हैरिस के घर रहने लगे।
1: दीदी, जब मदन लाल सावरकर से अलग सोच रखते थे, तो उन्होंने अंग्रेज अफसर को गोली कैसे मारी?
2: यही तो उनका मिशन था। इसके लिए हमें जानना होगा कि आखिर कर्जन वाइली थे कौन।
0: कर्जन वाइली एक बहुत ऊंचे औहदे के अफसर थे जो 1866 में ब्रिटिश सेना और 1879 में भारतीय राजनीतिक विभाग में शामिल हुए थे। उन्होंने 1879 से 80 के अफगान युद्ध, अवध, नेपाल, मध्य भारत और सबसे बढ़कर राजपुताना में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। 1901 में उन्हें भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पॉलिटिकल एडी कैंप चुना गया था। वो गुप्त पुलिस के मुखिया भी थे। बताते हैं कि कर्जन सावरकर और क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इंडिया हाउस में एक मुखबिर भी लगा रखा था।
5: मुझे सावरकर और उसके सभी क्रांतिकारी साथियों की पूरी खबर चाहिए कि वो क्या योजना बना रहे हैं।
6: जी सर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय पर मिल जाएगी।
5: तुम थोड़ा जल्दी काम करो, वो इंडियंस कुछ ना कुछ जरूर प्लान कर रहे होंगे।
6: मैं जल्द से जल्द बताता हूँ।
0: कर्जन निश्चिंत था कि उसके मुखबिर की खबर क्रांतिकारियों को नहीं है, लेकिन सावरकर से कहाँ कुछ छुपने वाला था। उन्हें भनक लग चुकी थी कि इंडिया हाउस में कोई गुप्तचर है।
3: हमें थोड़ा खबरदार रहना है, हमारे बीच में कोई है जो अंग्रेजों तक सारी सूचनाएं पहुंचा रहा है।
7: आप ये क्या कह रहे हैं, हमारे बीच में कोई गद्दार है?
8: कौन है वो गद्दार, आप नाम बताइए उसका, छोड़ेंगे नहीं उसको।
3: धीरज रखो, जल्द ही पता चल जाएगा सबको।
0: इंडिया हाउस में एक आक्रोश सा फैल गया था। हर कोई सोचने लगा था कि आखिर वो गुप्तचर है कौन। तरह तरह की बातें होने लगी थी, लेकिन वहाँ एक शख्स था जिसके चेहरे के हाव भाव कुछ बदल से गए थे। वो एक मेडिकल का स्टूडेंट था।
9: कहीं सावरकर जी को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता चलता तो वो मुझे छोड़ते क्या?
0: अभी वो छात्र ये सब सोच ही रहा था कि उसे सावरकर ने आवाज लगाई। कीर्तिकर, जरा बैठना मेरे साथ। भाव विहीन होने की कोशिश करता हुआ कीर्तिकर सावरकर के पास पहुंचता है।
9: जी बताइए, क्या सेवा है मेरे लिए?
3: बहुत बड़ी, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्यों कर रहे हो ये सब और किसके कहने पर कर रहे हो?
9: मैंने क्या किया, कुछ समझा नहीं मैं।
3: अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पोल खुल चुकी है।
0: फिर क्या था, अपनी जान पर खतरा पैदा होता देख कीर्तिकर ने ब्रिटिश पुलिस के ऑपरेशंस के बारे में उसके पास मौजूद सारी जानकारी सावरकर को दे दी। उधर ढींगरा कर्जन वाइली से व्यक्तिगत रूप से परिचित थे। 13 अप्रैल 1909 को मदन लाल के पास वाइली का लिखा एक पत्र पहुंचा, जिसमें उन्होंने मिलने की बात कही थी। कहानी में यही एक जबरदस्त ट्विस्ट आया जब मदन लाल ढींगरा ने अपनी योजनाओं के बारे में सावरकर से चर्चा की। इसके पश्चात सावरकर ने ज्ञानचंद वर्मा को बुलाया और उनसे कहा,
3: आप लंदन छोड़कर न जाएं और इंपीरियल इंस्टीट्यूट में होने वाले कार्यक्रम में जरूर शामिल हो।
0: ढींगरा अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने लगे थे। उसी दौरान वो बिपिन चंद्र पाल के घर पर सावरकर से मिले। उस बैठक में निरंजन पाल भी मौजूद थे। मदन लाल काफी अच्छे मूड में थे। उन्होंने सावरकर से बड़े स्नेह के साथ बातचीत की।
3: आप ये बयान देख ले जो आपको कर्जन वाइली के हत्या करने के बाद देना होगा, निरंजन पाल ने इसे टाइप किया है।
4: ठीक है, मैं इसे याद कर लेता हूँ।
0: सावरकर ने मदन लाल को बेल्जियम में बनी एक ब्राउनिंग पिस्तौल भेंट की और बड़े स्नेह के साथ उनसे विदा ली। ढींगरा भावुक हो उठे। तब सावरकर ने कहा,
3: अगर इस बार तुम असफल रहे तो मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना।
4: आप निश्चिंत रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
0: एक जुलाई को ढींगरा के सहेली मित्र सैंटियागो उनके आवास पर गए। ढींगरा सामान्य बने रहे। इसके बाद वो गोरेगांवकर से मिलने गए जिन्हें उनके साथ इंपीरियल इंस्टीट्यूट जाना था। उन्होंने 108 लीडबरी स्ट्रीट स्थित अपने ही घर पर समय से पहले दोपहर का

0: पगड़ी पहनी। उन्होंने अपनी कोल्ट रिवॉल्वर लोड की और उसे अपनी कोट की दाईं जेब में रख लिया। उन्होंने एक एक रिवॉल्वर कोट की दूसरी जेब और अपनी वेस्ट में भी रख ली। क्योंकि वो सावरकर द्वारा लिखा गया बयान याद नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे पेंसिल से कागज की एक शीट पर लिख लिया। उन्होंने अपनी जेब में 10-12 शिलिंग भी रखी और कार्यक्रम के लिए निकल पड़े।
1: मेरी बन्नो, तुम सुन रही हो ना? हमारे क्रांतिकारी किस कदर योजनाबद्ध तरीके से अपने मिशन पर जुटे थे।
2: हाँ दीदी, मुझे तो डर भी लग रहा है ये सोच सोच कर कि आगे क्या होगा। पकड़े जाने पर ब्रिटिश पुलिस मदनलाल जी के साथ कैसा सलूक करेगी?
1: बन्नो, क्रांतिकारी अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। तुम डरो मत बन्नो, बस इतना याद रखना कि स्वतंत्रता के इन वीर सेनानियों ने कितना कुछ देश के लिए कुर्बान किया।
2: बिल्कुल याद रखूंगी दीदी, भरोसा रखो।
0: आखिर वो दिन आ ही गया, 1 जुलाई 1909। इंपीरियल इंस्टीट्यूट की पहली मंजिल पर स्थित जहांगीर हॉल में नेशनल इंडियन एसोसिएशन की बैठक चल रही थी, जिसमें कर्जन वाइली समेत कई प्रमुख ब्रिटिश नागरिक और भारतीय शामिल थे। असल में ये एक स्वागत समारोह था, जिसे सर अल्फ्रेड लायल की पत्नी लेडी लायल के सम्मान में आयोजित किया गया था। मदन लाल इस एसोसिएशन के एसोसिएट सदस्य थे, तो वो भी वहां पहुंचे, लेकिन अपना निमंत्रण पत्र लाना भूल गए। हालांकि विजिटर्स बुक में हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें प्रवेश मिल गया। बैठक में कोरेगांवकर भी एक पिस्तौल लेकर पहुंचे थे। जैसे ही मीटिंग खत्म होने वाली थी, कर्जन वाइली वहां से निकलने की तैयारी करते दिखे, तभी कोरेगांवकर ने ढींगरा को उकसाया।
3: अजय जाओ ना, क्या कर रहे हो?
0: ढींगरा बात करने के बहाने कर्जन वाइली के पास पहुंचे। दोनों ने शीशे का दरवाजा खोला और हॉल से बाहर निकल गए। जैसे ही वो सीढ़ियों के चबूतरे पर पहुंचे, ढींगरा ने अपनी आवाज धीमी कर ली, मानो वो कोई गोपनीय बात करना चाहते हों। कर्जन वाइली को ढींगरा के करीब आना पड़ा। मौका भांपते ही ढींगरा ने अपने कोट की जेब से कोल्ट रिवॉल्वर निकाली और बिल्कुल करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 गोलियां दाग दी। तब रात के 11:20 बजे थे। कर्जन वाइली लड़खड़ाने लगे, तभी ढींगरा ने 2 और गोलियां उन पर दाग दी। वहां मौजूद एक पारसी डॉक्टर कावस लाल काका ने बीच बचाव करने की कोशिश की।
4: ये क्या किया? He is bleeding.
5: आप बीच में ना पड़े वरना।
0: मदन लाल ढींगरा ने उन पारसी डॉक्टर पर भी गोली चला दी, खुद को भी गोली मारने का प्रयास किया जो असफल रहा। आसपास के लोगों से हाथापाई होने लगी। ढींगरा ने एक को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसकी पसलियां टूट गईं। लेकिन फिर किसी ने उन्हें जोर से पकड़ लिया और उनकी रिवॉल्वर छीन ली। हाथापाई में ढींगरा का चश्मा दूर जा गिरा था। उन्होंने शांत भाव से अपने पकड़ने वालों से कहा,
6: मेरा चश्मा दे दे।
0: घटना के पश्चात डॉक्टरों ने जब ढींगरा की नब्ज जांची, तो वो हैरान रह गए। इतनी बड़ी वारदात के बाद भी उनकी नब्ज बिल्कुल सामान्य थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी ने ढींगरा से पूछा,
5: क्या आप चाहते हैं कि हम आपके किसी दोस्त को आपकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करें?
7: इसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कल के अखबारों में मेरी गिरफ्तारी के बारे में पता चल ही जाएगा।
5: ये तो बड़ा सयाना है, मुंह नहीं खोलेगा।
2: आगे क्या हुआ गीत दीदी? क्या पुलिस ने उनसे मारपीट की?
1: असल में ढींगरा को एहसास था कि पुलिस उनके दोस्तों को भी इस मामले में फंसाने की कोशिश कर सकती है, इसलिए उन्होंने चतुराई से जवाब दिया। बाद में पुलिस उन्हें वॉल्टन स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लेकर गई।
0: आप सभी को बता दें कि कर्जन वाइली की हत्या करने से कुछ हफ्ते पहले

मदन लाल ढींगरा ने लॉर्ड कर्जन को भी मारने की कोशिश की थी। वो सभी वायसरायों में से सबसे ज्यादा अहंकारी माने जाते थे, लेकिन किस्मत ने कर्जन को दो बार बचा लिया। इनके अलावा मदन लाल ने बंगाल के पूर्व गवर्नर ब्रैमफील्ड फुलर की हत्या की भी योजना बनाई थी। हालांकि वो उस मीटिंग में देर से पहुंचे जहां इन दोनों को मौजूद रहना था, इसलिए मदन लाल अपनी योजना को अंजाम नहीं दे पाए। ये सब होने के बाद ढींगरा ने कर्जन वायली को मारने का फैसला किया। सावरकर थोड़ा सशंकित थे कि पता नहीं इस बार ढींगरा सफल रहेंगे या नहीं। ये सिर्फ ढींगरा को ही मालूम था कि उन्हें हारना नहीं है। गिरफ्तारी के बाद का घटनाक्रम भी कम रोमांचकारी नहीं रहा। मामला अदालत में पहुंचा। वहां क्या क्या हुआ ये जानने के लिए आप श्रोताओं को करना पड़ेगा अगले एपिसोड का इंतजार। तब तक सुनते रहिए एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा, वंदे मातरम।

तब बनता है खास जब आती है उषा। आशियाना के साथ आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। आज हम भौतिक सुख सुविधाओं के इतने आदि हो गए हैं कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। कैसे, जरा विचार करेंगे? और जी हाँ, चने हमारे हेल्थ के लिए किस तरह फायदा करता है, कौन सी बीमारी ठीक करता है, जरूर जानेंगे आप। और आज का खुशनुमा जीवन का विषय बहुत ही अच्छा रहेगा, रेसिपी भी आपको बहुत ही स्वादिष्ट सिखाने वाली हूँ, और टंग ट्विस्टर तो पूछिए मत, बहुत ही सुंदर रहेगा, जो आपको अधिक से अधिक 3 बार और कम से कम 2 बार तो बोल के सुनाना ही है। ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना कार्यक्रम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक, भाई रुक, रुक। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ। ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, वो इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
0: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं? पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
2: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

गुड मॉर्निंग आशियाना में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है कि आज हम भौतिक सुख सुविधाओं के इतने आदि हो गए हैं कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। कैसे, तो आइए आज के विचार का विश्लेषण एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। पुराने समय की बात है, एक राजा थे। राजा के पास सभी सुख सुविधाएं और असंख्य सेवक सेविकाएं हर समय उनकी सेवा में उपलब्ध रहते थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी राजा उनके जीवन में सुखी नहीं थे, क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान रहते थे। वे सदा बीमारियों से घिरे रहते थे। काम नहीं करना, पूरे दिन आराम करना, ये उनकी दिनचर्या थी। राजा का उपचार सभी बड़े बड़े वैद्यों द्वारा किया गया, परंतु राजा को फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। स्वास्थ्य अच्छा हो ही नहीं रहा था। समय के साथ राजा की बीमारी बढ़ती जा रही थी। अच्छे राजा की बढ़ती बीमारी से राज दरबार चिंतित हो गए। राजा की बीमारी दूर करने के लिए दरबारियों द्वारा नगर में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी राजा का स्वास्थ्य ठीक करेगा उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। ये सुनकर के एक वृद्ध राजा का इलाज करने राजा के महल में गया। वैसे तो बहुत जने आए, बहुत जनों ने इलाज किया, लेकिन राजा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ तो एक वृद्ध भी पधारे। वृद्ध ने राजा के पास आकर कहा, महाराज आप आज्ञा दो तो आपकी बीमारी का इलाज मैं कर सकता हूँ। राजा की आज्ञा पाकर के वह बोला, आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के वस्त्र पहनिए, आप अवश्य स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे। वृद्ध की बात सुनकर राजा के सभी मंत्री और सेवक जोर जोर से हंसने लगे। इस पर वृद्ध ने कहा, महाराज आपने सारे उपचार करके देख लिए, ये भी करके देखिए, आप अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। राजा ने उसकी बात से सहमत होकर के सेवकों को सुखी मनुष्य की खोज में राज्य की चारों दिशाओं में भेज दिया, परंतु उन्हें कोई पूर्ण सुखी मनुष्य नहीं मिला। प्रजा में सभी को किसी न किसी बात का दुख था। अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। अत्यंत गर्मी के दिन होने से राजा का बुरा हाल हो गया और वह एक पेड़ की छाया में विश्राम हेतु रुके। तभी राजा को एक मजदूर इतनी गर्मी में मजदूरी करता दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, क्या पूर्ण सुखी हो? मजदूर खुशी खुशी और सहज भाव से बोला, भगवान की कृपा से मैं पूर्ण सुखी हूँ। ये सुनते ही राजा भी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने मजदूर को ऊपर से नीचे तक देखा तो मजदूर ने सिर्फ धोती पहनी थी और वह गाढ़ी मेहनत से पूरे पसीने से तरबतर था। राजा यह देखकर समझ गया कि श्रम करने से ही एक आम मजदूर भी सुखी है और राजा को श्रम नहीं करने की वजह से बीमारी से घिरे रहते हैं। राजा ने लौटकर उस वृद्ध का उपकार माना, उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी। अब राजा स्वयं आराम और आलस्य छोड़कर के श्रम करने लगे। परिश्रम से कुछ ही दिनों में राजा पूर्ण स्वस्थ और सुखी हो गए। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आज हम भौतिक सुख सुविधाओं के इतने आदि हो गए हैं कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। इससे हम जल्दी ही बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं। अतः कहने का भाव, स्वस्थ और सुखी जीवन का रहस्य यही है कि थोड़ा बहुत शारीरिक परिश्रम जैसे योगा, ध्यान, भ्रमण आदि अवश्य करें एवं जितना संभव हो सके शुद्ध देसी पौष्टिक और मिलावटी बिना का आहार लीजिए। गैर मिलावटी, जिसको हम गैर मिलावटी भी कह सकते हैं, गैर मिलावटी आहार लीजिएगा तो फिर स्वस्थ रहेंगे। और पहला सुख है निरोगी काया, तो शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा लगेगा। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। और फिर से सुन लेते हैं गीत, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

श्रोताओ चालो चना के खेत थाने होला दे दूसे। श्रोताओ चालो चना के खेत थाने होला दे दूसे। दीदी मैं तो आवाला खेत खावाला होला में से। दीदी मैं तो आवा खेत खावाला होला ने में से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब आपको नुस्खे देने वाली हूँ। किस पर? चने पर। वैसे तो मैं इंट्रो में बता चुकी हूँ और गीत के माध्यम से भी आप समझ गए होंगे कि आज चने पर आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय देने वाली हूँ कि किस तरह चना कौन सी बीमारी ठीक करता है जानेंगे आप। ठीक है, तो देखिए, अगर मधुमेह माने डायबिटीज है तो 25 ग्राम काले चने रात में भिगो करके सुबह निराहार खाली पेट खाइएगा, मधुमेह की व्याधि दूर हो जाएगी। यदि समान मात्रा में जो चने की रोटी भी दोनों समय खाई जाए तो भी काफी राहत मिलेगी। तो क्या करेंगे, देसी चने जो आते हैं ना काले वाले, वो 25 ग्राम आपको रात को भिगोना है और सुबह आपको खाली पेट लेना है। इससे डायबिटीज की व्याधि दूर होगी। और अगर आप समान मात्रा में जोर चने की आटे की रोटी बना करके खाते हैं तो काफी राहत मिलेगी आपको डायबिटीज में। गेहूं की रोटी की बजाय आप जो और चने की रोटी खाइएगा, बहुत फायदा मिलेगा, डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। अगर पथरी की समस्या है, मूत्राशय या फिर गुर्दे में पथरी है, तो ऐसी स्थिति में रात को भिगे हुए चने की दाल सुबह सुबह शहद मिला करके खाइएगा। मूत्राशय या गुर्दे में पथरी है तो ऐसी स्थिति में रात को आप चने की दाल भिगो दीजिए और सुबह सुबह इस दाल के अंदर शहद मिला करके आप खाइएगा, काफी राहत मिलेगी। जुकाम है तो गर्म चने रुमाल या किसी साफ कपड़े में बांध करके सूंघिएगा, जुकाम ठीक हो जाएगा। अगर जुकाम है तो गर्म चने रुमाल या किसी साफ कपड़े में बांध कर पोटली बना करके सूंघिएगा तो जुकाम की समस्या ठीक हो जाएगी। पित्ती निकलती हो तो काली मिर्च को चने के बेसन के लड्डू में मिला करके खाइएगा, पित्ती में राहत मिल जाएगी, पित्ती बैठ जाएगी। अगर पित्ती निकल रही है तो काली मिर्च को चने के बेसन के लड्डू में मिलाकर खाइएगा, इससे पित्ती में राहत मिलेगी। हिचकी आती हो तो चने के पौधे के सूखे पत्ते को चिल्म में रख करके धूम्रपान करने से शीत के कारण आने वाली हिचकी तथा आमाशय की जो विकृति है ना, उसमें काफी राहत मिलेगी। अगर हिचकी आती है तो चने के पौधे के सूखे पत्तों को चिल्म में रख करके आप उसका धुआं सूंघिए। धूम्रपान ये नहीं कि आप बीड़ी सिगरेट पीवे, ठीक है, वो नहीं। चने के पौधे के सूखे पत्तों को चिल्म में रख करके आप इसको सूंघिएगा, इससे शीत के कारण आने वाली हिचकी और आमाशय की विकृति में राहत मिलेगी। और लास्ट उपाय भी बहुत ही सुंदर है, बवासीर की समस्या है तो गरम गरम चनों का सेवन रोज आप करिएगा, भुने हुए चनों का सेवन करिएगा, ठीक है। इससे प्रारंभिक स्थिति में ही खूनी बवासीर ठीक हो जाएगा। तो बवासीर की समस्या है तो गरम गरम भुने चनों का सेवन नियमित रूप से करिएगा, कुछ दिनों तक करते रहने से प्रारंभिक स्थिति का खूनी बवासीर ठीक हो जाएगा। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही सुंदर है और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। आइए अब आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर बहुत ही सुंदर है, आपको 3 से अधिक बार नहीं सुनाना है और 2 से कम बार नहीं बोलना है। सुनिएगा आप ध्यान से। काकी काटे काची काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, पाकी काकड़ी काटे काका, काटे काकी काची काकड़ी। यह आपको 3 से अधिक बार नहीं सुनाना है और 2 से कम बार नहीं बोलना है, ठीक है। तो टंग ट्विस्टर सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। और आज के टंग ट्विस्टर का
जवाब मतलब आप बोल के सुना सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। तो अभी तो एक गीत सुनेंगे, उसके बाद खुशनुमा जीवन में बात करेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
1: नमस्ते। जय माता दी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि। एक मिनट, ये हेडफोन में आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिएगा।
1: जय माता जी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि, जय श्री हरि।
1: आईस।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे मित्रों को, भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं
0: जी।
1: और अब विषय के बारे में तो क्या मैं बताऊं।
0: हाँ जी, विषय में दोहरा रही हूँ, एक मिनट। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही अच्छा है, तो आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है। दोनों ही सुना रही हूँ। विषय है, जिसे सब्र आ जाता है फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आए जाए, जिए मरे, अमीरी गरीबी, वो सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। और आज का टंग ट्विस्टर है, काकी काटे काची काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, पाकी काकड़ी काटे काका, काटे काकी काची काकड़ी। यह आपको तीन से ज्यादा बार नहीं सुनाना है और दो से कम बार नहीं बोलना है।
1: हाँ, तो मैं सब्र के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, सब्र का फल कहते हैं ना कि मीठा होता है
0: जी।
1: और मैंने ये आज का जो विषय है ना, ये सब कुछ मैंने कहा हुआ है कि अपने साथ जो घटता है, मगर उसको जो नजर अंदाज करते हुए आगे बढ़ता है ना, वो मतलब विदाता का मतलब सच्चा मतलब सपुत्र हो जाता है, क्योंकि भगवान को भी वो लोग प्यारे होते हैं
0: जी।
1: इतना कुछ कहने के बाद भी उन लोगों को क्षमा कर देता है
0: जी।
1: और देखिए, इसमें धन दौलत वगैरह, ये रुपया पैसा, अमीरी गरीबी, ये कुछ काम का नहीं है। देखिए, वैसे जो सच्चा संत होगा, ये इन चीजों से परे होता है ना, वही सच्चा संत होता है। और सच्चा संत भगवान के करीब होता है। सिंपल सा उदाहरण दे
0: जी।
1: इन चीजों से परे होके जो मतलब इन चीजों को छोड़ देता है, वो सन्यासी है। क्योंकि लोग अब बेटो के लिए क्या कुछ करते हैं, मगर देखिए, वैसे तो कहे तो ये सब कुछ कि वो मेरा वो कुछ नहीं है। आप कैसे आए और कैसे जाने वाले, आपको सबको पता है, सबको पता है ना
0: जी,
1: कि अपन दुनिया में इंसान कैसे आया और कैसे जाने वाला, मतलब खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाने वाला। तो फिर क्यों इतना लोभ, क्यों इतना अहंकार, क्यों इतना क्रोध
0: जी।
1: अगर इंसान इन सब चीजों को छोड़ के अगर शब्द रखे, तो वो सच्चा सन्यासी है। अन्यथा इस तरह पे कोई सन्यासी नहीं है, वो मतलब सबसे परे, मतलब सबसे ऊपर पहुंच जाए भगवान के नीचे, फिर उसका दर्जा है। सही बोल रहा हूँ
0: जी।
1: हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इन चीजों से, क्योंकि रुपया पैसा है, आज है और कल नहीं है। मैं दूसरों की जैसे जगह ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि पैसे धन मतलब पैसा अपने हाथ का मेल है, वो तो नहीं। रुपया पैसा तो आता जाता रहता है, आता है, खर्च होता है, मगर जो इन चीजों से प्यार नहीं करता, इन चीजों से मोह नहीं करता, ये बेटा मेरा है, वो बेटी मेरी है, वो है, वो है, इतने घर है मेरे, इन चीजों से जो परे, मतलब इन चीजों को छोड़ देता है, इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे सकता है, वही इंसान जब सब्र रख पाता है और सब्र का फल मीठा होता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा। और ये फल इतना मीठा है कि इससे ना तो डायबिटीज होगी और ना कुछ होगी, इससे फायदे ही होगी, नुकसान कुछ नहीं।
0: ठीक है। हाँ जी,
1: बस यही कहना चाहूंगा
0: जी। चलिए,
1: आज तो हमारे इधर वोटिंग है
0: जी,
1: नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं
0: जी। जी बिल्कुल।
1: बस ये शब्द का फल, ऐसे ही मैं वोटिंग में भी मैं उतरा हूँ, जिनके लिए बिल्डिंग कर रहा हूँ उनके लिए, बस वो ये विषय ही काफी है।
0: ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार सुरेश भाई।
1: जय माता दी।
0: हाँ जी, जय श्री हरि। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। हेलो
2: हेलो शबन जी।
0: हाँ जी कंचन भाई, नमस्ते। हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
2: 10 पॉइंट है हमारे पास जो रिचार्ज।
0: अच्छा,
2: बैटरी का
0: जी।
2: तो ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, अभी घर निकलने वाला हूँ। सुरेश भाई की बात सुनी
0: जी।
2: और क्या है विषय तो बता दीजिए
0: जी। विषय है जिसे सब्र आ जाता है फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आए जाए, जिए मरे, अमीरी गरीबी, वो सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। क्या कहेंगे आप?
2: बिल्कुल बिल्कुल, सब्र जो है ना वो एक बार वो पता चल जाता है कि भाई ये सब कुछ काम का ही नहीं। ठीक
0: जी।
2: तो इसको कोई मोहर नहीं रहता देने, और बिल्कुल सादगी से जीवन जीता है। भगवान ने जो दिया है वो इसमें ही निभाव करना है। कई कई लोग क्या करते हैं कि काफी धन इकट्ठा करते हैं और इसमें घर पे ध्यान नहीं देते और करते हैं और सब बाद में नष्ट हो जाते हैं।
0: जी जी,
2: ये नहीं रखना है, ऐसा मोह नहीं रखना। अर्थ उपार्जन करना है लेकिन जरूरियात पूछता और बाकी का भगवान का पूजन करना है, नाम लेना, इसे ही आगे आने वाला।
0: बिल्कुल
2: ठीक है। और
0: हाँ जी,
2: सब सिस्टम तो मैंने सुना है लेकिन अभी घर पे जाके कोशिश करूंगा फिर।
0: अच्छा,
2: जो ये करके बैटरी चार्जिंग करके इस बात।
0: ठीक है कंचन भाई, बहुत बहुत आभार आपका। ये थे कंचन भाई मंडाली से और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना। आशियाना में आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही अच्छा है, तो आज का विषय भी बहुत अच्छा है। जिसे सब्र आ जाता है फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आए जाए, जिए मरे, अमीरी गरीबी, वो सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। हेलो
1: हाँ दीदी, नमस्ते,
0: गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सुरेश भाई, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
1: बस हम भी अच्छे हैं, अब तो घर पे बैठे हैं, आराम से कार्यक्रम सुन रहे हैं, क्योंकि आज जो अमर सेंटर दीदी हमारे अमर सीट कौन बंद रहती है।
0: अच्छा,
1: तो छुट्टी रहती है आज के दिन, क्योंकि वो हमारे जो साइड भी है उसको आज बंद रखना पड़ता है हमारे के दिन। तो मैं घर पे बैठा हूँ और काम कर रहा हूँ, और हमदे जी का कई सारे मेरे पास काम पड़ा है।
0: जी जी,
1: रामदे जी का वागा भी बना रहा हूँ, जगह बना रहा हूँ, लेजा भी बना रहा हूँ, बैठे बैठे आज भी काम करना है पूरे दिन मेरे।
0: क्या बात है, आप तो हर साल बनाते हैं, बहुत अच्छा है।
1: हाँ हर साल, लेकिन ये सावन महीना में मुझे दीदी मेरे पूरा महीना भगवान का काम में जाता है।
0: अच्छा,
1: रात को मैं दुकान पे, दिन में दुकान पे, रात को घर पे मैं काम करता हूँ। ये
0: ओहो, रात में आप ये रामदेव पीर जी के वागा रात में बनाते हैं?
1: हाँ, वो काम मेरा क्या दीदी, थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके मैं रात में पूरा करता हूँ, क्योंकि दिन में तो दुकान का काम करना पड़ता है, रात को इधर करना पड़ता है। 12 बजे तक दुकान पे इधर काम रात को करता हूँ, 9 से 12 बजे तक
0: जी।
1: और आज छुट्टी है तो आज पूरे दिन काम करेंगे और जितना काम है आज मेरा पूरा हो जाएगा
0: जी।
1: तो चलो अच्छा है, आज बैठा हूँ मैं, और पहले तो मैं टंकेस्टर सुना दूँ आपको, बाद में विषय में आपको बता दूँ दीदी।
0: हाँ जी,
1: क्योंकि टंकेस्टर बहुत थोड़ा सा है,
0: लेकिन आज टंकेस्टर जी जी जी आपका ही दिया हुआ है।

0: बोलता हूँ गाय की काकी काटे काकी काकड़ी काटा काटे काकी काकड़ी काकी काकड़ी काटे काटा काटे काकी काकी काकड़ी काकी काटे काकी काकी काकड़ी काटा काटे काकी काकड़ी काकी काकड़ी काटे काटा काटे काकी काकी काकड़ी काकी काटे काकी काकड़ी काटा काटे काकी काकड़ी काकी काकड़ी काटे काटा काटे काकी काकी काकड़ी।
1: फिर भी अच्छी कोशिश की आपने। देखे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और टंग ट्विस्टर तो यही है ना, बोलना ही चाहिए भले अटके या फटके।
0: हाँ, शब्द में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाए लेकिन बोलना तो जरूरी है।
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: चलो फिर भी मैंने कोशिश तो की है, लेकिन आज विषय में बात बताऊं दीजिए तो विषय भी बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि आपके पास सब कुछ आ गया है
1: जी,
0: किसी की कोई जरूरत नहीं है
1: जी,
0: धन दौलत है, सभी खुश है, मेरे कोई कोई मेरे संबंध की भी मेरी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा है कुछ भी आए दिए मरे हमारे क्या लेना देना, ऐसा ही लोग बैठे हैं दीदी, अभी हैं ऐसे ही लोग। लेकिन उसको दीदी ये पता नहीं कि भाई फिर भी इतना सब कुछ है, फिर भी आपको जरूरत तो जरूर पड़ेगी
1: जी।
0: ऐसा नहीं होता है, कोई मान कोई जैसे अभिमान से बोलता है, कोई ऐसे बोलता है, तो ऐसा तो नहीं है भाई। मेरे को मेरे सदन की भी जरूरत नहीं है, मेरे कोई ऐसा करे दे मेरे दिए मरे मेरे क्या लेना देना, ऐसा नहीं करना है दीदी, ऐसा बोलना भी नहीं है, क्योंकि हर सब कुछ आपके पास है, फिर भी आपको लास्ट में भी जरूरत तो पड़ती है दीदी
1: जी। सुरेश भाई ये है ना, ये दो विषय को टच करता है, इसमें नेगेटिव बातें भी है तो पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये कि मतलब एक हमारी जो आध्यात्मिक स्थिति ऐसी होती है कि फिर मान अपमान निंदा स्तुति मृत्यु जीवन कोई मायने नहीं रखता है, ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है कि सभी को हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं और ये चीजें मायने नहीं रखती। कोई आ रहे वेलकम, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, कोई जी रहा है ठीक है, कोई मर रहा है वो भी ठीक है, क्योंकि आत्मा अमर है। तो हाँ, तो ये दो विषय को टच करता है, पॉजिटिव भी तो नेगेटिव भी।
0: जी भी मैंने वो विषय को थोड़ा सा आगे ले लिया है।
1: जी जी कोई बात नहीं। हाँ हाँ जी,
0: इसका दो अर्थ होता है, ये भी होता है मैंने बताया, वो भी होता है, वो भी होता है कि जाना तो है दीदी जरूर।
1: जी जी।
0: और जाएंगे तो भी इसको आत्मा को हम बोलते हैं, कोई भी चला जाता है तो आपको हम बोलते हैं कि चलो इससे आत्मा को प्रॉब्लम आपको शांति दे, वो भी सही है
1: जी,
0: ये भी हम बोल सकते हैं
1: जी।
0: तो हाँ,
1: बाकी आपका कहना सही है कि थोड़ा सा पैसा आना ही इंसान को अभिमान आ जाता है, तो बस फिर वो उसको ऐसा लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है।
0: ऐसा तो है नहीं, लास्ट में मैंने बताया कि लास्ट में चार लोग की तो जरूरत पड़ती ही है।
1: सही बात है,
0: मैं बताऊँ हमारे गाँव में दीदी कैसे लोग थे, ऐसा ही बोलते थे जैसे आपने बताया वैसे ही बोलते, लेकिन लास्ट में उसको ऐसा हुआ दीदी कि जब इसकी माँ का देहांत हो गया तो घर घर जाना पड़ा
1: जी,
0: हाँ। और बोलना पड़ा कि भाई सब हो आप हमारे घर पे आइए, कोई आए नहीं है घर पे हमारे, इसकी माँ को कौन ले जाएगा संस्थान तक।
1: जी।
0: तो लास्ट में उसको आना पड़ा, सबके घर जाना पड़ा था, वो दिन उसने ऐसा लगा कि यार मैंने तो गलत बोल दिया था पहले, बोलना ही नहीं चाहिए कि अब मुझे पता चला कि जरूर सबकी पड़ती है
1: जी,
0: तो ऐसा बोलना ही नहीं है
1: बिल्कुल।
0: नमस्ते
1: जी। चलिए बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, बहुत ही सुंदर आपने टंग ट्विस्टर भी सुनाया है, तो विषय को भी स्पष्ट किया है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हो, नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: लगता है एक खास जिम्मेदारी इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से सजग रहिए सुरक्षित रहिए रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है जिसे सब्र आ जाता है फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आए जाए जिए मरे अमीरी गरीबी वो सब चीजों से ऊपर उठ जाता है और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही अच्छा है काकी काटे काची काकड़ी काका काटे पाकी काकड़ी काटे काका काटे काकी काची काकड़ी यह आपको टंग ट्विस्टर 3 से अधिक बार नहीं सुनाना है और कम से कम 2 बार तो आपको बोलना ही है तो बहुत ही सुंदर टंग ट्विस्टर है आप कोशिश करिएगा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दीपा जी कपासन से जुड़े हैं वो टंग ट्विस्टर सुनाना चाहते हैं सुना दीजिए
2: ओम शांति जय श्री कृष्णा काकी काटे काची काकड़ी काका काटे पाकी काकड़ी काका काटे काका काटे काकी काची काकड़ी काकी काटे काची काकड़ी काका काटे पाकी काकड़ी काटे काका काटे काकी काटे काची काकड़ी काका काटे पाकी काकड़ी काटे काका काटे काकी काची काकड़ी
1: बहुत सुंदर तो चलिए दीपा जी के लिए हम ढेर सारी तालियां बजाना चाहेंगे तो इस तरह आप भी वॉइस मैसेज के द्वारा भी भेज सकते हैं टंग ट्विस्टर और आप जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है जुड़ करके सुनाइएगा अरे भाई बहुत सरल है कोई मुश्किल नहीं है आप कोशिश करिएगा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती अपनी ये जुबान की एक्सरसाइज हो जाती है भाई बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं तो सुबह की भी एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है ना और थोड़ा सा टंग ट्विस्टर और आप स्पीड से सुनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा है ना टंग ट्विस्टर का तो नियम ही यही होता है कि फास्ट फास्ट ऐसे स्पीड से सुनाना स्पेस दे के नहीं सुनाना है और आज का विषय बहुत ही सुंदर है क्या बात है आज के विषय में आपको रुचि नहीं है उपराम अवस्था सभी की नहीं होती है बिल्कुल ये सही है लेकिन आप देखिएगा जैसे संत महात्माएं भी है आजकल तो संत महात्मा भी दो तरह के हो गए हैं घर बार छोड़ देते हैं तो फिर वो गद्दियों के लिए झगड़ा हो जाता है उनका मैं गादीपति मैं ये मैं वो फिर वो अपना आश्रम या भवन जो भी है उसको बनाना और उसके लिए फिर झगड़ा वो नहीं आप कितनी बार देखिए प्रवृत्ति मार्ग में घर में रहते हुए भी इंसान कभी कभी उनके ऐसी अवस्था हो जाती है कि बस वो हर चीज से उपराम हो जाते हैं हर चीज से वो नष्ट मोहा हो जाते हैं फिर उनका आप मान दो या अपमान करो उनको कुछ आप दो मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता है उनकी स्थिति समान रहती है ना अप होती ना डाउन होती है ठीक है भाई आए बहुत अच्छी बात है नहीं आए कोई बात नहीं किसी भी चीज का बुरा नहीं लगाते हैं किसी भी चीज का उलहना नहीं देते किसी भी चीज की शिकायत नहीं रहती तो ये नहीं किया वो नहीं किया जो हुआ अच्छा हुआ कोई बात नहीं नहीं हुआ चलो ठीक है कोई बात नहीं ऐसी स्थिति आ जाती है फिर चाहे अमीरी हो चाहे गरीबी हो कोई फर्क नहीं पड़ता हेलो

0: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ओम शांति।
1: हाँ जी नमस्ते फिरोज भाई, कैसे हो?
0: देखो अमीरी में भी खुश रहने का और गरीबी में भी खुश रहने का बहन जी, बड़ा अमीरी गरीबी है वो अपने कर्मों ऊपर भी है और कुदरत की देन है वो
1: जी।
0: और वो कुदरत की देन नहीं होती तो मालिक को ईश्वर भगवान को कोई याद नहीं करता। तो अमीरी गरीबी तो होनी ही चाहिए और हर हाल में खुश रहना चाहिए
1: जी।
0: जी
1: तो कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई कोई की ऐसी स्थिति आ जाती है कि फिर वो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि दुनिया का क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, खुद का भी पता नहीं चलता।
0: नहीं चलता, वो तो अपनी मस्ती में जीता है वो
1: जी।
0: हाँ वो अपनी मस्ती में जीता है, नहीं मालिक के ऊपर आधार रखता है, जो जो रखे मालिक, जो हालत में रखे हम खुश है
1: जी। जी जी
0: उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जी।
1: जी तो और आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
0: हाँ वही आध्यात्मिक, देखो आध्यात्मिक इंसान होगा तो उसको अमीरी गरीबी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको
1: जी।
0: जी
1: और आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
0: टंग ट्विस्टर मेरे को तकलीफ हो रही है क्योंकि टंग ट्विस्टर मेरे को जमता नहीं है।
1: अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। वैसे आप बहुत ही अच्छे गीत सुनाते हैं तो टंग ट्विस्टर आपके लिए मुश्किल नहीं है।
0: सही बात है
1: जी, आप कोशिश करेंगे तो अच्छी तरह सुना पाएंगे
0: जी। जी जी जी,
1: भले आप लिखिएगा, लिख करके सुनाइएगा, ठीक है? कभी भी ट्राई करिएगा। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, आपने भी विषय को स्पष्ट करने की अच्छी कोशिश की है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और आज का विषय बहुत ही अच्छा है, जिसे सब्र आ जाता है फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आए जाए, जिए मरे, अमीरी गरीबी, वो सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि बस उपराम अवस्था, कोई फर्क नहीं, देखते हुए भी नहीं देखना, संसार असार लगता है। वो रहते हैं इसी दुनिया में लेकिन उसके मोह में नहीं जाते, उसके रग कमजोर नहीं होती, वो इन बाह्य दुनिया से ऊपर उठ जाता है ना, वो आंतरिक दुनिया में खो जाता है। बाह्य दुनिया उसको जैसे ऐसे लगता है कि बस ये ईश्वर की बनाई हुई है, सब कुछ अच्छी है, न वो किसी से नफरत करता है, न किसी के साथ दुश्मनी रखता है, न उसको अच्छा लगता है न बुरा लगता है, हर परिस्थिति में सम अवस्था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा, जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो होने वाला है वो तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसी शुभ भावना के साथ वो इंसान जीता है। और देखिए तो ऐसी अवस्था भी दो लोगों की होती है, एक तो यह कि बहुत दुख देखे हो, बहुत दुख देखे हो, चारों तरफ से परीक्षाएं आई हो, चारों तरफ से लोगों ने घिराने की कोशिश की हो, तो भी एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जाने दो, अब मरे एक जे, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई मेरे काम नहीं आए, किसी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो एक स्थिति हो जाती है। फिर कोई आ रहे जा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मर रहा है जी रहा है, ठीक है। एक स्थिति यह है कि वो ईश्वर को अंदर ही अंदर याद करता है और ईश्वर से इतनी लगन लग जाती है कि फिर ये दुनिया उसे फीकी नजर आती है, तो भी उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि बस फिर दुनिया में कोई है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी बुद्धि में सिर्फ एक है और वो उसी के साथ रहता है, उसी में रमण करता है, तो उनकी भी ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये देखिए दो तरह के विषय है, एक वो हो जाता है, वो है जिनको अहंकार आ जाता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, पहले कुछ नहीं होता, बाद में हाथ में पैसा आ जाता है तो अहंकार दिखाता है, फिर उसको ऐसा लगता है कि मुझे क्या लेना देना, मैं तो अकेला ही काफी हूँ, अपने घर में सब कुछ कर सकता हूँ, वो अहंकार की बात अलग है। इसमें जैसे उपराम अवस्था में भी आपको दो स्थिति रखी है आपके समक्ष की, एक तो दुनिया के दुखों से इतना परेशान हो चुका होता है कि फिर एक दिन एक समय ऐसी स्थिति बन जाती है कि बस बहुत सह लिया, बहुत रो लिया, बहुत कुछ हो गया, अब नहीं, अब कोई आए नहीं आए, बोले नहीं बोले, सब गए भाड़ में, वो स्थिति हो जाती है। एक है कि सबको प्रेम की नज़र से देखते हुए भी अंदर ईश्वर के साथ रहता है और दुनिया को देखते हुए भी दुनिया में नहीं रहता है। कितने ही जनों को आप देखते होंगे कि ऐसी स्थिति भी होती है, ऐसे लोग भी मिलते हैं जो रहते हमारे ही बीच है, बात हमारे ही बीच कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे, खा रहे, पी रहे, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ये खोए खोए है, हमारे साथ रहते हुए भी हमारे साथ नहीं है, ऐसा महसूस होता होगा ना आपको भी। तो कोई कोई ऐसे भी होते हैं, तो वो हमारे साथ रहते हुए भी उनको स्मरण किसका है, ईश्वर का, और फिर वो हमारे साथ रहते हुए भी वो हमारे साथ नहीं रहते, मन बुद्धि उनकी उधारी रहती है, तो इस तरह की स्थिति भी होती है। तो चलिए इस विषय को यही समाप्त करेंगे, अगर आप भी जुटना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आज का टंग ट्विस्टर सुना दीजिए। काकी काटे काची काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, पाकी काकड़ी काटे काका काटे काकी काची काकड़ी। तो ये बहुत ही सुंदर टंग ट्विस्टर है जिसको आप कम से कम दो बार तो जरूर बोलिएगा, अधिक सुनाओ तो तीन बार, नहीं तो दो बार, ठीक है। और अब यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

0: कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अभय सिंह जी जयपुर से जुड़ चुके हैं। नमस्ते अभय सिंह जी।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: हाँ जी नमस्कार नमस्कार।
1: हाँ सभी मधुबन के श्रोताओं को बहुत प्यार भरा हार्दिक बधाई हो। सभी को राम राम
0: जी। और आप आज का टंग ट्विस्टर बोल के सुनाएंगे?
1: या मैडम।
0: हाँ जी सुना दीजिए।
1: काकी काटे काती काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, काका काटे काती काकड़ी, काकी काटे काती काकड़ी, काकी काटे पाकी काकड़ी, काका काटे काती काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, काकी काटे काती काकड़ी। गलत हो गया।
0: कोई बात नहीं, मैं बोल के सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। काकी काटे काची काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, पाकी काकड़ी काटे काका, काटे काकी काची काकड़ी। चलिए फिर भी आपने अच्छी कोशिश की है, आपके लिए ढेर सारी तालियां और बहुत बहुत आभार। आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी मैडम, सब्जेक्ट के बारे में तो जो
0: सब्जेक्ट तो पूरा हो गया, रेसिपी कुछ देना चाहे तो दीजिए। हाँ जी, रेसिपी में कुछ आप देना चाहे, आप क्या पसंद करते हैं खाने में, आपको क्या पसंद है
1: खाने में? मैडम जी, जो बैंगन का भुर्ता होता है बहुत स्वादिष्ट होता है।
0: अच्छा, तो चलिए सिखा दीजिए आप। सात्विक
1: बैंगन, बैंगन को जो मिडिल साइज का हो
0: जी,
1: गोल वाला बैंगन
0: जी,
1: उसको जो आपने लकड़ी वाली आग होती है ना मैडम जी।
0: हाँ जी।
1: लकड़ी जलने के बाद में जो
0: कोयले पड़ते हैं,
1: कोयले वाली तपत वाला जो आग होता है
0: जी,
1: उसके अंदर उसको बाहर करके आग को रख दो और उसको धीरे धीरे घुमाते रहो
0: बैंगन को।
1: जी मैडम जी
0: जी।
1: फिर जैसे वो घुमाते घुमाते जो उसमें पानी की मात्रा है वो कम हो जाएगी, तब वो हल्का उसमें जो जैसे वृद्ध आदमी की जो चमड़ी में झुरिया आ जाती है ना मैडम जी, इस टाइप थोड़ा झुरियों में आ जाएगा
0: जी, वो छाल एकदम मुरझाई हो जाएगी, सिक जाएगी,
1: बिल्कुल मुरझाया जैसा लगेगा और थोड़ा काला काला भी हो जाएगा
0: जी।
1: तब उसको समझो कि वो अब वो पक करके तैयार हो गया है, तो उसको आग से हटा ले
0: जी।
1: और उसके बाद में उसको थोड़ा समय के लिए ठंडा होने के लिए ठंडे पानी के अंदर रख दें
0: जी।
1: जैसे वो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो उसका ऊपर का जो छिलका होता है मैडम जी, वो छिलके को धीरे धीरे हटा लें
0: जी।
1: के बाद में उसको जो तलपट्टा और लोडी होता है ना मैडम जी।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: उसके ऊपर उसको रखो और उसके छोटे छोटे पीस बना लो, और जो मसाला है वो नमक मिर्च, साथ में थोड़ा हरा धनिया भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं
0: जी,
1: और कोई जो गरम मसाला पसंद करता है तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं
0: जी,
1: लेकिन गरम मसाला बहुत कम लाइक करते हैं, जो करता है वो डाल सकता है थोड़ा उसके अंदर गरम मसाला की मात्रा
0: जी।
1: और उसके बाद में उसकी लहसुन डाल करके उसकी पिसाई कर दे मैडम।
0: हम क्या सात्विक बनाते हैं भोजन
1: जी? जी मैडम जी। हाँ, सात्विक में लहसुन नहीं डलेगा मैडम जी।
0: जी, तो
1: लहसुन को हटाने से वो पूर्ण सात्विक ही बन जाएगा
0: जी,
1: और कोई ऐसी चीज उसमें है नहीं
0: जी, जी, जी,
1: डालना भी नहीं है
0: जी। तो चलिए
1: उसके बाद में, हाँ उसमें पिसाई होने के बाद में आप उसको दही के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लस्सी के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं मैडम जी, बहुत स्वादिष्ट और जायकेदार बनता है।
0: जी जी, चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका, आपने अच्छी सी रेसिपी सिखा दी है, इसके लिए तालियां बजाना चाहिए।
1: राधे राधे मैडम
0: जी, राधे राधे। तो ये थे अभय सिंह जी जयपुर से, बहुत ही सुंदर आपने रेसिपी सीखी है, इसको मैं फटाफट दोहरा देती हूँ। देखिए, आपको बैंगन का भरता बनाना है तो आपको मीडियम साइज के बैंगन लेना है, गोल वाले आते ना भट्टा बैंगन, वो थोड़े से मोटे मोटे होते हैं, वो वाले बैंगन लाइएगा, धुलाई करिएगा, धुलाई करने के बाद आप आग में इसको सेकिएगा। अगर लकड़ी के कोयले पड़ते और उसमें सेकना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, चूल्हे पर तो बहुत इसका स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन आजकल चूल्हा कहाँ है, कहीं कहीं पर गाँवों में चूल्हा देखने को मिलता है, बाकी चूल्हा नहीं है, तो फिर आप गैस पर सेकिए छलना रख के। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी मदन भाई, नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते
0: जी मदन भाई, आप टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
2: नहीं आएगा, कौन सा
0: अच्छा?
2: है
0: हाँ, हम अभी दोहरा देते हैं। काकी काटे काची काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, पाकी काकड़ी काटे काका, काटे काकी काची काकड़ी। ठीक है मदन भाई, विषय तो समाप्त हो चुका है, रेसिपी भी पूरी होने को आ रही है, और सुनाइए कैसे हो आप?
2: बढ़िया हूँ दीदी जी, बढ़िया हूँ, और बस कार्य कर रहे हैं।
0: अच्छा।
2: और बस माहौल थोड़ा गर्मी जैसा है, और बादल की मतलब आज यहाँ सोमवार पूरा हो रहा है, और आज मेले लगेंगे सोमनाथ का, हमारे घर के पीछे ही है, और बस
0: सावन पूरा हो रहा है, सोमवार नहीं सावन पूरा हो रहा है।
2: हाँ मतलब गुजरात के अंदर वैसे तो सावन महीना पूरा हो गया है।
0: हाँ जी,
2: भादरवा भी
0: आज अमावस्या है, आज लास्ट दिन है तो
2: जी। हाँ,
0: सावन तो हो गया, भादरवा भादरवा के 15 दिन हो गए
2: जी।
0: हाँ, नहीं गुजरात में तो सावन चल रहा है ना, गुजरात में तो अब आपके भादरवा लगेगा कल से।
2: हाँ यहाँ गुजरात में अब लगेगा, अपना तो आधा हो गया पूरा।
0: हाँ राजस्थान में तो भादरवा आधा हो गया, गुजरात में सावन पूरा हुआ है। हाँ जी ठीक है, और रेडियो चल रहा है?
2: हाँ जी अच्छा चल रहा है।
0: चलिए,
2: नहीं रेडियो नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, नो नो।
0: हाँ।

0: ठीक है,
1: सुबह भी लगाया था, नहीं वही बज रहा है।
0: अच्छा,
1: हम मतलब मधुबनी बज रहा है, मतलब वो दूसरा बज रहा है अपना, वही गाने और बाबे के सब बज।
0: ठीक है मदन भाई, तो अभी आप समय भी बहुत इशारा कर रहा है, बहुत बहुत आभार, आप सुनिएगा कल।
1: समय को नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी जी जी, तो ये थे मदन भाई मेहसाना से, और आपको मैं बैंगन का भरता सिखा रही थी, अभय सिंह जी सिखा रहे थे, जिसको मैं दोहरा रही हूँ कि आप अगर चूल्हा नहीं है तो गैस पर छलना रख के छलने में आप बैंगन सेक दीजिए, ठीक है। सेकने के बाद ये जब सिकेंगे ना, तो ये थोड़े से इसके छाल है वो एकदम मुरझाई हो जाएगी, आप इनको निकाल दीजिए। जल्दी से बनाना चाहते हैं तो फिर इन बैंगन को आप पानी में डाल दीजिए ताकि ठंडे जल्दी हो जाए, और कोई जल्दबाजी नहीं है तो आराम से रहने दीजिए, फिर आपको लगे कि हाँ ठंडे हो गए तो आप छिलके निकाल दीजिए, छिलके निकाल करके बैंगन को मैश कर दीजिए, ठीक है। अब आप इधर मसाला तैयार कर लीजिए, हरी मिर्च, अदरक, मूंगफली के दाने, फिर आप ले लीजिए टमाटर, ये सभी सारे मसाले लेने, तो आप हरी मिर्च, अदरक, टमाटर और मूंगफली के दाने के, टमाटर के अलग पेस्ट करिएगा, मूंगफली के दाने और हरी मिर्च, मीठा नीम, हरा धनिया, इन सब की पेस्ट अलग कर दीजिए, ठीक है। और कढ़ाई रखिए गैस पर, तेल डालिएगा, तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई जीरे का तड़का लगाइए, फिर आप हींग डालिएगा, हींग पाउडर डालने के बाद अब ये पेस्ट डालिएगा, पेस्ट डाल करके अब इसको अच्छी तरह फ्राई होने दीजिए। अब इसमें आप गरम मसाला भी डाल दीजिए, इसमें आप धनिया पाउडर भी डाल दीजिए और नमक स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा, लाल मिर्च, हरी हल्दी पाउडर भी डाल दीजिएगा, और मसाले को अच्छी ये ग्रेवी तैयार कर लीजिए। जब आपको लगे कि ये ग्रेवी तैयार हो गई है तो मैश किए हुए बैंगन इसमें डाल दीजिएगा, डाल करके अच्छी तरह हिला दीजिए, एक दो मिनट पकने दीजिए, पक जाए एक दो मिनट के बाद आप गैस बंद कर दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, ये बन गया बैंगन का भरता सात्विक, बहुत ही स्वादिष्ट। आप पूरी के साथ, परोठे के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं, बहुत जने तो चावल के साथ भी खाते हैं, अब वो अपनी चॉइस पर छोड़ा है कि आप कैसे खाते हैं, ठीक है। अपने इष्ट देव को भोग लगा करके खाइएगा, और एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
3: जी आई माँ जी।
2: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
3: जी माँ जी आ गई, चलिए।
2: नमस्ते डॉक्टर नी जी।
4: नमस्ते नमस्ते, बैठिए, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है।
2: डॉक्टर नी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है,
4: सोनोग्राफी। मगर क्यों?
2: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
4: मगर ऐसा करना तो गलत है, और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
2: जी वो न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
4: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है, और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
5: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा, यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
0: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं आपको, तो जरूर आप आजमा सकते हैं चने पर। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो जो रेसिपी में आपको बैंगन का भरता सिखाया है अभय सिंह जी ने, जरूर बना करके खाइएगा। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं बोल के सुना रही हूँ। काकी काटे काची काकड़ी, काका काटे पाकी काकड़ी, पाकी काकड़ी काटे काका काटे काकी काची काकड़ी, काकी काटे काची काकड़ी काका काटे पाकी काकड़ी काटे काका काटे काकी काची काकड़ी, काकी काटे काची काकड़ी काका काटे पाकी काकड़ी काटे काका काटे काकी काची काकड़ी। तो मैंने तीन बार बोल के सुनाया है, स्वयं के लिए भी ढेर सारी तालियां। फिर आज का टंग ट्विस्टर सुनाया है सुरेश भाई जोटाना से, दीपा जी कपासन से, और अभय सिंह जी ने भी अच्छी कोशिश की है। तो आप तीनों के लिए भी ढेर सारी तालियां फिर से। और विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, कंचन भाई मंडाली से, सुरेश भाई जोटाना से, फिरोज भाई पालनपुर से, अभय सिंह जी जयपुर से, और मदन भाई तो लास्ट में जुड़े हैं। तो विषय में आप सभी जुड़े, इसके लिए भी ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती भी बहुत ही सुंदर है। संपन्नता जीवन में तब आती है जब जीवन में धन वैभव स्वास्थ्य के साथ आध्यात्मिकता अर्थात स्वयं का ज्ञान हो। अब मैं आपको प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, हनुमान जी पर आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, क्या है कल बोलो? अंताक्षरी। तो कल की थीम रहेगी रामदेव पीर जी पर, और मतलब बाबा रामदेव जी के और गणपति बापा के भजन, ठीक है? यही, इसके अलावा दूसरे नहीं, क्योंकि दोनों ही त्योहार आ रहे हैं। तो इन दोनों ही त्योहारों की, तो गणपति के भजन आप सुना सकते हैं, रामदेव पीर के भजन आप सुना सकते हैं, ठीक है? हिंदी राजस्थानी गुजराती भाषा में। और अभी मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगी, तो मिलेंगे कल। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: दोस्तों, हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं होता है और हर एक व्यक्ति अलग होता है। अलग अलग विचार, अलग अलग संकल्प, अलग अलग जीवन, लेकिन ये सभी चीजों से एक गुलदस्ता बन जाता है और एक ना मिले दूसरे से। हर किसी की विशेषताएं अलग होती है, तभी वो इंसान को यूनिक बनाते हैं। दोस्तों, जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। कोई छोटी उम्र में ही बुजुर्ग हो जाते हैं और जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो उस उम्र में भी बच्चे बन करके रह जाते हैं, यानी कि मन से वो बहुत ही उमंग उत्साह से रहते हैं। तो ये भी एक जीवन का साधना है और इसे कहते हैं जीना इसी का नाम है। चलिए दोस्तों, आज स्वागत करते हैं आदरणीय राजयोगी रामश्लोक भाई जी को। जैसे आप सभी को पता है, जीना इसी का नाम है। इस कार्यक्रम में हम योगियों के साथ बातचीत करते हैं, उनकी जीवन की यात्रा को हम जानते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ है ब्रह्म कुमारी मुख्यालय के एक वरिष्ठ राजयोगी आदरणीय रामश्लोक भाई जी। भाई साहब, आपको जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, ओम शांति
1: जी। भाई जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो लौकिक जीवन है, आप कब और कहाँ जन्मे थे, उस समय का माहौल क्या था, आपकी जो लौकिक परिवार है उसके बारे में थोड़ा हमें परिचय दे।
2: बहुत अच्छा और खुशी की बात है। जीवन जीने की कला की सब्जेक्ट है जिसको सभी की अभी जरूरत है। तो हमारा शरीर का अभी तो स्पिरिचुअलिटी में, इसलिए आत्मा और शरीर दोनों के साथ हम बात करते हैं, जिसको जीवात्मा कहते हैं। तो शरीर का नाम बीके डॉक्टर राज ऋषि रामश्लोक भाई। हमारा जन्म झारखंड में हुआ, हजारीबाग। झारखंड पहले बिहार में था, लेकिन झारखंड हजारीबाग, वहाँ से वहीं हम पढ़े। हम तो राजपूत फैमिली से हैं। हमारा नाम पूरा रामश्लोक सिंह। तो वहाँ हमारे परिवार से सारे बहुत रॉयल फैमिली में अपना खेती बाड़ी और ये सब चीज़ों को, कई गांव में अपना रियासत था। ठाकुर ठाकुर के नाम से जानते हैं कि राजपूतों ठाकुरों की एक अपनी मुस्तैदी होती है। तो वहीं हम थे और वहाँ से फिर कमाख्या नारायण सिंह का आर्यन स्कूल में हम वहाँ से पढ़ाई किए 7th तक। उसके बाद हम धनबाद गोमो में से हायर एजुकेशन किए और वहाँ से रांची यूनिवर्सिटी से हम ISC का डिग्री पास करके फिर हमने सोचा सोशल सेवा किया जाए। और सबके दोनों प्रकार का है कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी, धन दौलत के, हजारों चीज़ों के, गाय बैल बस हर चीज़ जो लौकिकता में होती है से संपन्न थे।
1: तो आप कितने भाई बहन थे?
2: हम लौकिक में 3 थे।
1: अच्छा।
2: हम सबसे छोटे, हमारे एक बड़े भाई थे और बड़ी बहन थी, लेकिन हम सोचते थे उनका तो मैरिज ये सब सारा हो गया और हमारा अधिक ध्यान पढ़ाई में रहता था।
1: अच्छा।
2: लेकिन हमारे सब ज्वाइंट फैमिली था, एक साथ 10-15-20 बच्चे एक साथ थे। हमारे फादर 5 भाई थे
1: जी,
2: सब ज्वाइंट एक ही साथ रहते थे। पहले ज्वाइंट फैमिली होता था तो उसमें रहना खाना पीना सारा एक साथ होता था, खेती बाड़ी सब चीजें। फिर हम पढ़ते पढ़ते पढ़ने में आज तक हम कभी 3rd division नहीं लाया। लाइफ में 1st, 2nd ऑलवेज। हम पढ़ते कम थे लेकिन मेमोरी का एक बहुत बड़ा वरदान था। हम भगवान को मानते नहीं थे लेकिन जानते थे कि कोई शक्ति है, कोई पावर है। हनुमान जी को देखकर हम बहुत खुश होते थे। हनुमान जी की इतना ताकत कहाँ है कि एक हाथ से गदा उठाए, पहाड़ उठाए, एक पांव भी उठाए। यहाँ 2 टांग पे खड़े रहने से लोग थक जाते हैं
1: जी।
2: एक टांग में उठा कर की इतनी ताकत। तो गाँव में गुजरते थे तो हनुमान जी के मंदिर, तो हम वहां जाकर कितना टाइम तक तो हम देखते रहते थे इतनी इसकी शक्ति का। तो हनुमान जी से बहुत हमको प्रेरणा मिलती थी पढ़ने के। इसका सारा तो कोई है नहीं कि इसका कोई चीज मांगे। और तो खेती बाड़ी का भी हमको बहुत अच्छी तरह नॉलेज, कई लोगों के हमको खेत में ले जाते थे अपना अंकल वगैरह। बचपन में हमारे फादर से ही छोड़ दिए थे, इसलिए हम करीब 4th-5th पढ़ते होंगे उसके बाद। तो सभी फैमिली से पढ़ाई, उसके बाद हम 1968-69 में हमने सोचा कि कौन सा ऐसे कार्य करें, तो लगा मेडिकल करें और फ्री में सबको दवाई देंगे, सब करेंगे, गांव वालों के सेवा करेंगे, सोशल सर्विस। इसीलिए हम फिर अपना एडमिशन 1968-69 में बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में, मोहाली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, वहाँ हमारे एडमिशन हुआ और वहाँ हम 4 साल के BHA में डिग्री करके, और उसी समय जब वहाँ पढ़ते थे तो हम हमें एक कोई चीज ढूंढने का खोज के, आई वांट टू रिसर्च, सब चीज की, हर चीज के जानने की जिज्ञासा रहती थी, चाहे राइट हो रॉन्ग हो क्या चीज, वो बाद में निर्णय करते थे। तो इसी तरह से तो सारा शहर में हम जब आए तो सारा शहर में हम घूमते रहते थे, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस अड्डा हो, या कहाँ कौन क्या कैसे क्या करता है। तो एक दिन एक हमारा दोस्त था, वो हमको मिले और बोला कि अरे भाई कन्याकुमारी से कुछ कन्याएं आई है, वो ज्ञान सुनाती है। तो हम बोले कन्याकुमारी तो साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, वहां से आकर के और बिहार में ज्ञान सुनावे, इनका इतना ताकत कैसी। तो बोले चलो देखें। तो हम 2-3 दोस्तों के साथ पहुंच गए वहां सेवा केंद्र पे, वहां लिखा था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। हमने उस भाई को ले, हम बोले रे भाई बुद्धू ये कन्याकुमारी थोड़ी है, तो ब्रह्मा कुमारी है। तो उसने बोला कि अरे भैया क्या ब्रह्मा कुमारी कन्या ये सब कन्याएं हैं।
1: अच्छा
2: हाँ, ये ज्ञान सुनाती हैं, सरस्वती हैं, कन्याएं सब हैं, इसीलिए। तो हम बोले अच्छा। फिर उसके बाद लोग कोर्स करने के लिए, तो हम थे हमारे साथ दूसरे दोस्त, हमारे साथ हमारे साथी हैं डॉक्टर बनारसी, तो हम लोग दोनों एक ही साथ पढ़ते थे, तो उसके लिए आए। फिर हम तो कहाँ रनर थे घूमने वाले, हम तो चले गए वहाँ से नेपाल घूमने के लिए। 5 अगस्त को एडमिशन हुआ था, 15 अगस्त की छुट्टी थी, तो नेपाल हमारे से नजदीक था मुजफ्फरपुर से रक्सौल से था। तो हम एक वीक उधर चले गए, एक वीक हम बोले बनारसी भाई आप जाके कोर्स करो। उसने 7 दिन कोर्स किया। हम जब लौट के आए बोले बनारसी भाई आपने क्या क्या बहनों ने दीदियों ने क्या सुनाया। बोला हमको समझ में नहीं आया। हम बोले अरे क्यों, तुम पढ़ा लिखा है बुद्धू थोड़े है। फिर तो बोला नहीं हमको एक बात समझ में नहीं आया। बताया क्या। बोला शिव शंकर 2 हैं। हम सोचने लगे कि शिव शंकर पहले 1 थे अभी 2 हो गए।
1: अच्छा
2: हाँ। हम बोले कि तो भाई ये कहीं दूसरे जगह ये शिव शंकर 2 कैसे हो गया। बोला मालूम नहीं उन्होंने कहा है। फिर बहुत सारी चीजें, खैर हम तो वेद शास्त्र के ऊपर बहुत स्टडी किया होता। हम 7वां क्लास में जो पढ़ते थे 8वां में, तो वेद शास्त्र गीता रामायण भागवत हर एक चीज को पढ़ करके पूरा कर दिया। और सभी धर्मों में हम जाते रहते थे, मुस्लिम इस्लाम में जाकर के हम नमाज पढ़ना सीखा, पहला कलमा तैयद ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर जब हम हाई स्कूल में गए, हम क्रिश्चियनिटी कृष्ण स्कूल में, हमें बिशप रॉकिस में था, हम चर्च में जाने लगे, तो लोग बोले अरे तुम हिंदू बनेगा क्या, ये है मुसलमान बनेगा क्रिश्चियन बनेगा सब। फिर हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, हम गुरुद्वारा में रहे 2 साल, वाहे गुरु एक माई जगत भी आए 3 चेले पर, हर धर्मों में सब जगह जाते सबको एक साथ। हम बोले भाई हमें कौन क्या बनेगा वो नहीं, हमको एक इंसान बनना है, इंसान तो बनने दो। बाकी दुनिया तो इंसान है, इंसानियत नहीं है, लोग हैं। तो हमारे मोटो ही अलग था बचपन से ही, हमारा विचार ही। तो फिर वहां से तो उन लोगों ने कोर्स किया, हम कोर्स नहीं, हम डायरेक्ट जा करके जब पिता श्री ब्रह्मा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा जो सुनाते हैं, तो हम बोले पता नहीं, हम तो नास्तिक आदमी, हम भगवान को मानते नहीं थे, कोई कुछ होता था तो हम क्वेश्चन आंसर करने लगते थे, लेकिन यहाँ कोई क्या नहीं, हम खुद समझना चाहते थे क्या। हाँ तो ब्रह्मा को ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हम बोले ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या पढ़ाई होती है। फिर एक एग्जीबिशन लगा, लोगों ने हमको एग्जीबिशन दिखाया, बोले इसको समझाना है, कौन समझाएगा, तो खुद चुप। हम बोले हम समझा देंगे, तो हम सर समझा करके रखते, लेकिन ब्रह्मा बाबा के देखते थे कौन है, मुझे शायद इनका गुरु होगा क्या, ऐसे क्या स्टडी नहीं किया था। फिर बहनों ने बताया कि ये शिव बाबा के माध्यम है, निराकार परमात्मा आकर साकार में कैसे करता है तू। फिर वहाँ कोर्स करने के बाद कहीं हमको फिर सुरित हो जाएगा कि भगवान आता है, भगवान पढ़ाता है, भगवान के ढूंढने के लिए साधु संत ऋषि मुनि कितने वेद शास्त्र गीता रामायण भरा हुआ है, सारा हमारा भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति सभ्यता है। फिर वहां से माउंट आबू में हम आए, संदेशी दादी हमारी टीचर थी, शांतामय दादी और संदेशी दादी, उनके साथ हम आए, और दादा आनंद किशोर यहाँ आए। तो जो गुलजार दादी में उस समय बाबा अव्यक्त उसी समय हुए थे, बाबा अव्यक्त हुए 1969 18 जनवरी, हम आए ज्ञान में 5 अगस्त 1969।
1: अच्छा
2: हाँ, तो इसी से हम 70 में हम पहले आ गए थे, 69 में आकर उसी समय ये ध्यान रहता था कि हम योग कैसे लगाएं, आंखें बंद करके कैसे लगाएं, इसी से हमको को राजयोग मेडिटेशन सीखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम योग में बहुत रुचि रखते थे, फिजिकल योग में हम मास्टर थे, इसीलिए ये स्पिरिचुअल योग है, आध्यात्मिक है आत्मा। फिर वहाँ आत्मा और परमात्मा का लेसन दिया गया। और जब माउंट आबू में आए तो बाबा आए हुए थे, तो बाबा जैसे दृष्टि दिया बुला दो, तो हम ऐसे शरीर से डिटैच हो गए, हमको अनुभव हुआ, हम अनुभव के आधार से चले हैं, ज्ञान सुन के सुना के नहीं, हम अनुभव हैं एक्सपीरियंस, इसलिए हम अनुभवी रथ हैं। तो वहाँ करके
1: तो जैसे आप माउंट आबू आए और आपको इस आध्यात्मिकता की अनुभूति हुई, जैसे कहते हैं कि अध्यात्म में शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा चैतन्य है जो इस शरीर को चलाती है, आपने उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया,
2: अनुभव एकदम डिटैच हो गए कि शरीर भले हम बैठे हैं, हम नीचे जमीन में बैठे थे पद्मासन में, लेकिन हमको दृष्टि ले रहे थे, इतना मन बुद्धि जैसे एकाग्र हुआ, जैसे लोग हठ योग में कहते हैं कि वो एकाग्रता में एकाग्र हुआ, तो लगा शरीर से हम डिटैच हो गए हैं, हम कहीं हवा में उड़ रहे, तो फिर हम 2 मिनट तक ऐसा अनुभव करते रहे, फिर हम टच किया जमीन को कि हम ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, ऐसे हिलाया देखा तो देखा अलर्ट, फिर हम देह भान में आ गए, बॉडी कॉन्शियस में, जब हम आत्म स्वरूप में थे कि आई एम डिटैच, आई एम ये प्योर एंड पावरफुल सोल, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का संतान हूँ, परमात्मा हमको शक्ति दे रहा है, सर्वशक्तिवान के साथ कनेक्ट, जैसे कनेक्ट किया और ये डिटैच, लेकिन फिर हमको लगा कि हम कहीं उड़ तो नहीं रहे, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, फिर हम जमीन को टच किया, फिर जैसे आगे धरती पे, हमने ओहो, तो सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस में तभी हमको अंतर पड़ा, और तब हमारा वो जिज्ञासा बढ़ गई और उमंग उत्साह सारा सब चीजें
1: जी। तो जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारे धर्मों का भी स्टडी किया है आपके युवा काल में, और जब राजयोग मेडिटेशन के बारे में आपको पता चला तो आप न सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि अनुभव में आपने विश्वास रखा, तो जब ये पहली बार ये अनुभव किया, आपको लगा कि मैं इतने साल उनसे इतने सारे धर्मों का पढ़ाई कर रहा था और पूजा पाठ भी जो भी हर एक धर्म का होता है, फिर जब आध्यात्म में आए तो वो सभी चीजों का आपको तर्क वितर्क भी समझ में आया होगा?
2: नहीं, तर्क वितर्क नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो हमको पहले से थी, खाली ये था कि हमारा था व्हाट इज ट्रूथ, गॉड इज ट्रूथ, इसमें हमको मालूम था, पढ़ाया था बचपन से कि एक सत्य दुनिया में एक परमात्मा सत्य है, बाकी झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार, सब रट रहे हैं, झाल बजा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में, इसलिए हम सभी जगह जाते थे हर धर्मों के व्हाट इज ट्रूथ, और सभी जगह एक ही चीज बताते हैं, जैसे हम मुस्लिम में इसमें इस्लामिक में गए तो वहां भी बोला कि आदम को खुदा मत मानो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम, गॉड इज ए लाइट, वो सातवें आसमान रहने वाला है, या परवरदिगार खुदा सर्व आत्माओं का पिता है, वहां भी गए तो वही, सिख रिलीजन में गए तो वहां भी यही बताया, एक एमआई जगत भी आए, 3 चेले परवान, 1 करतार, 1 पंडार, 1 वही दीवान, कि एक परमात्मा एक है, निराकार निरंजन निरंकारी, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, वो 3 देवताओं की रचना करता है, 1 करतार, 1 पंडारी, अपना हिंदू रिलीजन में जो है सनातन में है, तो सनातन में यही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वहाँ कि लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी तीसरे एक अलग शक्ति है जिसको शिव बाबा कहते हैं शिव। क्रिश्चियनिटी में गया तो वो भी बोला कि गॉड इज वन, नो सो जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट इज नॉट ए गॉड, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, बट गॉड इज वन। फिर उस हमने बोला गॉड क्यों कहा, व्हाई यू टेल द गॉड, उसमें भी 3 शब्द था, GOD, जी मीन्स जनरेटर, स्थापना करने वाले ब्रह्मा, ओ मीन्स ऑपरेटर टू टेक केयर विष्णु, एंड डी मीन्स डिस्ट्रॉयर विनाश शंकर, बट GOD गॉड, गॉड इज वन लाइट। तो सभी धर्मों का एक ही निचोड़ हमको मिला कि परमात्मा एक है, निराकार, ये पॉइंट ऑफ लाइट, वो ज्योति स्वरूप है, सर्वशक्तिवान है, ही इज नॉट कम इन डेथ एंड बर्थ, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, बाकी जितनी आत्माएं हम लोग दे सारी हैं सब जन्म मरण में आते हैं, चाहे देवी देवता हैं, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, राम लक्ष्मी नारायण, या जो भी धर्म, जितने धर्म पिताएं भी हैं, चाहे जैसिस क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, इब्राहिम हो, सभी हम सब चक्कर में आते रहते हैं, इसलिए सब चक्कर से छूटना चाहते हैं कि आई वांट टू लिबरेशन एंड फ्रूशन, मुक्ति, जीवन मुक्ति, मोक्ष, तो वो चीज हमको यहाँ मिल गया और बस हम बोले हमारी सारी यात्राएं पूरी हुई,
1: आपकी रिसर्च खत्म हो गई।
2: हाँ, वो मिल गया ना, तभी तो गीत गाते हैं पाना था, जब सारी चीजें सभी जगह एक ही जगह इशारा कर रहा है कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, यार पॉइंट ऑफ लाइट, और आत्मा का पिता परमात्मा है, शरीर का नहीं, और कोई भी हम इतना सारे संस्थाओं में इतना जगह गए, कहीं नहीं पूछा कि तुम्हारे कितने पिता जी, यहाँ आते ही हमारा प्रश्न यही, फार्म फिलअप करवाते थे कि आपके कितने पिता हैं, तो हम लोग बोले एक ही है, हम लोग भाई ये सबको एक होते हैं, तो उसे बताया गया नहीं सबको 2 हैं, एक है शरीर का पिता जो देह का, देहदारी का है, जो आपके जाति धर्म का है, जो जिस रिलीजन का कॉन्शियस का है, और दूसरा हम सभी आत्माओं के परमात्मा है, इसलिए

0: तब जाते हैं टेम्पल में जाएंगे, तबे मातस्य पिता तमे बंधु सखा, एक ही गीत गाते हैं, दो अर्थ में गॉड एंड मदर एंड फादर, हर एक जगह एक प्रार्थना सारा था, एक निराकार का है। तो ये बात हमको बिल्कुल अच्छा लगा। और उसके बाद
1: तो फिर आपको ये ज्ञान समझ में आया और उसमें विश्वास बैठा, फिर आपने घर में भी तो शेयरिंग किए होंगे, फिर उन्होंने आपको सहमति दी थी ये चीजें फॉलो करने के लिए?
0: घर में शेयरिंग बचपन से ही, हम इतना हर चीज में एक्सपर्ट थे, चाहे कुश्ती हो, कराटे हो, खेल हो, हमको क्रिकेट नहीं खेलते थे, हॉकी वाले थे, सारा सब चीजें हमारा ये सब कुछ था ही हम लोग का DNA में, कहीं राजपूत फैमिली से थे, वहाँ से होता है कि कंकर करना है, जीत करना है, हमको थोड़े मालूम है कि तो शरीर से जीतना या किसे, तो इसीलिए घर वाले नहीं थे स्टार्टिंग में, अच्छा कहीं करेक्टर में नंबर वन, आज तक कहीं भी कुछ ये सब चीजें, आजकल कितना लोग जाके कहीं स्मोकिंग ड्रिंकिंग ड्रग्स ये क्या, कितना सारा तमो प्रधानता हो गया, उसमें बड़ी सात्विकता थी वैसे भी, और ये हम लोग गाँव से रहते थे, शहर में आए, शहर में वहाँ के सब वातावरण में, लेकिन किसी चीज के हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ, हम संग के बड़े संभाल रखते थे, जैसा संग वैसा रंग, हम संग में रहते हुए हम डिटैच, कोई स्मोकिंग करने वाला है वो भी हमारा फ्रेंड, कोई झगड़ा करने वाला है वो भी हमारा फ्रेंड, जो शांत वाला वो भी हुआ, दोनों हम डिटैच कैसे रखे, उसका बैलेंस, लव का भी बैलेंस तो लव का भी बैलेंस दोनों।
1: So, आपको घर परिवार से कभी कोई विरोध नहीं हुआ?
0: नहीं, बाद में हुआ, जो फिर जब हम लोग चले और जब पक्का धारणाओं चलने लगते, खान पान की शुद्धि, उस तो वहाँ वाले तो सब नन भेज खाते हैं, सब खाते हैं, हमको पहले अच्छा नहीं लगता था, उल्टी हो जाती थी करते थे, लेकिन इसमें और भी स्ट्रांग हो गए, फिर प्यूरिटी के पवित्र काय की पढ़ाई पवित्रता में होती है ब्रह्मचर्य में, तो इसीलिए लौकिक पढ़ाई भी होती है बचपन में, तो भी पवित्रता में काय बुद्धि भटकेगी नहीं, तो जो प्यूरिटी की बात आई है सब सारा सब चीजें, तो फिर उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं आपका शादी करना है नहीं करना है, हम लोग क्यों, शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ रहते हुए भी घर परिवार में यही एक संस्था है सारे वर्ल्ड में, हमारे अब यहाँ इसमें 59 से हैं, सारी दुनिया के हम चक्कर लगाए हुए हैं, सारे विश्व में कोई भी कोना हम छोड़ा नहीं, हर साल हम 2 महीने जाते थे लंदन, अमेरिका, जर्मन, जापान, रशिया पूरा, लेकिन हर एक जगह से एक ही चीज होता है कि यही हम देखते थे कि यही एक संस्था है जो ब्रह्मा कुमारी स्तरीय विश्वविद्यालय, ये प्यूरिटी में खान पान रहन सहन संकल्प आचार विचार मन वचन कर्म, ये चीजें जो है ये बड़ी यूनिक लगी और ये हमको बहुत पसंद आया, और ये हमारे जैसे एक लाइफ का एक नेचुरल नेचर बन गया, इसी से अभी हम ना 79 ईयर्स के हैं, लेकिन अभी साइकिलिंग करते हैं, अभी साइकिल से चलाते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए, बीमारी होती नहीं है, लोग बुलाते हैं, जैसे कोई गेस्ट आया, कोई दिन 2-4 दिन रहेगा चला जाएगा, कोई बीमारी वो गेस्ट है और परमानेंट नहीं है, हम उनको परमानेंट रख देते हैं, ये हो गया वो गया, सोच सोच करके डिप्रेशन में इसमें उसमें दुखी हो करके बीमारी को बढ़ाते रहते हैं।
1: तो भाई जी एक बात तो है कि आपका बचपन से वो चुस्ती फुर्ती बहुत स्ट्रांग है, और जैसे आपने कहा कि आप राजपूत फैमिली से है और शादी इन सभी चीजों का दबाव था, तो फिर समर्पित कैसे हो गए संस्था में आप?
0: समर्पित नहीं, जब हम हमेशा जब हमको कॉलेज में छुट्टियां होती थी तो हम लौकिक घर में बहुत कम जाते थे, हम माउंट आबू आते थे, उसमें पहाड़ियां हरियाली सब, माउंट आबू तो हिल स्टेशन था, तभी कंसेशन टिकट भी मिलता था 42 रुपीज का।
1: अच्छा।
0: पहली सारा ट्रेन में इस समय हिल स्टेशन के नाम, बाद में ये सब सारा हुआ ना, तो जब यहाँ आते थे तो यहाँ कोई भी सेवा मिलती थी, तो यहाँ हमारी बड़ी दादी थी, दादी प्रकाशमणि जी, बाबा ब्रह्मा बाबा के बाद दादी प्रकाशमणि, तो वो हमारी बहुत, तो कोई भी कार्य देती थी हम थोड़े में तुरंत करके आ जाते थे, देखती रहती थी, तो दादी ने ऑफर किया कि आपको यहाँ रहना है, तो बोले नहीं दादी हम अपना पढ़ाई पूरी करके हम डिग्री ले करके आएंगे, वैसे हम बीच रास्ते में नहीं आएंगे, इसलिए हम जाते थे पढ़ाई करके एग्जाम दे करके और सब छुट्टियाँ में आ जाते थे, और फिर उसके बाद आए और 1971 से 1972 से हम फिर यहाँ डेडिकेटेड, और दादी जी ने हमको एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में रखा आवास निवास में, नाउ आई एम डे 42 ईयर्स आवास निवास के, विदाउट कंप्यूटर बिना इसके रहते हम 25-30 हजार लोगों के एकोमोडेशन कैसे करता था गॉड नो, तो भगवान को हम जो नहीं मानने वाले लोग क्यों नहीं मानते हैं, इसका एक कारण है, क्योंकि सभी ढूंढते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है, Everybody believe to God, worship to God, pray to God, but who is God? Well, I don't know. तो फिर किसका पूजा कर रहे हैं? जा मंदिर है, हम जितने ज्योतिर्लिंग में सारा स्थान सब धर्मों सब जगह में इंजॉय करते जाते थे, लेकिन सब वही ढूंढते हैं आई डोंट नो। फिर परमात्मा आके खुद अपना परिचय खुद दे रहा है कि मैं निराकार हूँ ज्योति, मेरा नाम शिव है, सदा शिव, शिव माने कल्याणकारी, उसका अपना शरीर नहीं है ना, इसलिए उसका नाम चेंज नहीं होता है। बाकी हम आत्माएं बर्थ रीबर्थ जन्म मरण के चक्कर में तो हमारा नाम चेंज होता रहता है। ये सारी चीजें केवल फिलॉसफी नहीं, ये प्रैक्टिकल लाइफ है जो आज इतना वर्षों से हम उसको पालन कर रहे हैं।
1: तो फिर आप 72 में समर्पित हो गए दादी के कहने पर, आप आ गए थे, तो घर पे आपको छुट्टी मिल गई थी आसानी से?
0: घर वो तो हम हमारे पर कहा ना, लोगों को बहन जी किसको कहे या भाई या सुनने वाले श्रोता किसको को, आप अच्छे कार्य करेंगे ना तो 10 विघ्न बाधाएं आएंगे और उल्टा काम करेंगे ना तो और भी आपको सहयोगी मिल जाएंगे। कोई स्मोकिंग करने वाला नहीं करेंगे, बोला पंडित बन गया, ड्रिंकिंग नहीं होता, और वो सब आएगा बोला हाँ चलो एक और ग्राहक बढ़ गया। तो उसी तरह से घर वाले तो थोड़ी छुट्टी दे देंगे। तो ये है, तो जब मैरिज का बात आया तो हमारे जो छोटे कजन ब्रदर्स ये सब थे, का एक जॉइंट फैमिली था, तो हमारे अंकल ने कहा कि तुम मैरिज नहीं करोगे तो ये लोग कैसे करेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम जा रहे हैं माउंट आबू, हम 5 साल के बाद आएंगे, तब तक आप इंतजार करना 4-5 साल, 4 ईयर्स के बाद फिर हम आके मैरिज कर लेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो जब हम 4 साल के बाद गए, यहाँ 5 साल तक तो हम कहीं गए नहीं, जैसे अपना योग में तपस्या में ध्यान में सेम हम बिजी थे। सब दुनिया उनको कहते थे आप लोग यहाँ आओ, परिवार वालों को फैमिली वाले को, वो कहते हमारे पास टाइम नहीं, हम अपना बिजी हैं। तो हम बोले भाई आपको टाइम नहीं तो हमें भी टाइम नहीं ना, हम भी अपना बिजी हैं ईश्वरीय सेवा में और ये सारी चीज़ों में। तो फिर जब हम 5 साल के बाद गए तो देखे घर में सब बच्चे दौड़ रहे, खोए रहे, हम लिए किसके बच्चे हैं, बोले वो छोटे भाई क्या है उस बहन के। हम बोले रे भाई आप लोग तो हमको ठगी कर दिया, हमने कहा था ना 4 साल इंतजार करो, अब तो 2 साल भी इंतजार नहीं किया, कहते कैसे होगा। सभी की दुनिया भाई अपनी अपनी है, सभी अपना अपना कर्म है धर्म है, कोई किसके लिए रुकता नहीं है। खाली वो सोते वो गाड़ी आगे बढ़े, जैसे आप क्यू में जा रहे हैं, वो सोते ही गाड़ी आगे निकले तो हम साइड से निकाल लें अपना। तो उसी तरह हम जैसे इधर निकले तो हम बोले भाई आपने हमारा बात नहीं माना था, आपके बात हम क्यों सुने, हम भगवान की सुने का आपकी सुने, क्योंकि यहाँ पवित्रता ही सच्चरित्रता है। यही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहन जी, जहाँ सभी जो है ना खुशी की बात सुनाते हैं, दुखी का तो बात ही नहीं है, वो तो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। इसीलिए ये चीज है और ये जीवन यहाँ की और ये सब बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए अभी भी आज तक अभी देख
1: जी। तो भाई जी आप जैसे आपने कहा कि 42 साल से आप अकोमोडेशन डिपार्टमेंट का संभालते हैं और 25-30 हजार लोगों का भी आप बिना कंप्यूटर का अकोमोडेशन करते हैं,
0: कागज में
1: कैसे याद रखते हैं चीजें आप?
0: यही तो लोग बहन हर एक जगह लास्ट में काउंट सा पॉइंट आता है, डॉक्टर भी दवाई दे देगा नहीं ठीक होगा कुछ होगा, तो बोला भाई ऊपर वाले का छोड़ दो परमात्मा के, जब जब सब ऊपर वाले ही छोड़ते हैं, करण कराउन तो ऊपर वाला, हम तो कार्य करने वाला है, हम तो करण हार है कराउन हार है, तो कैसे मेमोरी हमारी पहले से बहुत फास्ट है अभी भी, जहाँ जहाँ गए जैसे आपको हम पूरे 60 साल के रिकॉर्ड दे देंगे एक एक चीज की, इतना कंप्यूटर तो अभी।
1: आपको लगता है ये कि ये ध्यान के कारण आपकी मेमोरी इतनी
0: बहुत शार्प
1: शार्प
0: वो तो शार्प हो गया, पहले मेमोरी थी लेकिन थोड़ा जैसे आप कोई पेड़ को काटते हैं तो कुल्हाड़ी लेके काटते, एक भाई एक पेड़ काट रहा है तो और बोला अरे भाई इसका सार्फ करो तेज होगा ना फड़ा करे, तो मेडिटेशन से, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन करना होता है, मन की एकाग्रता, एक परमात्मा से जब हम कनेक्ट करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, मन बुद्धि के एकाग्र करते हैं, तो उसमें पावर ऑटोमेटिक आ जाती है। अब पहले 2 पावर आपके पास आएगी, 2 शक्तियां, वो है निर्णय शक्ति और परख शक्ति, पावर ऑफ जजमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। 1 सेकंड में आप जज कर लेंगे राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, जजमेंट, ये पावर। तो इसी से और जैसे इसको कंसंट्रेट करेगा तो 2 शक्ति आती है, कैचिंग एंड टचिंग, परमात्मा को टच करेगा कि दिस राइट दिस रॉन्ग, देन हमारा एकाग्रता है। यहाँ मेन मेडिटेशन में कंसंट्रेशन, इसमें कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाती है।
1: और कौन सी ऐसी बातें या सिद्धियां हैं जो आपने इस लंबे साल, जैसे एक लगभग 50 वर्ष से भी अधिक समय से आप साधना कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी सिद्धियां आपने प्राप्त की है राजयोग के द्वारा?
0: बहुत सारी सिद्धियां का, जैसे आप एकाग्र करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे और एक ही संकल्प में कई टाइम तक घंटों तक करेंगे, और तपस्या करेंगे। अभी देखिए डेली हम 11 बजे रात को सोते हैं, 2 बजे

0: वेट एंड सी, देखिए उसके बाद क्या होगा, जो होना होगा वो तो होना ही है, लेकिन हम अपने स्थिति को अपने मनसा, यहाँ इसलिए माइंड इतना परफेक्ट होता है, फिजिकल तो है, होता ही है, लेकिन फिजिकल पावरफुल माइंड इज प्रेजेंट इन पावरफुल बॉडी। सदा खुशी में रहिए, मेन चीज जो है ना खुशी। खुशी एक ऐसी गुण है जो तीन जगह काम करता है, सभी जगह एक ही जगह काम करेगा, लेकिन खुशी जैसा खजाना नहीं। खुशी में रहिए, बांटिए, दूसरे भी खुश हैं। खुशी जैसा खुराक नहीं, जो खाते हैं खुशी खुशी खुराक, खुशी जैसी जिंदगी। खुशहाली में रहेंगे, आधा बीमारी सब ऑटोमेटिक होगा। और खुशी के रहने की एक ही जगह है, वो है राजयोग का मेडिटेशन। तभी देखते हैं अभी भी इतना एज में 79 में हम साइकिल चलते हैं, हमारा साइकिल 35 ईयर्स का साइकिल दादी प्रकाश मुनि दी थी, जंप मार के चलते। अभी दो लोग मिले भाई बहने, बोला आप लगते नहीं इतना ऐसा, हम बोले हम सोचते नहीं कि हम लगते हैं, लोग सोच सोच करके बूढ़े हो जाते हैं और हम सोच सोच के जवान हो रहे हैं। यही राजयोग का मेडिटेशन।
1: बहुत सुंदर भाई जी, आपने मतलब बात बात में इतनी बातें कह दी कि आपको इस राजयोग साधना के कारण ये शारीरिक उम्र का असर नहीं होता है।
0: बिल्कुल नहीं,
1: और
0: नहीं
1: मन की संकल्प उनसे हल्के रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, और एकाग्रता की शक्ति इतनी है कि आप कोई भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं और याद
0: नहीं उसका कचिंग और टचिंग उसका पहले आएगा, इसका रिजल्ट क्या क्या है और कैसे हमको पहले टच करता है, क्या हमारा इतना कंसंट्रेट रहता है परमात्मा से, सर्वशक्तिवान से, निराकार से, ज्योति से, जो जिस धर्म वाले जिसको भी मानने चाहे वो अल्लाह कहे गॉड कहे इसका, अगर उनके साथ सही कनेक्शन है और सही पावर आ रहा है, जैसे आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं, स्विच ऑन कर दिया, सब चार्जिंग होकर आप ही उससे पावरफुल हो जाएगा। तो राजयोग मेडिटेशन ऑल्सो ये चार्जर है कि आत्मा की बैटरी आज डल हो गई है। सारी दुनिया भले तन है, मन है, धन है, दौलत है, बच्चे बीवी, फिर भी लोग पजल है क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है, लोड नहीं ले रहा है। और अगर चार्जर रहेगा, आपके पावरफुल चार्जिंग रहेगा, तो आप हमेशा एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी खुशहाल खुशहाली में रहेंगे।
1: थैंक यू सो मच भाई जी, आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियोस में आए, और जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम के तहत आप अपनी योगी जीवन की अनुभवों को साझा करते हुए हम सभी को एक उदाहरण दिया कि मेडिटेशन या ध्यान या राजयोग
0: तो सब एक परमात्मा के संतान है, आत्मा एवं भाई भाई है। इसीलिए हमारे जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं, आप इस तरह से अपनी मनोवृत्ति को शेष बनाइए, सबके लिए आत्मिक भाव रखिए, सबके भाई भाईचारा। तो नेचुरल लगा, नारा लगाने से जरूरत नहीं है कि मैं भाई भाई आत्मा आत्मा भाई भाई फिर पीछे करो लड़ाई, इसकी जरूरत नहीं है। सबकी यही है राज्यों की पढ़ाई, ये सदा खुश रहो, खुशहाली में रहो, बांटिए। बहुत थैंक्स,
1: थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू। दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम जीना इसी का नाम है, और ऐसे ही अनुभवों को फिर सुनेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं सभी वर्गों से मिलते हैं, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे स्वास्थ्य जगत हो, चाहे प्रशासन हो, सभी वर्ग से मिलते हैं। स्कूल, आंगनबाड़ी और पंचायत, इन गांव में दिनों बहुत आवश्यक मैंने प्रशासन खुशी होता है। तो आज हमें खुशी है क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा प्रस्तुतकरण होता है। तो आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करतौली में पहुंचे, बहुत खुशी और हर्ष का साथ आज एक विषय पर हम आलोकपात करेंगे और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए महान महान हस्ती आज इस कार्यक्रम को रंगारंग करेंगे, जानकारियां देंगे और हमारा वरिष्ठ शिक्षक इस कार्यक्रम को सजाएंगे। और संस्था प्रधान श्रीमती सुनीता मैम को भी स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, खासकर आज का कार्यक्रम के सुंदर को सहयोग देने के लिए, क्योंकि रेडियो मधुबन हर फील्ड में बच्चों का बड़ों का सबका विकास के लिए कुछ न कुछ करता रहता है, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों का मिलित सहयोग से विद्यार्थियों का विकास, नाना स्कूल का विकास अर्थात गांव का विकास और खुद का विकास, इस संदर्भ में सबको पता है नशा नाम सुनते तो बहुत प्रकार नशा होता है, नारायणी नशा, कोई कोई पूरा नशा करते हैं भगवान को ही ध्यान करते, कोई कोई नशा करते अपना शरीर को मन को धन को ध्यान नहीं देते, नशा भी करते, बहुत सारे नशा करते हैं जैसे तंबाकू बीड़ी शराब बहुत कुछ आता है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में ये सब तो दूर रहता ही है, लेकिन उनका अभिभावक, उनका माता पिता, उनका पड़ोसी, उनका रिलेटिव करते जिसका चलते उनका पढ़ाई में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जब ये पढ़ाई करके जाते घर में मम्मी पापा किसी संग दोष में नाचा हालत में करते तो बच्चों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो नशा नाच की जड़ इस टॉपिक पर आज हमारे साथ इस कार्यक्रम को सुनने के लिए पर्वत सिंह सर उपस्थित है, पहले भी उनका आवाज सुने हैं और नाम कितना सुंदर, पर्वत जैसे काम करते हैं पर्वत जैसे काम करेंगे माने पर्वत मतलब विराट विशिष्ट काम करते हैं। तो आपको स्वागत करते सर जी, जी आप अपना परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन
1: जी। धन्यवाद, सभी को नमस्कार और पवित्र भाई को भी नमस्कार। मैं प्रभु सिंह देवड़ा, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करतौली। अभी जैसा कि पवित्र भाई ने बताया कि आज हम नशा नाश की जड़ विषय पर बातचीत करने के लिए हैं, और ये बताया गया कि विद्यालय में इस बात की चर्चा करना इसलिए ठीक रहता है कि यहाँ जो विद्यालय में बालक पढ़ते हैं और बालक से समाज से जुड़ने का सीधा माध्यम है। हम अपनी प्रार्थना सभा के माध्यम से, जैसे हमारे विद्यालय में 150 बच्चे हैं, तो हम सीधे सीधे एक गणित बिठाए तो 150 परिवारों तक सीधा अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो स्कूल एक अच्छा मंच है, माध्यम है, और वैसे कहा भी जाता है कि शिक्षा है वो समाज में परिवर्तन का माध्यम है। हम शिक्षा और विद्यालय और बच्चों के माध्यम से समाज में जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। तो आज का जो विषय है नशा नाश की जड़, वो प्रासंगिक है। प्रासंगिकता यह है कि वर्तमान समय में जो नशा है वो नाश यानी समाप्त विनाश की जड़ बना हुआ है। नशे के कई रूप होते हैं, जैसे सामान्य तौर पर हम सभी जानते हैं कि एक शराब के कई प्रकार आ गए, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक हो या हार्ड ड्रिंक हो, अफीम है, गांजा है, चरस है और बीड़ी तम्बाकू से संबंधित सारे नशे। अब इसमें नशा किसी भी रूप में लिया जाता है। अब मैं जैसे तम्बाकू की बात करूं तो तम्बाकू में लोग आमतौर पर इसके बारे में क्या कहते हैं वो विषय पे बताऊंगा, फिर मैं आगे चलूंगा कि इसका प्रारंभ कैसे होता है। तो तम्बाकू के विषय में लोग इसको कई रगड़ कर चूने के साथ खाते हैं, कई गुटके के रूप में, कई इसको जलाते चिलम के रूप में लेते हैं, कई अपने गांव के बड़े बुजुर्ग उसको सूंघने के काम में भी लेते हैं, कई इसको दांतों के मंजन के रूप में भी करते हैं। और उसमें ये तर्क दे दिया जाता है कि मैं तो ये थोड़ा से रूप में लेता हूँ, कम मात्रा में कभी कभार इसका यूज करते हैं, इससे कुछ नहीं होता, ये सब आत्मसंतुष्टि के लिए और अच्छा लगाने के लिए किया जाता है। जबकि तम्बाकू का किसी भी रूप में सेवन किया जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए हानिकारक होता है। जैसा कि पवित्र भाई ने कहा कि नशा तम्बाकू हो या कोई भी नशा हो, वो तन मन धन और सम्मान, इन चारों चीजों को नष्ट करता है। अब नशे का प्रारंभ कैसे होता है? नशे का प्रारंभ शुरू में एक आनंद के साथ होता है, मस्ती के साथ होता है, अबोध अज्ञानता वश शुरू करता है, क्योंकि उसके परिवेश में आसपास कुछ लोग होते हैं जो इस नशे से ग्रस्त होते हैं, लगे हुए नशा करते हैं। तो वो क्या है, कभी कभार टेस्ट के रूप में ले लिया, स्वाद के रूप में थोड़ा चख के देखो, या अपने में थोड़ी अपनी धार्मिक बातों से इसको जोड़ू, तो जैसे शराब का सेवन है तो कई देवी देवताओं को उसको प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है, तो कई बार प्रसाद का रूप भी दिया जाता है कि थोड़ा सा प्रसाद है, इसमें कुछ नहीं होता। भगवान के नाम पर, जैसे तो भगवान शिव का उदाहरण ले ले, भगवान शिव की स्तुति करते हैं और हम सभी भक्त हैं और श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, तो इसमें भगवान शिव को बोले अफीम, गांजा, भांग, बोले भगवान शिव को बहुत अच्छे लगते हैं और हम उसके भक्त हैं, तो थोड़ा थोड़ा चख ले, इसका स्वाद कर ले। तो
0: साथी, अभी मैं आपको यही बार रोक रहा हूँ, क्या जब हमको पसंद नहीं है, क्या भगवान शिव को ये चीज पसंद है? लोग तो अपना फायदा के लिए भगवान का नाम लेते हैं।
1: हाँ, तो मैं वो
0: और आपका स्कूल में रखते हैं क्या भांग पर रखते नहीं, तो उनका नाम लेकर जो ये जो अंधश्रद्धा, ये चीज को कैसे मिटाना है? हम तो उनको बता नहीं, क्योंकि हम जो बता रहे कोई चीज खराब चीज जो होता है तो भगवान का नाम पर हम क्यों ले? जो हो चुका हो चुका, अभी आगे के लिए हमको ध्यान देना है। आसपास पड़ोस में जब बंदे का जो पेड़ रहेगा तो सरकार उसको बैन करता है, करता है ना, वो उस समय तो बोलते नहीं हम लोग ये भगवान के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि जब बोलबम जाते हैं तो भगवान नाम लेकर प्रसाद बोल खाते हैं, है ना। लेकिन ये चीज जानकारी होना चाहिए, जब कोई भी तम्बाकू जो हमारा नशा करता है, जब आसपास रखते हैं तो सरकार उसको क्या करता है, पेनल्टी बात दंड देता है, नियम विरुद्ध है। लेकिन मनुष्य अपना स्वार्थ के लिए,
1: ये कह रहा था,
0: ये चीज के लिए आज एक को दूसरे को देख कर वो भी करना कुछ नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा खराब है, तो पैसा तो जाएगा और जो नशा करते तो दंड होता है, कितना नष्ट होता है। लेकिन और कुछ जानकारी लेंगे, लेकिन और कुछ दिन के बाद सुन रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM स्कूल के साथ रूबरू हो रहे, बच्चे भी सुन रहे आज, क्योंकि बच्चे तो करते नहीं, लेकिन बच्चों का जो अभिभावक भी करते नहीं, मेरा विश्वास है वो करेंगे नहीं, करते तो ऐसे छोड़ देंगे, जाकर बच्चे मम्मी पापा को बताएंगे भाई इस तरह नाश होता है, नष्ट होता है शरीर का धन का। लेकिन और कुछ जानकारी लेंगे, लेकिन और कुछ विराम का सुन रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।

0: समस्त कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नशा नाश की जड़ है, चाहे तन चाहे मन चाहे धन सभी से हमारा क्षति होता है। तो इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए हमारे साथ सभी का सहयोग मिल रहा है, बच्चे भी अपना भाव को रखेंगे। नशा देखते हुए कभी किसको मना किए कि वो भी बताएंगे, कोई नशा करता हुआ देखे तो आप कभी जीवन में नशा का विरोध में मना के उनको समझा भाई नशा नहीं करो, चाहे अपना परिवार हो चाहे अपना दोस्त हो किसी से भी। बच्चे सब सुन रहे हैं ना, तो ध्यान से सुनना, जब आप कभी भी कुछ स्टेप लिए भलाई के लिए, स्कूल के लिए हो चाहे आपका दोस्त के लिए, आपका परिवार बड़ों के लिए ऐसे कभी किए होंगे तो आप हाथ उठाकर अपना बात को रखना, ये तो बहादुर का काम है। ठीक है, चलिए कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ भद्र सिंह जी उपस्थित थे। तो नशा नाश की जड़ है, नशा करते हैं लेकिन दूसरे का नाम पर जो करते हैं ये ठीक नहीं है। खुद को सोचो, खुद को देखना चाहिए, ये करने से हमारा क्या नुकसान होता है। क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक संग का बात को रखने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने में गट्टर में जैसे जा रहे, क्योंकि आज सरकार भी चाह रहा है कि नशा मुक्त भारत हो। नशा मुक्त भारत तब होगा जब नशा खुद से मुक्त होंगे, क्योंकि हमको लेकर ही भारत, भारत कहाँ से आएगा, ग्रास रूट जमीन स्तर और शिक्षा जो विद्यालय स्कूल ये शिक्षा का मंदिर है। यहाँ पर कभी कोई करता है सर मंदिर में, जैसे मस्जिद मंदिर में करते हैं, यहाँ पर कोई करते हैं, पहले तो कभी करते नहीं, भाई लोग कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन ये शिव का नाम पर जो करते हैं ये कलंक है, ये नहीं होना चाहिए। रेडियो का माध्यम से ये जागरूकता कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि नशा नाश की जड़ चाहिए। कोई देवी देवता का नाम पर लेकर कहा शराब भी चढ़ाते हैं किसी नाम का लेकर, लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए। भगवान का उनका हाथ पैर नहीं हो कैसे खाएगा, शिव मंदिर में शिवलिंग में जाते हैं तो उसका तो हाथ पैर कुछ नहीं है, ज्योति पूजा करते हैं, ज्योति निराकार है तो उनका हम गंजे कैसे भांग कैसे खिलाएंगे, वो तो संभव नहीं है। चलिए
1: सही
0: आप क्या कहना चाहेंगे
1: पवित्र भाई, मैं यही कह रहा था कि व्यक्ति इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है मनुष्य, और मनुष्य बड़ा स्वार्थी है और इतना अपने पक्ष में वकील बनकर आता है, चाहे वो धार्मिक मान्यता के नाम पर या अवसाद बोले मुझे ये टेंशन है यह तनाव है, ऐसा करने से नशा करने से मुझे ठीक हो जाता है इसलिए मैं नशा करता हूँ, या परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है किसी प्रकार का कलह है दुख है उस दुख को मिटाने के लिए मैं नशा करता हूँ, कई तरह के तर्क देता है लेकिन वो सारे तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि नशा किसी भी बात का हल नहीं है, नशा आने वाली गंभीर समस्या का द्वार है, वो जितनी भी है चीजें वो गलत है। अब मैं इसके कारण से अपने नशा का प्रारंभ होता है और ये परिवेश में बड़े बुजुर्ग करते हैं तो उससे बच्चों तक भी यह आता है। अभी एक पवित्र भाई बात बता रहे थे कि यह बच्चों को क्यों बताया जा रहा है या देश के लिए क्यों है, तो देश के लिए जो सबसे बड़ा धन होता है वो मानवीय संसाधन होता है ह्यूमन रिसोर्स, और उसके मानव है वो सबसे बड़ी, उसकी देश की जो जनता है प्रजा है मानव है या लोग है वो देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है, सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर वो पूंजी नशा नहीं करेगी तो स्वच्छ होगी, दीर्घायु होगी, तो वो देश के लिए एक बड़ी संपत्ति है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नशे से कैसे नुकसान होते हैं। नशे के तौर पर चाहे आप गुटखे की बात करें, तम्बाकू से ही बात करें अपन कि तम्बाकू की बात करो तो तम्बाकू का रूप किसी भी रूप में दिया जाता है, तम्बाकू के लिए उसके पैकेट पर जितने भी इसके प्रोडक्ट है उत्पाद है उस पर लिखा जाता है कि इसका सेवन करना हानिकारक है, ऐसा करने से कैंसर होता है वो होता है, सारी चेतावनियां लिखी हुई होती है सरकार द्वारा जारी भी की जाती है, लेकिन समाज पर इसका असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, इसका कारण है कि समाज के, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि समाज में कुछ रोल मॉडल भी होते हैं, रोल मॉडल यानी जिनको हम गलतीवश भ्रमवश नायक मान लेते हैं, तो अपना देश का जो असली नायक है वो अपने देश के सिपाही है, सैनिक है जो बॉर्डर पर रहकर अपनी रक्षा करते हैं वो अपने नायक है, या वो लोग जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया त्याग कर दिया वो अपने नायक है, लेकिन हम थोड़ा अज्ञानता के बस हमारे जो चलचित्रों में फिल्मों में पिक्चरों में जो काम करते हैं उनको अपना नायक मान लेते हैं, और नायक मानने के बाद उनका वो भी अपने दायित्व से विमुख हो जाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते और वो गुटखे और तम्बाकुओं की एड करते हैं, उसका विज्ञापन करते हैं, तो वो बड़े और दुख का विषय है। 5 रुपए के विमल के विज्ञापन में वो कहते हैं कि दाने दाने में केसर है, अब वो केसर नहीं है, लेकिन समाज में उनकी एक छवि है। तो हमारा जो अबोध बालक है या समाज का जो अज्ञानी व्यक्ति है वो उनको नायक मान लेता है और नायक मानकर उनके कहे अनुसार उन चीजों का उपयोग करने बोला, कह रहा है दाने दाने में केसर है। तो ये ऐसे चीज का सरकार को इन चीजों पर भी पाबंदी लगानी चाहिए कि इस तरह के विज्ञापन नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि समाज उनको फॉलो करता है, उनका अनुकरण करता है। ये चीज एक इसके लिए बच्चों या समाज पर असर नहीं पड़ता और उनमें भी दोहरापन है। अब उन नायकों को भी शर्म नहीं आती, एक तरफ तो विज्ञापन करते हैं कि सिगरेट थू थू करने में मजा नहीं है, सिगरेट छोड़ो, वही नायक दूसरी तरफ आके कहता है कि गुटखा खाओ दाने दाने में केसर है, तो उनके कहने में भी विरोधाभास है। तो हमको इस तरह की बातों में नहीं आना चाहिए और सरकार को भी दूरदर्शन या जो टीवी पर और मोबाइलों पर जितने भी एड दिए जाते हैं इस तरह के एड विज्ञापनों पर रोक लगाई जानी चाहिए और हमको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। 5 रुपए में केसर मिलता है क्या? 5 रुपए में केसर नहीं मिलता, केसर का भाव बड़ा महंगा है, तो वो हमको भ्रमित कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको और बताता हूँ कि जो कैंसर आज महामारी के रूप में आ रहा है और आने वाले समय में और ये महामारी का रूप लेगा, इसका जो 90%, वैसे कैंसर के कई कारण होते हैं लेकिन जो 90% कारण होता है वो तंबाकू होता है, तंबाकू से ही कैंसर होता है। 10% में अन्य कारण भी होते हैं, अपना खान पान रहन सहन सारी चीजें होती है, लेकिन 90% संभावना तंबाकू की रहती है। और तंबाकू जो सेवन किया जाता है तो सबसे ज्यादा इसका जो मुख कैंसर, मुंह का जो कैंसर की संभावना ज्यादा रहती है, तो इसका हम सेवन नहीं करें, ये हमारे लिए बड़ा हानिकारक है। इसके अलावा जैसा कि और नशे के लिए वाहन के संबंध में चले जाए,
0: अभी जो बात कर रहे थे नशा क्यों करते हैं, सामने बताया कभी टेंशन होता है, कभी पूरा हार्ड वर्क होता है तो थोड़ा विराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, मेडिसिन तौर पर उसको लेते हैं। जब मेडिसिन होता है जैसे कैंसर का दाना नाम दिए, ये सब जो नाम सामने होता है, जब ये चीज होता है उसका जगह भी उसी जगह में होना चाहिए, मेडिसिन का जगह में होना चाहिए, शराब तंबाकू गुटखा मेडिसिन स्टोर में होना चाहिए। उनका आपको चाहिए तो मेडिसिन स्टोर में जाइए, तो वहाँ पर तंबाकू शराब के लिए अलग शराब काउंटर क्यों खोला जाए, उसको पूरा मेडिसिन के हिसाब से, आपको दर्द लग रहा है, आप खेती से आए कि स्कूल में पढ़ाई के टेंशन हुआ, घर में कुछ बोल दिए टेंशन हुआ, हाँ घर में मारपीट हुआ, किसी और मेडिसिन का नाम देकर हम पी रहे हैं। सर ने बताया जैसे टेंशन होता है जो कुछ होता है हम ले लेते हैं, जैसे केसर का नाम आया, केसर होता तो भाई ड्राई फ्रूट में रहना चाहिए, ड्राई फ्रूट का जगह लेता है वो तो नहीं ले पाएगा, कहीं उसमें तो केसर है नहीं, तो सोचो यूथ जो चाहेगा वो कर सकता है और अपने देश के लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए तो जिम्मेदार है। लेकिन जो अंधश्रद्धा जो हमारा पूर्वज जो बोले हमको रटते रटते जा रहे, लेकिन अभी हमारा सोचने का समय आ चुका है, क्योंकि भारत आजादी का अमृत महोत्सव का साथ साथ अमृत काल मना रहा है। जो अगला 25 साल जो आने वाला समय है, आप लोग का समय होगा और आप लोग होशियार होंगे तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, आपको लेकर ही बनेगा। और राइज ऑफ इंडिया, भारत जो उत्थान की ओर जा रहा है, क्यों आज हर जगह में मोरल व्यवहारिक ज्ञान नशा से दूर क्यों न सिखाया जाएगा, क्योंकि आपका ही समय है। इस मंच का माध्यम से सिर्फ तरतल स्कूल के बच्चों का नहीं, आज इस मंच का माध्यम से जहां जहां हमारे रेडियो कार्यक्रम सुनाई दे रहा है तो उसी में आप कुछ शिक्षा मिलेगी हमारा प्रयास है। लेकिन छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बच्चे भी सुन रहे, कुछ बच्चे भी अपना कार्यक्रम को लेकर 2 शब्द बताएंगे तो हमारा प्रोग्राम गुलदस्ता जैसे बन पाएगा, क्योंकि हमारा मैम भी आज उपस्थित है तो मैम भी 2 शब्द बोलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो 107.8 FM पर।

अरे 6 घंटा का 12 घंटा कर दी गणो आयो चो जोर, नारायण के लगायो ढोक मारी बेड़ा कर दी पार। पहली 6 घंटा चाले चो पाचे करियो विचार, दोनी जोड़ियो हाथ मारी नारायण सुने पुकार। अरे नारायण 12 घंटा कर दिया बाला देव, गुजर किरे आई बीनती।

वाला दे। आ वो तो मर्जी आप की वो भाड़ा दे। दोनी जोड़ू हाथ देव जी सुनो मारी पुकार। गुजर कीचे याई विनती ने करो आर पार। 12 घंटा कर दी नारायण सुन ली मारी पुकार। दोनी जोड़ू हाथ देव जी 24 घंटा करो दरबार।

0: doare, doare.
1: ए रुक, ए रुक रुक, कुछ सुनाई नहीं देती। और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो आप। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
2: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्ते, राम राम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का बाद हम पुनः मिल रहे हैं। ब्रेक का पहले हम सुन रहे थे परबत सिंह सर जी को, नशा नाश की जड़ है उसका तहत किस तरह हमारा तन मन धन को क्षति पहुंचाता है, वो उसका बारे में विस्तृत जानकारियां चल रही। तो तत्पश्चात हम पुनः आपका पास रख रहे हैं, क्योंकि नशा नाश की जड़ है हमारा तन मन धन का साथ साथ सम्मान भी को बाधा पहुंचता है। नशा अनेक प्रकार के होते हैं, कोई कोई तो नशा, उनको इतना नशा लगा रहता है पढ़ाई में, जहीं भी देखो मैं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कोई बोलता है भाई इसको नशा है पढ़ने में, कोई खराब चीज में नशे में लत हो जाते हैं, खराब संग भी एक प्रकार के लत है, नशा है। कोई कोई तो व्यसन लेते हैं शराब बीड़ी गुटखा आदि, जो कि क्षतिकारक है शरीर प्रति, वो भी करते हैं, उसी में वो नशा क्षतिकारक है। विद्यार्थी जीवन में नशा करना चाहिए तो पढ़ाई के प्रति नशा हो, ईश्वरीय नशा हो, सत्संग का नशा हो, अच्छाई चीज में नशा हो। इस कार्यक्रम को और चार चांद लगाने के लिए बच्चों को उमंग उत्साह दिलाकर नशा से कैसे मुक्त रहे उसका ऊपर में आलोकपात कराने के लिए मैडम हमारे साथ उपस्थित है, उनको स्वागत करते हैं। मैम, आप अपना परिचय के साथ नशा बच्चों का प्रति किस तरह उनका करियर में बाधा पहुंचता है उसका बारे में बताइए। आपका स्वागत।
4: नशा नाश की जड़ है। विद्यार्थी जीवन में जो बच्चे अभी काफी उम्र में भी छोटे हैं और उनको भी ऐसी लत लग गई है, बड़े बच्चों को देखकर या अपने घर पे पेरेंट्स को देखकर, वो लोग बाजार से गुटखा खरीद के या ला ला के और चुप चुप के खा रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है उसमें, लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा है कि ये हमारे भविष्य के लिए कितना खतरनाक है। हमारा भविष्य पूरा उजड़ रहा है इस तंबाकू के सेवन से, गुटखे के सेवन से। विशेष कर से मैंने ये चीज देखी कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा परिवार इतना गरीब है, लेकिन फिर भी अपने पिताजी को वो लोग समझा सकते हैं। कई ऐसा नहीं है कि हर पेरेंट्स कहना ना माने, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें रख के अपने पेरेंट्स को इस चीज से हटा सकते हैं कि हमें इस चीज से दूर रहना। अगर हम इन्हीं पैसों का, जो पैसा तुम इन चीजों को खरीदने में खर्च कर रहे हो, उसी पैसों को हम अपने परिवार को चलाने में, हम इन्हीं पैसों से फ्रूट्स है, सब्जियां है, अच्छी चीजें लाने में इसका व्यय कर सकते हैं और अपने परिवार को अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। बल्कि क्या होगा, आज हम नशा करेंगे कल हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, इस स्वास्थ्य को, बिगड़े हुए स्वास्थ्य को लेकर बीमारी होगा और इस बीमारी को ठीक करने में हमें काफी पैसा डालना पड़ेगा और जरूरी भी नहीं है कि वो ठीक हो जाए। पहले इसको खरीदने के लिए पैसा खर्च करो और फिर इसको ठीक करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए काफी पैसा डालना है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। विशेषकर से अभी से अगर बाई चांस किसी विद्यार्थी की ऐसी आदत पड़ गई है तो हमें आज से ही, क्योंकि अभी कच्चा कोमल मिट्टी होती है ना, उसको तो किसी भी आकार में डाल सकते हैं, लेकिन जब वो पका हुआ मटका हो जाता है ना, तब उसको वापस उस आकार नहीं जा सकता। इसीलिए मैं बच्चों से विशेषकर निवेदन है मेरा कि बाई चांस इस लत के तुम शिकार हो गए हो तो अभी से अपनी आदत सुधार दो, अभी से इस गंदी लत को दिमाग से निकाल लो और अपना पूरा जीवन पढ़ाई को समर्पित कर दो। जैसा कि सर ने बताया कि वास्तव में नशा होना चाहिए, पढ़ाई का नशा होना चाहिए, इतना नशा होना चाहिए कि हमें कंपटीशन के माध्यम से कि हमें आगे बढ़ना है, बस ऐसा नशा आगे रखना चाहिए कि मुझे फर्स्ट आना है, ये नशा तुम्हारे काम आएगा, बहुत काम आएगा। तो बस मैं इतना ही चाहूंगी कि तुम्हारे परिवार में भी यदि कोई, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे बड़े भाई, तुम्हारे दादा ताऊ, जो भी यदि किसी भी नशे के शिकार है, तो कोशिश करो। अगर हम बार बार कोशिश करेंगे ना, तो हम सफलता अवश्य हासिल करेंगे। उन्हें हर बार टोको, बार बार टोको उन्हें, तो कभी न कभी तो उनकी लत छूटेगी। मैं अपना खुद का उदाहरण देती हूँ। हमारी खुद की शॉप पे है ना, कम से कम 8 से 10 मजदूर ऐसे थे जो ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे। मैं रोजाना इनसे कहती थी कि ये लोग ड्रिंक क्यों नहीं छोड़ते थे, बोले तू समझा के देख ले। और मैंने ये कोशिश की और मुझे गर्व है इस बात का, मैंने लिया। और काफी कम से कम उन 8-10 मजदूरों में से 5 मजदूरों ने बिल्कुल आज भी वो नशा बिल्कुल भी नहीं करते। उनको मैंने कहा कि तुम इसी पैसों का उपयोग अपने परिवार को पालने में करो ना, देखो तुमको कितना मजा आएगा। उनके लिए अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेके जाओ, उनके लिए कपड़े लेके जाओ। तुम इस पैसों को नशे में धो तो के घर जाते हो, पूरा परिवार बिखर जाता है, रोते हैं, बच्चे रोते हैं, पत्नी रोती है। तो तुम करके तो देखो, कोशिश करके देखो, आराम से छूट जाता है। ऐसी बात नहीं है कि हम किसी चीज को नहीं छोड़ सकते, अपनी इंद्रियों को बस में रखना हमारे हाथ में है। अगर हम अपने मन पर काबू रख लेंगे तो हम छोड़ सकते हैं किसी भी चीज को। ऐसी बात नहीं है कि हमसे नहीं छूटेगा, धीरे धीरे आराम से हम छोड़ सकते हैं और अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हैं इस गंदी लत को छोड़ के।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपना परिचय दीजिए।
4: सरस्वती अग्रवाल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तरतोली।
0: मैम का नाम सरस्वती है, नाम जैसे उस तरह शिक्षा भी देते हैं। जैसे बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी को हम पकड़ते हैं इसे, है ना, ऐसे खाते ना सिगरेट दोबारा, ऐसे करते हैं ये हम ही पकड़े हैं, ऐसे अंगुली को दोहाकर चिपकर रखते हैं, पूरा प्रेस करके। जब हम खुद ऐसे कर देंगे क्या होगा, सिगरेट हो जाए बीड़ी नीचे गिरेगा ना ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, खोल देंगे तो नीचे गिरेगा ना। जब तक हम नहीं उठाएंगे, मैं नहीं उठाऊंगा वो बीड़ी, और सिगरेट का इतना ताकत नहीं है जो मेरे पास आ जाए, आ जाएगा कितने भी ताकत लगाए वो हमारे पास आएगा नहीं जब तक मैं उसको नहीं उठाऊ। अर्थात जिम्मेवारी कौन है, खुद है, खुद जिम्मेवारी है। जब सिगरेट पर एक एग्जांपल मैंने लिया है, जब तक हम नहीं उठाएंगे वो उठेगा ही नहीं, और हम उठाएंगे तो हमारा क्षति करता है। नशा नाश की जड़ है, तो बचपन का समय, अभी इस समय जो है, नारायणी नशा करो, पढ़ाई का प्रति नशा करो, अच्छा चीज में नशा करो, बुराई चीज में नशा नहीं करना चाहिए। बुराई चीज हमेशा बुरा ही होता है, चाहे कोई भी हो, तन मन धन, और लास्ट में राम नाम सत्य ही होगा। क्या होगा अंतिम पुरस्कार, जैसे मैम बताया ना, इस अंतिम जो समय होगा राम नाम ने मृत्यु की वरण करेगा, पैसा देने से भी कुछ नहीं हो पाए, क्योंकि भगवान का दिया हुआ इस शरीर है, एक बार रिप्लेसमेंट करेंगे तो कभी भी वो ठीक जॉइंट ही आएगा, काम करेगा नहीं। इसलिए कैंसर वगैरह जो होता है सबको मालूम है, बच्चों को, लेकिन उसमें ज्यादा नहीं, हमको निवारण कैसे करना है वो चीज सोचना है। ये चीज तो हो रहा है, उसको निवारण कैसे करेंगे, क्या ध्यान देंगे। तो जैसे मैम बोले, ये चीज आपका चीज नहीं, उसको नहीं करना, हम ही करते हैं, हम जब नहीं करेंगे तो हमारे पास आएगा नहीं। और उसमें ध्यान देना क्या है, कोई भी चीज, कोई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अनजान बच्चे होता है घर में, 5 साल का 4 साल का बच्चे होता है, वो ब्लेड में और कैंची में जहाँ धार होता है, जैसे हम सब्जी काटते हैं, वो खेलते हैं, आग से खेलता है, उसको मालूम नहीं है, लेकिन उसको रोकेंगे तो रोता है, रोता है कि नहीं। तो माँ बाप बहुत होशियार है, चालाक है, समझदार, वो क्या करता है उसको निकालने के लिए, उस चीज से दूर रखने के लिए क्या करता है, आप लोग से अनुभवी है, आपका मम्मी पापा आपके लिए भी क्या होगा, जो गलत चीज में आपको नॉलेज नहीं है लेकिन चला जाते हैं, माँ बाप उसको रोकते हैं। छोटे बच्चे खराब चीज में जो लगते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको चॉकलेट, अच्छा बिस्किट, आज का एड्रेस दिखाते हैं, बच्चे देखो ये तुम्हारे लिए लाए, तुम्हारे लिए लाए, वो क्या करता है लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, और जो चीज पकड़ा हुआ ना, कैंची, चाकू, आग, वो गिर जाता है, वो गिराता नहीं, वो खुद गिर जाता है, गिर जाता है कि नहीं, और अच्छा चीज लेता है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही सिखाता है, जैसे मन और बुद्धि को अच्छा चीज लो, ईश्वरीय नशा करो, सत्संग करो, हमारा घर में मन को ऐसे सोचो जो हमारा अंदर में वापसी आए। तो आप लोग ऐसे सोचो, हम अच्छे बच्चे हैं, हमें विद्यार्थी लाइफ है, मैं गांव का परिवार का नाम रोशन करूंगी बा करूंगा, ऐसे सोचेंगे ना ये चीज दूर भागेगा। आपको उसको चिंता नहीं करना है, एक बस जीवन में हमें अच्छा बनना है, ऐसे सोचना, मन को बार बार संकल्प देना, मैंने ये अच्छा चीज लेना, अच्छा संस्कार, तब जाकर हम अच्छा बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद बच्चों का थोड़ा बात भी रखेंगे, बच्चे तो बहुत समय से सुन रहे, बच्चों का भावना क्या है, उनका भी पास में आता होगा तो निकलता नहीं कैसे, निकलता है कि नहीं वो बताएंगे। अनुभव आधार से सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: Familia Abad, Yunus Abad, Batu Singsanda, Abad, Nara Abad,
1: Batu Singsanda, Abad, Nara
0: Abad, Batu Singsanda, Abad, Nara Abad, Batu Singsanda, Abad, Nara Abad, Batu Singsanda, Abad, Nara Abad, Batu Singsanda, Abad, Nara Abad, Batu Singsanda,
1: Abad, Nara Abad, हरमत सिंह
0: आज सब सुन रहा था क्या आपको अच्छा लगा
1: हमको ये अच्छा लगा सर कि नशा छोड़ने के बारे में आप ये बातें बोल रहे हो मतलब नशा नहीं करना चाहिए
0: आप करते
1: नहीं
0: आप किसी को करते हुए देखे हैं
1: नहीं आज नहीं देखे
0: आज तक नहीं देखे देखना भी नहीं चाहिए अब देखना भी नहीं चाहिए नशा का और नीचे खुद भी नहीं करेंगे बहुत अच्छा अब क्या कहना चाहिए नशा नाश की जड़ है जो टॉपिक है टॉपिक आपको कैसे लगा
1: बहुत अच्छा लगा सर
0: तो इस चीज के लिए आप कुछ गाँव में कुछ अवेयरनेस कर सकते हैं
1: हाँ सर
0: क्या कर सकते
1: सर जो नशा करते हैं उनको बोलूंगा सर नशा नहीं करने का शरीर खराब हो जाता है और घर का नाश हो जाता है
0: परिवार में कोई नहीं करता होगा
1: मेरे पिताजी करते हैं
0: महीने में कितना खर्च होता है
1: महीने में होता है
0: डेली कितना खर्च होता है नशा में
1: नशा में होता है सर ऐसे तो वो पैसे नहीं लेते सर
0: मिनिमम 10 रुपया का खर्च होता है कोई भी एक दिन में 10 रुपया महीने में कितना होगा
1: 300 रुपया
0: और साल में
2: इसको सरल रूप में इस बात को अपन ये ऐसे समझा सकते हैं कि नशा करने के लिए जो अपन नशा करते हैं उसको हजारों रुपए खर्च करके एक गलत चीज करते हैं और उस गलत चीज के बाद शरीर में जो बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं तो एक तो अपन पैसा खर्च करके बीमारी गलत चीज लाते हैं और उसी को ठीक करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं तो दोनों तरफ अपना नुकसान है धन का दोनों तरफ नुकसान है तन का इसके नुकसान है मन का और इससे कोई नशा करने वाले का समाज में जो सम्मान है वो भी नष्ट होता है तो तन मन धन और सम्मान सभी का नुकसान की जड़ है नशा इसलिए नशा है नाश की जड़
3: वाह ताली बजा भाई बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति और सिर्फ तरतल स्कूल के बच्चों को क्यों सभी बच्चे जो सुन रहे हैं जरूर इसे फायदा मिलेगा इन शुभावना का साथ सभी को धन्यवाद आभार आज का कार्यक्रम को सुंदर में सजाए सुंदर ये कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल 107.8 FM पर ये था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तरतली।

माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शेकटकर। मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी। मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं। माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम। एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा। और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है।

0: महाराज के उच्च माध्यमिक विद्यालय तरतुली के गतिविधि जो कि बच्चों का साथ साथ स्टाफगण का नशा नाश की जड़ के ऊपर में अपना भाव भावना को प्रकट किए। तत्पश्चात ब्रेक के बाद हम पुनः पहुंच रहे हैं आपके पास और हमारा इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में देखे हैं, तो उनका भी दिल का भाव को रखेंगे। स्कूल के संस्था प्रधान मैम को स्वागत करते हैं। मैम आपका वेलकम। आज नशा नाश के जड़ के तहत जो कार्यशाला हुई उसका बारे में थोड़ा बताइए। आपका वेलकम, आपका परिचय के साथ।
1: सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुनीता बढ़ाना है। आप हमारे विद्यालय में पहुंचे। वैसे तो पूर्व में भी आप भी के बंधु हमारे भाई बहन कई बार विद्यालय में अलग अलग कार्यक्रमों के अंतर्गत पहुंचते रहते हैं। व्यवहारिक काम जो शिक्षा का है पाठ्यक्रम के माध्यम से, चाहे वो शैक्षिक हो सह शैक्षिक हो अन्य कोई गतिविधियां हैं, वो हम सभी निरंतर हमारे स्टाफ साथी हमारे विद्यार्थी आपस में करते रहते हैं। परंतु इस व्यवहारिक ज्ञान के साथ में कुछ और भी है जो आज के परिप्रेक्ष्य में निरंतर लुप्त होता जा रहा है, और वो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण एक शिक्षा के साथ में जोड़ा जाना अनिवार्य है, वो है नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य। समाज में जिस तरह से परिस्थितियां निरंतर परिवर्तित हो रही है, हमारे आज के बालक और बालिकाएं क्या सीख रहे हैं, इस पर एक गंभीर चिंतन करना आवश्यक है। नैतिक शिक्षा जो प्रारंभ से ही बहुत प्रारंभ और प्राचीन काल से ही हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है, या कहें कि जिसको सबसे ऊपर माना गया है, उसको आज नए परिप्रेक्ष्य में किस तरह से हम हमारे बालक और बालिकाओं को दें कि वो एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे इंसान बने। नैतिक शिक्षा आध्यात्मिक मूल्य के साथ में जोड़ना आवश्यक है। यहाँ अध्यात्म का मतलब किसी एक विशेष संदर्भ में नहीं है। अध्यात्म का मतलब उस परम शक्ति पे विश्वास रखना, जो कई सारी अलग अलग हमारे जीवन में विशेष परिस्थितियां आती है जहां हमें आध्यात्म की आवश्यकता महसूस होती है कि कोई भी एक परम शक्ति जिस पे हम पूर्ण भरोसा करके अपने जीवन में कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सकें,

0: ग्रहण करता है जो आसपास के परिपेक्ष में उसे मिल रहा है और उसके छाप जीवन पर्यंत बनी रहती है। तो हम सभी पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि जो भी मतिक मूल्य है, जो वर्तमान परिवेश में या हम कहें आज के समय में जिस तरह से तम्बाकू मुक्ति का एक अभियान चल रहा है आज के समय में इस वर्तमान परिपेक्ष में, तो हम उस तम्बाकू मुक्ति के संदर्भ में निरंतर बच्चों को अवगत करा रहे हैं कैसे नशा हमारे जीवन को प्रभावित करता है या यह कहें कि पूर्णतः उसको नष्ट कर देता है। वो सब बातें हम बच्चों को बता रहे हैं, उनको जो जीवंत उदाहरण है वो भी देके बता रहे हैं। अलग अलग माध्यमों के माध्यम से हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का नशा हो, तम्बाकू हो या और कोई जो उनके जीवन को गलत तरह से प्रभावित करता है उसको वहीं रोक देवे और अपने जीवन में अच्छी आदतों का समावेश करे। जो हमारे नैतिक मूल्य हैं जिसका हमें बहुत ज्यादा हमें आवश्यकता है आज के परिप्रेक्ष्य में, उनको वो ग्रहण करें और अच्छे से अच्छे शिक्षा के साथ में नैतिक और आध्यात्म को जोड़ते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए। तो इस विद्यालय से परीक्षा पूर्ण करने के, परीक्षा तो केवल एक मूल्यांकन की प्रक्रिया है मगर साथ में जो कुछ हम हमारे विद्यालयों में प्राप्त करते हैं इस प्रारंभिक स्तर पे, वो हमारे जीवन को निश्चित रूप से प्रभावित करता है और उस पक्ष को हम जितना अधिक मजबूत बना पाएंगे अच्छे ही नागरिक हमारे देश में तैयार होंगे जो नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होंगे, जिसकी आज के समय में न केवल हमारे देश को ही बल्कि पूर्ण विश्व को अत्यधिक आवश्यकता है कि उनका पतन तत्काल रोके हम, और रोकने में हमारे ये बालक और बालिकाएं ही सबसे महत्वपूर्ण धुरी है जिसके आधार पर हम अच्छे नागरिक है वो तैयार कर पाएंगे और यही हमारे शिक्षा का सर्वागीण उद्देश्य भी है। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता मैम को, इतने सुंदर में बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि बच्चों का जो कच्चा मिट्टी है उनका अंदर में जैसे हम व्यक्तित्व डालेंगे वो व्यक्तित्व आगे जाकर देश के लिए एक अच्छा व्यक्तित्व मिलेगा। डिग्री नहीं चाहिए, एक सुसंस्कारित बुद्धिमान बच्चा चाहिए, वर्तमान समय का मांग है। तो देश का नागरिक ऐसे बच्चे यहाँ से ही, जो ज्ञान का मंदिर विद्यालय है वहाँ से ही बच्चे सीखकर जाते हैं, तो देश के लिए बहुत कुछ अवदान देते हैं, तो उनका संस्कार, शिक्षकगण का संस्कार ढालते हैं जिसका चलते एक अच्छा इंसान बन पाते। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों का साथ, प्रिंसिपल महोदय और सब स्टाफगण का अपना दिल का बात सहयोग देने के लिए सभी को धन्यवाद, आभार। पुनीत काम में सबका उंगली लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सुनेगा ये जहां कहेंगे जो हम, सुनेगा ये जहां मिलकर जो ये।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे मध्य एक ऐसी एक्सपर्ट हाजिर हैं जो 11 इयर्स यानी कि 11 साल के छोटी उम्र से आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीते आ रहे हैं। लगभग 51 साल से आप राजयोग ध्यान मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप मुंबई से आए हैं, तो मुंबई के सेलिब्रिटीज हो या फिर आम जनता हो या व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो या यूथ हो या बच्चे हो, सबको आप इंस्पायर करती आ रही है इतने वर्षों से। लगभग 40 साल से आप सेंटर पे रहते हुए लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि क्रीना दीदी जी आज हमारे मध्य पधारे हैं जीवन रोशनी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आइए उनसे हम जानेंगे जो बहुत ही जरूरी विषय है आज के समय में कि हम एकाग्र नहीं रह पाते कई बार। तो एकाग्रता क्या है, फोकस्ड कैसे रहें, और कई बार हम चाहते हैं फोकस रहना लेकिन हम अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हैं। तो अटेंशन क्या है, फोकस क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है या दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इस बारे में आज प्रकाश डालेंगे आदरणीय क्रीना दीदी जी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुभाश्री जी।
0: थैंक यू।
1: मुझे बहुत खुशी है कि मैं रेडियो मधुबन के लिए कुछ ना कुछ अपनी छोटी छोटी सेवाएं भी दे सकूं।
0: जी, थैंक यू। तो दीदी, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार सोशल मीडिया का जमाना भी है, हम इंटरनेट भी यूज करते हैं, AI को लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, कई बार हम सही इस्तेमाल करते हुए भी उससे बहुत सारी चीजें सीख पाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि AI के कारण या इंटरनेट के कारण हम अपने अटेंशन स्पैन घटा रहे हैं और फोकस नहीं रह पा रहे, क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल मीडिया और AI का उपयोग तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि जितना व्यक्ति इंटेलिजेंट इवन छोटेपन में होता है वो जल्दी से इसको ग्रास्प कर रहा है और बहुत बहुत ही उसका यूज़ कर रहे हैं। अभी कैसे, क्या यूज़ कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, वो तो हर एक की अपनी चॉइस है, पर बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि फोकस या अटेंशन स्पैन जो है वो कोई बाहरी वस्तु के कारण कम हो रहा है ऐसा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन जो उसका प्रभाव अलग अलग हमारे मन और बुद्धि पर पड़ता है, कई बार उनसे हमारे थॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं
0: जी।
1: या व्यक्ति थोड़ा वीक है अपने नेचर में और जितनी भी परिस्थितियां आती है उन सब के प्रभाव में आता जाता है, ही गेट्स अफेक्टेड, तो फिर उसके थॉट लेवल पे बहुत ज्यादा विचार करना शुरू कर देता है। और उसमें भी जरूरी नहीं है कि सब विचार पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव का तो स्पीड ही बहुत ज्यादा होता है, और वेस्टेज जो थॉट्स के होते हैं वो तो खुद को भी पता नहीं पड़ता है, इतना वेस्टेज होता है
0: जी।
1: तो जब इतना सारा क्लाउडेड हो जाता है ना मन और बुद्धि का जो स्पेस है वो, तो उसके कारण वो ज्यादा लंबे समय तक एक बात पर केंद्रित अपने मन बुद्धि को नहीं कर सकता है, क्योंकि पीछे से उसके थॉट्स उसको इंटरफेयर कराते रहते हैं
0: जी,
1: खुद के। तो जितना इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, हर एक बात से उसको कुछ और याद आता है, तो डिस्ट्रैक्ट होता जाता है, तो नेचुरली उसका अटेंशन स्पैन कम होगा
0: जी,
1: फोकस नहीं रहेगा, ऐसा मैं समझती हूँ। क्योंकि बाहर के तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है, लेकिन हमको उसको यूज करना है। जितने भी साइंस ने हमको साधन दिए हैं वो सब यूज करने के लिए दिए हैं
0: जी,
1: तो हम उस पे दोष न डाल के अपने ऊपर अटेंशन ज्यादा दे कि मेरी जो मन की स्थिति है वो ये सब यूज करते समय कैसी है
0: जी,
1: और उस पर अगर हम ध्यान दे करके अपने आप में थोड़ा एनर्जाइज अपने को करेंगे और बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मनुष्य की बुद्धि इतनी वंडरफुल बनी हुई है कि वो जल्दी से बना अपना फोकस तोड़ सके, पर आज ऐसा हो गया है
0: जी। तो ये सब यूज करते हुए हम कैसे मन को एकाग्र रखें, और आपने कहा कि यूज करना भी है, इन्फॉर्मेशंस भी हमें चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, तो अगर इन्फॉर्मेशंस या नॉलेज नहीं होगा तो हम शायद कम्पीट नहीं कर पाएंगे
1: जी। सही, प्रैक्टिकल फील्ड में देखो तो ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल उसके बिना जो कई सिस्टम्स है वो आउटडेटेड हो गए हैं। तो इसलिए जिसकी प्रायोरिटी होती है तो उसको तो हेल्प लेना ही पड़ेगा व्यक्ति को। लेकिन अगर आपको अपना फोकस मेंटेन करना है तो आपको एक प्रैक्टिस तो मिनिमम करनी पड़ेगी
0: जी,
1: कि जैसे फोकस किसको कहा जाता है, डिक्शनरी मीनिंग भी अगर आप देखो ना, जहां पर सारी जो लाइट की रेज है ना वो एक पॉइंट पे मिलती है,
0: एक केंद्र पे,
1: केंद्र बिंदु बोला जाता है उसको
0: जी,
1: उसको फोकस कहते हैं। ऐसे ही अगर हम एक प्रैक्टिस करें कि कोई भी कार्य करने से पहले, भले वो ड्राइविंग हो या अपने लैपटॉप के सामने हो या व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेशन हो, आप जो भी नई परिस्थिति में जा रहे हो उस समय आप हर चीज को वापस समेटते जाओ और वो केंद्र बिंदु पर आप अपने आप को ध्यान केंद्रित करो।
0: ओके, तो
1: क्योंकि जैसे टेलीविजन होता है ना,
0: हाँ,
1: टेलीविजन आप ऑफ करो तो क्या होता है पता है, पूरी लाइट ऐसे पॉइंट पे आके फिर ब्लैकआउट हो जाता है
0: जी, जी, राइट।
1: और जब टीवी चालू भी होता है तो हमको नहीं मालूम पड़ता, लेकिन एक पॉइंट से ही पूरा पिक्चर एनलार्ज होता है। वही सिस्टम हमारे अंदर है। तो क्योंकि हम उसको मिस कर रहे हैं, आजकल कई लोगों को वो टेलीविजन की टेक्निक भी भूल गए
0: जी,
1: उनको लगता है कि हाँ टीवी चालू हो गया, टीवी बंद हो गया। बट ये टेक्निक होती है, कोई भी चीज में कुछ जब विजन पे आती है तो वो पॉइंट से इमर्ज होती है
0: जी।
1: ऐसे ही अगर हम प्रैक्टिस करें कि हम पहले जहां से भी निकले वहां से सारे थॉट्स को मर्ज करके एक केंद्र बिंदु पर ला ले, क्या सीखा हमने उससे
0: जी,
1: और फिर थोड़ा उसको डीप साइलेंस में ले जाए कुछ सेकेंड्स के लिए, और फिर दूसरी परिस्थिति की ओर जाए। और ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका अटेंशन स्पैन जरूर बढ़ेगा और आपको जो डिस्ट्रैक्शंस है वो कम महसूस होंगे
0: जी। कई बार जैसे मेडिटेशन में हम बैठते हैं तो वही थॉट्स चलते हैं जो हमने देखा, जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया, तो फिर हम फोकस नहीं रह
1: पाते।
0: तो ये धीरे धीरे होगा करते करते,
1: ये चीज करना जरूरी है। जब भी मेडिटेशन में भी बैठो, ये तो हम एक्टिविटी में बैठने की बात कर रहे थे, पर अगर प्योरली मेडिटेशन में भी बैठते हो तो यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग। आपको पहले हर चीज बाहर की मर्ज करके एक पॉइंट पर आपको आ जाना है, भले वो पॉइंट ऑफ लाइट हो, पॉइंट जहां पर सारी रेज मिल गई है, सब कुछ आपकी बाहर की दुनिया समेट ली है, आपको उस पे आना पड़ेगा। और ऐसी पोजीशन पे आप उसमें आएंगे कि वो सेकंड आप सब कुछ भूल जाएंगे।
0: ओके, तो वो क्या टेक्निक से कैसे समेटेंगे अगर मन बार बार बाहर की ओर जा ही रहा है या फिर कुछ और बातें मन में चल रही है, तो क्या बात करेंगे हम मन से?
1: तो जब आप मेडिटेशन में बैठे या एक एक्टिविटी पूरी की, तो आप पहले उस एक्टिविटी को रिवाइज करके कि भाई मैंने ये किया, मैं वहां गई थी, मैं वहां मिली, मैंने ये ब्रेकफास्ट खाया, मैंने ये कार्य किया, उस सब को याद करते हुए पूरा जैसे अंदर ले रहे हैं आप कि अब मैं थोड़े समय के लिए इससे भी फ्री हो रही हूँ, ब्रेकफास्ट जो खाया उससे भी फ्री हो रही हूँ, ये भाई से मिली वो उससे भी फ्री हो रही हूँ, ये कार्य कर लिया उससे भी फ्री हो रही हूँ, अब मैं उनमें नहीं हूँ। अपने मन को कहना है, अपने को समझाएं कि अब मैं उन सब में नहीं हूँ, मैं सबसे फ्री हो गई हूँ।
0: मन को हम ऐसे
1: समझाएं उसको, इसको वो मार्ग दिखाएं कि ये सब अभी अगर इसके बारे में सोचोगे तो आप डाइवर्ट हो जाओगे,
0: तो प्रेजेंट में आ जाओगे।
1: हाँ, तो जब प्रेजेंट पल में कैसे आएंगे, जब ये सारे पास्ट की चीजों को आप मर्ज कर देंगे। जैसे समझो कपड़ों का फैलावा है कमरे में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब आपका कोई फ्रेंड आ रहा हो या कोई ऐसा कुछ भी कार्य नेक्स्ट इस कमरे में होने वाला हो, तो आप सारे कपड़े समेट कर घड़ी करके आप कबाट के अंदर रख देंगे ना
0: जी,
1: पहले वो क्लियर करेंगे ना, तभी आप दूसरे को एंटरटेन करेंगे
0: जी
1: में। तो आपको वो विस्तार डिस्टर्ब करेगा
0: जी,
1: और आपको लगेगा कि सामने वाला आएगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा
0: जी,
1: तो आप पहले उसको समेट लेते हैं। ऐसे ही हर बात को, जहां से भी आप आए, जिसके लिए भी आए, एक सेकंड के लिए सब समेट लो कि अब उसका कोई कनेक्शन नहीं है जो मैंने किया पास्ट का, कितना भी इम्पोर्टेंट कार्य क्यों ना हो, पर अब वो नहीं है। अब मैं प्रेजेंट में कहाँ पर हूँ और मुझे इसी के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले अंदर सब समेट कर मैं केवल एक पॉइंट हूँ
0: जी,
1: हम अपने आप में ही फोकस है।
0: मैं
1: पॉइंट हूँ, मैं जहां भी अपनी लाइट को स्प्रेड करूंगी ना, एनर्जी को भेजूंगी, वहां का कार्य होगा
0: जी।
1: तो अगर मैंने उसमें भी 10 जगह एनर्जी भेजी तो फिर कितना वेस्ट हो जाएगा एनर्जी
0: जी,
1: क्योंकि वो दूसरे 9 कार्य तो होने नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: अभी एक ही कार्य होना है तो फिर वो एक ही कार्य के लिए मुझे एनर्जी भेजनी है, तो एकदम फ्रेश आउटलुक भी मिलता है।
0: ओके, तो कई बार हम अपने आप के साथ भी युद्ध करते रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट में आ जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ, बट हम आ भी नहीं पाते हैं।
1: प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज का तो आप वापस अपनी उस स्थिति पर आ सकते हो, नामुमकिन नहीं है।
0: तो ये लाइफ के हर सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है,
1: हर सिचुएशन के लिए। और दूसरा, रात को सोने से पहले,
0: ओके,
1: ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, रात को सोने से पहले भी जैसे आप पैर धुलाई करते हो, हाथ धुलाई करते हो, ब्रश करते हो, बाकी सब चीजें रख देते हो
0: जी,
1: हाँ, फिर यू चेंज योर क्लोथ्स, ये सब आप करते हो ना प्रक्रिया
0: जी।
1: क्यों करते हो? क्योंकि आपको एक माइंडसेट तैयार करना है कि अभी मेरा दिन पूरा हो गया, अब मुझे सोना है। कई लोग प्रेयर करते हैं ताकि उनको लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे ये सबसे अच्छा काम करेगा, कि मेरे को पूरे दिन के जो प्रभाव से मुक्त करेगा, इसलिए वो प्रेयर करते हैं। ग्रैटिट्यूड के लिए कई लोग करते हैं रात को सोने से पहले, ये सब फिजिकल एक्टिविटी है।
0: ओके,
1: वैसे ही आपके सारे दिन की दिनचर्या को आपको अंदर समेट लेना है, ये हम भूल गए हैं। भूली हुई चीज जब वापस करने को कोई बोले तो तकलीफ होती है, बार बार फिजिकल चीजें ही याद आती है
0: जी,
1: और अपने को लगता है कि फिर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेंटली हम करते हैं उसके लिए बहुत कम टाइम चाहिए। फिजिकली जो करते हैं, नहीं, रात को सोने से पहले की बात है, कार्य कर जो फिजिकली करना है उसमें टाइम लगेगा, जैसे ब्रश करना है या हाथ पैर धोने हैं या कपड़े बदलने हैं, लेकिन मेंटली जो आपको एक्टिविटी करनी है सब कुछ समेटने के लिए सुबह से लेकर रात तक, वो तो कुछ सेकंड में भी हो सकता है
0: जी,
1: इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो रात को सोने से पहले भी ये पॉइंट तक वापस समेट लो, ये बहुत जरूरी
0: जी।
1: माना हमेशा समझो कि हर चीज एक स्पार्क से शुरू होती है, हर चीज
0: स्पार्क से शुरू होती है,
1: स्पार्क से शुरू होती है, स्पार्क पे ही एंड होती है। तो हम अपने लिए ये चीज भूल गए।
0: राइट जी, तो बच्चों की बात पूछना चाहूंगी कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो बार बार मन भटकता है, तो वो स्पार्क कैसे लाएं कि हम फिर से वापस पढ़ाई पे आए
1: जी? तो उनको एक सेंटेंस अपने लिए निर्धारित करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को
0: जी,
1: और वो सेंटेंस उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद वापस रिपीट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम अ वेरी स्टूडियस पर्सन
0: जी,
1: या माय इंटेलेक्ट इज रेडी टू ग्रास्प, जो भी सेंटेंस है
0: जी,
1: मेरी बुद्धि पढ़ाई को ग्रहण करने के लिए तैयार है, बस इतना बोलना है मन में, लेकिन ये पढ़ाई के बीच में 10 बार बोलना है
0: जी, पढ़ाई के बीच में
1: 10 बार। उसका इम्प्रेशन बुद्धि पे पड़ता है और बुद्धि उस बात को ग्रास्प करती है।
0: अगर मैं पढ़ाई में सही नहीं हूँ तो भी ओके,
1: तो भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो बुद्धि आपको मदद कर रही है और मन भी साथ दे रहा है कि आप वो अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए भी। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग आपको याद आ रहा है जो आपके लिए और इंटरेस्टिंग है, या समझो आपको बार बार ये आ रहा है पर ये किस काम की पढ़ाई है, मैं कर तो रही हूँ, एग्जाम ही देना है बस, और कुछ नहीं होगा इसका, जितना उसके लिए नेगेटिव वेस्ट थॉट्स करेंगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट होगा और कहीं और जाएगा। तो आपने जब कहा कि नहीं, मेरी बुद्धि अभी ग्रास्प करने के लिए तैयार है, तो वो बुद्धि कैच कर लेती है और आपको मदद करती है कि जो कर रहे हैं उसी में ग्रास्पिंग आपका बढ़ जाता है। तो आपकी मन और बुद्धि ही आपका पूरा एनर्जी जो है, कहाँ पर आपको ले जाना है, गाइड करना है, डायरेक्ट करना है, वो मदद करती है। लेकिन आज हम यही दो बातों को बहुत जल्दी भूल गए हैं, क्योंकि हमारी जो हैबिट्स है, हमारा जो नेचर है, वो ही जो बन गया है वो ही डिस्ट्रैक्ट कर लेता है
0: जी,
1: वो ही डिस्ट्रैक्ट करता है, है कि नहीं
0: जी। तो जैसे आप हैबिट्स की बात कर रहे हैं और सोमान की बात भी आपने कही कि आप स्टूडियस हो, ये आप बार बार प्रैक्टिस करो, तो आपकी बुद्धि भी स्वीकार करने लगेगी और शायद यूनिवर्स भी साथ देता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या दिन में कई बार हम ओवरथिंकिंग भी कर लेते हैं, तो ये भी हमें डिस्ट्रैक्ट करती है ओवरथिंकिंग। मान लीजिए किसी ने कुछ कहा तो हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहेंगे कि हम अपने आप से तो बोल रहे हैं कि हम स्टूडियस हैं, लेकिन टीचर ने ये कह दिया कि तुम तो गधे हो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, तो फिर ये ओवर थिंकिंग करने लगता है
1: जी। और ओवर थिंकिंग जो करता है उसका एजुकेशन पे असर भी पड़ता है और उसकी इंटरेस्ट कम हो जाती है
0: जी।
1: तो इतना वीक हम ना बन जाएं जो हम अपने आगे के रास्ते को ही ब्लॉक करें, उसके लिए आपको पहले से ही इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा कि लोग अपना ओपिनियन देते रहेंगे। और मुझे बहुत छोटेपन से ही इसका अनुभव मिलता रहेगा, मेरे पापा, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन, फिर मेरी फ्रेंड, मेरे टीचर, सब अपना अपना ओपिनियन देंगे, है ना। और पहले क्या होता है, हम बहुत फ्रेजाइल होते हैं, हम हर एक पे ट्रस्ट रखते हैं, हमको लगता है हर एक मेरे लिए है, यू नो, और सबके ओपिनियंस फिर धीरे धीरे घर कर जाते हैं
0: जी।
1: तो उसमें आप अपनी आइडेंटिटी को लूज करने का पूरा चांस अपने आप को दे देते हो
0: जी।
1: भले सब ओपिनियन दे, आपको केवल अपने ऊपर फोकस करके देखना है कि सचमुच ये मेरी गलती है या इस प्रकार से भी चीज की जाती है, या इनका ओपिनियन है और मुझे अभी भी इस बात का जो मैंने किया उस पर पूरा कॉन्फिडेंस, मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि मैंने जो बोला वो बिल्कुल राइट है, तो चेक करने का। अगर आपको लगे कि नहीं ओपिनियन बेटर है मेरे विचारों से, तो वो ओपिनियन स्वीकार करे और आगे बढ़े। पर हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, समटाइम्स आपका कॉन्फिडेंस भी काम कर जाता है, है ना। तो इसीलिए आपको बहुत अनबायस्ड रह करके डिसीशंस लेने होंगे। चेक करो क्या मेरी ये मिस्टेक हुई है, मुझे इस मिस्टेक को करेक्ट करना है, मेरे से ये मिस्टेक नहीं हुई है लेकिन सामने वाले का ओपिनियन है, तो मुझे इसी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है। है तो आपकी जीवन
0: जी,
1: है तो आपकी आइडेंटिटी बनाने की बात, है ना, तो वो आपको ही डिसीशन अल्टीमेट लेना पड़ेगा
0: जी। तो ये
1: फिर आपका ओवर थिंकिंग नहीं होगा। अगर छोटेपन से ये गाइडेंस दी जाए
0: जी,
1: है ना
0: जी,
1: जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गिर गया तो हम जमीन को ऐसे मारते हैं, कहते देखा इसकी भूल है, इसकी भूल है, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति फिर दूसरों को दोष देने लगता है, वो बच्चा आगे चल के भी
0: जी।
1: लेकिन अगर उसको समझाया जाए कि कोई बात नहीं, देखो तो दूसरी बार इधर ध्यान से चलना तो नहीं होगा, वो भी पॉजिटिवली बोल सकते हैं ना
0: जी,
1: तो फिर वो उस रीति से समझेगा कि मुझे चलते समय ये ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन अगर हमने कहा अरे तुम गिर गए, अरे बहुत लगा क्या, हाँ चोट लगी, देखो मैं ऐसे कर, तो फिर वो पैम्परिंग से वो ज्यादा वीक हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके है एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए, और फिर वही संस्कार आगे चल करके बच्चा भी प्रदर्शित करता है। तो ओवर थिंकिंग तब होता है जब आपने कुछ रॉन्ग गाइडेंस दे दी और फिर वो उसी रीति से चलता रहा, तो आगे चल के वो लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में हमेशा ओवरथिंक करेगा, क्योंकि वो खुद अपनी एनालिसिस नहीं करता है
0: जी। तो आजकल हम मल्टीटास्किंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोडक्टिव होता है या इससे हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है?
1: नहीं, मल्टीटास्किंग से कंसंट्रेशन कम होने का कोई मार्जिन वैसे नहीं है, पर अगर आपका ढंग जो है वो हर चीज को अधूरा छोड़ के दूसरे पर जाना, या समझो आपका डेलीगेशन ठीक नहीं है, आपके डिसीशन ठीक नहीं है, तो नेचुरली फिर जो होगा उसके रिपरकेशन में, उसके लिए आपको ओवरथिंकिंग पे ले जा सकता है।
0: मल्टीटास्किंग को आप कैसे देखते हैं? मान लीजिए मैं गाना सुनते सुनते खाना खा रही हूँ, या फिर मैं कुछ और करते हुए अपना ऑफिस का काम कर रही हूँ, वो मल्टीटास्किंग होता है? साथ साथ में दो चार चीज़ें

0: मिक्स कर रहे हो टू मेक द एटमोस्फियर लाइट और व्हाटएवर.
1: जी
0: है ना, कोई जोर जोर से बोल के पढ़ता है वो मन में नहीं पढ़ पाता है क्योंकि उसको वही ज्यादा बोलना भी चलता है और पढ़ना भी हो रहा है, वॉकिंग भी हो रही है.
1: जी जी.
0: तो ऐसे भी लोग करते हैं, बट दैट इज नॉट मल्टीटास्क.
1: ओके,
0: दैट इज मिक्सिंग योर वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग थिंग्स विद वन एक्टिविटी. बाकी मल्टीटास्किंग माना कि एक व्यक्ति बहुत सारे कार्य बाहर अंदर उस सामाजिक रूप से कर रहा है
1: एंड ही फाइंड्स टाइम. एक टाइम में एक ही चीज करना है, मतलब ऑफिस के टाइम में ऑफिस का काम
0: depends,
1: है.
0: डिपेंड्स, अगर आप एफिशिएंट हो, आप ओवर थिंकिंग में नहीं जा रहे हो, आप इफेक्टिव हो हर कार्य के लिए, तो व्हाई नॉट.
1: ओके,
0: आपके टैलेंट पर है.
1: जी, तो ये चेक करना है कि हर एक में कैसे कर रहे हो.
0: पोटेंशियल तो हर एक में होता है. आप कई बार पोटेंशियल यूज ही नहीं करते, कई बार आपको अवेयरनेस ही नहीं है अपने पोटेंशियल के बारे में.
1: तो कैसे चेक करें कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं?
0: ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती है जब आपको वो अवेयरनेस आती है.
1: ओके,
0: आती है तो उस समय अगर आप अवेयर हो कि इस परिस्थिति ने मेरे पोटेंशियल्स को बाहर निकाले, तो इट इज गुड नो इफ यू कैन एक्नॉलेज. बाकी तो परिस्थितियां लोगों को आती ही है,
1: वो अनुभव
0: फिर
1: अगर, बना
0: हाँ, फिर अगर थोड़ी नेगेटिव टाइप की परिस्थिति भी आती है कभी कभी, कभी पॉजिटिव भी आती है. परिस्थिति परिस्थिति है
1: जी,
0: उसमें आपने कैसे अपने पोटेंशियल्स को यूज किया वो आपके ऊपर है.
1: जी, जब मन भारी या दुखी हो तब फोकस को कैसे वापस लाया जाए?
0: जी, मन भारी या दुखी हो तो उस समय पहले तो उसको लाइट करना पड़ता है. लाइट, क्योंकि आप अपना कार्य अपनी जिम्मेवारी नहीं छोड़ सकते हैं.
1: जी,
0: और छोड़ना भी नहीं चाहिए. अगर एक बार छोड़ने की आदत पड़ गई ना, तो छोटी छोटी बातों में आप छोड़ते रहोगे.
1: जी,
0: फिर आप कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के योग्य नहीं बन सकते. तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले जो चीज आपको लाइट करती है, जैसे आपको कोई संगीत है, फ्लूट प्लेइंग है, या आपको कोई गार्डन में जाके रिलैक्स होना अच्छा लगता है, या कोई वर्कआउट कर लेता है, कोई वॉक पे चला जाता है, कईयों के कई मेथड्स होते हैं. तो जो हर एक को सूट हो, अगर वो थोड़ा अपने को लाइट कर देना, तो फिर अपनी जिम्मेवारी पे वापस आ सकते हैं. तो ये लाइट होने के समय में वो ओवर थिंकिंग को साथ में नहीं लेता है, बिकॉज उसकी जो आदत है ना कि मैं पार्क में जाता हूँ तब मेरा ओवर थिंकिंग नहीं होता है. देखा हुआ है, उसका अनुभव है. इसलिए अगर वो भारी हुआ तो वो सीधा पार्क में जाएगा.
1: जी,
0: और सचमुच ही वो चीज उसको मदद करती है लाइट वापस होने के लिए. माना वो थोड़े समय के लिए वो जगह से, वो सिचुएशन से निकल के एक ऐसी जगह जाता है जहां उसको अनुभव है अंदर कि वो लाइट रहता है. वो कर ऐसे करते जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे जो बड़े हैं, दादियां हम जिनको बोलते हैं, तो एक दादी गुलजार जी है, तो उनको एक बार प्रश्न किया था किसी ने कि जब आपका मन भारी है, आपका मूड ऑफ है और कोई क्लास के लिए आता है, तो क्या आप क्लास में जा पाओगे? तो दादी ने बोला, जाना तो है क्योंकि जिम्मेवारी है, लेकिन उसके पहले थोड़ा मेडिटेशन रूम में जाके अपने आप को हल्का कर, अच्छी बातें कहकर, भगवान से अच्छी बातें कर करके अपने को हल्का कर दो, गीत बजा दो, एक कमेंट्री बजा दो, भले वो बैठे जो आए हैं, वो उसकी चिंता मत करो, और जैसे आपको फील हो कि अभी हो गया है, आप जाओ वहाँ, बहुत ब्यूटीफुल क्लास हो जाए. उल्टा, यू नो, अ डिफरेंट एक्सपीरियंस,
1: क्योंकि आप अपने रोल को मना भी नहीं कर रहे हो,
0: नहीं,
1: और आप जा भी रहे हैं और भगवान से बात करके जाएंगे तो हेल्प तो मिलेगी.
0: हाँ, जरूर. या आप साइलेंस में चले गए, या आप बिल्कुल अपने को हल्का छोड़ दिया रिलैक्स करके मेडिटेशन रूम में, और फिर जाओ, तो आप एक नए व्यक्ति ही हो, समझो पास्ट से.
1: बिल्कुल, तो ऐसे हर किसी के घर में एक छोटा सा मंदिर या फिर भगवान की फोटो जरूर होता है, तो आप उसके सामने जाकर के अपनी बात कह के जा सकते हैं. जी, तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि ध्यान की अवधि के बारे में कि क्या ज्यादा जरूरी है, लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना या कम समय में गहराई से फोकस रहना?
0: ओके, शुरू तो कम समय से ही होता है, और वो कम समय जैसे 5 मिनट या 10 मिनट में आपको कितना टाइम ध्यान लगा, वो इम्पोर्टेंट है.
1: जी,
0: है ना, तो वो प्रैक्टिस की अगर नोट की जाती है, तो धीरे धीरे

0: आप अपनी अवधि को बढ़ाते हुए देखते जाएंगे
1: जी।
0: लेकिन आपने नोट ही नहीं किया, आपने एक चार्ट मेंटेन ही नहीं किया, तो एक संस्कार बन जाएगा कि भाई मेरे से तो लंबा टाइम का नहीं होता है, मेरा तो 10 ही मिनट इनफ है, मेरा तो 20 मिनट ही इनफ है। तो वो आपने क्या किया, आपने प्रगति के लिए चार्ट नहीं बनाया, पर आपने अपना एक नेचर बना दिया। फिर आपको कंसंट्रेशन केवल 10 मिनट या 20 मिनट लगेगा, फिर कोई 1 घंटा बिठा देगा ना, तो आपका नहीं होता। वी डोंट हैव टू क्रिएट अ पर्टिकुलर संस्कार, पर हमें चार्ट रख के अपनी अवधि को भी बढ़ाना है, अपने फोकस को भी बढ़ते हुए अनुभव करना है। दिस इज द मोस्ट सिस्टमैटिक वे, है ना?
1: ओके, आपको चेक करते हुए अपने आप को धीरे धीरे,
0: नॉट जस्ट मेकिंग अ नेचर के भाई हाँ मैंने देखा है मैं 10 मिनट बैठती हूँ ना तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा होता है, तो ये नेचर बना दिया। योगी होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, स्टूडेंट होता है, उसको कई बार पूरी रात पढ़ना पड़ता है
1: जी, राइट,
0: और कई बार दिन में 1 ही घंटा पढ़ना होता है। तो वो ऐसा नहीं कह सकता कि आज मैं पूरी रात नहीं पढ़ सकता हूँ, उसको पढ़ना होगा। तो वो एक ही प्रकार का संस्कार नहीं बनाता है,
1: फ्लेक्सिबिलिटी
0: भी लाता है, और रोज से प्रैक्टिस से अपनी अवधि भी बढ़ाता है कभी कभी, और देखता है कि कितना फोकस रहा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि दीदी, जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो ये देखते देखते क्या हमारे अटेंशन स्पैन पर भी असर पड़ता है कि हम भी जो भी काम करते हैं उसमें हम फोकस नहीं रह पाते, 10 मिनट भी नहीं या 5 मिनट के बाद हमारा ध्यान भटक जाता है?
0: थोड़े समय पहले मैंने देखा था कि वेस्ट के टीवी में बहुत जल्दी एड्स और आती है और एकदम फास्ट फास्ट मूव होती है, उतनी स्पीड में इंडिया में नहीं होता था। इंडिया में आप पूरा एड लाइक देख पाते थे अच्छी तरह से, जबकि वेस्टर्न टीवी में बिल्कुल फास्ट होता था
1: जी।
0: तो मुझे भी सोच चलती थी कि ये लोग इतना फास्ट क्यों करते हैं। तो मुझे एक जगह पता चला कि क्योंकि वहाँ उनकी दिनचर्या भी इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट लाइफ है उन लोगों की, कि अब उनको लंबा स्लो सुनने को ही नहीं होता है। इसीलिए वो लोग ज्यादा इन्फॉर्मेशन फास्ट फास्ट फास्ट रीलों में देते हैं, ऐसा पता चला
1: जी।
0: और फिर यहाँ भी हम देखते हैं कि अभी थोड़ा फास्ट कर दिया है हर चीज, और छोटे छोटे बनाते हैं। क्यों छोटे छोटे? अरे आजकल कोई लंबा देख नहीं पाता है, इसे छोटा ही बनाने का वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ओवरथिंकिंग का है
1: जी।
0: जितना हमारा ओवरथिंकिंग बढ़ता है ना, तो नेचुरली अटेंशन स्पैन कम हो जाता है।
1: ओके, तो मूल कारण ओवरथिंकिंग।
0: हाँ जी, इट इज नॉट कि दिस इज मोर इफेक्टिव देन दैट। आप एक लेक्चर भी सुनो 1 घंटे का, बहुत इफेक्टिव होता है
1: जी।
0: और उसका ही एक छोटा रील देखो, वो भी इफेक्टिव रहता है।
1: हाँ, क्योंकि आजकल लोग दोनों एंजॉय देखते हैं।
0: यू कैन एंजॉय बोथ, पर कई लोग ऐसे हैं जो लंबा नहीं सुन सकते।
1: ये सबके लिए लागू नहीं होता।
0: हाँ, सबके लिए लागू नहीं होता। बाकी अगर आपका अटेंशन है, फोकस बराबर है, तो आप दोनों एंजॉय करें।
1: राइट जी,
0: इररिलेटिव ऑफ द स्पैन
1: जी,
0: है ना? जो भी है, आपका इंटरेस्ट बराबर होगा और आप हर चीज को बराबर सुनेंगे
1: जी। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, और दीदी ने प्रैक्टिस की बात कही है।
0: हाँ,
1: तो जरूर आप उस प्रैक्टिस करते।
0: प्रैक्टिस केवल नहीं, ओवरथिंकिंग नहीं हो।
1: हाँ, तो उसको चेक भी करना चाहिए हमको।
0: हाँ, ओवरथिंकिंग जिसमें कम होगा ना, वो दोनों एंजॉय करेगा
1: जी।
0: जिसमें ओवरथिंकिंग ज्यादा है ना, तो पेशेंस कम है।
1: ओके, तो पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है फोकस रहने में
0: जी।
1: तो आजकल धैर्यता ज्यादा कम हो रही है,
0: धीरज कम हो रहा है।
1: धीरज कम हो रहा है तो,
0: और जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड है। बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, इसलिए कोई गोल गोल बात भी करेगा ना, वो भी नहीं पसंद करता है। डायरेक्ट सॉल्यूशन बताओ ऐसे कहते हैं।
1: डायरेक्ट बात करो,
0: घुमा फिरा के मत करो, क्योंकि लोग में धीरज ही नहीं है सुनने की
1: जी।
0: अभी कोई कह रहा था
1: जी
0: कि होम्योपैथी दवा तो बहुत अच्छी है,
1: स्लो
0: लेकिन
1: है।
0: स्लो है, मना पहले वो सारी दूसरी दवाओं का असर बंद करता है, फिर उसकी असर होती है, तो लोग तंग हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई इसके असर ही नहीं है बीमारी पर, ऐसे
1: होता है। होता है। तो अब हम शारीरिक बात करते हैं, क्या हमारी जो दिनचर्या है स्लीप है, स्लीप साइकिल है, फूड है, एक्सरसाइज है, इसका भी एकाग्रता पर असर पड़ता है?
0: एक्टिविटी तो बहुत कर सकते हो, स्ट्रेंथ भी उतनी शरीर को दी गई है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर सकते हो। तो एक्टिविटी में भले कितना भी हो, हाँ उतना भी नहीं हो कि जो आपका स्ट्रेंथ ही नहीं है और फिर भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, वैसा नहीं, पर मैक्सिमम आपको जितना होता है आप कर सकते। अगेन जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना, आपकी एटीट्यूड्स है, उसमें आपके विचार है, आपके नेचर है, आपका वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, ये जो सारी चीजें ना, अगर वो बैलेंस्ड नहीं है ना उन एक्टिविटीज के साथ, तो उसमें आप देखेंगे कि आप एक्टिविटीज कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट इतना जल्दी से सब जगह नहीं मिल रहा है, या आप थक जाते हो, या आप बर्डन फील करते हो।
1: तो जितना हो सके
0: इनसाइड एंड आउटसाइड का बैलेंस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो भले आप कितनी भी एक्टिविटी करो।
1: जी, तो क्या हम क्या खाते हैं उसका भी असर पड़ता है?
0: हाँ, खाते हैं उसका असर पड़ता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि एज इज द फूड सो इज योर माइंड, माना जो खाना खाएंगे, जहाँ खाएंगे, जितना खाएंगे, जैसा खाएंगे, जिस रीति से खाएंगे, तो उसका असर मन पर पड़ता है। तो ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है
1: जी।
0: तो खाना भी अगर आप धीरज से खाते हैं, बराबर च्यू करके खाते हैं, अच्छी जगह अच्छे वाइब्रेशन में खाते हैं,
1: टाइम पर
0: खाते हैं, अच्छी क्वालिटी वाला खाते हैं, और जिसमें आपका मन भारी ना हो जाए ऐसा फूड खाते हैं, तो आपको मदद मिलेगी जरूर
1: जी। हाँ। और लंबे समय तक हम बैठ करके काम करते हैं सिस्टम के सामने, तो उस समय हमारे ध्यान को कैसे हम बनाए रखें?
0: लंबे समय तक बैठने पर एक ही प्रॉब्लम है कि आपको एक पेन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी को एक ही सिचुएशन में रखना आजकल के नॉर्मल लोगों का करना बहुत डिफिकल्ट है। पहले हमारे संत करते थे, ऋषि मुनि करते थे, घंटों एक ही पोजीशन में बैठ के उनकी तपस्या होती थी और उनको कुछ नहीं होता था, ऐसे ही खड़े होके चले जाते थे। पर अभी जो हमारा बॉडी बना है ना, उसमें एक ही प्रकार का काफी समय तक रहना, जैसे खड़ा रहना, जैसे मॉल में हम देखते हैं ना, कितने घंटे, 12 घंटे व्यक्ति खड़ा ही रहता है
1: जी।
0: और अगर एक ही जगह खड़ा रहे तो क्या हालत होगी उसकी? ऐसे एक ही जगह सिस्टम के आप बैठे हो, तो उसके लिए कहा जाता है कि आपको कभी खड़ा होना है, कभी पांव को हिलाना है, कभी हाथ को, कभी कमर ट्विस्टिंग करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है
1: जी।
0: ऐसे ही आपको कभी कोई प्लेजेंट म्यूजिक भी सुनना चाहिए, या आप अच्छी बातें जो आपको रिलैक्स करती है, लाइट करती है, ऐसी अच्छी बातें भी आप देखो। मींस यू शुड फीड योर माइंड एट दैट टाइम विद वेरी पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, वेरी एनर्जाइजिंग थॉट्स और एक्टिविटी। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपका बैलेंस अच्छा रहेगा। बाकी तो डेफिनेटली एक ही पोजीशन में अगर आप बैठे हो तो आपका अटेंशन स्पैन कम होने वाला है,
1: तो बीच बीच में आपको उठ के
0: या आप कोई एक्टिविटी दूसरी करो, या आप कुछ फन एक्टिविटी अपने लिए करो, जिससे क्या होता है थोड़ी एक्सरसाइज भी करने की जरूरत है, तो आपका अटेंशन स्पैन अच्छा ही रहेगा
1: जी। जिस जगह पे हम काम करते हैं कई बार हमें डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता है, चाहे वो चीज वस्तु हो, जैसे आप मॉल की बात कह रहे थे, तो वैरायटीज ऑफ कस्टमर्स आते हैं, तो उनकी व्यवहार से भी हम कई बार परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें तो स्माइल करनी है
0: जी।
1: और हम अपने साथ वालों के साथ रहना ही पड़ेगा
0: जी।
1: और मैनेजमेंट कैसा भी हो, हमें सैलरी की जरूरत है, तो हमें उनकी भी बातें सुन करके काम करना है
0: जी।
1: तो कई बार व्यक्ति दुखी होने के बावजूद भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है
0: जी।
1: और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे आई थिंक वो डिस्ट्रैक्शन मोड पे चला जाता
0: है। हाँ हाँ।
1: तो उस एनवायरमेंट में रहते हुए भी, उस जगह में रहते हुए भी कैसे अपने आप को बचाए रखें?
0: राइट। इसमें ना अगर हम ऐसा देखें कि ये सब एक्टर्स है अलग अलग, और वो अलग अपना अपना रोल बजा रहे हैं, इनको ये रोल दिया गया है, इनको ये रोल दिया गया है, अलग अलग प्रकार का। हाँ, तो एक है जो एक्चुअली किसी कस्टमर को कन्विंस करने के लिए खड़ा ही नहीं है, वो कम बात करता है, दिखाता है, कस्टमर को लेना है तो लेगा, नहीं तो चला जाएगा। एक जन है वो बहुत अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग वे में बात करता है, और इनको ना थोड़ा इंस्पायर करता है कि ये लेंगे, तो वो एक नहीं चार चीजें लेके जाता है। तो हर एक अपना रोल बजा रहा है, ऐसे नेचर वाइज भी हर एक का रोल होता है। अब समझो कि जो सुपीरियर है उसको ये भाई पसंद आता है जो बातें करके एक से चार करता है, तो फिर उसका व्यवहार वो शांत वाले के साथ कैसा होगा? थोड़ा तो कम होगा ना, कम होगा. ही विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द अदर पर्सन. पर अगर वो समझे कि नहीं ऐसे भी लोग जरूरी है मॉल में, सभी ऐसे होंगे तो नहीं, हर एक अलग अलग होते हैं एंड दे आर डूइंग दैट ड्यूटी बट इन डिफरेंट स्टाइल्स. ऐसे अगर हम अपनी सोच को बदलें कि भाई इस व्यक्ति को गुस्सा क्यों आ रहा है, वो मेरा इंसल्ट क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे उसके नेचर को समझे कि इसका नेचर क्या है, वो कौन सी चीज से डिस्टर्ब होता है, तो हम अगर समझेंगे तो हम कुछ अपने अंदर पॉजिटिव चेंज भी ला सकते हैं. नॉट टू प्लीज हिम बट टू मेक आवर सेल्व्स मोर इफेक्टिव.
1: जी है ना, तो वो सब देखते हुए भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है.
0: धीरे धीरे ऐसा रिजल्ट आएगा
1: क्योंकि
0: जब तक आपने एक्सेप्टेंस नहीं है ना, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा.
1: जी बिल्कुल. तो एक्सेप्ट करना बहुत
0: जरूरी है. भाई एवरीबडी इज प्लेइंग देयर ओन रोल.
1: भले वो
0: तो मैं किसी का रोल नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन मैं अपने रोल को मोर इफेक्टिव बना सकती हूँ.
1: और मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मेरा नेचर अगर कि मैं, मुझे बात करने नहीं आती है.
0: जी जी, कोई बात नहीं.
1: वो
0: कंपेयर किसी से कंपेयर भी करने की जरूरत नहीं, वो अपना रोल बजा रहा है, मुझे अपना रोल बजाना.
1: अगर मैनेजर कंपेयर किया तो,
0: मैनेजर कंपेयर करे तो सुन लो, फिर देखो मैं कौन सी चेंज अपने में ला सकती हूँ. और अगर ला सकते हो तो वेरी गुड है, बैलेंस करने के लिए.
1: अगर बाकी आप करने...
0: कि अगर आपने फोर्सिबली अपने में चेंज लाया तो वो ना कस्टमर पर इफेक्टिव होगा ना आपको अच्छा लगेगा,
1: क्योंकि वो नेचुरल नेचर नहीं है.
0: नेचुरल चेंज अपने में आना चाहिए. तो भले कोई कुछ भी बोले पर अपने को फोर्स नहीं करना है अपने ऊपर, है ना. अगेन फोर्स करेंगे तो फिर आपका विचार बदलता रहेगा अंदर, तो सामने जो आ रहे हैं उनसे डील करने में आपकी जो खुलापन होता है, ओपन माइंडनेस होती है, वो नहीं होगा. वो डिस्टर्ब करेगा वातावरण को और भी.
1: बिल्कुल बिल्कुल जी. तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि जब आसपास के लोग डिस्टर्ब करते हैं तो शांत रहकर काम कैसे करें घर में भी. घर में मान लीजिए सब मेंबर्स के साथ हमारा नहीं बनता है कई बार, क्योंकि विचार अलग अलग होते हैं, तो कैसे शांत रखें अपने आप को और काम भी करें.
0: देखिए, शांत रहना ये चुप रहना अलग होता है.
1: ओके जी.
0: कोई चुप हो जाते हैं
1: लेकिन अंदर चलता रहता है.
0: चुप हो जाते हैं और कोई भी बात करने को इग्नोर करते हैं. ज्यादा टाइम बाहर चले जाएंगे जब वो व्यक्ति होता है जिसके साथ नहीं जमता ऐसे, तो वो थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है और वो हो सकता है वाइब्रेशन के कारण और भी प्रॉब्लम बढ़ जाए. तो आपको ये देखना है कि जितना उसका फील्ड है उतना मेरा भी फील्ड है और दूसरे का भी फील्ड है. पर ये फील्ड में हमको कैसे रहना है ना. तो अगर उसने गुस्सा किया और मैं भी गुस्सा कर रही हूँ और बार बार ये चीज हो रही है, तो वातावरण में कौन से इमोशन फैलेंगे? नेगेटिव है ना, तो दुख का वातावरण बढ़ेगा. तो ऐसा करना है कि जो लोग पॉजिटिव है घर में वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा दे.
1: जी ओके.
0: सामने वाले को चेंज करने की एक्सपेक्टेशन में ना जिए कि इसका गुस्सा कब कम होगा तब घर में शांति होगी. नहीं, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते जाओ और जब बोलना ही है तब बोलो, बैलेंस से हर कार्य करो.
1: जी
0: है ना. तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सामने वाले का गुस्सा भी कम होता जा रहा है. इसी को मेडिटेशन भी कहा जाता है. मेडिटेशन माना अपने माइंड के लेवल से आप कार्य कर रहे हो, केवल हाथ से नहीं, केवल मुख से नहीं, लेकिन माइंड के लेवल को भी आप इसमें ट्रेन कर रहे हो कि जो मन है वो दूसरे तीसरे चौथे डिस्ट्रैक्टिव विचारों में न जाए.
1: जी,
0: ऊपर अटेंशन में रख रहे हो और उसको एनर्जी को आप मोबिलाइज कर रहे हो और आप उसमें भी एक अच्छा विचार रख करके कर्म कर रहे हो, जिसको हम कर्म योगी स्टेज बोलते हैं.
1: तो ये अटेंशन सदैव रख सकते हैं हम अपने ऊपर?
0: नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट होता है.
1: धीरे धीरे
0: स्टार्ट होता है. कोई भी चीज एबीसीडी से ही होता है. तो ये धीरे धीरे स्टार्ट होता
1: है. लेकिन जैसे 24 घंटा हम अपने ऊपर अटेंशन रख सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए?
0: मे बी नॉट. पर जितना भी आप कर सकते हो ना, तो उतना भी थोड़ा बहुत रिजल्ट तो जरूर आएगा.
1: जी,
0: है ना. और कभी कभी ना नेचुरल परिस्थितियां भी रिजल्ट को चेंज कर देती है. कई बार उसी व्यक्ति का इतना जोरदार ऐसी परिस्थिति आती है कि वो व्यक्ति एकदम रियलाइज करने लगता है, पछतावा करने लगता है और अपने आप को बदल देता है. आपने भले खाली एनर्जाइज किया पॉजिटिविटी को, पर वो परिस्थिति ऐसी आ गई जो वो व्यक्ति चेंज हो जाता है. तो कोई ना कोई रीति से रिजल्ट जरूर आती है
1: जी.
0: जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू एनर्जाइज्ड पॉजिटिवली कि सामने वाला बदल गया. नहीं, अलग अलग रीति से,
1: क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं,
0: कर
1: अपनी मानसिक शांति या फिर डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए.
0: और आपने अपने घर के लिए भी किया ना,
1: घर के लिए भी किया.
0: ऐसा थोड़ी एक ही व्यक्ति को टारगेट करके करते हो, पूरे घर के लिए भी किया. तो आपका कंट्रीब्यूशन तो सदा रहेगा ही रहेगा. उस व्यक्ति का जब भी चेंज होना होगा, जैसे भी होना होगा, वो हो जाएगा. पर नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं बनना है अपने
1: जी,
0: तो वो घर को पॉजिटिव नहीं बनाएगा. इतना तो अटेंशन दे ही सकते,
1: तो
0: माना अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा बार बार कि नहीं, मुझे अपना रोल बजाना है, मुझे अपना रोल बजाना है. और अगर हो सकता है उस समय मैं शांत रहूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस व्यक्ति का सुन रही हूं या मैं उस व्यक्ति को गलत रीति से मान दे रही हूं. नहीं, पर उस समय मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत है. इट्स योर ओन डिसीजन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी एल्स. समझे ना,
1: जब आपको लगता है कि बोलने से फायदा भी नहीं है और बात बढ़ेगी भी, तो नहीं बोलना.
0: जी जी,
1: ओके. तो कई बार हम गलत जगह पर भी ना कह देते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, तो क्या ये सही है या कहाँ पे नो बोलना है, कैसे पता करें हम?
0: अभी क्या है कि बहुत ज्यादा नो भी तो कोई सुन नहीं सकता है, है ना. तो नो की जगह अगर आपको दूसरा कोई मेथड आता है, कोई दूसरे रास्ता आता है, तो आप वो उनको पूछ सकते, राय ले सकते कि मैं इस रीति से करूं या मैं ये कार्य करूं इसकी जगह. आप ऐसा ऑप्शन दो
1: जी,
0: तो एटलीस्ट वो व्यक्ति ना तो नहीं सुनेगा. कभी कभार कोई चीज के लिए आपको ना बोलना पड़ेगा, तो आप सॉरी बोल के बोलेंगे, लेकिन हमेशा ना बोलेंगे वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है
1: जी.
0: तो उसको थोड़ा टर्न करके, एक ऑप्शन दे करके आप बोलो तो बेटर रहता है
1: जी.
0: बाकी ना बोलना कोई गलत बात नहीं है.
1: जब आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं या वो करने से आप ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, तो तब आप
0: गलत बात बिल्कुल नहीं है. कभी कभी ना बोलना भी सीखना पड़ता है.
1: राइट. और क्या बीच बीच में जब हम छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं तो हम ज्यादा फोकस रहता है?
0: छोटे छोटे ब्रेक्स माना किस प्रकार?
1: हम
0: चाय पीने जाएंगे ऐसे.
1: हाँ, चाय पीने जाएंगे या फिर घर का काम बहुत ज्यादा है एक साथ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा बैठ जाए अपने साथ बैठे, ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेना चाहिए.
0: बहुत ज्यादा नहीं, पर लेना जरूरी है. बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि आपके करने की अवधि इतनी लंबी हो जाएगी ना
1: जी.
0: तो हो सकता है आपका कार्य ही पूरा ना हो, पर ब्रेक्स लेना जरूरी है.
1: पॉज होना
0: जरूरी है.
1: ओके.
0: कभी बॉडी को भी रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है. ओवरडू कोई भी चीज को कभी नहीं करना चाहिए
1: जी.
0: जैसे कोई समझो कोई मंदिर पे जा रहा है और मंदिर पर चढ़ने के लिए लगभग 700 सीढ़ी है, तो वो 100 सीढ़ी चढ़ के 2 मिनट अगर बैठेगा रिलैक्स होने के लिए, तो वो कोई भगवान नाराज नहीं हो जाएगा? फिर वो एनर्जी इकट्ठा करता है और 150 सीढ़ी चढ़ जाता है
1: जी.
0: तो ब्रेक किस लिए आप ले रहे हैं?
1: ताकि आप थोड़ा और फास्ट मूव कर सको
0: और अपने को एनर्जाइज कर सको. बाकी जो ब्रेक लेता है बार बार और फिर थोड़े ही पास में आके कहता अब मैं मंदिर में तो नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, तो उसने क्या किया? ब्रेक नहीं ली, लेकिन वहां भी अपनी एनर्जी को यूज की
1: जी.
0: ब्रेक लेना माना एनर्जी को कंजर्व करना, ताकि आगे के लिए आप ऐड कर सको
1: जी.
0: तो ब्रेक अच्छी है
1: जी. बिल्कुल. और अभी तो वक्त हो गया है कि यहाँ से हम विदा लें आपसे, लेकिन जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे एक दो क्वेश्चंस कि बार बार आजकल हम मोबाइल चेक करते हैं, नोटिफिकेशंस और ये सब, तो प्रैक्टिकली कैसे हम बदल सकते हैं इस आदत को?
0: देखिए, उधर आता है मोबाइल में, डू यू वांट टू अलाउ नोटिफिकेशन और नॉट? तो अगर वो आता है और आपको नहीं चाहिए तो उसी समय ना बोल दो. है कि नहीं
1: जी?
0: आप अलाउ भी करते हो और फिर आप नोटिफिकेशंस को कैंसिल करने में टाइम गवाते हो. है कि नहीं
1: जी?
0: तो इतना तो पहला डिसीजन वो पूछता ही है. कि आपको अलाउ करना है कि नहीं करना, तो जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम जाता है तो पहले से ही आप उसको डिसाइड कर लो कि मुझे नहीं चाहिए। दूसरा कि कई बार कई

0: लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं क्या हो जाता है, फोन फुल हो जाता है.
1: यस, हम डिलीट भी नहीं करते हैं चीजें, कुछ
0: फुल हो जाता है. तो ये इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको डिलीट करते रहना पड़ेगा
1: और अटेंशन भी देख के डिलीट करना पड़ेगा.
0: हाँ जी, अटेंशन देख के भी डिलीट करना पड़ेगा. तो ये थोड़ा इस इंस्ट्रूमेंट्स का, आज का साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स का, ये थोड़ा ज्यादा ही मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम जाता है. तो एक बार क्या हुआ कि मैं कभी नहीं कैंसिल करती थी कुछ भी. तो एक बार क्या हुआ, मुझे एक फोन से दूसरे फोन में सब ट्रांसफर करना था. तो आप नहीं मानेंगे, एक पूरा दिन तक भी ट्रांसफर नहीं हो रहा था. फिर वो भाई ने समझाया मुझे कि देखिए, आप तो ओपन भी नहीं कर रहे हैं कहीं व्हाट्सएप, तो आपने क्यों रखा है? क्योंकि आपने ओपन भी नहीं किया, उस जगह लेता जा रहा है और अब यहाँ के लिए वो टाइम लगा रहा है
1: जी.
0: या तो आपको मेरे को ओपन करके देना पड़ेगा सब, तभी थोड़ा जल्दी होगा. तो मैंने देखा सचमुच वेस्ट था इतना सारा. तो ये बिगिनिंग से हमको ध्यान रखना पड़ेगा. जो पूरी नॉलेज नहीं है ना मोबाइल की, तो वो फिर ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं. कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लेते हैं ना, तो उसकी थोड़ी नॉलेज ग्राफ्स करना बहुत जरूरी है ताकि आप उसको इफेक्टिवली यूज कर
1: सको. लाइफ भी ऐसी है,
0: लाइफ भी ऐसी है. अंडरस्टैंडिंग जितनी ज्यादा होगी, इफेक्टिवनेस उतना ज्यादा होगा. तो आपका अटेंशन स्पैन भी बेहतर ही रहेगा
1: जी.
0: तो आज तो लाइफ भी कभी कभी मेस में होती है.
1: राइट, तो कौन से नोटिफिकेशंस ऐसे हैं लाइफ में जो हमें बंद रखना चाहिए?
0: एक तो गॉसिप.
1: ओके,
0: गॉसिप तो जरूर. बैक बाइटिंग.
1: और डिलीट क्या करना चाहिए?
0: ना यही जो है,
1: ये नोटिफिकेशन बंद है और इसी को डिलीट भी करना है पास्ट के है तो मैसेजेस.
0: हाँ, फिर दूसरा, दूसरों पर इल्जाम लगाना, दोष डालना, भले आपका भूल, तो ब्लेम गेम भी एक चीज है जो हमको नहीं रखनी चाहिए. फिर तीसरा, कोई को दुश्मनी हम क्यों बनावे? ऐसा ख्याल ही आपके अंदर क्यों आता है कि ये मेरा दुश्मन है? तो वहीं पर अपने एक्शंस को पहले से थोड़ा कंट्रोल करो कि मुझे जरूरी नहीं है किसी को दुश्मन बनाना, भले दोस्त कम हो, पर किसी को दुश्मन बनाना ये तो मेरी डायरेक्टरी में होना ही नहीं चाहिए. तो इस प्रकार से कुछ कुछ है चीजें. दूसरा कि जितना हो सके मुझे शांति से कार्य करना है. मैं गुस्सा क्यों होती हूँ, क्रोध में क्यों आती हूँ, ये तो मेरी एनर्जी पूरी ये हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है इसमें, क्रोध करने में. तो अंडरस्टैंडिंग कि भाई कौन सी चीज मुझे आगे बढ़ा रही है, कौन सी चीज मुझे रोक रही है. तो ऐसी सब नोटिफिकेशंस को हमें पहले से अगर नहीं डाले, डाउनलोड ही नहीं करे, या तो डिलीट करते जाए
1: वो एप्लीकेशंस ही ना रहे.
0: हाँ, क्योंकि वो तो ऑफकोर्स अपना फोकस बहुत अच्छा रहेगा लाइफ में. और ऐसे नहीं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है हमारे सामने जिनका फोकस बहुत अच्छा रहा, भले उनके कितने भी जेलिसी वाले दुश्मन बने, उन्होंने क्या क्या उनके साथ किया, उनको वो मैटर नहीं करता है. उन्होंने अपने जीवन में क्या किया वो ही मैटर करता है. और ये लोग बहुत फोकस्ड लोग थे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, बहुत फोकस्ड थे. जैसे मदर टेरेसा है, वो अपने जमाने में बहुत फोकस्ड थी
1: जी,
0: है ना. खुद ही अपना जीवन निर्माण किया और खुद ही उसको सस्टेन भी करती रही
1: जी.
0: उसके बाद भले वो ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी किया हो, लेकिन उनके होते समय तो काफी मना फोकस्ड रही. ऐसे हमारे कई राजा महाराजाओं की फैमिलीज है जिसमें काफी फोकस्ड रूप से उन्होंने राज्य भी किया और भारत को दुश्मनों से बचा के रखा. तो भले उनकी फैमिलीज थी, सब कुछ था, लेकिन काफी फोकस्ड लोग थे. उनका क्लियर थिंकिंग, फोकस्ड माना क्लियर थिंकिंग,
1: क्या करना है क्या नहीं करना है,
0: क्या नहीं करना है, बहुत क्लैरिटी होती है उनके थॉट्स में. ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स है. संत ज्ञानेश्वर का भी एग्जांपल है, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट. ऐसे कई संत भी रहे हैं हमारे भारत में और पूरे विश्व में भी ऐसे कई लोग, जैसे अब्राहम लिंकन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहा अमेरिका का, उसका भी काफी फोकस था. कितना कुछ वो डिफीट हो रहा था तो भी उसने अपना रास्ता ही नहीं छोड़ा. और एंड में जब से वो 60 साल का हुआ, तब अमेरिका ने सामने से बोला कि हमको आपके जैसे प्रेसिडेंट की जरूरत है
1: जी.
0: तो देखो कैसे वो अपने टारगेट पे पहुंच गया ना. तो ऐसे कई लोग फोकस्ड है और उन्होंने हमें सिखाया है. ये तो क्या है कि हमने सीखना ही बंद कर दिया है
1: जी.
0: सीखना बंद किया तो फिर आप कैसे अपनी लाइफ को गुजार रहे हो, कैसे पर, और फिर गलत एग्जांपल्स ले लेके उसको फॉलो करते जा रहे हैं, तो फिर कैसे फोकस्ड रहेंगे?
1: अपने लक्ष्य को भी रिवाइज करना है कि
0: करना चाहिए.
1: अगर मैं देख भी रही हूँ कुछ तो क्यों देख रही हूँ?
0: हाँ,
1: मुझे क्या करना है,
0: मुझे क्या मिलना है इसमें से, वो जरूर देखना चाहिए. कोई भी चीज मिलती है ना आपको सामने से, तो उसके तीन प्रश्न पूछो. पहला प्रश्न पूछो क्या ये मेरे लिए यूजफुल है, फिर दूसरा प्रश्न पूछो कि क्या ये आगे चल करके मेरी प्रगति करेगा, और तीसरा है कि क्या मेरा इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे कुछ कुछ प्रश्न पूछ के आप उस बात को पहले एनालाइज करो
1: जी,
0: और फिर वो कार्य करो तो आप फोकस्ड रहेंगे।
1: राइट, बिल्कुल। तो अगर आपको एक लाइन में बताना हो डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे पावरफुल मंत्र क्या है?
0: पावरफुल मंत्र यही रहेगा कि आई एम हियर टू रीच माई ओन डेस्टिनेशन फ्रॉम माई ओन फ्री विल।
1: ओके,
0: आई एम हियर टू रीच माई डेस्टिनेशन which is created from my own free will।
1: जी, मेरी इच्छाओं से ही मेरे को अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। बिल्कुल, इसे हम जरूर याद रखेंगे। दीदी, अभी वक्त हो गया विदा लेने का, तो आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: इसमें यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू मुझे समय देने के लिए, अपने विचारों को बांटने के लिए आप सबके साथ, और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस पर अपने थॉट्स कंट्रीब्यूट करेंगे, और हर एक खुद अपनी लाइफ का थोड़ा एक एनालिसिस करेंगे, जैसे एक मिरर सामने रखते हुए अपनी पूरी जीवन यात्रा को देखेंगे, और आगे ये भी समझो कि हर एक के अंदर वो फोकस है ही है, कहीं नहीं जाता है, केवल हमको वापस उसका अनुभव कैसे करना है। तो जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो जितनी भी नहीं काम की चीजें होती है वो निकाल देता है, एंड एट द एंड वो मूर्ति अपने आप शेप ले लेती है। तो ऐसे ही हमारा भी फोकस अपने आप शेप ले लेगा अगर उसके अलावा जो भी वेस्ट है, जो डिस्ट्रैक्शंस आपको कर रहे हैं, वो आप धीरे धीरे एक बाय एक निकालते जाओ, तो लास्ट में क्या रहेगा? आपका प्योर फोकस। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट।
1: थैंक यू सो मच दीदी, आज हमारे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद है कि जब जब आप शांतिवन आएंगे तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और हमारे श्रोताओं को आपके जो अमूल्य जीवन के ज्ञान है, जो आप प्रैक्टिकल जीते हैं, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।
0: थैंक यू। धन्यवाद आपको।
1: दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? डेफिनेटली अच्छा ही लगा होगा, तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं 9414514514 पर। नमस्ते।

clouds obscure the light, and you've lost your way.

when your spirit cannot rise above. Take my hand.

0: पीछे पीछे पीछे चल। भाई स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति। आज है 12 सितंबर 2026 और हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के मुरली में बाबा ने ओम शांति का अर्थ बताया है। ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीर। बाबा कहते हैं आत्मा और शरीर दो चीज है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, शरीर जड़ है। आत्मा शरीर को देख सकता है, शरीर से निकलने के बाद भी आत्मा शरीर को देख सकता है, शरीर आत्मा को नहीं देख सकती। इसीलिए तो गीता में भी कहा इन चरम चक्षु से तुम मुझे नहीं देख सकते हैं। अर्थात जैसे आत्मा को नहीं देख सकते हैं वैसे परमात्मा को भी नहीं देख सकते हैं। जैसे आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है तो उसका पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। जिसको लोग पुकारते हैं वो गॉड फादर कहते हैं। बाबा कहते हैं वो कब आते हैं, आकर के कैसे ज्ञान देकर सबको पावन बनाते हैं, ये अब तुम बच्चे अच्छी तरह से समझ रहे हो कि परमात्मा ही आकर के सबको पावन बनाए, श्रेष्ठ देवी देवता बनाते हैं और पुरानी दुनिया खत्म हो अब नई दुनिया आए की आए और उस नई दुनिया के लिए हमें योग्य बनना है श्रीमत के आधार से। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी यह रावण राज्य पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया आ रही है, इसलिए श्रीमत पर चल, पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, उस कथा का रहस्य क्या है? उत्तर है उसका रहस्य है बादशाही लेना और गवाना। अलफ को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी। साकार ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में ये बात आती है कि जब ब्रह्मा बाबा कलकत्ता पहुंचे और उस समय बाबा को मेल आया कि वापस कराची जाना है, हैदराबाद जाना है, तो उस समय बाबा को जो साक्षात्कार हुआ था उस कारण नशा इतना था, तो बाबा कहते अलफ को अल्लाह मिला और सारा बिजनेस समेटने के लिए पार्टनर को कहा और कहा तुम जो करोगे मुझे उस पर विश्वास है, तो कहा गदाई छोड़ दी। जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले राजाई गंवा देते हैं, फिर बाप उन्हें राजाई देते हैं। पतित से पावन बनना, गदाई छोड़ राजाई लेना, यही सच्ची सत्य नारायण की कथा बाप सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा उस विनाशी राजाई के पीछे, गदाई के पीछे नहीं गए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने समझाया है। ओम माना अहम आत्मा हूं और मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, यह समझ में आता है कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। आत्मा में ही संस्कार अच्छे व बुरे रहते हैं। मुख्य है आत्मा। पूरा आत्मा का बाबा ने कितना शॉर्ट में सारा परिचय दे दिया कि आत्मा क्या है। मन बुद्धि संस्कार सहित है और बाबा कहते हैं उस आत्मा को कोई देख नहीं सकते हैं। शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता है। जान सकते हैं कि आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है, आत्मा देखी नहीं जाती है।
शरीर देखा जाता है, वैसे ही आत्मा का जो फादर है, जैसे आत्मा वैसे परमपिता परमात्मा। तो बाबा कहे, वैसे ही आत्मा का जो फादर है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आते हैं, उनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। आत्मा सब ब्रदर्स है, शरीर में आते हैं तो कहेंगे ये आत्मा भाई भाई है व भाई बहन है। बाबा कहते शरीर में आते हैं तो कहेंगे ये भाई भाई है व भाई बहन है। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, आत्माओं का बाप सभी का एक है, उनको देख नहीं सकते। तो बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, ये पुरानी दुनिया कलयुग है, इनको अब बदलना है। जैसे पुराना घर खत्म हो नया बनता है, पुराना घर खत्म हो तो नया घर बनता है, वैसे ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य। आधा कल्प चलता है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी, राम सीता की डिनास्टी। तो यह सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं, फिर देवी देवताएं जो पवित्र थे वह अपवित्र बन जाते हैं, इनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं परंतु जलता ही नहीं है, वर्ष वर्ष जलाते परंतु जलता ही नहीं है। यह है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रसम पड़ गई है। भारत का नंबर वन दुश्मन है रावण, और नंबर वन दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना। इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा दोस्त को कभी जलाएंगे नहीं। रावण दुश्मन है, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाकर उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। अब ये कौन बैठ समझाते हैं, इस समय कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप शिव बाबा ब्रह्मा दादा। बाबा हमेशा सही करते हैं बाप दादा। ब्रह्मा बाबा हमेशा सिग्नेचर करते थे बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका होगा, जिसको एडम कहा जाता है, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो देवी देवता बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और फिर ब्राह्मण सो देवी देवता बनते हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं, इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य सृष्टि का बड़ा प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा बाबा कहते रहते हैं, यह है साकार बाबा। शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं, यह है पतित दुनिया रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं। वहां रावण ही नहीं है तो कोई जलाने की बात ही नहीं है। रावण होगा ही नहीं, रावण ने ही ये दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत है, बड़े बड़े महल आदि है, वह स्वर्ग में है। बाप समझाते हैं, भल किसके पास करोड़ है परंतु शांति नहीं है।
करोड़ों रुपया होंगे लेकिन शांति नहीं है। पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती है जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। सतयुग में है वॉइसलेस संपूर्ण निर्विकारी, वहां बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहां होता ही नहीं, न देह अभिमान, न क्रोध, न काम, पांच विकार होते ही नहीं, इसलिए वहां कब रावण को जलाते ही नहीं। यहां तो रावण राज्य है इसलिए सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। वह तो लिबरेटर भी है, सबका दुख हरता, सबको मुक्ति देने वाला मुक्तेश्वर सबका दुख हरता है। अभी सब रावण राज्य में है, बाप को आकर छुड़ाना पड़ता है। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो, ये पतित दुनिया खत्म होनी है, जो श्रीमत पर चलेंगे वह श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे, विनाश तो होगा, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी कौन बचेंगे? जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है, सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। राम व सीता वाला नहीं, लंका तो ये सारी दुनिया है, इसमें रावण का राज्य है, सारी पुरानी दुनिया में रावण का राज्य है। भारत सोने की चिड़िया था सतयुग में, जबकि दूसरा कोई राज्य ही नहीं था, इसलिए सोने की चिड़िया था। बाप भारत में आकर फिर से सोने की चिड़िया स्वर्ग बनाते हैं, बाकी जो इतने धर्म है सब खत्म हो जाएंगे। समुद्र भी उछल मारेगा, बॉम्बे क्या था, एक छोटा सा गांवड़ा था। अभी सतयुग की स्थापना होती है, फिर बॉम्बे आदि रहेगी नहीं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कैपिटल दिल्ली होती है जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी, राम राज्य में भी दिल्ली ही कैपिटल रहती है, परंतु राम राज्य में हीरे जवाहरों के महल थे, कैपिटल वही रहती है, हीरे जवाहरों के महल थे, अथा सुख था। बाप कहते तुमने विश्व का राज्य गवाया है, मैं फिर से देता हूं, तुम मेरी मत पर चलो, श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे ही याद करो और किसी देहधारी को याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, तुम मेरे पास चले आएंगे, तुम मेरे गले की माला बन, फिर विष्णु के गले की माला बन जाएंगे, माला के ऊपर मैं हूं, फूल है परमात्मा, फिर युगल है ब्रह्मा सरस्वती, वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं, उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूं, जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं। आत्माओं का रहने का स्थान है परम धाम, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम सब आत्माएं वहां स्वीट होम में रहने वाली है बाप के साथ, वह है शांति धाम। मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते, सबको पार्ट में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार करते रहते हैं, तुम तैयार हो जाएंगे तो वहां जो भी आत्माएं हैं वह सब आ जाएंगी, फिर खलास, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार चक्कर चलेगा। बाबा कहते नई दुनिया में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार ये चक्र चलेगा।
गीत में भी सुना ना, आज का गीत था आखिर वह दिन आया आज। भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते थे, बाप है ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य प्रकटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो जो भारतवासी नरकवासी है वह फिर स्वर्गवासी बनेंगे, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएगी। समझाना बहुत सहज है, बाबा कहते सहज भी है और समझाना बहुत थोड़ा है, ज्यादा लंबी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अलफ बाबा बे बादशाही, अलफ द्वारा बादशाही मिल जाती है, गदाई खत्म हो जाती, उसकी कहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा, बाकी सब है दंत कथा है। बाबा ही नर से नारायण बनने के लिए ये ज्ञान सुनाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब शुरू हुआ, कब तक चला, तो कथा भी हुई ना। जो विश्व पर राज्य करते थे वह 84 जन्म लेकर बिल्कुल ही तमोप्रधान बन गए। अभी बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूं। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो, वह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। पहले पहले सूर्यवंशियों का राज्य, फिर चंद्रवंशियों का, उनके बीच दूसरे भी, फिर बाद में उनके बीच दूसरे भी बौद्ध, इस्लामी, फिर क्रिश्चियन आए, फिर वह देवी देवता धर्म जो था सो गुम हो गया, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। शास्त्र में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष दिखाई हुई है। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा देते हैं, इनका भी शरीर छूट जाएगा। देखो पहले से ही बाबा ने बच्चों को सतर्क किया था बहुत स्पष्ट शब्द में कि यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा देते हैं, इनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ जो आत्माओं का बाप है वह सुनाते हैं, वही पतित पावन है। मनुष्य मनुष्य को पावन बना नहीं सकेंगे, जो खुद ही मुक्त नहीं हो सकते वह औरों को फिर कैसे करेंगे। वह तो सब भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु है। कोई कहेंगे फलाने की भक्ति करो, कोई कहेंगे शास्त्र सुनो, अनेक अनेक मत मतांतर है, इसलिए सब और ही बेसमझ बन गए हैं। बाबा कहते चारों ओर सब और बेसमझ बन गए हैं, अब बाप आकर समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण समझदार विश्व के मालिक थे ना, अब कितने कंगाल बन गए हैं। फिर शिव बाबा आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि यहां तकदीर जग जाए। बाबा कितना अच्छी तरह से समझाते कि यहां तकदीर जग जाए। बाप आते ही है मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी है ना, सब त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं त्राही त्राही के पहले बेहद के बाप से कुछ वर्षा ले लो। यह जो कुछ दुनिया में देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, ये भारत का ही खेल है। राइज होगा सतयुग में, अब कलयुग में फॉल होना है। ये सब रावण राज्य का पंप है, अब विनाश होना है। फॉल ऑफ वर्ल्ड, राइज ऑफ वर्ल्ड, सतयुग में कौन कौन राज्य करते हैं ये बाप बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज्य, बाबा कहते राइज ऑफ भारत देवताओं का राज्य, फॉल ऑफ भारत रावण का राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके पहले तुम पढ़ रहे हो
बाप से वर्षा लेने। कितना सहज है, यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। सन्यासियों का है ही निवृत्ति मार्ग, वह धर्म ही अलग है। वह तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ चले जाते हैं, उनका है हद का सन्यास। तुमको इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर फिर यहां आना नहीं है। यह भी अच्छी रीति समझाना है, कौन कौन से धर्म कब आते हैं। द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं, पहले सुख भोगते हैं फिर दुख। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है। जब से तुम चक्र में आते हो, महाराजा महारानी बनते हो, सिर्फ अलफ और बे को समझाना है। सबको अलफ बाबा और बे बादशाही समझाना है। बाबा किसको विलायत में जाने की मना नहीं करते हैं। यूं तो सब चाहते हैं कि मृत्यु अपने देश में ही हो। अब विनाश तो होना ही है, हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं कि भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहां बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी मनाई जाती है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ आकर अवतार लेते हैं। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को नमन करना चाहिए, उनकी जयंती मनानी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी वैल्यू शिव बाबा की गुम कर दी है। नहीं तो भारत सबसे ऊंच तीर्थ है। वह बाप यहां ही आकर सबको पावन बनाते हैं। तो यह सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा, जहां भगवान आते हो वह सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है, अभी तुम आत्माएं जानती हो। हमारा बाबा इस अपने शरीर द्वारा ये राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है, आत्मा अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और पवित्र बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, उच्च पद पालेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण स्वतो प्रधान बनना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। दूसरी पॉइंट, ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। त्राही त्राही होने के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ। सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योगयुक्त भव। स्नेही बनने के गुह्य राज को समझ। सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योगयुक्त भव। जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं, वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते हैं, वह राजयुक्त योगयुक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसे राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है।
जो इस राज को नहीं जानते वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहते। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। जो राज नहीं जानते वे कभी अन्य को नाराज करते कभी स्वयं नाराज रहते हैं। इसलिए बाबा कहते स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। आज का स्लोगन है जो निमित है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। जो निमित है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। आज का व्यक्त इशारा है अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते जैसे बाप दादा सदा बड़ी दिल वाले बेहद के दिल वाले हैं इसलिए सर्व के दिल लेने वाले दिलाराम हैं। ऐसे बच्चे भी बेहद के दिल फ्राक दिल दातापन के दिल रखने वाले सदा दिल खुश से जहान को खुश करने वाले खुश नसीब आत्माएं हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं ही जहान के आधार हो। आप सभी जगते जागती ज्योत बनते तो जहान वाले भी जगते। आप सबकी चढ़ती कला होती है तो सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाता है। अच्छा ओम।